0: अच्छी खबर सच्ची।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: पितृपक्ष में अग्नि के प्रयोग से पितरों को कैसे शांति मिलती है? पितृपक्ष में उड़द की दाल के प्रयोग से मन का भय कैसे दूर होता है? और पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग पितरों को कैसे संतुष्ट कर देता है? कौन सी हैं पितृपक्ष की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
8: गुजरात में अंबाजी भादरवी मेले का भव्य समापन, धाम में बना आस्था का महारिकॉर्ड, 7 दिन में 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए मां अंबे के दर्शन। मदुरई के कूडल अजगर मंदिर में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ा, एक साथ 5 गरुड़ वाहनों पर निकले भगवान विष्णु के स्वरूप, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दिव्य दर्शन। दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए आई गुड न्यूज, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की आज से शुरू होगी बुकिंग, रेलवे चलाएगा 102 फेरे वाली स्पेशल ट्रेन। एशियन गेम्स, भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग, स्क्वाश से लेकर एथलेटिक्स तक गोल्ड की उम्मीद, भारत को अब तक 4 गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज पहला मैच तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 51वें दिन हनुमान अंश पर बरसी नीम करौली बाबा की कृपा, कुल 5,58,00,000 का कारोबार किया, ग्रॉस कलेक्शन 352 करोड़ के पार, वर्ल्ड वाइड कमाई 390 करोड़ पहुंचे। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी, देश के कई राज्यों में मौसम विभाग का बारिश का भारी अलर्ट, दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, बिहार में तेज बारिश की संभावना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

हम आपको आज एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि हनुमान जी राम जी का युद्ध हुआ है, हाँ, और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए राम जी से लड़ गए। एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। सुकंत नाम का राजा कैवर्त देश का राजा था। उसके राज्य का नाम था कैवर्त। एक बार राजा बड़ा धर्मात्मा था, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पूजा पाठी, एकदम पूजा पाठ करता रहता, राम नाम जपता रहता, संतों के समागम में जाता रहता था। तो एक बार संतों की सभा लगी तो कैवर्त देश का राजा सुकंत उस सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। उसी समय उस राजा को नारद जी मिल गए और नारद जी का काम है आगी लगाना। नारद जी बोले, कहो सुकंत कहां जा रहे? सुकंत बोलो, संत सभा में जा रहे, संत सभा में, संतों के समागम में जा रहे। जाओ जाओ जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए, संतों की संगत करोगे बुद्धि निर्मल रहेगी, जाओ जाओ जाओ जाओ। ये वो महाराजा क्या, वो राजा थोड़ी दूर बढ़ा तो नारद जी बोले, रुको रुको रुको रुको, अच्छा जो बताओ सुनो, वहां बहुत सारे संत होंगे, सबको प्रणाम करना। महाराज, आपने तो ये हमें सिखाया ही है संतों को प्रणाम करना, हम तो राजा हैं, संतों को प्रणाम नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? हाँ ठीक ठीक ठीक, अब जाओ जाओ। थोड़ी दूर फिर चला तो नारद जी ने फिर रुका, ए रुको सुनो राजन, सुकंत सुनो, सबको प्रणाम करना, पर वहां पर एक संत रूप में एक विचित्र आदमी होगा, उनको मत करना। तो सुकंत बोले, किनको? बोले विश्वामित्र जी को। क्यों? अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना, मत करना तो मत करना। अरे महाराज, आफत ना हो जाए? कोई आफत नहीं, हमने कह दिया मत करना, क्योंकि वो ऋषि है ही नहीं, पहले वो भी राजा थे तुम्हारी भांति, और हमारी आज्ञा है तुम प्रणाम मत करना, सुझाव मान लो, तुम्हारे पुण्य बचे रहेंगे। अब राजा सुकंत परेशान हो गया, अब क्या बोले? नारद जी की आज्ञा। नारद जी का मतलब ही होता है जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। नारद का अर्थ क्या? जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। तो हां कह दिया। राजा संत सभा में गया तो सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। और जैसे ही विश्वामित्र जी को छोड़ा तो ये प्रणाम इतनी खतरनाक विधा है कि 100 लोग करें एक ना करें, सो वही पे नजर जात के जो आगे को लगो को आए। जो हमें चीनत नहीं है, हमको जानता नहीं है क्या, हम ऐसे और वैसे? तो जो सबको प्रणाम किया उसको भर प्रणाम ना करी तो विश्वामित्र जी को आग लग गई। और सबते कठिन जाति अपमाना, रामचरितमानस में भी आया है, जाति का अपमान सबसे कठोर है, इसको पीना बड़ा मुश्किल है। तो विश्वामित्र जी मारे क्रोध के, आग बबूला होकर के भागे भागे, जब संत सभा पूरी हो गई तो दौड़े दौड़े अयोध्या आए, सीधे सीधे अयोध्या। राम जी दोपहर का समय, तो भगवान राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदार बने थे। राम जी ने कहा, क्या हुआ आज तो गुरुदेव तुम्हारा चेहरा अलग अलग बदला बदला सा लग रहा है। बोले, क्या नहीं हुआ, तुम सो रहे हो, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है, अपमान हुआ है, ऋषि मुनियों का अपमान हो गया, संतों का अपमान हो गया, तुम तो सो, तुम्हें क्या लेना देना है? राम जी बोले, आपका किसी का? अरे हमारा अपमान कर दिया। आपका अपमान हो किसने कर दिया, आप हमें बताओ। विश्वामित्र जी बोले, अगर बता भी देंगे तो तुम करोगे क्या? क्या कर लोगे अगर नाम भी बता दे तो? तुम तो, तुम्हें तो सोने से टेम नहीं। राम जी बोले, गुरुदेव आप एक बार बता दो, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं कि कल जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं है उसको काट करके लाएंगे, वो आपके चरणों में चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी बोले, नहीं होना चाहिए ऐसा काम, तो होना चाहिए, खल को दंड मिलना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया, सुकंत नाम का राजा है जिसने हमें प्रणाम नहीं किया।

राम जी ने प्रण ले लिया कि कल प्रातः काल होते ही सुकंत का वध कर देंगे। सुकंत लगो अब तो सुबह होने वाली है, प्राण निकल जाएंगे। सो सुकंत रोने लगा अत्यधिक रोने लगा। सोई नारद जी प्रकट भय, कहो सुकंत सब ठीक है? अरे बोले का ठीक है, मर रहे हम। नारद जी बोले एक दिन तो सबको मरना है, कोई नई बात नहीं है, मरना। मृत्यु लोग यहां सब मरते, जो आता है सो जाता है। अरे सुकंत बोले लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले कौन मरना चाहता है, लेकिन मर तो सब जाती है। सुकंत बोला प्रवचन मत सुनाओ, भगवान मार डालेंगे, उन्होंने प्रण लिया है। लेकिन धन्य रे नारद जी। नारद जी बोले और अच्छी बात, इसमें तो तुम खुशी मनाओ, संत भंडारो करवाओ। सुकंत बोला क्यों? बोले भगवान जिसको मारे उसकी सदगति हो जाती है। सुकंत बोलो हमें सदगति करवाऊ? नहीं नहीं। नारद जी बोले आकर लपड़ा क्या? अरे बोले लपड़ा जो है कि तुमने कही थी उन्हें प्रणाम ना करियो, हमने नहीं करो, उनने जाके हाई कमाना बता दो। हाई कमान ने धनुष बाण लेके प्रण ले लो कि हमारे प्राण पखेरु तेरे ही होने, तुम्हें खावे या हमने। अब बताओ बच कैसे रहे? नारद जी बोले अब बचना तो मुश्किल है। सुकंत हाथ जोड़ के बोलो वाह, उपाय देने में शर्म नहीं आई है, जैसे उस समय उपाय दिया था अब दे। नारद जी बोले अब उनसे बचने का तो और कोई उपाय नहीं है। बोले वाह सलाह दे सकते हो, एक और दे दो अधिकारी, दूसरी सलाह दे दो। नारद जी ने हाथ पकड़ा, सामने पर्वत पर ले गए, जंगल में एक पर्वत पर ले गए जहां पर एक गुफा में माता अंजनी रहती थी। अंजनी माता की गुफा के सामने जाकर के नारद जी बोले सुनो दरवाजे पर तुम रोने लगो, अंदर से जो भी निकले तो पांव पकड़ के कह देना कि हमें तो वचन दो, प्राणों की रक्षा करवाएंगे। सुकंत बोले मरते क्या नहीं करते, जो ही और कर लो। सुकंत जात जात बोलो अगर इनने ना वचन दे फिर का कर भी। नारद जी बोले फिर और भी हो पाए, हम तो सलाह देने में माहिर है, फिर फोपट की सलाह चाहे जब ले लेना। सुकंत बोलो एक बे भर प्राण निकल जाए, लौट के तुम्हारी सुनने ना कहा ही हमें, एक बे सुनी सो हमारी जैसी आप आते गरे के नीचे से कौर नहीं जा रहा हुआ, लुचाई नहीं जा रही यार। सुकंत गया अंजना माता के गुफा के सामने बैठ गया और लगा

कहो बेटा कौन हो तुम? मां हम आपके बालक हैं सुकंत, हमारी रक्षा करो। हमने सुना है आपके द्वार पर जो भी आता है आप रक्षा करती हैं। अंजनी माँ ने कहा क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है? मां पहले वचन दो। अरे बताओ तो कौन हमको? मां विश्वामित्र जी मारना चाह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, चिंता रो मत, हम वचन देते हैं, तुम रोना बंद करो, जैसे भी होगा हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके बतलाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज, आहा हा हा, राम जी की सेवा करके शाम के समय जब अपनी माँ के पास चरणों में गए, सोई अंजना माता बाहर बैठी, सुकंत भीतर बैठो। माते आज मलिन मुंह करके क्यों बाहर बैठी हो? क्या हो गया? अंजनी माँ बोली पहले ये बताओ अगर हम कोई तुम्हें आज्ञा देंगे तो उल्लंघन तो नहीं करो? हनुमान जी बोले माँ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर। अंजना माता बोली नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो सुनो, अगर किसी के प्राण बचाने की आज्ञा दें तो? हनुमान जी बोले हम अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हम उसके प्राण बचा करके रहेंगे उनके लिए, चाहे हमें जिससे लड़ना पड़े। अंजना माता बोली न करे आओ सुकंत जी बाहर। सुकंत ने आके छह बेर दंडवत पांव पर एक जय हो तुम्हारी वीर बजरंग बली। राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी सेवा करने प्रातः काल पहुंच जाते हैं। श्री हनुमान जी पहुंचे तो राम जी सेना तैयार करतना है, तो हनुमान जी तो जानती थे कहां जा रहे प्रभु, कहां जा रहे? हनुमान जी सुकंत को मारने जा रहे। हनुमान जी बोले सुकंत का पद क्यों? राम जी बोले प्रतिज्ञा ली है। किसकी? अपने गुरुदेव के चरणों की, कि आज अगर हम सुकंत को नहीं मारेंगे तो जलपान नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले मत जाओ। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले हमने भी प्रतिज्ञा ली है। राम जी बोले किसकी? बोले अपने इष्ट के चरणों की, कि हम सुकंत को बचा करके रहेंगे। ले अब फंस गई आप। राम जी बोले चाहे जो हो जाए प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, हम तो सुकंत को मारने जाएंगे। हनुमान जी बोले तो हम भी बचा कर रहेंगे। अब दो जन की ठन गई, तो लक्ष्मण जी ने टेढ़ी भौंह कर ली कि अब फंस गए तुम बंदरा बब्बा, अब फंस गए, अब देखा जाएगा, अब बड़ा मजा आएगा। हनुमान जी सीधे सुकंत के घर पे पहुंचे। सुकंत, सुकंत बोलो गुरुदेव का भाव। हनुमान जी बोले कछुनी मावा भाई साहब आ रहे पूरी फौज लेके, एक के 47 पूरी बटालियन ले भाग लो। क्यों? बचना मुश्किल, राम जी मारने आ रहे। तो सुकंत बोलो हमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने भी तो बचन ले कि हम बचा भी। हनुमान जी बोले बचावे ही तो आया नहीं था, अबे लो हम ही संगे आके ना ठुकवा देते बाण। सुकंत बोलो बात भी सही कह रहे। सुकंत का हाथ पकड़ा, कहां जाएंगे तुम्हें क्या करने? चलो जंगल ले गए वन में। अब वन में ले गए, वन में ले जा करके बोले अच्छा बताओ क्या करें? बोले संकट में एक काम करो, जाप करो। सुकंत बोलो जाप हमें नहीं निकल रहो, कछु मोह जो भर नजर आ रहा हो, कहू राम जी आना जा मैं बाण ना मार दे, मैं प्राण पकेरू ना उड़ जा मैं, बाल बच्चन को का हुई है, राजपाट को का हुई है। हनुमान जी बोले बाल बच्चे छोड़, दोनों हाथ उठा, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी तो कीर्तन गा में, सुकंत बीच बीच में रोक दे, रोको अच्छा जो बताओ हम बच तो जे भी, कम मर तो ना जे भी। हनुमान जी बोले भाई जाप करो, मंत्र दृढ़ विश्वास रखो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास रखो होगा कल्याण, होगा होगा होगा। सुकंत बोलो कल्याण तो होगा, कहूं ऐसा ना हो कि ये कीर्तन करत करत भी बाण ठोक दे, हमाओ काम हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, हनुमान जी बोले तुम भजन करो सुकंत बच जे हो। सुकंत बोलो हमें नहीं लग रहा हो कि बच जे भी। राम जी गए, अरे बोले कीर्तन पे भरोसा रखो।
हनुमान जी कीर्तन करें कि सही में ना बच जाए, ना बचे तो बड़ी आफत। सो हनुमान जी कीर्तन करें सो रोवे, और हनुमान जी रो तो देखवे सो सुकंत और ज्यादा डबल माइक में रोवे। लेकिन हनुमान जी महाराज तो भाव में रोवे पर सुकंत भय में रो रहा है। दोनों के रोने में अंतर है, एक भाव में रो रहे एक भय में रो रहे हैं। अब रोने लगे, राम जी पहुंचे सुकंत के घर। क्या सुकंत निकल बाहर। और जैसे ही पहुंचे सोई राम जी की सेना, और राम जी सामने देखो सो सुकंत को कीर्तन ईर्तन सब भूल गो, लगो रोवे, साउंड सर्विस लगा के लगो रो। अरे हनुमान जी बोले चुप हो जा, रो रहा सेंत में। अरे बोले रो रहा हूं आ गए भाई साहब। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी ने क्या लीला की, हनुमान जी महाराज ने सुकंत को अपनी पूंछ में छिपा करके रख लिया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वचन दिया। और हनुमान जी महाराज

को देख करके राम जी बाण चलाए सुकंद के लिए, लेकिन राम नाम के प्रताप के कारण वो बाण सब बगल से निकल जाए। एक चक्र चलने लगा कीर्तन का। राम जी हताश हो गए, अनेकों बाण मारे पर सुकंत नहीं मरा, क्योंकि राम जी सौगंध खाएं अपने गुरु चरणन की, और हनुमान जी भी सौगंध खाएं अपने इष्ट चरणन की। राम जी सौगंध खाएं के सुकंत को मार कर रहेंगे, हनुमान जी सौगंध खाएं के हम तुम्हें बचा के ले भी। हनुमान जी दो ही हाथ जोड़

कीर्तन करे हरा से आंखी खोले पी धीरे से पूछ रहे काय सुकंत बढ़िया हो। सुकंत बोलो अबे तो जिंदा बचे हैं लेकिन बगल में हो मिसाइलें सी छूट रही। हनुमान जी बोले हाथ पाओ ननकारियो नहीं तो फेंकाई जे हो। सुकंत बोलो हम तो इन सिकुड़े यहां तना पूछ और तो बढ़ाओ मरे आई सी हाँ तक और बढ़ा दो। हनुमान जी ने 2.5 मीटर और पूछ बढ़ा दी। अब बोल सुकंत बोलो अब तो बढ़िया लोग गए हवा लो नहीं यार इतना खोल दो सांस ना रुक जाए तब बानन से बचिए सो श्वास से मर जाइए। सुकंत बोलो बस ऐसा ही चलन दो जब निपट जाए तब बताइयो। हनुमान जी बोले निपट तुम डराओ ना। फिर वो बोलो अच्छा जो बताओ जो तो बताओ बच जे भी। अरे हनुमान जी बोले पगला आएगा चुप रहा

कीर्तन करने लगे श्री हनुमान जी महाराज। और कीर्तन करते करते राम जी हताश हो गए। लक्ष्मण जी से नहीं देखोगा, वह बोले बताओ तो जब से लगे हैं। लक्ष्मण जी को दिमाग खराब होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा बन गया दिमाग में। सोई लक्ष्मण जी ने एक टैया तीर निकालो और छोड़ दो। और जैसे ही छोड़ो सो हनुमान जी के वक्ष स्थल में वह तीर लग गया। और जब राम जी ने हनुमान जी को देखा, अरे राम राम राम, हमारे हनुमान की सीना से रुधिर बहने लगा। राम जी की आंखें भर आई, दौड़ कर जाकर के जोर से कसकर हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। हृदय से हनुमान जी को राम जी ने लगाया, सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार चूमे हनुमान जी को, बार बार मुख चुम्बन राम करते हैं, बार बार हृदय से लगाते, सिर पर हाथ फेरते, नेत्र बंद किए हैं राम जी के। जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे, रुधिर बहना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक हम नेत्र नहीं खोलेंगे। लक्ष्मण जी यह दशा देखकर भुलाने हैं। लक्ष्मण जी ये दशा देखकर के आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितना अद्भुत नाता भक्त और भगवान का है। लगाया तीर हनुमान को, पर पाया राम ने। रो पड़े लक्ष्मण जी, आंखों में आंसू आ गए। राम जी रोते रोते हृदय से लगा करके राम जी रोने लगे, हनुमान तुम्हारे हृदय से रुधिर बह गया, खून बह गया और सिर पर हाथ फेरे। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, भगवान आंखें बंद कर रही हैं, सिर पे हाथ फेरे ही रहे। सोई भगवान ने लीला करी के पूंछ में से सुकंठ निकाल, निकल बाहर हरा के चुप लगी मौना बोली। सुकंठ बोलो आज्ञा, हाथ पकड़ के लाओ। और हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को बैठाकर प्रभु का हाथ सुकंत के माथ पर रख दिया। जैसे ही सुकंत के माथ पर रखा, राम जी ने नेत्र खोले, सोई राम जी मुस्कुरा गए, हंसने लगे। सुकंत तुम? हनुमान जी बोले अब चाहे जैसे हो, जब आपका हाथ अब इसके माथ पर रख गया तो अब एक और कृपा कर दो कि इसके प्राण छावर, इसको प्राण जो लेने हैं वो आप प्राण त्याग दो, इसके प्राणों का इसको वरदान दे दो कि वापस ऐसे ही जीवित रह गए। राम जी खूब ठिठोली लगा के हंसे, बोले हनुमान जी वैसे भी तुम जिसको अपनी गोद बैठा लेते हो, जिसको अपने चरण में लगा लेते हो, मैं उसके सिर पर हाथ रख ही देता हूं। सुकंत तो बड़ा भाग्यशाली है।

0: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पितृपक्ष में अग्नि के प्रयोग से पितरों को कैसे शांति मिलती है? पितृपक्ष में उड़द की दाल के प्रयोग से मन का भय कैसे दूर होता है? और पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग पितरों को कैसे संतुष्ट कर देता है? कौन सी हैं पितृपक्ष की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: गुजरात में अंबाजी भादरवे मेले का भव्य समापन हुआ, धाम में बना आस्था का महारिकॉर्ड, 7 दिन में 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए माँ अम्बा के दर्शन। मदुरई के कूडल अजगर मंदिर में आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिला, एक साथ 5 करोड़ वाहनों पर निकले भगवान विष्णु के स्वरूप, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दिव्य दर्शन। दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए आई गुड न्यूज, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की आज से शुरू होगी बुकिंग, रेलवे चलाएगा 102 फेरे वाली स्पेशल ट्रेन। एशियन गेम्स, भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, स्क्वाश से लेकर एथलेटिक्स तक गोल्ड की उम्मीद, भारत को अब तक 4 गोल्ड 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। 51वें दिन हनुमान अंश पर बरसी भीम करौली बाबा की कृपा, कुल 5 करोड़ 58 लाख का कारोबार किया, ग्रॉस कलेक्शन 352 करोड़ रुपए के पार। पहाड़ से मैदान तक मौसम ने बदली करवट, दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में तेज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: गुजरात के अंबाजी भादरवी पूनम महामेले में आस्था का महाकुंभ उमड़ा, मेले के समापन पर धाम में उमड़े लाखों श्रद्धालु। भादरवी पूनम महामेले में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड जमावड़ा, 7 दिन में 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए माँ अम्बा का दर्शन। दूर दूर से पदयात्रा कर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, मां अंबे के जयकारों से गूंजा पूरा धाम, भक्ति और आस्था का दिखा अद्भुत नजारा। सतरंगी रोशनी से जगमगाया अंबाजी धाम, मंदिर की भव्य सजावट ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया, बना आकर्षण का केंद्र। 358 स्वर्ण कलशों से सजा अंबाजी मंदिर का स्वर्ण शिखर, रात में रंग बिरंगी लाइटिंग और लेजर शो ने बढ़ाई भव्यता। रात में अलौकिक आभा बिखेरता हुआ नजर आया अंबाजी मंदिर, फूलों और तोरणों से सजा मां अंबा का दरबार। अंबाजी मंदिर परिसर की खूबसूरती ने जीता श्रद्धालुओं का मन, दूधिया रोशनी से रात में जगमगाते रहे मार्ग। 20-26 सितंबर तक चला अंबाजी का भव्य महामेला, धाम में भक्ति सेवा और आस्था का अद्भुत संगम दिखा। पदयात्रा मार्ग पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने किए मां अंबा के दर्शन, प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। ध्वजा पूजन कर ध्वजा लेकर मंदिर पहुंचे उप मुख्यमंत्री, श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर फेंके गुलाल, आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए। मदुरई के ऐतिहासिक कूडल अजगर मंदिर में भव्य 5 गरुड़ सेवा, पुरातासी पूर्णिमा पर 5 पेरुमल गरुड़ वाहनों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। भव्य उत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, एक साथ 5 गरुड़ वाहनों पर निकले भगवान विष्णु के स्वरूप, सड़कों पर गूंजा गोविंदा गोविंदा का जय घोष। कूडल अजगर मंदिर से निकला 5 गरुड़ सेवा का भव्य जुलूस, मदुरई की ऐतिहासिक मासी गलियां बनी भक्ति का केंद्र, हजारों श्रद्धालुओं ने दिव्य दर्शन किए। पुरातासी पूर्णिमा पर कूडल अजगर मंदिर में आस्था चरम पर पहुंची, ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रों से भक्तिमय माहौल हुआ, भगवान की भव्य गरुड़ सवारी ने मोहा मन। भगवान विष्णु के 108 पवित्र धामों में शामिल है कूडल अजगर मंदिर, अष्टांग विमान वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध कूडल अजगर मंदिर। दिल्ली में सजेगा अयोध्या की रामलीला का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 केजिया लिज मेजो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा में भगवान राम के किरदार में होंगे बीजेपी सांसद रवि किशन होंगे, तो वहीं इस बार पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होगी अयोध्या की रामलीला। इस बार दिल्ली में होगा विश्व प्रसिद्ध रामलीला का मंचन, 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा आयोजन। रावण की भूमिका में अरुण बख्शी, कुंभकर्ण की भूमिका में बिंदु दारा सिंह आएंगे नजर, अवतार गिल, मेघनाद और पुनीत इस्सर परशुराम की भूमिका निभाएंगे। पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखी थी ये रामलीला, इस साल भी सुंदर सेट और नई तकनीक के जरिए नए स्वरूप में दिखाया जाएगा त्रेता युग। दशहरा दिवाली छठ पर घर जाने वालों के लिए आई गुड न्यूज, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की आज से शुरू होगी बुकिंग, रेलवे चलाएगा 102 फेरे वाली स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी, आज से IRCTC और रेल वन पर बुकिंग शुरू होगी, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से सफर आसान होगा। अतिरिक्त ट्रिप्स के जरिए बढ़ाई जाएगी यात्रियों की क्षमता, मुंबई से चेन्नई के बीच रेलवे का स्पेशल इंतजाम, वीकली स्पेशल ट्रेन के 6 फेरे किए गए तय। मुंबई लातूर रूट पर भी बढ़ाई गई रेल सेवा, दादर ठाणे कल्याण पुणे और दौंड समेत कई स्टेशन शामिल, कोल्हापुर कलबुर्गी के बीच स्पेशल ट्रेन लगाएगी 64 फेरे। दिवाली और छठ में यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों का सफर आसान होगा, फेस्टिव सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर चलाए जाएंगे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना की नेक पहल देखने को मिली, सेना के सर्जन्स ने LOC पर 220 आम नागरिकों की आंखों की रोशनी लौटाई। सेना ने आयोजित किया ऑपरेशन दृष्टि का 10वां एडिशन, इसके तहत 2 दिनों में की गई 220 लोगों की आंखों की सर्जरी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भी पहुंचकर लाभार्थियों को जाना हालचाल, लोगों ने सेना की इस नेक पहल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी युद्धाभ्यास 2026 में स्काई स्ट्राइकर का सटीक हमला, टारगेट का पता लगाने और सटीक हमला करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई ने आधुनिक युद्ध में स्वदेशी रक्षा तकनीक, सटीक हमले की क्षमता का प्रदर्शन किया, अनमैन सिस्टम्स की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाया। जोधपुर में आज से ऑपरेशन तरंग शक्ति का आयोजन, अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंचे फ्रांसीसी वायुसेना के विमान, मेजर जनरल जूलियन सेबे ने की अगुवाई में लेंगे हिस्सा। जोधपुर वायुसेना स्टेशन इलाके में 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026, दुनिया भर की वायुसेनाएं दिखाएंगी अपने कर्तव्य। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने विमानों के साथ हो रही हैं शामिल। युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में शामिल होगा अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। मौसम बिगड़ने पर गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा 27 सितंबर आज के लिए रोकी गई, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है निर्णय। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, IMD ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्याधिक बारिश की चेतावनी दी। लखनऊ में लगातार बारिश के बीच ऐतिहासिक हुसैनाबाद गेट का एक हिस्सा ढह गया, सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया। गोरखपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। उड़ीसा के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने, ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी, लगातार माइकिंग पर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बस्तर में लगातार 5 दिनों तक हुई तेज बारिश के बाद इंद्रावती नदी सहित उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़, पूरा बस्तर जिला हो गया पानी पानी। उन्नाव में लगातार 36 घंटे से हो रही है रिमझिम बारिश, कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से तेज और रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे बदला है मौसम का मिजाज, बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। टिहरी में मौसम ने बदली करवट, सुबह से जोरदार बारिश जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी से सफेद चादर में ढके पहाड़, बर्फ से चमक उठी हैं बद्रीनाथ की चोटियां। बारिश और ठंड के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार, गर्म कपड़े और बरसात के साथ श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत और चीन की सीमा क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बीच सेना, ITBP और BRO के जवान डटे हुए हैं, मुश्किल मौसम में भी जवान लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है, बारिश और ठंड के बीच श्रद्धालु पितृ तर्पण और पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। भारी बारिश के अलर्ट के बीच चार धाम यात्रा फिलहाल रोकी गई है, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
1: पितृपक्ष में अग्नि के प्रयोग से पितरों को कैसे शांति मिलती है, पितृपक्ष में उड़द की दाल के प्रयोग से मन का भय कैसे दूर होता है, और पितृपक्ष में काले तिल का प्रयोग पितरों को कैसे संतुष्ट कर देता है, कौन सी हैं पितृपक्ष की चमत्कारी वस्तुएं और क्या है उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे पांच ऐसी चमत्कारी वस्तुओं के बारे में जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। हम आपको बता रहे हैं पितृपक्ष में अलग अलग चीजों के प्रयोग के बारे में और उनके महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जल की यानी वाटर की। क्या महत्व है इसका? देखिए, मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त वस्तु, टेंजिबल जो आइटम है वो जल है, जो दिखता है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए किसी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छोटा अनुष्ठान हो, बड़ा अनुष्ठान हो, छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, बिना जल के संभव नहीं है। जल में खड़े होकर अंजुलि में अपने हाथों की अंजुलि बनाकर उसमें जल लेकर पितरों को अगर आप जल दें तो सर्वोत्तम होगा। और पितृ पक्ष में सूर्योदय के पहले पीपल में जल डालने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप पितृपक्ष में जानबूझकर जल की बर्बादी करेंगे या करते हैं तो आपके पितृ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। जल की बर्बादी वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में जल की बर्बादी करने से आपकी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी। देखिए, जैसे जल बड़ा महत्वपूर्ण है आचमन के लिए, संकल्प लेने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए, पूजा के लिए, प्राण के लिए, वैसे ही अगर हम परंपरागत रूप से देखें, भारतीय परंपरा में देखें, तो अग्नि को बड़ा पवित्र माना गया है। बहुत सारे धर्मों में अग्नि की बड़ी मान्यता है और इसीलिए सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना जाता है। आप किसी भी धर्म में देखिए, दीपक के रूप में, मोमबत्ती के रूप में, यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में, अलग अलग तरीकों से अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी काम को सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। विवाह के समय वर और कन्या अग्नि को साक्षी मानते हैं, अग्नि का फेरा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब आप कोई आहुति डालते हैं भावनाओं से, मंत्रों से, तो ये आहुति सीधी देवताओं तक पहुंचती है। जब आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो सारे भोजन में से जरा जरा सा भोजन निकाल करके इनकी सबसे पहली आहुति अग्नि में दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में अगर आप सुगंध की 5 आहुति दें तो पितरों को और स्वयं को शांति मिलेगी। महीने में 1 अमावस्या आती है, उस अमावस्या पर सुगंधित हवन सामग्री 11 आहुति कम से कम अग्नि में उस हवन सामग्री की दें और पितरों के लिए प्रार्थना करें, कल्याण होगा। देखिए वैसे तो हर दाल का अपना महत्व है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, लेकिन विशेष रूप से पितरों की पूजा में, तंत्र की पूजा में उड़द की दाल का प्रयोग बहुतायत में होता है, काफी किया जाता है। क्या महत्व है इसका? उड़द की जो दाल है, काली उड़द की दाल, ये ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है और पितरों के लिए जो खाने की चीजें बनाई जाती हैं उन वस्तुओं में उड़द की दाल की वस्तुओं की प्रधानता होती है। उड़द की दाल की जो वस्तुएं हैं उसका काफी प्रयोग होता है। अगर किसी की असामयिक समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो भैरव देव को उसकी आत्मा की शांति के लिए उड़द की बनी हुई वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद की वजह से या घर में किसी का देहांत हो गया, अगल बगल में किसी का देहांत हो गया, आपको डर लग रहा है, तो शनिवार के दिन एक मुट्ठी उड़द की दाल, काली उड़द की दाल पीपल के नीचे रखिए, उस पर जरा सा दही और सिंदूर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपके मन का वहम और भय गायब हो जाएगा। जिन लोगों को अज्ञात डर सताता हो, अज्ञात बाधा लगती हो, ऐसे लोग अगर काली उड़द की दाल थोड़ी सी रख के शनिवार को पीपल के नीचे उस पे जरा सा दही और जरा सा सिंदूर गिरा दें, लगा दें, तो निश्चित रूप से इस तरह का डर और वहम समाप्त होगा। काला तिल बहुत सारी पूजा उपासना में, विशेष तरह के अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। काले तिल का पितृपक्ष से पितरों से क्या संबंध है? देखिए काले तिल जो हैं ये संपन्नता का प्रतीक भी हैं और शांति का प्रतीक भी हैं। काले तिल का दान अगर आप करें, थोड़े से काले तिल का दान शनिवार को या अमावस्या को आप करते रहें, तो अज्ञात बाधाओं से, अननोन प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। जल में काला तिल डाल करके अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। जब रोज दोपहर के समय में पितरों को जल दिया

0: का, पत्तों का, यहां तक कि घास का भी महत्व है। जैसे आप देखे होंगे कि गणपति को पूजा में दूर्वा चढ़ती है, एक तरह की घास है, कुश भी एक तरह की घास है। पितरों से इसका क्या संबंध है? माना जाता है कि कुश श्री हरि विष्णु के अंश से बना है। ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है, अमृत तत्व पाया जाता है। जल में कुश को रात भर भिगा करके सुबह उसी जल से शिव जी का अभिषेक किया जाता है कुशोदक से, और कुशोदक से अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जब आप पितरों का तर्पण करते हैं तो नियम यह है कि जल में काले तिल मिला लिए जाएं और हाथ में कुश ले लें या कुश घास की अंगूठी, पैंती कहते हैं उसको, उसको आप पहन करके तब तर्पण करेंगे, तब श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आपको मानसिक रूप से दिक्कत रहती है, मेंटल डिप्रेशन रहता है या मन की समस्याएं परेशान करती हैं, तो जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। कुश घास का शरबत बनाया जाता है आयुर्वेद में, और इसको पीने से स्फूर्ति और ऊर्जा आती है। मुख्यतः पितृपक्ष में जो रोज तर्पण किया जाता है, जो रोज पितरों को जल दिया जाता है, वो बिना काले तिल और बिना कुश घास के कतई संभव नहीं है। देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से पशुओं की सेवा करिए, गाय की, कुत्ते की, भैंस की, पशुओं की सेवा करिए, और जब आपको मौका मिले तो पितृपक्ष में किसी निर्धन को अन्न का या भोजन का दान करिए। अगर आप पितृपक्ष में ये शुभ कार्य करेंगे तो आपके पूर्वजों की आत्मा को, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। आप काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका मकान जल्दी नहीं बन पा रहा है, क्या करें कि मकान जल्दी बने? अपने भाई से एक तांबे का सिक्का ले आइए, किसी भी दिन मंगलवार को लाएं तो बड़ा अच्छा है। इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दें। इसको रखने के साथ आपको मकान होने का लाभ जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब।

0: अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड। जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
0: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: गुजरात में अंबाजी भादरवी मेले का भव्य समापन, धाम में बना आस्था का महारिकॉर्ड, 7 दिन में 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए मां अंबे के दर्शन। मदुरई के कूडल अजगर मंदिर में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ा, 1 साथ 5 गरुड़ वाहनों पर निकले भगवान विष्णु के स्वरूप, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दिव्य दर्शन। दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए आई गुड न्यूज, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की आज से शुरू होगी बुकिंग, रेलवे चलाएगा 102 फेरे वाली स्पेशल ट्रेन। एशियन गेम्स, भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग स्क्वाश से लेकर एथलेटिक्स तक गोल्ड की उम्मीद, भारत को अब तक 4 गोल्ड 12 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज पहला मैच तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 51वें दिन हनुमान अंश पर बरसी नीम करौली बाबा की कृपा, कुल 5,58,00,000 का कारोबार किया, ग्रॉस कलेक्शन 352 करोड़ के पार, वर्ल्ड वाइड कमाई 390 करोड़ पहुंचे। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी, देश के कई राज्यों में मौसम विभाग का बारिश का भारी अलर्ट, दिल्ली एनसीआर यूपी उत्तराखंड बिहार में तेज बारिश की संभावना।
0: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, पितृपक्ष के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है यानी पितरों को याद करने का दिन। तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कौन सी वो पांच वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल करके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, अद्भुत प्रयोग के बारे में जानेंगे इनके। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से पशुओं की सेवा करिए। गाय की, कुत्ते की, भैंस की, पशुओं की सेवा करिए। और जब आपको मौका मिले तो पितृपक्ष में किसी निर्धन को अन्न का या भोजन का दान करिए। अगर आप पितृपक्ष में ये शुभ कार्य करेंगे तो आपके पूर्वजों की आत्मा को, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी।
0: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 27 सितंबर 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या कहता है।
1: दिनांक 27 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:08 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए, कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, पितृपक्ष के बारे में आज के कार्यक्रम में बात होगी। और सबसे पहले हम पंडित जी से बात करने वाले हैं जल के महत्व के बारे में। जल ही जीवन है पंडित जी, ये तो हमने सबके मुंह से सुना है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन पितरों से आखिरकार जल का क्या संबंध है, इसे समझना बेहद जरूरी है।
1: जी, हम आपको बता रहे हैं पितृपक्ष में अलग अलग चीजों के प्रयोग के बारे में और उनके महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जल की, यानी वॉटर की। क्या महत्व है इसका? देखिए, मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त वस्तु, टेंजिबल जो आइटम है, वो जल है, जो दिखता है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए किसी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छोटा अनुष्ठान हो, बड़ा अनुष्ठान हो, छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, बिना जल के संभव नहीं है। जल में खड़े होकर अंजुलि में, अपने हाथों की अंजुलि बनाकर उसमें जल लेकर पितरों को अगर आप जल दें तो सर्वोत्तम होगा। और पितृपक्ष में सूर्योदय के पहले पीपल में जल डालने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप पितृपक्ष में जानबूझकर जल की बर्बादी करेंगे या करते हैं तो आपके पितृ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। जल की बर्बादी वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृ पक्ष में जल की बर्बादी करने से आपकी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी।
0: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल।
1: मेष राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें, महत्वपूर्ण काम में अभी विलंब होगा, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के बारे में हमने बात की, अब हम बात करेंगे अग्नि की। तो अग्नि का मानव जीवन में क्या महत्व है? कहते हैं कि जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं तब अग्नि में ही हमारा जो देह होता है वो जलकर खाक हो जाता है। तो अग्नि और पितर, इन दोनों का क्या संबंध है आपस में? आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, जैसे जल बड़ा महत्वपूर्ण है आचमन के लिए, संकल्प लेने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए, पूजा के लिए, प्राण के लिए, वैसे ही अगर हम परंपरागत रूप से देखें, भारतीय परंपरा में देखें, तो अग्नि को बड़ा पवित्र माना गया है। बहुत सारे धर्मों में अग्नि की बड़ी मान्यता है और इसीलिए सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना जाता है। आप किसी भी धर्म में देखिए, दीपक के रूप में, मोमबत्ती के रूप में, यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में, अलग अलग तरीकों से अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी काम को सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। विवाह के समय वर और कन्या अग्नि को साक्षी मानते हैं, अग्नि का फेरा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब आप कोई आहुति डालते हैं भावनाओं से, मंत्रों से, तो ये आहुति सीधी देवताओं तक पहुंचती है। जब आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो सारे भोजन में से जरा जरा सा भोजन निकाल करके इनकी सबसे पहली आहुति अग्नि में दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में अगर आप सुगंध की 5 आहुति दें तो पितरों को और स्वयं को शांति मिलेगी। महीने में 1 अमावस्या आती है, उस अमावस्या पर सुगंधित हवन सामग्री 11 आहुति कम से कम अग्नि में उस हवन सामग्री की दें और पितरों के लिए प्रार्थना करें, कल्याण होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, करियर की तमाम चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, लेकिन काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जुलाई 1984, जन्म का समय सुबह के 10:05, जन्म स्थान है अयोध्या। ये कह रहे हैं कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कर्जे थोड़े बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर चले और कर्जे मेरे कम हो सकें। विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कर्ज को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्जा बहुत दिन रहेगा नहीं और व्यापार आपका लगभग अभी नवंबर के महीने से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल आने वाले समय में अपने डाइजेशन का, अपने पेट का अगर आप ध्यान रखें, थोड़ा स्वास्थ्य को संभालें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें छह से आठ रत्ती का पन्ना, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न अनिल कुमार जी ने हमें लिखा है और अनिल कुमार जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1978, जन्म का समय रात में 11:10, जन्म स्थान है जोधपुर राजस्थान। में लिखते हैं गुजरात से। अनिल जी कह रहे हैं कि नौकरी में समस्याएं बहुत है मेरी और मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, तो मुझे नई नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनिल जी, मैं आपको कहूंगा कि अभी थोड़े समय तक यहीं पर समय बिताइए, क्योंकि अभी नौकरी बदलने की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। मार्च 2027 के बाद आपकी नौकरी और स्थान दोनों में परिवर्तन की संभावनाएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं। करियर में आपको दिक्कत ना हो, सही समय पे नौकरी बदल जाए, इसके लिए इस समय भगवान गणेश की पूजा करें। सुबह शाम 108 बार गणपति के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, और रविवार को गुड़ का या गेहूं के आटे का दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
0: तो जब भी पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं उसमें उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में उड़द की दाल का मानव जीवन में क्या महत्व है और पितरों से इसका क्या संबंध है, ये पंडित जी से इसके बारे में समझते हैं।
1: देखिए, वैसे तो हर दाल का अपना महत्व है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, लेकिन विशेष रूप से पितरों की पूजा में, तंत्र की पूजा में उड़द की दाल का प्रयोग बहुतायत में होता है, काफी किया जाता है। क्या महत्व है इसका? उड़द की जो दाल है, काली उड़द की दाल, ये ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है और पितरों के लिए जो खाने की चीजें बनाई जाती हैं उन वस्तुओं में उड़द की दाल की वस्तुओं की प्रधानता होती है। उड़द की दाल की जो वस्तुएं हैं उसका काफी प्रयोग होता है। अगर किसी की असामयिक समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो भैरव देव को उसकी आत्मा की शांति के लिए उड़द की बनी हुई वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद की वजह से या घर में किसी का देहांत हो गया, अगल बगल में किसी का देहांत हो गया, आपको डर लग रहा है, तो शनिवार के दिन एक मुट्ठी उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, पीपल के नीचे रखिए, उस पर जरा सा दही और सिंदूर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपके मन का वहम और भय गायब हो जाएगा। जिन लोगों को अज्ञात डर सताता हो, अज्ञात बाधा लगती हो, ऐसे लोग अगर काली उड़द की दाल थोड़ी सी रख के शनिवार को पीपल के नीचे उस पे जरा सा दही और जरा सा सिंदूर गिरा दें, लगा दें, तो निश्चित रूप से इस तरह का डर और वहम समाप्त होगा।
0: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, तमाम पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में सुधार होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में काले तिल के बारे में बात कर लेते हैं। काले तिल का मानव जीवन में आखिरकार क्यों इतना महत्व है और पितरों से इसका क्या संबंध है, आइए समझते हैं।
1: काला तिल बहुत सारी पूजा उपासना में, विशेष तरह के अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। काले तिल का पितृपक्ष से, पितरों से क्या संबंध है? देखिए, काले तिल जो हैं ये संपन्नता का प्रतीक भी हैं और शांति का प्रतीक भी हैं। काले तिल का दान अगर आप करें, थोड़े से काले तिल का दान शनिवार को या अमावस्या को आप करते रहें तो अज्ञात बाधाओं से, अननोन प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। जल में काला तिल डाल करके अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। जब रोज दोपहर के समय में पितरों को जल दिया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है, तो जल में काले तिल डाले जाते हैं और तिल मिला हुआ जल अपने पितरों को अर्पित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुश का मानव जीवन में क्या महत्व है और पितरों से इसका क्या संबंध है, आइए पंडित जी से ही जानते हैं।
1: देखिए, हिंदू परंपरा की पूजाओं में पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, पत्तों का, यहां तक कि घास का भी महत्व है। जैसे आप देखे होंगे कि गणपति को पूजा में दूर्वा चढ़ती है, एक तरह की घास है, कुश भी एक तरह की घास है। पितरों से इसका क्या संबंध है? माना जाता है कि कुश श्री हरि विष्णु के अंश से बना है। ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है, अमृत तत्व पाया जाता है। जल में कुश को रात भर भिगा करके सुबह उसी जल से शिव जी का अभिषेक किया जाता है कुशोदक से, और कुशोदक से अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जब आप पितरों का तर्पण करते हैं तो नियम ये है कि जल में काले तिल मिला लिए जाएं और हाथ में कुश ले लें या कुश घास की अंगूठी, पैंती कहते हैं उसको, उसको आप पहन करके तब तर्पण करेंगे, तब श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आपको मानसिक रूप से दिक्कत रहती है, मेंटल डिप्रेशन रहता है या मन की समस्याएं परेशान करती हैं, तो जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। कुश घास का शरबत बनाया जाता है आयुर्वेद में, और इसको पीने से स्फूर्ति और ऊर्जा आती है। मुख्यतः पितृपक्ष में जो रोज तर्पण किया जाता है, जो रोज पितरों को जल दिया जाता है, वो बिना काले तिल और बिना कुश घास के कतई संभव नहीं है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि, ऑफिस की तमाम समस्याएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, अ अगला प्रश्न हमें शकुंतला जी ने लिखा है और शकुंतला जी मुरादाबाद से हमें मेल लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 17 जनवरी 1994, जन्म का समय सुबह के 5 बजे, जन्म का स्थान है मुरादाबाद। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता है, लेकिन हमें लड़की पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि बेटे का विवाह वहाँ ना हो, कहीं और हो जाए, तो क्या स्थिति बन रही है, क्या उपाय करना चाहिए? शकुंतला जी, आपके पुत्र की कुंडली में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो विवाह अपनी मर्जी से ही करेंगे, जानी पहचानी बालिका के साथ। आप भी लड़की की कुंडली दिखा लीजिए, कुछ प्लस माइनस हो तो उपाय कर लीजिए और बेटे की इच्छा में सहमति व्यक्त करिए, क्योंकि वो रुक नहीं पाएंगे, उनको रोक पाना बड़ा कठिन है। कुंडली की संभावनाएं भी उनकी मनमर्जी ही दिखा रही हैं। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र के बेहतर जीवन और भविष्य के लिए सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार की शाम को जलाइए तो काफी अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी, आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बता
1: जी। आज का अंतिम प्रश्न निकिता जी ने हमें लिखा है और निकिता हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1990, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। निकिता कह रही हैं कि मैं नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूं कि मैं गुजरात चली जाऊं वापस, अहमदाबाद में या उसके आसपास कहीं नौकरी मिल जाए, परिवार के आसपास रह सकूं, तो इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? निकिता, आप अभी नौकरी बदलने की कोशिश करिए, आपकी कुंडली में नौकरी बदलने की संभावना भी प्रबल है और वापस आप अपने नेटिव प्लेस के पास जा पाएंगी, वापस अहमदाबाद या उसके पास जा पाएंगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी आप नौकरी में ही रहिएगा, अभी जल्दबाजी में जोश में आ करके व्यापार में एंट्री मत करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल प्लेन वाटर, और एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका बर्थडे यानी जिनका जन्मदिन 27 सितंबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए जल्दी से पंडित जी से इसके बारे में जान लेते हैं।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 27 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग इस साल बनते हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम पितृपक्ष में तर्पण नहीं करते, क्या होता है उससे, नहीं करेंगे क्या हो जाएगा। तो क्या पितृपक्ष में तर्पण ना करने का नुकसान होता है? देखिए, नियम तो ये कहता है कि रोज पितरों को याद करके जल देना चाहिए, नहीं तो पितृपक्ष में तो जल देना ही चाहिए, उनके आशीर्वाद के लिए उनको याद करने का एक तरीका है, जल दीजिए, प्रार्थना करिए उनके लिए। अगर आप जानते हैं, आपको जानकारी है, आप कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, इसके बावजूद आप तर्पण नहीं करते, तो इसका अशुभ प्रभाव आपके संतान के ऊपर पड़ सकता है।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं 27 सितंबर 2026 यानी दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: 27 सितंबर 2026 दिन रविवार शुभ पहर का समय है, शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 27 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: तो चलिए अब समय हो गया पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में किन चीजों का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। आज की गुडलक राशि है धनु। आपको पूजा में दीपक जलाना चाहिए या कपूर जलाना चाहिए, इसका प्रयोग करना अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में संघर्ष कम होगा।
0: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
1: जी, आप काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका मकान जल्दी नहीं बन पा रहा है। क्या करें कि मकान जल्दी बने? अपने भाई से एक तांबे का सिक्का ले आइए, किसी भी दिन मंगलवार को लाएं तो बड़ा अच्छा है। इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दें। इसको रखने के साथ आपको मकान होने का लाभ जल्दी से जल्दी मिल जाएगा।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
0: तो चलिए इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है? कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और चलिए अब बात करते हैं हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने लगा है, और इसमें 8 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रही है और बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश में है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बन रहा है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं।

0: आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लो मास्टर, जोधपुर में देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा। जोधपुर में आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। आज से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और भारत अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे। इसमें 3,000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स भाग ले रहे हैं, खासतौर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, पांचवी पीढ़ी का F-35, F-16 और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कई विमान एक साथ ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर हैं। पांचवी पीढ़ी का ये स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचा है। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल है। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी। तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा है। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचा है। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 600 विमान के साथ आया है। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130J, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन, अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा। जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पूरे देश में मौसम ने करवट ले ली है, मानो जल्द ही ठंड का आगमन हो जाएगा। दिल्ली NCR समेत मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगे हैं, तो कई इलाकों में बर्फ ने सफेदी फैलानी शुरू कर दी है।

0: पहाड़ी इलाका, आस्था का स्थल और उस पर कुदरत की बिखरती हुई सुंदरता, ये तीनों जब आपस में मिल जाएं तो नजारे ही अद्भुत हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब से, जहां मौसम ने अचानक करवट ली और शुरू हो गई शानदार बर्फबारी, जिसने पूरे नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया। देखते ही देखते हेमकुंड साहिब और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक बस बर्फी बर्फ बिखरी पड़ी है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके का तापमान भी कम हो गया है। हेमकुंड साहिब में करीब आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है, लेकिन मौसम की ये करवट श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। चमोली के निचले इलाकों में बारिश की फुहारे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते ही यही बारिश बर्फ के फाहों में बदल रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमालय की चोटियां धीरे धीरे सफेद रंग में रंगने लगी हैं। रुक करते हैं बद्रीनाथ का। यहाँ के संतो पंत मार्ग चक्र तीर्थ में इस सीजन की पहली बर्फबारी ने इलाके की सुंदरता बढ़ा दी है और मौसम का ये बदलता अंदाज बेहद खूबसूरत भी नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जम रही है, बद्रीनाथ के पहाड़ सफेद हो रहे हैं और संतो पंथ के रास्ते पर सर्दियों की पहली दस्तक दिखाई दे रही है। मौसम बदल जरूर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि कुदरत का ये खूबसूरत नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक मौसम की मेहरबानी देखने को मिल रही है। यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। सिक्किम में पिछले दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे मौसम कूल कूल बना हुआ है। उधर श्रीनगर के पास मुगल रोड की पीर की गली में भी हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। बदलते हुए मौसम के मिजाज का असर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक दिख रहा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढकने लगी हैं और अभी से ही जाड़े के मौसम का एहसास होने लगा है। चमोली से कमल लेंसलौड़ी, दार्जिलिंग से कई संसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं फिल्म लव एंड वॉर की, जो संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद विकी कौशल का पहला लुक सामने आ चुका है। दुनिया भर में ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा।
2: मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। ये बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी क्रेज बना हुआ है। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से विकी कौशल का फर्स्ट

0: तरीके के लुक को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में विकी कौशल काफी दमदार और इंटेंस लुक में नजर आ रही हैं। माथे पर चोट का निशान, मोटी मूछें और विंटेज हेयर स्टाइल उनके लुक को रेट्रो टच दे रहे हैं। डार्क शर्ट और उंगली में पहनी गोल्ड रिंग उनके लुक को और भी खास बना रही है। विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि नजरें मिलेंगी लेकिन हटेंगी नहीं। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जल्द मिलते हैं। लव एंड वॉर से सबसे पहले रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया था। पोस्टर में रणबीर कपूर कार में चश्मा लगाए बैठे हुए काफी रोबीले अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका एक हाथ खून से सना हुआ दिख रहा है। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, इश्क भी जंग भी। इसके बाद आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक पोस्टर आया जिसमें उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है। पोस्टर में वो मरून कलर की हाई स्लिट स्कर्ट और हेडपीस पहने कुर्सी पर बैठी नजर आ रही है। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आग भी दिलों की जान भी। लव एंड वॉर को संजय लीला भंसाली ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। अब ये 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लव एंड वॉर की रिलीज डेट अब तक कई बार बदली जा चुकी है। सबसे पहले इसकी रिलीज की घोषणा जनवरी 2024 में हुई थी। उस समय फिल्म को क्रिसमस 2025 पर रिलीज करने की योजना थी। बड़े स्तर पर हो रही शूटिंग और प्रोडक्शन में ज्यादा समय लगने के कारण रिलीज को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद मार्च 2026 में फिल्म रिलीज होने की बात सामने आई। इस बीच 14 अगस्त 2026 की रिलीज डेट की भी चर्चा हुई थी। हालांकि फिल्म का काम तय समय से पूरा नहीं हो सका, खासतौर पर बड़े VFX और हवाई एक्शन सीन्स के कारण समय बढ़ा। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट तय की है जो 2027 के जनवरी की है। उम्मीद की जा रही है कि 21 जनवरी को फिल्म रिलीज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: स्पेन का बार्सिलोना अपने अनोखे सांस्कृतिक उत्सवों और स्ट्रीट फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आजकल यहाँ पर ला मर्से नाम का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आप भी उसके नजारे देखिए।
2: पहली तस्वीर हमारे देश के दही हांडी के त्योहार की है तो दूसरी तस्वीर स्पेन के बार्सिलोना की है। दोनों तस्वीरों में ह्यूमन पिरामिड बनाने की कोशिश हो रही है और मौका त्योहार का है। दरअसल स्पेन के बार्सिलोना का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय त्योहार है ला मर्से, जो 23 सितंबर से शुरू है और 27 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह उत्सव गर्मियों की विदाई और शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव के दौरान पूरा बार्सिलोना शहर एक विशाल स्ट्रीट पार्टी में बदल जाता है। इस त्योहार का सबसे रोमांचक हिस्सा ह्यूमन पिरामिड बनाना है, जिसे स्थानीय भाषा में कास्टियोस कहते हैं। इसमें मीनार के सबसे ऊपर एक बच्चा ही पहुंचता है और हाथ उठाता है। इसका मतलब होता है कि उस टीम का ह्यूमन टावर पूरा हो गया है। इसे स्पेनिश परंपरा में एकता, साहस और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। 155 साल पुराना फेस्ट शहर की संरक्षक संत आवर लेडी ऑफ मर्सी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान बार्सिलोना के अलग अलग हिस्से में फ्री म्यूजिकल कंसर्ट, स्ट्रीट डांस, ओपन एयर थिएटर और कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। स्पेन के इस खास महोत्सव में शामिल होने के लिए करीब 30 देशों से कलाकार बुलाए गए हैं और इस फेस्ट का आनंद उठाने के लिए 10 से 15 लाख पर्यटक यहां पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब।

0: अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड। जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है? कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
10: दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, पारा गिरने के बाद गर्मी से मिली राहत, राजधानी और आसपास के इलाकों में हवा भी साफ हुई। यूपी और बिहार में भी तेज बारिश की चेतावनी, छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी, बाढ़ में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू। पहाड़ों पर भी मौसम ने करवट ली, सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में बर्फ की सफेद चादर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए चारधाम यात्रा स्थगित। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। रेडियो कार्यक्रम का ये 138वां एपिसोड। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के चामुंडा धाम में मां के दरबार का होगा श्रृंगार। पंजाब के श्रद्धालु ने दान किया 3 किलो सोना और 8.5 क्विंटल चांदी, सोने से सजेगा माता का सिंहासन। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पितृपक्ष पर विधि विधान से कर रहे हैं तर्पण, पिशाच मोचन कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान। एशियन गेम्स में आज भारत पर हो सकती है मेडल की बरसात, स्क्वॉश में डबल गोल्ड की संभावना, एथलेटिक्स में भी बड़ी उम्मीदें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज वनडे सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में होगा मुकाबला। दोपहर 2 बजे से होगा मैच।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
10: बाबा नीम करौली के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म के मुख्य अभिनेता शोभिन सत्य ने खास बातचीत में बताया कि इस फिल्म के लिए काफी पहले से बाबा ने उनके जीवन में क्या क्या बदलाव किए तब तो उन्हें खुद भी नहीं पता चला था, अब इसका पता चलता है तो वो रोमांचित हो उठते हैं। देखिए शोभिन सत्य के साथ हमारी खास बातचीत और सुनिए फिल्म की कहानी खुद हीरो की जुबानी। जानिए कैसे शोभिन सत्य बने हनुमान अंश के हीरो, बाबा का किरदार करने से जुड़े कितने चमत्कार शोभिनव को महसूस हुए।
11: फिल्म हनुमान अंश के साथ बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे संजोग हैं। एक संजोग हमारे साथ भी है। हमने सोचा था कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक और बाल अभिनेता, उनके साथ हमारा इंटरव्यू हो गया, अब कहानी खत्म। लेकिन कहानी अभी बाकी है क्योंकि शोभिनव सत्या हमारे साथ हैं और ये संजोग से यहां पर मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो फिल्म में देख रहा था उसे मैंने देखा कि आम तौर से फिल्म के दौरान जो हीरो होता है वो वजन कम करता है, सिक्स पैक एब्स बनाता है। क्या आपको वजन बढ़ाने की जरूरत पड़ी क्या उसमें?
12: देखिए ना तो मुझे वजन बढ़ाने की जरूरत पड़ी और ना ही घटाने की, क्योंकि जैसा मैं था मुझे वैसे ही हमारे डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी सर ने सेलेक्ट किया। सो हुआ ये था कि मैं फिल्म के सेट पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था और फिर हमारे जो लीड एक्टर हैं उनकी कुछ तबीयत खराब होती है और फिर उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन ढूंढा जाता है, तो सर मेरा टेस्ट लेते हैं और मैं उसमें पास हो जाता हूं और फिर मैं इस फिल्म में आ जाता हूं। तो
11: शोभिनव सत्या जी, सबसे जरूरी, इस फिल्म के साथ बहुत सारे संजोग जुड़े हुए हैं, तो उन संजोग में से सबसे ज्यादा मतलब आपको बिल्कुल हमेशा ना भूलने वाला ऐसा कौन सा संजोग, कौन कौन सी घटना है?
12: देखिए क्या होता है कि लीला चमत्कार अलग होता है और आप बोल रहे हैं संजोग, तो मैं तो संजोग जैसा कुछ बिलीव नहीं करता हूं। इस फिल्म में जो कुछ भी हुआ मेरे लिए तो वो सब कुछ एक लीला है, एक चमत्कार है। लेकिन फिर भी अगर संजोग की बात करें तो वो ये है कि मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी और डेथ के बाद में मैंने अपने सारे बाल हटा दिए थे, एक शिखा रखी हुई थी और दाढ़ी पूरी हट गई थी और मूछें रखी हुई थी, तो उस वक्त पे जो मेरा लुक था वो कहीं ना कहीं सर को, हमारे डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर्स को, सारे लोगों को, कहीं ना कहीं टीम के भी लोगों को लगता था कि मैं बाबा जी जैसा दिखता हूं, उनके यंग एज जैसा दिखता हूं। तो ये संजोग था कि वो उस तरीके का लुक था। अगर मेरे दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते तो शायद किसी के माइंड में वो इमेज नहीं आती, तो ये एक तरीके का संजोग था जो एक चमत्कार बन गया मेरे लिए जी।
11: हनुमान अंश फिल्म के बाद आमतौर से फिल्में जैसे जैसे समय गुजरता जाता है फिल्मों की लोकप्रियता, कमाई, कुछ भी कहें, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड जाती है और ये लगातार ऊपर की तरफ जाती जा रही है।
12: देखिए मतलब जो कई सारी ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्में रहती हैं जो इनिशियल लेवल पे, चूंकि अब ये फिल्म में हमारे पास में बहुत ज्यादा ऐसा बजट नहीं था कि हम बहुत अच्छा प्रमोशन करें, और फिल्म पहले हफ्ते में अच्छा कर रही थी, देन थोड़ा सा ऐसा डाउन हुई, तो मैं ये सारी चीजें क्या है, ये जो आगे चलती जा रही है जो हुआ है, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि सेकेंड वीक से थोड़ा सा चलना शुरू हो जाती और फिर कुछ दूर तक हम जाते, लेकिन यहां तक जो मूवी आई है उसका तो मतलब भगवान का तो एक क्रेडिट है ही है कि उनकी वजह से सब हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो भारत की जनता का है। भारत की जनता ने मतलब इस फिल्म को अपनी फिल्म समझ लिया और इस तरह से प्रमोट किया है जैसे वो अपनी किसी फिल्म को प्रमोट कर रहे हो या अपने किसी घर के फंक्शन को प्रमोट कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने बिल्कुल अपनेपन से हमारी फिल्म को प्रमोट किया है, लोगों को पहुंचाया है, जितने भी लोगों को नहीं पता था उनको भेजा, तो ये कहीं ना कहीं हम इतनी दूर तक तभी चलकर आए हैं कि कहते हैं ना कि जब कुछ दूर तक चलना हो तो अकेले चलो, लेकिन मीलों दूर तक चलना है तो किसी के साथ चलो, तो यहां पे तो पूरा भारत देश ही साथ हो लिया, तो कहां तक जाना है वो तो हमें भी नहीं पता है।
11: जेन जी को लेकर आप लोग कितने निश्चिंत थे कि जेन जी इस फिल्म को लेकर इतना फैसिनेट होगा?
12: देखिए, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब वो बहुत छोटे बच्चे भी जैसे हैं, और उनका जो सोचने का तरीका है वो हर किसी वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो और उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी एक सिंगर है, उन्होंने गाना भी गाया हुआ है। तो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्शन मूवी में डाला हुआ है, उन्होंने 11 सॉन्ग्स डाले हुए हैं गाने में, फिल्म में गाने डाले हुए हैं, और वो जो भी है वो ऐसा है कि वो जेंजीज को पसंद ही आने वाला था, ऐसा उनका भी मानना था, और हमने भी जब सुना तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था, और होपफुली वो सारे जेंजीज को समझ में भी आ रहा है। और दूसरी बात ये कि स्टोरी लाइन भी ऐसी है, क्योंकि बाबा की कहानी जो है ना वो बहुत ही मिरेकुलस भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बाबा की कहानी है, उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, तो जब उनकी कहानी हम पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या जेंजी, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वो पसंद ही आने वाली थी। और लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संत के बारे में कुछ दिखा रहे होते हैं, तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो उनकी कृपा रही कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निखर के आया कि वो सिर्फ जेंजीज ही नहीं, हर वर्ग को पसंद आ रहा है।
11: इसमें जो नई पीढ़ी के बच्चों की मानसिकता है उसको अध्यात्म की ओर ले जा रही है, भजन क्लबिंग की ओर ले जा रही है। भजन क्लबिंग में प्रधानमंत्री खुद भी आए और पूरी टीम का मनोबल भी बढ़ाया, और जेंजी के साथ वो दिखे भी भजन क्लबी में, जिसमें हनुमान अंश की टीम ने वहां पर संगीत प्रस्तुत किया था।
12: जी जी, मैंने वो देखा, और उसकी तो जितनी भी तारीफ, मतलब वो तो हर जो चीज वो करते हैं देश के लिए और देश की जनता के लिए। अब देश की जनता में बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, और जेंजीज भी आते हैं, जेन अल्फा भी आते हैं, तो हर तरीके की जनरेशन के लोग आते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इतने, उनको तो मैं सिद्ध पुरुष बोलता हूँ, सिद्ध संत बोलता हूँ, कि उनके पास में एक सिद्धि है कि वो हर वर्ग के लोगों को, हर किसी को मोह सकते हैं। और इस समय वो काम कर रहे हैं जेंजीज पे, और उनके साथ में वो बच्चों की तरह नाच रहे, मतलब बेसिकली वो एक झूम रहे थे अपने हाथ में, वो कुछ ऐसा गोल सा लेके करताल मंजीर, हाँ, तो वो ऐसा करके ऐसे झूम रहे थे, तो वो कितना वो बच्चे जैसे वो बिल्कुल हो गए थे। तो वो इतनी प्यारी इमेज, मैं तो मतलब क्या ही, मैं तो ऐसे धन्य हो जाता हूँ कि मैं उनके टाइम पे मैं उनको देख पाया, और ऐसे टाइम पे हमने जन्म लिया कि उनको हम देख पा रहे हैं। हम तो बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते
11: हैं। एक आखिरी सवाल ये कि फिल्म से पहले और फिल्म के बाद जीवन में, शैली में क्या बदलाव महसूस कर?
12: फिल्म के बाद में
11: पहले कैसा था?
12: पहले तो मैं
11: इतने स्पिरिचुअल थे या
12: हमेशा से, क्योंकि अगर मेरा जो स्पिरिचुअलिटी को लेके जो सोचना है, या जो मतलब मैं करता था अपनी रियल लाइफ में, और या फिर वो सात्विक भोजन करना हो, सात्विक जिंदगी जीना हो, भाषा का जो प्रयोग है वो भी बहुत सात्विक था मेरा हमेशा से, और मैं मतलब ऑफिस में भी हंसता खेलता रहता था और खुश ही रहता था हमेशा, और ये सारी चीजें टिक मार्क थे जिस वजह से डायरेक्टर सर ने मेरे बारे में सोचा, वरना शायद वो भी ना सोचते। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा जी ने और हनुमान जी ने ऐसी लीला रची थी कि उन्होंने सालों से मुझे प्रिपेयर करके भेजा था। उस वक्त पे लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना सात्विक और ये सब ऐसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहा हूँ, तो अब जाके उसका आंसर मिला है कि ये तो सालों की तैयारी थी, और इस फिल्म में काम करना था तो हनुमान जी ने और बाबा जी ने ये लीला रची हुई थी। जी,
11: फिल्म के बाद कैसा?
12: बाद तो ऐसा हुआ कि अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि बाबा ने एक ऐसा मौका दिया है मुझे और इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और मैं उसको लेकर बहुत सजग भी रहता हूं, और मुझे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी है आगे भी जीवन में, और इसके लिए मैंने बोला भी हुआ है कि आने वाले जीवन में मैं मर्यादित करेक्टर करूंगा, और अब मैं और ज्यादा मतलब हाँ, ये बदलाव आ गया है कि अब ना बाबा को, मतलब जैसे बाबा ना दूसरों के बारे में, उनका पूरा जीवन, एक संत का जो जीवन होता है वो खुद के लिए तो होता ही नहीं है, वो समाज के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए, इन सब के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं उनसे वो चीजें सीख के एक फील आता है, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ और कहीं भी किसी भी जगह पे जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक फील आता है कि कुछ करेंगे समाज के लिए, लोगों के लिए, और जिम्मेदारी से काम करेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे। जी,
11: शोभिनो सत्या ने अपने दिल की बात कही, अब इनके दिल की बात थोड़ा हम भी बता दें, क्योंकि लीगल और सुप्रीम कोर्ट कवर करते करते हम भी एडवोकेसी थोड़ी तो कर ही लगे हैं। इन्होंने जो कहा नहीं, वो चेरी ऑन द केक टॉप यही है कि जन्म हमार सुफल भा आजू, प्रभु के कृपा भयो सब काजू। यानी प्रभु की कृपा से सारा काम हो गया और जन्म सफल हो गया। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
10: और चलिए बाकी आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: राजधानी दिल्ली में वॉक फॉर हेल्दी सिटी वॉकथॉन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वॉक फॉर हेल्दी सिटी वॉकथॉन को पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने दिखाई हरी झंडी, लोगों को दी हेल्थ टिप्स। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सन रिसाइकिल रैली का आयोजन, लोगों ने जुम्बा डांस के साथ दिन की शुरुआत की। हैदराबाद में पिंक पावर रन का हुआ आयोजन, फिल्मी कलाकारों और मशहूर लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तिरुचिरापल्ली में हार्ट अवेयरनेस रेस का हुआ आयोजन, नीली ड्रेस में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी दिखा रहे हैं जलवा, आज प्रतियोगिता का आठवां दिन है। भारत की झोली में शनिवार को आई सात मेडल्स, मेडल्स की संख्या बढ़कर अब 30 हुई। भारत ने 4 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में 10वें स्थान पर अपना नाम अंकित किया, आज भी कई पदकों की उम्मीद है। अभय सिंह और अनाहत सिंह से आज स्क्वाश में भारत को गोल्ड की उम्मीद है, जीत के साथ दोनों को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 का भी मिल जाएगा टिकट। अलीगढ़ में धावक गुलवीर सिंह ने परिवार में मनाया जश्न, तो वहीं मेडल जीतने की खुशी में महिलाओं ने जमकर डांस किया। कांगड़ा में मां चामुंडा देवी मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण, गर्भगृह का स्वरूप अब और भव्य नजर आएगा। 3 किलो सोना 6 कुंतल चांदी से सजेगा मां चामुंडा का दरबार, दुबई से आएगी स्वर्ण रजत सामग्री। गुंबदों की फिनिशिंग के साथ दीवारों पर मार्बल लगाने का काम जारी, बाकी काम को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। चामुंडा धाम के गर्भगृह में लगाया जा रहा है वियतनाम से लाया हुआ संगमरमर, लुधियाना के एक दानी श्रद्धालु ने मंदिर के सोना और चांदी दान किया। बानेर खड्ड के किनारे स्थित चामुंडा देवी मंदिर में हर साल पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु, गर्भगृह में 100 श्रद्धालुओं के साथ बैठने की होगी व्यवस्था। गुजरात के अंबाजी भादरवी पूनम महामेले में आस्था का महाकुंभ जुटा, मेले के समापन पर धाम में उमड़े लाखों श्रद्धालु। भादरवी पूनम महामेले में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड जमावड़ा लगा, 7 दिन में 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए मां अंबे के दर्शन। दूर दूर से पदयात्रा कर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, मां अंबा के जयकारों से गूंजा धाम, भक्ति और आस्था का दिखा अद्भुत नजारा। सतरंगी रोशनी से जगमगाया अंबाजी धाम, मंदिर की भव्य सजावट ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया, बना आकर्षण का केंद्र। 358 स्वर्ण कलशों से सजा अंबाजी मंदिर का स्वर्ण शिखर, रात में रंग बिरंगी लाइटिंग और लेजर शो ने बढ़ाई भव्यता। मदुरई के ऐतिहासिक कुडल अजगर मंदिर में भव्य 5 गरुड़ सेवा, पुरातात्विक पूर्णिमा पर 5 पेरुमल गरुड़ वाहनों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। भव्य उत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, एक साथ 5 गरुड़ वाहनों पर निकले भगवान विष्णु के स्वरूप, सड़कों पर गूंजा गोविंदा गोविंदा का जय घोष। कुडल अजगर मंदिर में से निकला 5 गरुड़ सेवा का भव्य जुलूस, मदुरई की ऐतिहासिक मां से गलियां बनी भक्ति का केंद्र, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दिव्य दर्शन। पुरातासी पूर्णिमा पर कूडल अजगर मंदिर में आस्था अपने चरम पर पहुंची, ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रों से भक्तिमय हुआ माहौल, भगवान की भव्य गरुड़ सवारी ने मोहा सभी का मन। भगवान विष्णु के 108 पवित्र धामों में शामिल है कूडल अजगर मंदिर, अष्टांग विमान वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध कूडल अजगर मंदिर। दशहरा दिवाली छठ पर घर जाने वालों के लिए आई गुड न्यूज। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स की आज से शुरू होगी बुकिंग। रेलवे चलाएगा 102 फेरे वाली स्पेशल ट्रेन्स। त्योहारी सीजन में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी। आज से IRCTC और रेल वन पर बुकिंग शुरू होगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में सफर आसान होगा। अतिरिक्त ट्रिप्स के जरिए बढ़ाई जाएगी यात्रियों की क्षमता। मुंबई से लेकर चेन्नई के बीच रेलवे का स्पेशल इंतजाम किया गया। वीकली स्पेशल ट्रेन के 6 फेरे किए गए तय। मुंबई लातूर रूट पर भी बढ़ाई गई रेल सेवा। दादर ठाणे कल्याण पुणे और दौंड समेत कई स्टेशन शामिल। कोल्हापुर कलबुर्गी के बीच स्पेशल ट्रेन लगाएगी 64 फेरे। दिवाली और छठ में यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों का सफर आसान होगा। फेस्टिव सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर चलाई जाएंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन। रेडियो कार्यक्रम का ये 138वां एपिसोड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने IIT मद्रास यूनिकॉर्न वेंचर फंड किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी साथ मौजूद रहे। गुजरात के कांडला में देश के पहले पोर्ट आधारित ई मेथनॉल प्लांट की रखी गई आधारशिला। 2300 करोड़ रुपए का है निवेश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेजी से चलाई जा रही है ग्रामीण विकास की योजनाएं। कम्युनिटी बायोगैस प्लांट से किया जा रहा है ऊर्जा उत्पादन। श्रीनगर से बुक रीडर्स के लिए आई शानदार खबर। दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों की लगाई गई प्रदर्शनी। मौसम बिगड़ने पर गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा 27 सितंबर आज के लिए रोकी गई। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया निर्णय। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। IMD ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी। लखनऊ में लगातार बारिश के बीच ऐतिहासिक हुसैनाबाद गेट का एक हिस्सा ढह गया। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया। गोरखपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। उड़ीसा के गांव में बाढ़ जैसे हालात बने। ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी। लगातार माइकिंग पर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। बस्तर में लगातार 5 दिनों तक हुई तेज बारिश के बाद इंद्रावती नदी सहित उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़। पूरा बस्तर जिला हो गया पानी पानी। उन्नाव में लगातार 36 घंटे से हो रही है रिमझिम बारिश। कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से तेज और रुक रुक कर हो रही बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। टेहरी में मौसम ने बदली करवट। सुबह से जोरदार बारिश जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी से सफेद चादर से ढके पहाड़। बर्फ से चमक उठी बद्रीनाथ की चोटियां। बारिश और ठंड के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बरकरार। गर्म कपड़े और बरसात के साथ श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भारत और चीन की सीमा क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बीच सेना ITBP और BRO के जवान डटे हुए हैं। मुश्किल मौसम में भी जवान लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है। बारिश और ठंड के बीच श्रद्धालु पितृतर्पण और पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। भारी बारिश के अलर्ट के बीच चारधाम यात्रा फिलहाल रोकी गई है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है और संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। केदारनाथ धाम में रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं यात्री। बारिश के बीच बादलों से घिरी दिख रही है केदार नगरी। मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई यात्रा व्यवस्था की मुश्किलें। प्रशासन सतर्क अलर्ट पर राहत और बचाव टीमें। हेमकुंड साहिब में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, जबरदस्त ठंड के बीच सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड, तापमान में आई गिरावट, निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी। किन्नौर के सीमांत इलाकों में सीजन की ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वहीं कुन्नू, चारंग, छितकुल और दुमती में बर्फ की सफेद चादर से मौसम खुशनुमा हो गया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल छितकुल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। बर्फ गिरने से पहाड़ों का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है। ताजा हिमपात के बाद किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी का असर बढ़ा है, मवेशियों के लिए करने पड़ रहे हैं अतिरिक्त इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में हुई राहत वाली बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। दिल्ली में बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। रामनगरी अयोध्या में लगातार बारिश के बीच रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था भी अड़ेक है, छतरी लेकर रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, मुख्य सचिव ने 17 जिलों के डीएम के साथ समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से गढ़चिरौली में आई बाढ़, 100 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा, 525 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए। बाढ़ के इस भयावह माहौल के बीच एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला, बीमार छात्रा की बचाई जान। इंद्रावती जलाशय से पानी छोड़ने के लिए 3 गेट खोले जाने के बाद कोटपाड़ के कुछ हिस्सों में स्थिति और खराब हुई, राहत का कार्य जारी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में दोपहर 2 बजे से आमना सामना होगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। 3 मैचों की सीरीज का आज होगा आगाज, टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में, वेस्टइंडीज की कप्तानी संभालेंगे शायहो। वनडे में फिर साथ नजर आएगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी, वनडे में 15,000 क्लब से चंद कदम दूर हैं विराट कोहली, महज 69 रनों की जरूरत है। टीम इंडिया में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का दिखेगा मेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल और गिल जैसे बल्लेबाज टीम में नजर आने वाले हैं। गेंदबाजी में सिराज प्रसिद्ध और कुलदीप पर नजरें हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे गुवाहाटी में खेला जाने वाला है, जबकि तीसरा और आखिरी मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
0: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? किस वस्तु का प्रयोग गलत करने से पूजा निष्फल हो जाती है? कौन सी हैं वो चमत्कारी वस्तुएं जो करेंगी पितरों की आत्मा को शांत? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, पारा गिरने के बाद गर्मी से मिली राहत, राजधानी और आसपास के इलाकों में हवा भी साफ हुई। यूपी और बिहार में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई, छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी जारी, बाढ़ में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों पर भी मौसम ने करवट ली, सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में बर्फ की सफेद चादर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए चारधाम यात्रा स्थगित की गई।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तां, सुनिए।

0: हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को फिर से लिखकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छू लेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थी। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तसव्वुर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाले स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाले स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी तब मैं इंजर्ड हुई थी, एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था, एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून, एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल, एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून, एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे, एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड्स क्वीन बन गईं। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रही। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवत गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: इन सब के बावजूद सांगली से स्मृति का बहुत गहरा लगाव है। दो साल की थी स्मृति जब सांगली से उनका नाता जुड़ा, और आज भी सांगली जाना और वहाँ वक्त बिताना उन्हें बहुत पसंद है।
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli में स्मृति का पूरा बचपन बिताई, यहाँ तक कि Sangli के Chintaman Rao College of Commerce से ही उन्होंने अपना BCom complete किया। कमाल यह है कि Sangli में रहते हुए महज 9 साल की उम्र में स्मृति का selection महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए किस्सों को, पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट दिखा लाल सही दिखा सही लाल।
7: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, पारा गिरने के बाद गर्मी से मिली राहत, राजधानी और आसपास के इलाकों में हवा भी साफ हुई। यूपी और बिहार में भी तेज बारिश की चेतावनी, छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी, बाढ़ में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू। पहाड़ों पर भी मौसम ने करवट ली, सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में बर्फ की सफेद चादर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए चार धाम यात्रा स्थगित की गई। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के चामुंडा धाम में मां के दरबार को होगा भव्य श्रृंगार, पंजाब के श्रद्धालु ने दान किया 3 किलो सोना और 8.5 क्विंटल चांदी, सोने से सजेगा माता का सिंहासन। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, पितृपक्ष पर विधि विधान से कर रहे तर्पण, पिशाच मोचन कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान। एशियन गेम्स में आज भारत पर हो सकती है मेडल्स की बरसात, स्क्वॉश में डबल गोल्ड की संभावना, एथलेटिक्स में भी बड़ी उम्मीदें।
6: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क BLDC फैंस,

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे पांच ऐसी चमत्कारी वस्तुओं के बारे में जिनके प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:58 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 11:08 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं पितृ पक्ष में अलग अलग चीजों के प्रयोग के बारे में और उनके महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जल की, यानी वाटर की। क्या महत्व है इसका? देखिए, मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त वस्तु, टेंजिबल जो आइटम है, वो जल है, जो दिखता है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए किसी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छोटा अनुष्ठान हो, बड़ा अनुष्ठान हो, छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, बिना जल के संभव नहीं है। जल में खड़े होकर अंजुलि में, अपने हाथों की अंजुलि बनाकर उसमें जल लेकर पितरों को अगर आप जल दें तो सर्वोत्तम होगा। और पितृ पक्ष में सूर्योदय के पहले पीपल में जल डालने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप पितृ पक्ष में जानबूझकर जल की बर्बादी करेंगे या करते हैं तो आपके पितृ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। जल की बर्बादी वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृ पक्ष में जल की बर्बादी करने से आपकी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी। मेष राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। महत्वपूर्ण काम में अभी विलंब होगा। वाहन सावधानी से चलाएं। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। मिथुन राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की तमाम चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, लेकिन काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जैसे जल बड़ा महत्वपूर्ण है आचमन के लिए, संकल्प लेने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए, पूजा के लिए, प्राण के लिए, वैसे ही अगर हम परंपरागत रूप से देखें, भारतीय परंपरा में देखें, तो अग्नि को बड़ा पवित्र माना गया है। बहुत सारे धर्मों में अग्नि की बड़ी मान्यता है और इसीलिए सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना जाता है। आप किसी भी धर्म में देखिए, दीपक के रूप में, मोमबत्ती के रूप में, यज्ञ के रूप में, हवन के रूप में, अलग अलग तरीकों से अग्नि का प्रयोग किया जाता है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी काम को सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। विवाह के समय वर और कन्या अग्नि को साक्षी मानते हैं, अग्नि का फेरा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब आप कोई आहुति डालते हैं भावनाओं से, मंत्रों से, तो ये आहुति सीधी देवताओं तक पहुंचती है। जब आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो सारे भोजन में से जरा जरा सा भोजन निकाल करके इनकी सबसे पहली आहुति अग्नि में दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में अगर आप सुगंध की 5 आहुति दें तो पितरों को और स्वयं को शांति मिलेगी। महीने में 1 अमावस्या आती है, उस अमावस्या पर सुगंधित हवन सामग्री 11 आहुति कम से कम अग्नि में उस हवन सामग्री की दें और पितरों के लिए प्रार्थना करें, कल्याण होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रिश्ते बेहतर होते जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, तमाम पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में सुधार होगा,
निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो हर दाल का अपना महत्व है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, लेकिन विशेष रूप से पितरों की पूजा में, तंत्र की पूजा में उड़द की दाल का प्रयोग बहुतायत में होता है, काफी किया जाता है। क्या महत्व है इसका? उड़द की जो दाल है, काली उड़द की दाल, ये ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है, और पितरों के लिए जो खाने की चीजें बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं में उड़द की दाल की वस्तुओं की प्रधानता होती है। उड़द की दाल की जो वस्तुएं हैं उसका काफी प्रयोग होता है। अगर किसी की असामयिक समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो भैरव देव को उसकी आत्मा की शांति के लिए उड़द की बनी हुई वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद की वजह से या घर में किसी का देहांत हो गया, अगल बगल में किसी का देहांत हो गया, आपको डर लग रहा है, तो शनिवार के दिन एक मुट्ठी उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, पीपल के नीचे रखिए, उस पर जरा सा दही और सिंदूर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपके मन का वहम और भय गायब हो जाएगा। जिन लोगों को अज्ञात डर सताता हो, अज्ञात बाधा लगती हो, ऐसे लोग अगर काली उड़द की दाल थोड़ी सी रख के शनिवार को पीपल के नीचे उस पे जरा सा दही और जरा सा सिंदूर गिरा दें, लगा दें, तो निश्चित रूप से इस तरह का डर और वहम समाप्त होगा। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, ऑफिस की तमाम समस्याएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। काला तिल बहुत सारी पूजा उपासना में, विशेष तरह के अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। काले तिल का पितृपक्ष से, पितरों से क्या संबंध है? देखिए, काले तिल जो हैं, ये संपन्नता का प्रतीक भी हैं और शांति का प्रतीक भी हैं। काले तिल का दान अगर आप करें, थोड़े से काले तिल का दान शनिवार को या अमावस्या को आप करते रहें, तो अज्ञात बाधाओं से, अननोन प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी।
जल में काला तिल डाल करके अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। जब रोज दोपहर के समय में पितरों को जल दिया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है, तो जल में काले तिल डाले जाते हैं और तिल मिला हुआ जल अपने पितरों को अर्पित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, हिंदू परंपरा की पूजाओं में पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का, पत्तों का, यहां तक कि घास का भी महत्व है। जैसे आप देखे होंगे कि गणपति को पूजा में दूर्वा चढ़ती है, एक तरह की घास है, कुश भी एक तरह की घास है। पितरों से इसका क्या संबंध है? माना जाता है कि कुश श्री हरि विष्णु के अंश से बना है। ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है, अमृत तत्व पाया जाता है। जल में कुश को रात भर भिगा करके सुबह उसी जल से शिव जी का अभिषेक किया जाता है कुशोदक से, और कुशोदक से अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जब आप पितरों का तर्पण करते हैं तो नियम ये है कि जल में काले तिल मिला लिए जाएं और हाथ में कुश ले लें या कुश घास की अंगूठी, पैंती कहते हैं उसको, उसको आप पहन करके तब तर्पण करेंगे, तब श्राद्ध करेंगे तो श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आपको मानसिक रूप से दिक्कत रहती है, मेंटल डिप्रेशन रहता है या मन की समस्याएं परेशान करती हैं, तो जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। कुश घास का शरबत बनाया जाता है आयुर्वेद में और इसको पीने से स्फूर्ति और ऊर्जा आती है। मुख्यतः पितृपक्ष में जो रोज तर्पण किया जाता है, जो रोज पितरों को जल दिया जाता है, वो बिना काले तिल और बिना कुश घास के कतई संभव नहीं है। देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से पशुओं की सेवा करिए, गाय की, कुत्ते की, भैंस की, पशुओं की सेवा करिए और जब आपको मौका मिले तो पितृपक्ष में किसी निर्धन को अन्न का या भोजन का दान करिए। अगर आप पितृपक्ष में ये शुभ कार्य करेंगे तो आपके पूर्वजों की आत्मा को, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। आप काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका मकान जल्दी नहीं बन पा रहा है, क्या करें कि मकान जल्दी बने? अपने भाई से एक तांबे का सिक्का ले आइए, किसी भी दिन मंगलवार को लाएं तो बड़ा अच्छा है। इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर
अपने घर में पूजा स्थान पर रख दें। इसको रखने के साथ आपको मकान होने का लाभ जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

हम आपको आज एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि हनुमान जी राम जी का युद्ध हुआ है, हाँ, और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए राम जी से लड़ गए। एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। सुकंत नाम का राजा कैवर्त देश का राजा था। उसके राज्य का नाम था कैवर्त। एक बार राजा बड़ा धर्मात्मा था, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पूजा पाठी, एकदम पूजा पाठ करता रहता, राम नाम जपता रहता, संतों के समागम में जाता रहता था। तो एक बार संतों की सभा लगी तो कैवर्त देश का राजा सुकंत उस सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। उसी समय उस राजा को नारद जी मिल गए और नारद जी का काम है आगी लगाना। नारद जी बोले, कहो सुकंत, कहां जा रहे? सुकंत बोलो, संत सभा में जा रहे, संत सभा में, संतों के समागम में जा रहे। जाओ जाओ जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए, संतों की संगत करोगे बुद्धि निर्मल रहेगी, जाओ जाओ जाओ जाओ। ये वो महाराजा क्या वो राजा थोड़ी दूर बढ़ा तो नारद जी बोले, रुको रुको रुको रुको, अच्छा जो बताओ सुनो, वहां बहुत सारे संत होंगे, सबको प्रणाम करना। महाराज, आपने तो ये हमें सिखाया ही है संतों को प्रणाम करना, हम तो राजा हैं, संतों को प्रणाम नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? हाँ ठीक ठीक ठीक, अब जाओ जाओ। थोड़ी दूर फिर चला तो नारद जी ने फिर रुका, ए रुको, सुनो राजन, सुकंत सुनो, सबको प्रणाम करना, पर वहां पर एक संत रूप में एक विचित्र आदमी होगा, उनको मत करना। तो सुकंत बोले, किनको? बोले विश्वामित्र जी को। क्यों? अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना, मत करना तो मत करना। अरे महाराज, आफत ना हो जाए? कोई आफत नहीं, हमने कह दिया मत करना, क्योंकि वो ऋषि है ही नहीं, पहले वो भी राजा थे तुम्हारी भांति, और हमारी आज्ञा है तुम प्रणाम मत करना, सुझाव मान लो, तुम्हारे पुण्य बचे रहेंगे। अब राजा सुकंत परेशान हो गया, अब क्या बोले? नारद जी की आज्ञा। नारद जी का मतलब ही होता है जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। नारद का अर्थ क्या? जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। तो हां कह दिया। राजा संत सभा में गया तो सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। और जैसे ही विश्वामित्र जी को छोड़ा, सो ये प्रणाम इतनी खतरनाक विधा है कि 100 लोग करें एक ना करें, सो वही पे नजर जात के जो आगे को लगो को आए। जो हमें चीनत नहीं है, हमको जानता नहीं है क्या, हम ऐसे और वैसे? तो जो सबको प्रणाम किया उसको भर प्रणाम न करी तो विश्वामित्र जी को आग लग गई। और सबते कठिन जाति अपमाना, रामचरितमानस में भी आया है, जाति का अपमान सबसे कठोर है, इसको पीना बड़ा मुश्किल है। तो विश्वामित्र जी मारे क्रोध के आग बबूला होकर के भागे भागे, जब संत सभा पूरी हो गई तो दौड़े दौड़े अयोध्या आए, सीधे सीधे अयोध्या। राम जी दोपहर का समय, तो भगवान राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदार बने थे। राम जी ने कहा, क्या हुआ आज तो गुरुदेव तुम्हारा चेहरा अलग अलग बदला बदला सा लग रहा है। बोले, क्या नहीं हुआ, तुम सो रहे हो, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है, अपमान हुआ है, ऋषि मुनियों का अपमान हो गया, संतों का अपमान हो गया, तुम तो सो, तुम्हें क्या लेना देना है? राम जी बोले, आपका किसी का? अरे हमारा अपमान कर दिया। आपका अपमान हो किसने कर दिया, आप हमें बताओ। विश्वामित्र जी बोले, अगर बता भी देंगे तो तुम करोगे क्या? क्या कर लोगे अगर नाम भी बता दे तो? तुम तो, तुम्हें तो सोने से टेम नहीं। राम जी बोले, गुरुदेव आप एक बार बता दो, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं कि कल जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं है उसको काट करके लाएंगे, वो आपके चरणों में चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी बोले, नहीं होना चाहिए ऐसा काम, तो होना चाहिए, खल को दंड मिलना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया, सुकंत नाम का राजा है जिसने हमें प्रणाम नहीं

राम जी ने प्रण ले लिया कि कल प्रातः काल होते ही सुकंत का वध कर देंगे। सुकंत लगो अब तो सुबह होने वाली है, प्राण निकल जाएंगे। सो सुकंत रोने लगा अत्यधिक रोने लगा। सोई नारद जी प्रकट भय, कहो सुकंत सब ठीक है? अरे बोले का ठीक है, मर रहे हम। नारद जी बोले एकदम तो सबको मरना है, कोई नई बात नहीं है, मर रहा। मृत्यु लोग यहां सब मरते, जो आता है सो जाता है। अरे सुकंत बोले लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले कौन मरना चाहता है, लेकिन मर तो सब जाती है। सुकंत बोला प्रवचन मत सुनाओ, भगवान मार डालेंगे, उन्होंने प्रण लिया है। लेकिन धन्य रे नारद जी। नारद जी बोले और अच्छी बात, इसमें तो तुम खुशी मनाओ, संत भंडारो करवाओ। सुकंत बोला क्यों? बोले भगवान जिसको मारे उसकी सदगति हो जाती है। सुकंत बोलो हमें सदगति करवाऊ नहीं नहीं है। नारद जी बोले आखिर लपड़ा क्या? अरे बोले लपड़ा जो है कि तुमने कही थी उन्हें प्रणाम ना करियो, हमने नहीं करो, उनने जाके हाई कमान बता दो, हाई कमान ने धनुष बाण लेके प्रण ले लो कि हमारे प्राण पखेरु तेरे ही होने, तुम्हें खाबे हमने, अब बताओ बच कैसे रहे। नारद जी बोले अब बचना तो मुश्किल है। सुकंत हाथ जोड़ के बोलो वाह, उपाय देने में शर्म नहीं आई है, जैसे उस समय उपाय दिया था अब दो। नारद जी बोले अब उनसे बचने का तो और कोई उपाय नहीं है। बोले वाह सलाह दे सकते हो, एक और दे दो अधिकारी, दूसरी सलाह दे दो। तो नारद जी ने हाथ पकड़ा, सामने पर्वत पर ले गए, जंगल में एक पर्वत पर ले गए जहां पर एक गुफा में माता अंजनी रहती थी। अंजनी माता की गुफा के सामने जाकर के नारद जी बोले सुनो दरवाजे पर तुम रोने लगो, अंदर से जो भी निकले तो पांव पकड़ के कह देना कि हमें तो वचन दो, प्राणों की रक्षा करवाएंगे। सुकंत बोले मरते क्या नहीं करते, जो ही और कर लो। सुकंत जात जात बोलो अगर इनने ना वचन दे फिर का कर भी। नारद जी बोले फिर और भी हो पाए, हम तो सलाह देने में माहिर है, फिर ही फोपट की सलाह है, चाहे जब ले लेना। सुकंत बोलो एक बेभ प्राण निकल जाए लौट के तुम्हारी सुनने ना, कहा ही हमें एक बेर सुनी सो हमारी जैसी आफत है, गरे के नीचे से कौर नहीं जा रहा हुआ, लुचाई नहीं जा रही है। सुकंत गया अंजना माता के गुफा के सामने बैठ गया।

0: कहो बेटा कौन हो तुम?
1: माँ
0: हम आपके बालक हैं सुकंत, हमारी रक्षा करो। हमने सुना है आपके द्वार पर जो भी आता है आप रक्षा करती हैं। अंजनी माँ ने कहा क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है? माँ पहले वचन दो। अरे बताओ तो कौन?
1: हमको माँ
0: विश्वामित्र जी मारना चाह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, चिंता मत, रो मत, हम वचन देते हैं, तुम रोना बंद करो, जैसे भी होगा हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके बतलाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज, राम जी की सेवा करके शाम के समय जब अपनी माँ के पास चरणों में गए, सोई अंजना माता बाहर बैठी, सुकंत भीतर बैठो।
1: माते आज मलिन मुंह करके क्यों बाहर बैठी हो? क्या हो गया?
0: अंजनी माँ बोली पहले ये बताओ अगर हम कोई तुम्हें आज्ञा देंगे तो उल्लंघन तो नहीं करो? हनुमान जी बोले माँ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर? अंजना माता बोली नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो सुनो, अगर किसी के प्राण बचाने की आज्ञा दें तो? हनुमान जी बोले हम अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हम उसके प्राण बचा करके रहेंगे उनके लिए, चाहे हमें जिससे लड़ना पड़े। अंजना माता बोली निकरे आओ सुकंत जी बाहर। सुकंत ने आके 6 बेर दंडवत पांव पर के जय हो तुम्हारी वीर बजरंग बली। राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी सेवा करने प्रातः काल पहुंच जाते हैं। श्री हनुमान जी पहुंचे तो राम जी सेना तैयार करतना है, तो हनुमान जी तो जानती थे कहां जा रहे प्रभु, कहां जा रहे? हनुमान जी सुकंत को मारने जा रहे। हनुमान जी बोले सुकंत का पद क्यों? राम जी बोले प्रतिज्ञा ली है। किसकी? अपने गुरुदेव के चरणों की, कि आज अगर हम सुकंत को नहीं मारेंगे तो जलपान नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले मत जाओ। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले हमने भी प्रतिज्ञा ली है। राम जी बोले किसकी? बोले अपने इष्ट के चरणों की, कि हम सुकंत को बचा करके रहेंगे। ले अब फंस गई आफत। राम जी बोले चाहे जो हो जाए प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, हम तो सुकंत को मारने जाएंगे। हनुमान जी बोले तो हम भी बचा कर रहेंगे। अब दो जन की ठन गई, सो लक्ष्मण जी ने टेढ़ी भौंय कर ली कि अब फंस गए तुम बंदरा बब्बा, अब फंस गए, अब देखा जाएगा, अब बड़ा मजा आएगा। हनुमान जी सीधे सुकंत के घर पे पहुंचे। सुकंत, सुकंत बोलो गुरुदेव का भाव? हनुमान जी बोले कछु नहीं बाबा, भाई साहब आ रहे पूरी फौज लेके, एक के 47 पूरी बटालियन ले भाग लो। क्यों? बचना मुश्किल, राम जी मारने आ रहे। तो सुकंत बोलो हमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने भी तो बचन ले कि हम बचा भी। हनुमान जी बोले बचावे ही तो आया, नहीं था अबे लो हम ही संगे आके ना ठुकवा देते बाण। सुकंत बोलो बात भी सही कह रहे। सुकंत का हाथ पकड़ा, कहां जाएंगे तुम्हें का करने? चलो जंगल ले गए वन में। अब वन में ले गए, वन में ले जाकर के बोले अच्छा बताओ क्या करें? बोले संकट में एक काम करो, जाप करो। सुकंत बोलो जाप हमें नहीं निकल रहा कछु मोह, जो भर नजर आ रहा हूं कहूं राम जी आ ना जा, मैं बाण ना मार दे, मैं प्राण पकेरू ना उड़ जा, मैं बाल बच्चन को का हुई है, राजपाट को का हुई है। हनुमान जी बोले बाल बच्चे छोड़, दोनों हाथ उठा, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी तो कीर्तन गावे, सुकंत बीच बीच में रोक दे, रोको अच्छा जो बताओ हम बच तो जे भी कहूं मर तो ना जे भी। हनुमान जी बोले भाई जाप करो, मंत्र दृढ़ विश्वास रखो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास रखो होगा कल्याण, होगा होगा होगा। सुकंत बोलो कल्याण तो होगा, कहूं ऐसो ना हो के ये कीर्तन करत करत भी बाण ठोक दे, हमाओ काम हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। हनुमान जी बोले तुम भजन करो सुकंत बच जे हो। सुकंत बोलो हमें नहीं लग रहा हो कि बच जे भी। राम जी गए, अरे बोले कीर्तन पे भरोसा रखो।
1: हनुमान जी कीर्तन करें कि सही में ना बचे तो बड़ी आफत। सो हनुमान जी कीर्तन करें सो रोवे, और हनुमान जी रो तो देखवे सो सुकंत और ज्यादा डबल माइक में रोवे। लेकिन हनुमान जी महाराज तो भाव में रोवे पर सुकंत भय में रो रहा है। दोनों के रोने में अंतर है, एक भाव में रो रहे एक भय में रो रहे हैं। अब रोने लगे, राम जी पहुंचे सुकंत के घर। क्या हो सुकंत, निकल बाहर। और जैसे ही पहुंचे सोई राम जी की सेना, राम जी सामने देखो सो सुकंत को कीर्तन ईर्तन सब भूल गो लगो रोवे, साउंड सर्विस लगा के लगो रो। अरे हनुमान जी बोले चुप हो जा, रो रहा हूं सेंत में। अरे बोले रो रहा हूं, आ गए भाई साहब। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी ने क्या लीला की, हनुमान जी महाराज ने सुकंत को अपनी पूंछ में छिपा करके रख लिया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वचन दिया। और हनुमान जी महाराज

हनुमान जी को देख करके राम जी बाण चलाए सुकंत के लिए, लेकिन राम नाम के प्रताप के कारण वो बाण सब बगल से निकल जाए। एक चक्र चलने लगा कीर्तन का, राम जी हताश हो गए, अनेकों बाण मारे पर सुकंत नहीं मरा, क्योंकि राम जी सौगंध खाएं अपने गुरु चरणन की और हनुमान जी भी सौगंध खाएं अपने इष्ट चरणन की। राम जी सौगंध खाएं के सुकंत को मार कर रहेंगे, हनुमान जी सौगंध खाएं के हम तुम्हें बचा के रे भी। हनुमान जी दो ही हाथ जोड़े खड़े।

कीर्तन करे हरा से आंखी खोले पी धीरे से पूछ रहे काय सुकंत बढ़िया हो। सुकंत बोलो अबे तो जिंदा बचे हैं लेकिन बगल में हो मिसाइलें सी छूट रही। हनुमान जी बोले हाथ पाओ ननकारियो नहीं तो फेंकाई जे हो। सुकंत बोलो हम तो ये सिकुड़े यहां तना पूछ और तो बढ़ाओ बड़े आई सी हाँ तक और बढ़ा दो। हनुमान जी ने 2-2.5 मीटर और पूछ बढ़ा दी। अब बोल सुकंत बोलो अब तो बढ़िया लोग गए हवा लो नहीं आ रही तना खोल दो सांस ना रुक जाए। अब बानन से बचिए सो श्वास से मर जाइए। सुकंत बोलो बस ऐसा ही चलन दो जब निपट जाए तब बताइयो। हनुमान जी बोले निपटे तुम डरा होगा फिर वो बोलो अच्छा जो बताओ जो तो बताओ बच जे भी। अरे हनुमान जी बोले पगला है चुप रहा

कीर्तन करने लगे श्री हनुमान जी महाराज। और कीर्तन करते करते राम जी हताश हो गए। लक्ष्मण जी से नहीं देखोगा, वह बोले बताओ तो जब से लगे हैं। लक्ष्मण जी को दिमाग खराब होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा बन गो दिमाग में। सोई लक्ष्मण जी ने एक टैया तीर निकालो और छोड़ दो। और जैसे ही छोड़ो सो हनुमान जी के वक्ष स्थल में वह तीर लग गया। और जब राम जी ने हनुमान जी को देखा, अरे राम राम राम, हमारे हनुमान की सीना से रुधिर बहने लगा। राम जी की आंखें भर आई, दौड़ कर जाकर के जोर से कसकर हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। हृदय से हनुमान जी को राम जी ने लगाया, सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार चूमे। हनुमान जी को बार बार मुख चुम्बन राम करते हैं, बार बार हृदय से लगाते, सिर पर हाथ फेरते, नेत्र बंद किए हैं राम जी के। जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे, रुधिर बहना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक हम नेत्र नहीं खोलेंगे। लक्ष्मण जी यह दशा देखकर भुलाने हैं। लक्ष्मण जी ये दशा देख करके आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितना अद्भुत नाता भक्त और भगवान का है। लगाया तीर हनुमान को, ऊपर पाया राम ने। रो पड़े लक्ष्मण जी, आंखों में आंसू आ गए। राम जी रोते रोते हृदय से लगा करके राम जी रोने लगे, हनुमान तुम्हारे हृदय से रुधिर बह गया, खून बह गया और सिर पर हाथ फेरे। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, भगवान आंखें बंद करे ही है, सिर पे हाथ फेरे ही रहे। सोई भगवान ने लीला करी के पूंछ में से सुकंठ निकाल निकल बाहर, हरा के चुप लगी मौना बोली, सुकंठ बोलो आ क्या, हाथ पकड़ के लाओ। और हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को बैठाकर प्रभु का हाथ सुकंत के माथ पर रख दिया। जैसी सुकंत के माथ पर रखा, राम जी ने नेत्र खोले, सोई राम जी मुस्कुरा गए, हंसने लगे, सुकंत तुम? हनुमान जी बोले अब चाहे जैसे हो, जब आपका हाथ अब इसके माथ पर रख गया तो अब एक और कृपा कर दो कि इसके प्राण छावर, इसको प्राण जो लेने हैं वो आप प्राण त्याग दो, इसके प्राणों का इसको वरदान दे दो कि वापस ऐसे ही जीवित रह। राम जी खूब ठिठोली लगा के हंसे, बोले हनुमान जी वैसे भी तुम जिसको अपनी गोद बैठा लेते हो, जिसको अपने चरण में लगा लेते हो, मैं उसके सिर पर हाथ रख ही देता हूं। सुकंत तो बड़ा भाग्यशाली है।

0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: कौन सा ग्रह हड्डियों की बीमारी देता है? किस ग्रह की वजह से कान, नाक और गले की तकलीफ होती है? और किस ग्रह की वजह से किडनी की दिक्कतें आ सकती हैं? नौ ग्रहों की क्या हैं बीमारियां और क्या है उनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें

0: पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: जापान में टीम इंडिया ने की बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया की यात्रा की। एशियन गेम्स में आज भारत पर हो सकती है मेडल्स की बारिश, स्क्वाश में डबल गोल्ड की संभावना, एथलेटिक्स में भी बड़ी उम्मीदें। देवभूमि उत्तराखंड में जारी है बारिश का दौर, केदारनाथ धाम में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी, धाम में मौजूद श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। यूपी बिहार में भी तेज बारिश की चेतावनी, छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी, बाढ़ में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, पितृपक्ष पर विधि विधान से कर रहे हैं तर्पण, पिशाच मोचन कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए, फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए, तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है। मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम, दैट इज मेन इंजन, जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज्ड रहे। दैट मींस अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।
2: पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हों और पूरी हो रही हों तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है।
2: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिपकर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर हैं, जो आवाज के जो सिग्नेचर हैं, वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। सो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
2: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है सिस्टम, कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है, आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
2: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे।
0: टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं।
2: जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है। जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है, वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसके लिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज्ड कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
2: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है।
0: आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात, टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: अनमैन ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए 5 से 10 किलोमीटर पीछे एक बख्तरबंद गाड़ी में सैनिक बैठे होते हैं और उनके पास होती है एक बड़ी सी वीआर स्क्रीन जो ये एहसास कराती है कि सैनिक पूरी तरह से उस टैंक में ही बैठे हैं, जबकि सैनिक इस व्हीकल में बैठकर उस टैंक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंट्रोलर एक विशेष जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील और फायर बटन की मदद से टैंक को चलाता है और निशाना लगाता है। ऑपरेटर अपने कंट्रोल पैनल पर तय करता है कि उसे किस तरह का गोला दागना है, जैसे कि बख्तरबंद गाड़ियों के लिए APFSDE, पैदल सेना या बंकरों को तबाह करने के लिए हाई एक्सप्लोसिव। ऑपरेटर जैसे ही बटन दबाता है, एक एनक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नल टैंक के ECU यानी कि केंद्रीय कंप्यूटर को जाता है और फिर टैंक फायर कर देता है। सुरक्षा नियमों के मुताबिक गोला दागने का अंतिम फैसला हमेशा इंसानी ऑपरेटर के ही हाथ में होता है। AI को खुद से फायर करने की अनुमति नहीं दी जाती।
1: अमेरिका, रशिया और इजराइल ने भी इस तरह के रोबोटिक टैंक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से किसी भी देश में अभी तक जो प्रोटोटाइप बनाया गया है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि मास प्रोडक्शन के बाद उनकी आर्मी में इंडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्धभूमि में ऐसा ना हो कि हमारा ही रोबोटिक टैंक गलती से हमारे ही टैंक या हमारे ही तोप की पोजीशन जो आर्टिलरी है या हमारे ही जो इन्फेंट्री ट्रुप्स युद्धभूमि में है उन पर फायर ना खोल दे। व्यवस्था ये की जाती है कि हमेशा जो ऑटोमेटिक लूप है उसमें मैन इन लूप हो, यानी फाइनल फायर करने की जो इजाजत है वो एक मनुष्य देगा।
0: T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के बजाय इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आखिर दशकों पुराने इस टैंक में ऐसा क्या है कि इसे अपग्रेड करने की तैयारी हो रही है और ये कितना घातक है ये भी जानना जरूरी है। भारत का T-72 टैंक अजय 125 किलोमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रीस्टार्ट होने में महज 6-7 सेकंड का वक्त लेता है, कम गहरी नदियों को आसानी से पार भी कर सकता है। लाइटवेट टैंक की बात की जाए तो भारतीय सेना के पास T-72 अजय टैंक है और उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं और इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है।
1: T-72 टैंक रूस का प्रमुख मेन बैटल टैंक है। वैसे रूस ने बाद में इसको अपग्रेड करके T-90 टैंक बनाया जो कि भारत के पास भी है। भारत की फौज में अभी करीबन 1000 T-90 टैंक्स हैं और करीबन 3000 T-72 टैंक हैं। इन T-72 टैंक्स की खास बात यह है कि ये रेत के ऊपर, दलदल के ऊपर, कीचड़ में, जंगल में, पहाड़ों में, बर्फ में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन T-72 टैंक्स में जो मेन गन लगी है वो इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंक्स या दुश्मन की गन पोजीशन को 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से देखकर एक्यूरेट फायर कर सकता है।
0: भारतीय सेना के पास T-72 के 3 वर्जन हैं, अजय MK-1, अजय MK-2 और कॉम्बैक इम्प्रूव्ड अजय, जिनका इस्तेमाल भारत करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 के आसपास T-72 अजय टैंक मौजूद हैं। भारतीय सेना ने T-72 टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट राइनो के तहत काम शुरू किया था और इसके तहत टैंकों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, यानी इनके अंदर हर वो अपग्रेडेड तकनीक फिट की जाएगी जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है। साथ ही साथ अदिति 4.0 पहल के तहत इन्हें भविष्य में मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म में भी तब्दील किया जा सकता है। दरअसल सेना का मानना है कि इन सुधारों के बाद T-72 टैंक आने वाले वर्षों में प्रभावी होंगे और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इसे अपने हिसाब से ही ढाला जा सकता है। भारत जहां अपने मौजूदा T-72 टैंक के बेड़े को बदलने और AI रेट्रोफिट किट का शुरुआती परीक्षण करने के चरण में है, वहीं अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में समर्पित नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं और उनका लाइव बैटलफील्ड में परीक्षण भी कर चुका है। रण क्षेत्र में टैंक की कितनी अहमियत है, युद्ध के समय में टैंक कितना बड़ा योद्धा साबित हो सकता है, इसकी जरूरत कब और कैसे महसूस हुई, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के कई देश एक दूसरे को घुटनों के बल लाने के लिए रणक्षेत्र में उतरे हुए थे। तब पुराने जमाने की तरह ज्यादातर लड़ाई आमने सामने की ही हुआ करती थी। जितनी लड़ाई जमीन के ऊपर लड़ी जाती है उतनी ही जमीन के नीचे भी। कई किलोमीटर लंबी खाइयां खोदकर सैनिक उसमें मशीन गन से लैस होकर तैनात रहते हैं। इन खाइयों को ट्रेंच कहा जाता है और इनके बीच होता था नो मैन्स लैंड। तार बाड़ और लैंड माइंस से भरी जमीन को पार करना यानी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए तब लंबे समय तक ट्रेंच वॉर चलता था। हर देश अपनी ट्रेंच के जरिए खुद ही हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था में जुटे थे। और इसी वजह से साल 2016 तक युद्ध फंसा ही रहा। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों खेमों की सेनाएं जहां जहां थी वहीं वहीं खड़ी रही, क्योंकि आगे बढ़ना मुश्किल था। और तभी आया एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले तमाम युद्धों की तस्वीर बदल कर रखती। यह हथियार था टैंक।

0: अब टैंक का नाम टैंक क्यों पड़ा, दरअसल इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल ब्रिटेन जिस वक्त टैंक बना रहा था, या कहें कि वो हथियार बना रहा था, उस वक्त ब्रिटेन को ये डर था कि कहीं ये जानकारी लीक ना हो जाए, और इसीलिए फाइलों में इस हथियार का नाम टैंक के नाम से रजिस्टर किया गया, और इसके तहत जितनी भी जानकारियां होती थी वो टैंक के नाम से ही रजिस्टर कर दी जाती थी, ताकि किसी भी देश को या किसी बाहरी मुल्क को इस बात की जानकारी ना हो कि ब्रिटेन कौन सा हथियार बना रहा है। धीरे धीरे हथियार बन गया, तैयार हो गया, लेकिन फाइनली नाम टैंक ही रहा। पहले विश्व युद्ध में बने टैंक प्रयोग के स्तर पर ही थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आते आते टैंक्स फौज की जरूरत बन गए, या यूं कहें कि टैंक्स सेना का अनिवार्य हिस्सा बन गए। जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर ने जब चंद दिनों में फ्रांस और पोलैंड पर अपनी जीत हासिल की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ही थे। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में टैंक ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दरअसल धीरे धीरे तमाम देश टैंकों की अहमियत को समझने लगे थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में टैंक एक सबसे बड़ा और मजबूत और भरोसेमंद हथियार बनकर उभरा था, और यही एक बड़ी वजह थी कि तमाम मुल्कों ने इस तकनीक पर फोकस करना शुरू किया।
1: लंबे समय तक भारत अपने दोस्त सोवियत रूस से टैंक आयात कर अपनी जरूरतों को पूरा करता रहा है। फिर 1965 में भारत ने यूके की मदद से अपना एक टैंक बनाया, जिसका नाम रखा गया विजयंत। इसका इस्तेमाल 1971 के भारत पाक युद्ध में किया गया। स्वदेशी ताकत को धार देने के लिए बाद में अर्जुन टैंक का निर्माण किया गया, और अब इसी कड़ी में जोरावर का नाम भी जुड़ चुका है। किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसकी मारक क्षमता, उसकी स्पीड और उसके डिफेंस क्षमता से होता है। इसके लिए बैटल टैंक्स के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनके जरिए ही पता चलता है कि टैंक फौज की जरूरत के हिसाब से सही है या फिर नहीं। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला इंडिकेटर वजन है, स्पीड है, पावर टू वेट रेशियो है, साथ ही हथियार और डिफेंस मैकेनिज्म है, जो ये बताता है कि आर्मर कैसा है टैंक का।
2: टैंक के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन, और ये तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप देखें मोबिलिटी, तो वो दिखलाता है कि टैंक किस स्पीड से जा सकता है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में कम से कम समय में जा सकता है, और अपने टारगेट को कितनी जल्दी जाके हिट कर सकता है। तो इसलिए मोबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार फायर पावर, जो फायर पावर है वो दिखलाता है कि आप किस हिसाब से अपने टारगेट को शॉर्ट शॉर्ट हिट कर देते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रेंज कितनी है। और जो तीसरा है आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यह है कि आपको यह भी देखना है कि दुश्मन के जो एंटी टैंक वेपन है या दुश्मन के टैंकों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हिट हो जाता है आपके टैंक में, तो आप के पास इतनी काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि आपका टैंक उसको विस्टैंड कर ले। तो इसका मतलब चुबा आर्मर है, रिएक्टिव आर्मर है, तो इस टाइप का। तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट। एक टैंक के अंदर तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर पावर, मोबिलिटी और प्रोटेक्शन। इसका कॉम्बिनेशन होना, इसकी ऐसा तरीके से होना कि इसका वेट भी ऑप्टिमम हो, इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो, और फायर पावर भी बहुत ही एक प्रकार से अव्वल दर्जे की हो।
1: किसी अच्छे बैटल टैंक में दो काबिलियत अनिवार्य हैं, पहला मोबिलिटी और दूसरा फायर पावर। मोबिलिटी का मतलब टैंक की उस ताकत से है जो उसे कहीं भी ले जा सकती है। अब देखिए, ट्रेंच वॉरफेयर की जगह पे ही टैंक्स आए थे, पक्की सड़क हो या फिर कई मीटर गहरा कीचड़। टैंक का काम है हर जगह से निकलना, जहां बड़े बड़े पहियों वाले ट्रक्स भी फंस जाते हैं वहां से टैंक आसानी से निकल जाता है, जबकि टैंक में लोहे के रोड व्हील्स, या कहिए कि उसमें लोहे के पहिए लगे होते हैं, लेकिन फिर भी धसते नहीं है। वो कैसे? इसका सिंपल फिजिक्स है। टैंक के पहिए सीधे जमीन पर चलते ही नहीं है, टैंक अपने साथ अपनी सड़क भी लेकर चलता है, जिन्हें कहा जाता है ट्रैक। आमतौर पर लोग इससे टैंक की चेन कह देते हैं, लेकिन ट्रैक सही शब्द है। ट्रैक पर चलने का फायदा ये होता है कि टैंक का वजन जमीन के किसी भी हिस्से पर नहीं पड़ता। टैंक का ट्रैक टैंक के वजन को एक बहुत बड़े सरफेस एरिया में बांट देता है और इसीलिए नम जमीन पर भी 50-50 टन के टैंक कभी नहीं धंसते।
2: टैंकों के अंदर व्हील नहीं होते, क्योंकि व्हील जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि रेतीले इलाके में, दलदल के इलाके में या टूटी फूटी जमीन में चल पाए, इसीलिए टैंकों के अंदर ट्रैक होते हैं और ट्रैक से काबिलियत बढ़ती है टैंक की। टैंक जो है एक प्रकार से रेतीली इलाके में भी जा सकता है और ऐसे इलाके में जा सकता है जहां पर दलदल हो या टूटी फूटी जमीन हो, इसीलिए टैंकों में ट्रैक होता है ना कि व्हील।
1: मौजूदा दौर में कई टैंक्स गहरे पानी तक को पार करने में सक्षम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंक्स बिल्कुल भी नहीं धंसते। टैंक भी फंसते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।
0: टैंक की ताकत को दो चीजों से समझा जा सकता है, पहली है मैन्युवरेबिलिटी और दूसरा है वेट टू पावर रेशो, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि पहली बात, टैंक कितनी स्पीड के साथ चल सकता है, कितनी फुर्ती के साथ ये टर्न कर सकता है, और दूसरी बात उबड़ खाबड़ रास्तों में किस तरीके से टैंक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकता है, यानी चाहे रेगिस्तान हो या ऊंचाई वाले पहाड़, टैंक कितनी ताकत से दुश्मन से लोहा ले सकता है।
1: टैंक का वजन और इसके इंजन की ताकत या पावर के बीच जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पावर टू वेट रेशो। जितना बेहतर पावर टू वेट रेशो होगा उतना ही अच्छा टैंक हो सकता है।
2: तीन रिक्वायरमेंट है टैंक की, इसकी फायर पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इसकी प्रोटेक्शन भी, और तीनों का तालमेल होना चाहिए। देखो अगर आप प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर इसका टैंक का एक प्रकार से वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है तो फिर मोबिलिटी कम हो जाती है और उसकी फायर पावर कैसी होगी वो भी दर्शाता है। तो एक अच्छे टैंक का पहचान यह है कि हर चीज अच्छी हो, उसकी फायर पावर भी बहुत अच्छी हो, वो उसके रेंज पे हिट कर पाए, 100% अपने टारगेट को हिट कर पाए, और इसकी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी हो कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाए, और तीसरा है इसकी प्रोटेक्शन भी हो कि अगर दुश्मन का टैंक या एंटी टैंक वेपन हिट करता है तो वो उसे बचाव कर पाए। तो इन तीनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कि ये ना हो कि टैंक इतना हैवी हो, इतना लाइट ना हो कि उसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी ना हो या उसके अंदर फायर पावर इतनी अच्छी ना, तो तीनों का एक प्रकार संतुलन होना जरूरी है।

0: टैंक को ताकतवर बनाने में उसका फायर पावर भी अहम रोल निभाता है। टैंक की मारक क्षमता को बताने के लिए भी कई इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैनन, यानी कि टैंक पर लगी तोप का साइज कैनन का बोर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा गोला दागने में टैंक सक्षम होगा, यानी जितना बड़ा कैनन होगा वो उतना इफेक्टिव होगा। एक मिनट में कितने गोले फायर किए जा सकते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जितने कम समय में टैंक जितने ज्यादा गोले दागने में सक्षम होगा उससे दुश्मन को बचने का वक्त भी कम मिलेगा और साथ ही उसका नुकसान भी काफी ज्यादा होगा।
1: दुनिया के अंदर जो पावरफुल टैंक हैं वो इस प्रकार से हैं कि यूनाइटेड किंगडम के जो हैं वो चैलेंजर 2 है, जर्मनी का है जो लेपर्ड 2, और इसी प्रकार अमेरिका इब्राहिम M1, और भारत का जो है वो T90 टैंक है, और हमारे पास T72 भी है, और अब विजेंद्रता बनाया है हमने। मगर टैंक की पहचान है कि वो किस प्रकार से गोले दाग सके जल्दी से जल्दी और दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर पाए, तो ये सच्चाई है। आज की तारीख में जो कैनन है उसकी इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि कितनी दूर तक उसके गोले जा सकते हैं और क्या उसकी एक्यूरेसी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये देखना कि वो स्मूथ बोर है उसकी कैनन या नहीं है, मगर सच्चाई यह है कि टैंक की जो फायर पावर है वो दर्शाती है कि टैंक की ताकत कितनी है। तो इसीलिए जो मैंने बताया कि ये आज की तारीख में दुनिया के सबसे अच्छे टैंक हैं, इब्राहिम M1 अमेरिका का, लेपर्ड 2 जर्मनी का, और चैलेंजर 2 UK का, और भारत का T90, T72 और विजेंद्र।

टैंक के लिए जितना अहम कैनन है उतना ही अहम है उसकी मैगजीन का साइज, यानी टैंक कितने गोले लेकर चलता है। ज्यादा गोले का मतलब युद्ध के मैदान में टैंक कितने समय तक दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है, कितनी तरह के गोले इससे दागे जा सकते हैं। इन बातों से टैंक की ताकत को परखा जाता है। आजकल के टैंक तो मिसाइल भी फायर कर सकते हैं।

0: अब टैंक के कितने हिस्से होते हैं और उसका काम और अहमियत क्या है ये भी जान लीजिए। टैंक के दो हिस्से होते हैं, टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को ट्यूरेट कहा जाता है। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। ट्यूरेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगा सकते हैं, जिससे दुश्मन से मुकाबला आसान हो जाता है।
1: ये जो गन कंट्रोल सिस्टम होता है, जायरोस्कोप वेपन स्टेबलाइजर उसको बोलते हैं, इसका काम यह है कि एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फिक्स करके उसके ऊपर ही वहीं पर गन को रखा जाए। तो ये एक सब टैंकों में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टैंक को तो ऊपर या नीचे उबड़ खाबड़ इलाके में चलना ही है, तो उसको एक पहले तो गन कंट्रोल सिस्टम जो है वो आता है, और साथ ही साथ उसके फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जायरोस्कोप जो है वो मदद करती है कि इसको सिंक्रोनाइज करके एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर जहां आपने फिक्स किया है वहां पर उसकी गन की बैरल को रखा जाए।
0: टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम तक पहुंचाना। खुला इलाका या रेगिस्तान, चुनौती काफी बढ़ जाती है। ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल पसर जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर हमला करना मुश्किल हो जाता है।
1: जो स्मोक डिस्चार्ज किया जाता है, स्मोक ग्रेनेड होते हैं हमारे पास, वो स्मोक जो है वो डिस्चार्ज करने के दो पर्पज होते हैं। एक तो अगर टैंक जहां से फायर करता है और स्मोक डिस्चार्ज करके वो वहां से क्विकली गेट अवे करके दूर जा सकता है दुश्मन की नज़र को धोखा देके। दूसरी बात ये होती है कि दुश्मन का रडार या इंफ्रारेड रे से या किसी और तरीके से अगर आपकी पोजीशन ट्रेस करना चाहे, तो ये ऐसे जो स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट किया जाता है उससे उसको चीट किया जा सकता है या उसको मिसगाइड किया जा सकता है। तो ये स्मोक स्क्रीन जो है ये मदद करता है टैंक को अपने आप को दुश्मन की गन से या दुश्मन के अटैक से बचाने के लिए।
0: युद्ध के मैदान में टैंकों के लिए एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल खतरा माना जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत ने एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। अब दुश्मन ने एंटी टैंक मिसाइल से बचने के लिए माइंस प्लगर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत के मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइन प्लगर के पास ही सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर प्लगर की मदद से उसे जमीन से उखाड़ दिया जाता है।
2: सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एंटी टैंक वेपन से भी खतरा होता है टैंक को, और दूसरा टैंक से एंटी टैंक माइंस। एंटी टैंक माइंस है जो दुश्मन लगाता है बैटलफील्ड में, और उसको बचने के लिए क्या किया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखो कई तरीके हैं। एक तो है कि आप ट्रोल्स लगती हैं टैंक के सामने, वो जो ट्रोल्स हैं वो जब चलती हैं तो आगे अगर एंटी टैंक माइन लगी है उसको उखाड़ देती है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल मॉडर्न आधुनिक चीजें आ गई हैं, केमिकल रिएक्टिव केमिकल भी एक प्रकार छिड़का जाता है, जिसके कारण जो भी एंटी टैंक माइन आगे लगे हैं वो सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती हैं। मॉडर्न तरीके काफी आ रहे हैं, मगर ये सच्चाई है कि जो माइंस हैं एंटी टैंक माइंस, वो टैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैटलफील्ड में। इसीलिए नए नए तरीके टैंक निकाले जा रहे हैं, जैसे कि ट्रॉल्स है वो कि एक प्रकार जो टैंक के आगे लगता है, जो अगर टैंक के आगे कोई माइन आती है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, रस्ते में इसे दूर कर दिया जाता है टैंक के। और इसी प्रकार कुछ केमिकल्स भी हैं जो कि स्प्रे किए जाते हैं, जिसके कारण रिएक्शन होने से जो एंटी टैंक माइंस हैं वो पहले ही बस्ट हो जाती हैं टैंक के आने से पहले।
0: टैंक के क्रू मेंबर्स की हिफाजत के लिए एक तो इसके कवच को काफी मजबूत बनाया जाता है, और साथ ही इस पर एक्सप्लोसिव भी लगाया जाता है जो कि दुश्मन के हमले से सुरक्षा मुहैया कराता है। टैंकों के डिजाइन को लेकर भी खास सावधानी बरती जाती है। इसे कर्व जैसा आकार दिया जाता है ताकि गोला बेअसर साबित हो।
1: टैंक की आर्मर जो है ये एक्चुअली काफी मोटी होती है और आजकल कंपोजिट आर्मर जो है ना, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर्स वो भी आ गई हैं। होता यह है कि दो हार्ड जो फेसेस हैं उसके अंदर कंपोजिट बनाने के लिए उसके अंदर एक लो डेंसिटी वाला मटेरियल रखा जाता है। आइडिया ये है कि अगर कोई भी शेल आपके टैंक के ऊपर गिरे तो वो उसको पियर्स ना कर सके, उसके अंदर गोला करके उसके अंदर ना जा सके। तो इसके लिए कंपोजिट आर्मर और आज की टेक्नोलॉजी के युग में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्मर आइडिया

0: टैंक के मेन गन से एमिनेशन यानी कि गोला फायर किया जाता है। इसे फायर करने के दौरान बैरल काफी गर्म हो जाता है और साथ ही बड़ी मात्रा में धुआं और जहरीली गैस निकलती है। ऐसे में खतरा ये रहता है कि बैरल के जरिए धुआं वापस टैंक के अंदर न दाखिल हो जाए, लिहाजा बैरल में एक इवैक्यूएटर बना दिया जाता है जो धुएं और जहरीली गैस को वापस लौटने से रोक देता है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: जापान में टीम इंडिया ने की बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया की यात्रा की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एशियन गेम्स की चैंपियन का जोरदार स्वागत, शूटिंग में एला वेनिल ने देश को दिलाया सिल्वर मेडल, एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल। देवभूमि उत्तराखंड में जारी है बारिश का दौर, केदारनाथ धाम में 24 घंटे से लगातार बारिश, धाम में मौजूद श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। यूपी और बिहार में भी तेज बारिश की चेतावनी, छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी, बाढ़ में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस, जम्मू कश्मीर में सैलानियों का मेला लगा, ओडिशा में भी पर्यटकों की बहार।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे।

देखिए, मानव का जीवन है तो बीमारियां लगी रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। और अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर हम चिकित्सा ज्योतिष की बात करें, तो हर ग्रह से संबंधित कोई ना कोई बीमारी होती है जो व्यक्ति को लगती है, परेशान करती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपको किस तरह की बीमारियां देता है या दे सकता है, और उन बीमारियों को दूर करने के ज्योतिष में क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, शरीर की हो, मन की हो, धन की हो, आध्यात्मिक दिक्कत हो, किसी भी तरह की बाधा को दूर करने का महाशक्तिशाली मंत्र है। रोज सुबह और शाम भगवान कृष्ण का स्मरण करके तुलसी या चंदन की माला से इस मंत्र को जपना चाहिए। ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय ये मंत्र पढ़ते रहिए। मन भी पवित्र होगा और जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। मंत्र मैं फिर से दोहरा देता हूं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं 9 ग्रहों की बीमारियों के बारे में, और उन बीमारियों से बचने और दूर करने के छोटे छोटे उपायों के बारे में। आपको जो बीमारियां होती हैं उनका ग्रहों से और भाग्य से क्या संबंध है? देखिए, शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 धातुएं होती हैं, कफ, वात और पित्त। ये 5 तत्व और 3 धातुएं 9 ग्रहों से और 12 राशियों से कंट्रोल होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होती है तब शरीर में बीमारियां आने लगती हैं, और जब कोई एलिमेंट बिगड़ जाता है तो बीमारियां लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करती हैं। छोटी हो या बड़ी बीमारी हो, हर बीमारी इन 9 ग्रहों से, कुंडली के भाव से और राशियों से संबंध रखती है। अगर आप ग्रहों को बेहतर करें तो उनसे कनेक्टेड राशियां बेहतर होंगी, और अगर ग्रह और राशियां बेहतर हो जाएंगी तो आप अपने शरीर की बीमारियों को बड़ी आसानी से दूर कर पाएंगे। तो आपको आज के कार्यक्रम से ये समझना होगा कि किस ग्रह की वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं और उन बीमारियों को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य से संबंधित बीमारियां कौन सी हैं? देखिए, सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा जाता है। कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, हर ग्रह की शक्ति के पीछे जो ग्रह होता है वो दरअसल होता है सूर्य। आपके ओवरऑल कुल मिला जुला के स्वास्थ्य का जो मालिक है वो सूर्य है। इसीलिए अगर कुंडली में सूर्य प्रबल होता है तो सामान्यतः जीवन में बीमारियां नहीं होती। सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ है तो आपको बीमारियां देगा। सूर्य के कारण हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या होती है। हृदय रोग, ट्यूबरक्लोसिस टीबी और पाचन तंत्र, पेट के रोग के पीछे सूर्य की बड़ी भूमिका होती है। सूर्य शरीर के फायर को कंट्रोल करता है और शरीर को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए अगर सूर्य बिगड़ेगा तो फायर बिगड़ेगा, और फायर अगर बिगड़ेगा तो सबसे बुरा असर आपकी आंखों, आपके हृदय पर पड़ेगा और पेट में, शरीर में पित्त की मात्रा, गर्मी की मात्रा बढ़ेगी, डाइजेशन चौपट हो जाएगा। तो अगर सूर्य गड़बड़ है तो आप मान के चलिए कि तीन चीजों से आप सतर्क रहिए, हृदय का रोग, हड्डियों का रोग और आंखों का रोग। ये तीन होने की पॉसिबिलिटी आपके लिए ज्यादा है। क्या उपाय किया जाए? अगर सूर्य का रोग हो गया हो या होने की संभावना हो तो क्या उपाय करेंगे? सुबह जल्दी सोकर उठने का प्रयास करिए। सुबह जितना जल्दी सोकर उठेंगे उतना बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। भोजन में गेहूं की दलिया जरूर खाएं और तांबे का एक गिलास या तांबे का एक लोटा अपने पास रख लें। तांबे के पात्र से आपको जल जरूर पीना है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद कम से कम 2 से लेकर 5 मिनट तक सूर्य की रोशनी में बैठिए अपनी पीठ करके। ये बड़ा अचूक तरीका है। पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी, पूरे शरीर में शक्ति आएगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या बीमारियां देता है या दे सकता है? देखिए, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। जैसे सूर्य आपके फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे चंद्रमा आपके मन को, आपके मेंटल लेवल को कंट्रोल करता है। व्यक्ति के मन और सोच को नियंत्रित करता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ है व्यक्ति का तो मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये सब होने की संभावना बनती है।
और चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा तो आपका दिमाग हमेशा चलता रहेगा, आपका दिमाग हमेशा सोचता रहेगा और चिंताएं आपको परेशान करती रहेंगी, आप हमेशा तनाव में बने रहेंगे। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप टेंशन पाले रखेंगे। चंद्रमा के गड़बड़ होने से नींद की समस्या, घबराहट बेचैनी की समस्या, एपिलेप्सी की समस्या, ये समस्या होने की संभावना बन जाती है। यानी चंद्रमा आपके मन की खुशियों पर, आपके सोच पर और आपके तनाव पर असर डालता है। जिन लोगों को मानसिक रोग है या जिन लोगों की मानसिक बीमारी की दवा चल रही है, 80% मामले में मान लीजिएगा कि उनका चंद्रमा गड़बड़ है। क्या उपाय करें अगर चंद्रमा की समस्या हो या होने की संभावना हो? देर रात तक मत जगिए। लेट नाइट तक जगना, रात में जगे रहना, रात में टहलते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना, ये चंद्रमा को खराब करेगा। महीने में एक पूर्णिमा आती है और दो एकादशी आती है, तो पूर्णिमा का या एकादशी का उपवास आपको जरूर रखना चाहिए अगर आप चंद्रमा को बेहतर करना चाहते हैं। नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करें। एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन अपने गले में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चंद्रमा अगर आपको बीमार कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाने में मत शर्माइए कि मैं कैसे किसी मनोचिकित्सक के पास चला जाऊं। मनोचिकित्सक के पास जाइए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी मानसिक बीमारी हो सकती है, तो मनोचिकित्सक के पास जाइए, उनसे दवाई और सलाह लीजिए और जो उपाय आपको बताए गए हैं उनको ठीक से करिए, आप बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल की, बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है बीमारियों के मामले में, क्योंकि मंगल जो है ना वो आपकी सुरक्षा है, आपका डिफेंस सिस्टम है। मंगल को सेनापति कहा जाता है क्योंकि ये आपके जीवन को, आपको रोग बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, आपकी सुरक्षा करता है। मंगल मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है। मंगल को ज्योतिष की पुस्तकों में कहा गया है कि ये मसल्स का स्वामी है। आपके शरीर की जो पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनका स्वामी है मंगल। और जो बोन मैरो है, जो शरीर का केंद्रीय प्राण है, जो शरीर के साइकिल को बदल सकता है, आपका बोन मैरो, उसका स्वामी है मंगल। मंगल रक्त की समस्या देता है, बोन मैरो की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, दुर्घटना की समस्या और ऑपरेशन जैसी नौबत
सर्जरी जैसी नौबत मंगल जीवन में ले आता है। वैसे तो देखिए ब्लड प्रेशर के लिए ज्यादा भूमिका होती है चंद्रमा की, लेकिन मंगल भी कभी कभी हाई बीपी के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार होता है। जिन लोगों को जल्दी जल्दी बुखार होता है उसके पीछे भी आम तौर पर मंगल की गड़बड़ी होती है। मंगल त्वचा में इन्फेक्शन पैदा करता है, चेहरे पर, शरीर पर चोट के या कटे फटे के निशान देता है। या बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि दवाई खाए और रिएक्शन हो गया, उसके पीछे होता है मंगल। लेकिन एक लाइन में आप समझिए, आपकी बीमारियों से जो ग्रह सुरक्षा करता है, आपको बीमारियों से बचाता है और आपको स्वस्थ बनाए रखने में सपोर्ट करता है, वो है मंगल। तो अगर मंगल की वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं, आपको मसल्स की प्रॉब्लम है, बोन मैरो की प्रॉब्लम है, या रक्त की दिक्कत है, या बार बार सर्जरी होती है, बार बार चोट चपेट लगती है, तो क्या करेंगे? मंगलवार का उपवास रखिएगा। मंगलवार का उपवास रखें, हनुमान जी और कुमार कार्तिकेय की पूजा करें और इस दिन नमक का सेवन मत करें। मंगल अगर गड़बड़ है तो चीनी खाने की बजाय आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से जमीन पर सोइए, दरी डालकर या बिस्तर डालकर, या लो फ्लोर के पलंग पर सोना भी अच्छा रहेगा। एक मिट्टी का मटका मंगवा लीजिए, घड़ा, और उसमें जल भर करके रखिए। मिट्टी के मटके का जल, घड़े का जल पीने से मंगल बड़ा बैलेंस हो जाता है। जल माने चंद्रमा और मिट्टी माने मंगल, तो मंगल का जो अप्रोच है वो सॉफ्ट हो जाता है। जीवन की दुर्घटनाएं, उठा पटक, उतार चढ़ाव से आप बच जाते हैं। बात करते हैं बुध की। बुध जो है ना वो कम्युनिकेशन का मालिक है। सेंसरी ऑर्गन्स जिसको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं आप, कान, नाक, जिह्वा, जबान, आंखें और त्वचा, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपकी, सेंसरी ऑर्गन्स हैं आपके, ये होते हैं बुध के। और बुध भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालता है। मंगल जितना तो नहीं डालता, लेकिन मंगल के बाद अगर देखें तो बुध आपको थोड़ा स्वस्थ बनाता है। क्योंकि अगर बुध गड़बड़ हुआ ना तो आपको फ्रीक्वेंट बीमारी होगी, फ्रीक्वेंटली एलर्जी हो जाएगी या इन्फेक्शन वाली बीमारियां आपको परेशान करेंगी। जैसा बताया कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का मालिक है। शरीर में जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो होता है कान, नाक और गले से। बोलना, सुनना, ये सब कहाँ से होता है? ENT से। और ENT का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो है बुध। बुध जो है वो आपकी त्वचा का भी मालिक है। इसीलिए त्वचा के जो रोग हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बुध की वजह से पैदा होती है। और बुध एलर्जी भी देता है। एलर्जी की शिकायत, मौसम बदलने पे आपको छींके आने लगती हैं, बुध है उसके पीछे। और बुध की एक और बड़ी मुश्किल है भाई,
बुध जो है ना, अगर कमजोर होगा तो आपको सूंघने में दिक्कत होगी, आपकी जो घ्राण शक्ति है, सूंघने की जो ताकत है वो कमजोर होगी। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कुछ सुंघाई नहीं देता या मुझे कुछ अनुभव नहीं होता सुगंध का, बुध खराब है। जिनको ऊंचा सुनाई देता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, बुध गड़बड़ है। कान, नाक, गला और आपकी त्वचा के अलावा जो एलर्जी की समस्या है उसके पीछे है बुध। क्या उपाय करना चाहिए? भोजन में सलाद का और हरी सब्जियों का प्रयोग आपको करना चाहिए। भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का प्रयोग करने से बुध बेहतर होगा। रोज सुबह जल चढ़ाएं सूर्य को तो बहुत अच्छा, और न चढ़ा पाएं तो सूर्य की रोशनी में, उगते हुए सूर्य की रोशनी में कुछ देर पीठ करके अगर आप बैठें तो अच्छा रहेगा। प्रातः काल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करें। गायत्री मंत्र का जप करने से, या ऐसा देखा गया है कि किसी मंत्र का नियमित जप करने से भी बुध अनुकूल हो जाता है। बुध को नियंत्रित करने के लिए, अगर बुध आपका खराब है, आपको बहुत बीमारियां दे रहा है, तो भगवान विष्णु की उपासना करने से बुध को कंट्रोल कर पाना, बुध को शांत कर पाना आसान होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति कौन सी बीमारियां देता है? देखिए, बृहस्पति को ज्योतिष में जीव कहा जाता है, बचाने वाला, आदमी को मौत के मुंह से निकाल कर लाने वाला जो ग्रह है ना, वो बृहस्पति है। अगर बृहस्पति शुभ में हो गया, अनुकूल हो गया, तो जीवन में कितनी भी बीमारियां हों, कितनी भी मुश्किलें हों, हर बार आप बच के निकल आएंगे। तो बृहस्पति व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, और अगर बृहस्पति खराब हो गया ना, तो भयंकर बीमारियां भी आपको जीवन में देता है। कैंसर की बीमारी, लीवर की, हेपेटाइटिस की बीमारी और पेट की गंभीर बीमारी बृहस्पति जीवन में प्रदान करता है। बृहस्पति लीवर का स्वामी है, मोटापे का स्वामी है, इसीलिए अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो लीवर में दिक्कत आएगी, मोटापा बढ़ेगा। अगर आपका लीवर फैटी है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो आप ये समझ जाइए कि आपका बृहस्पति जरूर गड़बड़ होगा। बिना बृहस्पति के गड़बड़ हुए पेट की या लीवर की गंभीर बीमारी नहीं होती है। बृहस्पति छोटी बीमारी नहीं देता, जैसा इसका नाम है गुरु, गुरु माने बड़ा, तो बृहस्पति अगर बीमारी देगा तो वो बड़ी बीमारी देगा, और उसका इलाज लंबे समय तक चलेगा, उसका कष्ट लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। तो अगर बृहस्पति से संबंधित बीमारी आपको हो रही है या बृहस्पति से संबंधित बीमारी होने की संभावना है, तो क्या उपाय करेंगे? सुबह के समय जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। प्रातः काल हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। शुद्ध सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को पहनिए, और अगर छल्ला नहीं पहन पाते, महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनिएगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद जरा सा हल्दी का तिलक लगाइएगा अपने माथे पर और अपने कंठ पर। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। रोज सुबह पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो काफी फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। आज के समय में सबसे ज्यादा बीमारियां या तो बृहस्पति दे रहे हैं या शुक्र दे रहे हैं। देखिए, जिन बीमारियों में प्यास लगे या जिन बीमारियों में डॉक्टर कह दे कि पानी एक ही लीटर पीना है दिन भर में, पानी से संबंधित, प्यास से संबंधित जो बीमारी हो उसके पीछे होगा शुक्र। शुक्र शरीर के रसायन को नियंत्रित करता है, शरीर के केमिकल बैलेंस को कंट्रोल करता है। शुक्र की वजह से हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज में देखिए प्यास बहुत लगती है, मधुमेह की समस्या, डायबिटीज की समस्या होती है, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मूत्र विकार की समस्या, ये सब शुक्र देता है। और शुक्र यौन रोग, सेक्सुअल डिजीज भी देता है। हालांकि एसटीडी में, सेक्सुअल डिजीज में चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यूरिन, किडनी, प्रोस्टेट, इससे संबंधित बीमारी, डायबिटीज, एक आंख को प्रभावित कर देना, इन सब के पीछे शुक्र है। और शुक्र ज्यादा निगेटिव होगा ना तो आंखों की लेंस पे असर डाल देगा, लेंस डिटैच हो जाएगा, रेटिना में प्रॉब्लम आ जाएगी। और शुक्र जब आंखों पे असर डालता है तो एक आंख की रोशनी कम होती चली जाती है। तो अगर आपको शुक्र की बीमारी हो गई है या शुक्र की बीमारी होने की संभावना है तो क्या करना चाहिए? दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। दही खाने से लाभ होगा, लेकिन दोपहर के भोजन में खाएंगे तो ही अच्छा होगा। चावल, चीनी और मैदा, ये आपको कम से कम खाना चाहिए। भोर में उठ करके सुबह के समय अगर आप टहलें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक सफेद स्फटिक की माला अगर आप अपने गले में धारण कर लें तो इससे भी शुक्र बैलेंस होगा, शुक्र की बीमारियां कम हो जाएंगी। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर जीवन में कोई भी बीमारी आ गई, कोई भी कष्ट आ गया तो उसके पीछे शनि है, शनि को दोष देना शुरू कर देते हैं। देखिए, शनि ही हर बार बीमारी नहीं देता, शनि आयु बढ़ाता भी है, आयु को बैलेंस भी करता है। शनि बड़ा फेवरेबल प्लेनेट होता है और अगर अनुकूल हो जाए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप हर तरीके से जीवन में सफल भी होंगे। शनि और बीमारियों का क्या मामला है? देखिए, शनि के कारण अगर बीमारी होती है तो लंबे समय तक चलती है, आर्थराइटिस होना, बेड रिडन हो जाना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, स्पाइन या लोअर बैक की दिक्कत होना, इन सब के पीछे शनि है। शनि आपके नर्वस सिस्टम को, आपके स्नायु तंत्र को कंट्रोल करता है और शरीर में पेन की समस्या, दर्द की शिकायत देता है। शनि अगर गड़बड़ हो गया तो आपका चलना फिरना रुक जाएगा, चलना फिरना रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बेड रिडन हो जाएंगे, फ्रैक्चर हो गया पैर में, पलंग पे पड़े हुए, उसके पीछे शनि होगा।
क्योंकि ये चलना फिरना रोक देता है और आम तौर पर शरीर को विकृत या टेढ़ा मेढ़ा बना देता है। देखिए बृहस्पति की बीमारी का मतलब ज्यादा खा खा के बीमार हो गए, अति पोषण से बीमार हुए, और शनि का मतलब कुछ खाते ही नहीं है, यानी पोषण न्यूट्रिशन कम है इसलिए बीमार हो गए। दोनों में बड़ा फर्क है समझिएगा। तो अगर शनि की बीमारी है आपको या होने की पॉसिबिलिटी है तो क्या करेंगे, सात्विक और सादा भोजन नियमित रूप से ग्रहण करिए। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग आपको करना चाहिए। एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा और दिन में खासतौर से सुबह के समय जब मौका मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठिए, भगवान के नाम का जप करिए या ध्यान लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की बीमारियों से अगर बचना है, एक लाइन में जानिए, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु कैसी बीमारियां देता है? राहु जो बीमारियां देता है वो रहस्यमयी बीमारियां होती हैं। डॉक्टर कहते हैं आपको कोई ऐसी बीमारी है जो लाखों में किसी एक को होती है। अजीब टाइप की बीमारी जो होती है वो देता है राहु। इसकी बीमारियां शुरू में तो छोटी होती हैं, शुरू में पता भी नहीं चलती, आदमी को लगता है कुछ रिपोर्ट आ नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ दो। बाद में बीमारियां बड़ी और गंभीर हो जाती हैं। और राहु अगर बीमारी देगा ना तो आपको कारण पता ही नहीं चलेगा, इसका कारण अज्ञात रहेगा, इसका कारण आप नहीं जान पाएंगे। और ज्यादातर राहु वालों में देखा गया है कि राहु अगर बीमारी देता है तो बीमारी अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। जितना दिन आदमी को कष्ट भोगना है वो भोगता है, डॉक्टर भी क्या करे, क्योंकि बीमारी का डायग्नोसिस ही नहीं होता, बीमारी पकड़ में ही नहीं आती, आपकी बीमारी चलती रहती है, आप कष्ट पाते रहते हैं। जब राहु का प्रभाव कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आपको राहु की बीमारी हो गई है, बीमारी का पता ही नहीं चल रहा और आप बीमारी झेल रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे, चंदन की सुगंध का जरूर प्रयोग करिए। चंदन की फ्रेग्रेंस का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होगा। गले में एक तुलसी की माला पहन लें और आहार बिल्कुल सात्विक रखें, मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। चमकदार नीले रंग का, ब्राइट ब्लू कलर का आप जितना प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु किस तरह की बीमारियां देता है? देखिए राहु और केतु का जो नेचर है वो बड़ा मिलता जुलता है, हालांकि कुछ मामलों में अंतर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो राहु से मिलती जुलती हैं केतु की। जैसे केतु भी रहस्यमयी बीमारियां देता है। आम तौर पर केतु त्वचा की दिक्कत, रक्त की अजीब बीमारियां और केतु यूरिन, किडनी और खास तौर से गाल ब्लेडर में स्टोन आ जाए, किडनी स्टोन आ जाए, यूरिन में प्रॉब्लम आने लगे या त्वचा में गंभीर दिक्कतें आने लगे तो इसके पीछे केतु होता है। जैसे राहु की बीमारियां पकड़ में नहीं आती, वैसे केतु की बीमारियां भी जल्दी पकड़ में नहीं आती। हालांकि केतु की बीमारियों में ये है कि अगर आप थोड़ा पवित्रता से रहने लगिए तो छुटकारा जल्दी मिलता है, राहु वाले में छुटकारा पाने में वक्त लगता है। केतु जो है ये कल्पना की बीमारियां भी देता है, इमेजिनेटरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कोई नहीं है,
लेकिन आपको बीमारियों का, समस्याओं का अनुभव होता रहता है। बीमारियों को लेकर के आप लगातार सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि सर आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, बस अब आपको टेंशन हो गई कि मेरी किडनी खराब होने वाली है। ये जो काल्पनिक चिंताएं हैं, इसके पीछे भी ज्यादातर केतु होता है। तो अगर केतु की बीमारियां हैं आपको या होने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या करें भैया? रोज सुबह नहाना बहुत जरूरी है। रोज सुबह उठ के पवित्र तरीके से, साफ सुथरे तरीके से नहाइएगा। धर्म स्थान पर या धर्म सभाओं में जरूर जाइए, पवित्र नदियों में डुबकी लगाइए। बड़ा फायदा होगा केतु की समस्या को दूर करने में। और मंदिरों में जाके दर्शन जरूर करिए, खास तौर से शिव मंदिर में और गणपति के मंदिर में। सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार निर्धनों को भोजन कराइए, बहुत अच्छा होगा। और महीने में एक बार कुछ ना कुछ गुप्त दान करिए, गौशाला में कर दें, किसी अनाथालय में कर दें, आश्रम में कर दें। और प्रचार मत करिए, बताइए मत कि आपने दान किया है, गोपनीय दान करिए। ऐसा करने से केतु की बड़ी शुभता मिलेगी और केतु से संबंधित बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो देखिए, अलग अलग जो ग्रह हैं वो अलग अलग बीमारियां आपको देते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, तो तीन काम आपको जरूर करने चाहिए। पहला काम, रोज सुबह जितना जल्दी संभव हो उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से लाभ होगा। दूसरा काम, सुबह के समय नारायण कवच का या देवी कवच का पाठ करें या सुने। और तीसरा काम, सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार खाने पीने की वस्तुओं का, अन्न का किसी निर्धन को दान करें। अगर ऐसा निरंतर आप करते जाएं, अगर ऐसा लगातार आप करें और थोड़ा सा अपना खान पान संभालें, तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो आने वाला सप्ताह आपका शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों की उलझने। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गई भारतीय क्रिकेट टीम के बुलेट ट्रेन में सफर की तस्वीरें। जापानी अंदाज में सफर करते हुए श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी वाली भारतीय क्रिकेट मेंस टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को टोक्यो से नागोया पहुंच गई। टोक्यो से नागोया तक का यह सफर टीम ने जापान की मशहूर नोजोमी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से तय किया। सफर के दौरान सभी खिलाड़ी बेहद आरामदायक मूड में नजर आए और उन्होंने इस हाई स्पीड ट्रेन यात्रा का जमकर लुत्फ उठाया। बीसीसीआई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपने सफर की शुरुआत कल 28 सितंबर से करने वाली है। भारतीय टीम की पहली टक्कर अफगानिस्तान से होगी। इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले बुलेट ट्रेन में उनके सफर की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें खिलाड़ी मौज मस्ती करते हुए नजर भी आ रहे हैं।
8: Beautiful. Konnichiwa Nagoya.

0: मिसू,
1: नो आइडिया.
0: इज इट मिसू मींस इज इट बाय?
2: नाम से ऐसा लग रहा है कि
3: एक्सक्यूज मी
4: इज वंडर.
0: सुमिमा से
5: सुमिमासा
2: थैंक
5: वही वही ना वही जो बोल
2: नहीं नहीं अरे सुमिमा से
4: ये तो भी सुना मैंने पीछे आवाज आके एक्सक्यूज मी.
6: वाओ
0: अरे भाई लेकिन ये तो पूरी कहीं ना कहीं देखा हुआ कह रहे.
1: ट्रेन बुलेट ट्रेन
0: बुलेट ट्रेन.
7: और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के रंग में रंगने वाली दिल्ली की. अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, संगीत और व्यंजनों के सांस्कृतिक केंद्र दिल्ली हाट में बंगाल की संस्कृति का उत्सव जारी है. शारदीय नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली हाट में बंगाल प्री पूजा एक्सपो चल रहा है, जहां पारंपरिक लाल सफेद साड़ियां, विशेष कलाकृतियां और मिट्टी से बने आभूषण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. यहां पश्चिम बंगाल के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है. 30 सितंबर तक दिल्ली हाट जाने पर आपको बंगाल से जुड़ा हर रंग देखने को मिलेगा.

0: त्योहार हो या धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे अवसरों पर श्रृंगार और सजने संवरने की परंपरा का गहरा महत्व है। श्रृंगार से त्योहारों की रौनक और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कई त्योहार आ रहे हैं, जिनमें शामिल शारदीय नवरात्रि का पर्व भी बेहद खास है, जिसके आते ही वातावरण में एक अलग तरह की भक्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा खुल जाती है। नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना और उनके नौ स्वरूपों को पूजने का त्योहार है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन होता है, जिस पर हर तरफ माता के जयकारे गूंजने लगते हैं। माँ दुर्गा यानी माता रानी के जयकारों की गूंज सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को उत्साह, उमंग और उल्लास से भर देती है। पावन त्योहार शारदीय नवरात्रि अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हालांकि दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भव्य तरीके से सजने संवरने और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत मौका भी होता है। नवरात्रि के दौरान सुबह के अंजलि अनुष्ठान से लेकर रात में पंडाल घूमने तक हर समय के लिए अलग और खास लुक अपनाया जाता है। इसलिए दुर्गा पूजा से पहले ही दिल्ली पर बंगाल का पारंपरिक और सांस्कृतिक रंग चढ़ने लगा है। दिल्ली हाट में बंगाल प्री पूजा एक्सपो चल रहा है, जहां बंगाल की सांस्कृतिक रौनक और पारंपरिक कला देखने लायक है। वहां की हस्तकला अपनी अनूठी संस्कृति, सुंदरता और समृद्ध परंपरा के लिए मशहूर है। इन्हीं में से एक टेराकोटा ज्वेलरी है, जिन पर होने वाले रंग भी इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल है। पूजा में परंपरा को बरकरार रखने के लिए बेहद खास रानी हार है। इस मिट्टी की ज्वेलरी में दुर्गा माँ की छवि दिखना भी विशिष्ट है।
1: यहाँ पर कुछ चीजें आपको इतनी खास मिलेंगी कि आप उन्हें लेने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत खास चीज दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये इयररिंग्स हैं महिलाओं की, और देखने में आपको सिंपल सी लग सकती है, लेकिन खास बात है इनकी। क्या खास बात है इनकी? खास बात ये है कि ये मिट्टी के बने हुए हैं, और ये उस मिट्टी से बनाए गए हैं जिस मिट्टी से बंगाल में दुर्गा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। अब आप सोचिए कि इसके मायने कितने अलग हो गए हैं, खासकर जब आप पूजा के लिए, दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए आप शॉपिंग करने आए हो। नीलम शॉ जी मेरे साथ में हैं। मैम, अब क्या कुछ लेकर आई हैं?
2: मिट्टी के ज्वेलरी हैं, टेराकोटा, उसे हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है, हमारे बंगाल में टेराकोटा बोलते हैं। और ये जो कलरिंग वाले सामने, ये केमिकल बीट्स के बने हुए हैं, ये भी चल रहा है। यहाँ का डिमांड
1: जितने दिन की होती है, क्या अलग अलग दिन के हिसाब से भी लोग ज्वेलरी पहनते हैं?
2: हाँ हाँ, ये भी है। जैसे मैं फूल लाई थी, आज तो खत्म हो गया, वो बालों में लगाने के लिए, हल्दी मेहंदी, उन सब रस्मों के लिए। अभी है छोटे वाले फूल बचे हुए हैं, बड़े वाले सब निकल गए।
0: दुर्गा पूजा में लाल और सफेद रंग की साड़ी पहनने की परंपरा है, जिसे बंगाल के लोग लाल पाट साड़ी भी कहते हैं, जो बंगाली संस्कृति और परंपरा का सबसे खास और पवित्र प्रतीक मानी जाती है, जिसे मटका सिल्क, कोरा सिल्क, गरद या टसर सिल्क फैब्रिक में भी चुना जा सकता है।
1: दुर्गा पूजा में जो साड़ियां महिलाएं पहनती हैं, उनमें व्हाइट और रेड कलर की जो साड़ी होती है, वो सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है, सबसे ज्यादा वो डिमांड में भी होती है। तो जब आप दिल्ली हाट आएंगे, तो आपको यहाँ पर इस रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन की बहुत सारी वैरायटीज मिलने वाली हैं। रूपाली जी और पीपा शाह जी मेरे साथ में हैं, और दोनों ही वेस्ट बंगाल से हैं, और क्या शानदार कलेक्शन लेकर आए हैं। आप ये साड़ी देखिए, ये रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है, और इस पर दुर्गा माँ की जो छवि है वो भी बनी हुई है, और बिल्कुल हाथ से ये सारा काम किया गया है। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि रेड और व्हाइट सबसे ज़्यादा शुभ होता है पूजा के लिए, तो कितने तरह की रेड और व्हाइट साड़ी हैं आपके पास?
3: ये सिल्क कॉटन आएगा, ये सब दुर्गा माँ के लिए। रेड ब्लाउज पीस आएगा, रेड और पल्लू, और बॉडी से व्हाइट आएगा।
1: ये सिल्क में
3: है, सिल्क के गौरद बॉर्डर।
1: क्या है?
4: गौरद का साड़ी है, सिल्क।
3: सिल्क साड़ी का नाम गौरद साड़ी, साड़ी का नाम
4: सिल्क,
3: गौरद साड़ी बहुत चलती है पूजा कर लिए।
0: आमतौर पर दिल्ली हाट में पुरुषों के लिए कुछ खास नहीं मिलता है, लेकिन इस एक्सपो में शादी ब्याह के पारंपरिक कपड़ों के अलावा नवरात्र समेत दूसरे त्योहारों के दौरान पुरुषों के पहनने के लिए ब्रोच भी है।
5: ब्रोच है जैसे पुरुष के लिए, वो बंगाली में जो पंजाबी और कुर्ता पंजाबी बोलते हैं, उसमें त्योहार के समय ये पहन सकते हैं आप लोग।
1: तो कुछ ट्राई करेंगे मुझे आप? चलिए निकालते हैं फिर। देखिए, बहुत सारे ब्रोच है, और मैंने भी इत्तेफाक से आज कुर्ता पहन रखा है, हालांकि लॉन्ग कुर्ता नहीं है, शॉर्ट कुर्ता है। कुछ चीजें मैं ट्राई करता हूँ। ये ट्राई करें,
5: ये भी पहन सकते हैं।
1: निकालिए आप, निकालिए।
5: हाँ, ये भी पहन सकते।
1: ये क्या है?
5: ये लक्ष्मी जी का सवारी, हमारी आउल पैचा।
1: आप लगाएंगे? ठीक है। ये किस चीज के बने हुए हैं?
5: काट का, ऊंट का है, लकड़ी का है और हैंड से स्केच किया हुआ है।
1: लकड़ी का है और हैंड से इसको स्केच किया। आपने अपने हाथ से किया?
5: नहीं नहीं, ये लोग बनाते हैं, जो लोग काम करते हैं इसमें ऊपर।
1: अच्छा, अच्छा लग रहा है। ये रिंग है,
5: रिंग है।
1: और वाकई जब ये पहनेंगे आप तो बहुत सुंदर लगे, बहुत ट्रेडिशनल भी लग रही है।
5: एक रूप होता है ना, बड़न जो होता है ना, वधू बड़न, माँ का जो बड़न होता है ना दशमी के दिन, उससे उसी रूप से ये गमछे के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बनाया मैंने।
1: ये भी गमछा माँ का जो ट्रेडिशनल गमछा।
5: हाँ, इसके ऊपर ही मुझे प्राइज मिला है माँ के ऊपर।
0: नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा के भव्य श्रृंगार की परंपरा है। ऐसे में माँ के भक्त भी सज संवर कर उनकी आराधना करते हैं और अद्भुत जोश और उत्साह से नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों की उलझने। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: जापान में टीम इंडिया ने की बुलेट ट्रेन की सवारी। बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो टोक्यो से नागोया की यात्रा की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एशियन गेम्स की चैंपियन का जोरदार स्वागत किया गया। शूटिंग में एला वेनल ने देश को दिलाया सिल्वर मेडल। एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल। देवभूमि उत्तराखंड में जारी है बारिश का दौर। केदारनाथ धाम में 24 घंटे से लगातार बारिश। धाम में मौजूद श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। यूपी और बिहार में भी तेज बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी। बाढ़ में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस। जम्मू कश्मीर में सैलानियों का मेला लगा। उड़ीसा भी पर्यटकों से गुलजार हुआ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया टोक्यो से नागोया पहुंची। अय्यर की कैप्टनसी वाली टीम ने बुलेट ट्रेन से सफर किया। भारतीय खिलाड़ियों ने नोजोमी शिंकानसेन में सफर कर उठाया लुत्फ। सफर के दौरान बेहद रिलैक्स्ड और मस्ती के मूड में नजर आए खिलाड़ी। बुलेट ट्रेन में टीम इंडिया के सफर की तस्वीरें सामने आई। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर की। एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से होगा भारतीय टीम का पहला मैच। 28 सितंबर को होने वाले मैच के लिए टीम पूरी तरह से तैयार। अलीगढ़ में धावक गुलवीर सिंह के परिवार ने मनाया जश्न। मेडल जीतने की खुशी में महिलाओं ने जमकर डांस किया। देश के कई राज्यों में जमकर हो रही है बारिश। कई जगहों पर आईएमडी का रेड अलर्ट। अर्नब चक्रवात के चलते बदला मौसम। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में करीब 48 घंटे से लगातार बारिश जारी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। वाराणसी में साइक्लोन अर्नब के चलते जोरदार बारिश, तेज रफ्तार से चली हवाएं। यूपी के प्रयागराज में 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी। आज के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी। यूपी के उन्नाव में जोरदार बारिश के चलते जगह जगह पर भरा पानी। हाईवे पर नदी जैसा नजारा दिखा। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के बीच सांसद रवि किशन के आवास के बाहर भरा पानी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फरुखाबाद में बारिश के चलते रेलवे की रफ्तार पर भी असर पड़ा। ट्रैक पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश का दौर जारी। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। यूपी के बाराबंकी में मूसलाधार बारिश से गिरे कई पेड़। कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ। पीलीभीत में 48 घंटे से बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर देखने को मिला। गांव गांव पुलिस का अलर्ट जारी। शारदा नदी पर प्रशासन की नजर। यूपी की राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश जारी। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल में भी उफान पर आई नदियां। कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। नेपाल और बिहार के बॉर्डर के इलाकों में राहत बचाव का काम जारी। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। नेपाल बिहार बॉर्डर पर भी दिखा बाढ़ का असर। कई जगहों पर फसलें डूबी। रायगढ़ में महानदी में उफान आया। गंगरेल बांध के 14 गेट खोले गए। शिवरी नारायण का संपर्क टूटा।

0: झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश, सड़कों और मकानों पर भारी पानी। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। रांची के ग्रामीण इलाके जोन्हा में लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए पहुंचे रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी, बाढ़ में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू। बस्तर के जगदलपुर में 5 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, बाढ़ के हालात बने। डोंगा घाट में बाढ़ के बीच 80 से ज्यादा लोग फंसे हुए दिखे, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के चलते अभी तक केदारधाम यात्रा पर रोक जारी है, सोनप्रयाग के रोके गए हैं हजारों यात्री। बारिश के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में ही रुके, प्रशासन को मौसम के ठीक होने का इंतजार है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी मौसम ने करवट ली, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी से बढ़ी ठंड, 10 अक्टूबर तक चलेगा हेमकुंड साहिब की यात्रा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों की उलझने। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ। ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: एशियन गेम्स में भारत को मिला एक और सिल्वर मेडल। स्क्वाश में अभय सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। भारत के खाते में अब तक 31 मेडल्स आए। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। देवभूमि उत्तराखंड में जारी है बारिश का दौर। केदारनाथ धाम में 24 घंटे से लगातार बारिश, धाम में मौजूद श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। यूपी बिहार में तेज बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी। बाढ़ में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छे।
5: दोस्तों, मैं हूँ रिंकी भाभी और लेकर आई हूँ आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। सीरियल्स का सस्पेंस हो, रियलिटी शोज का हंगामा या फिर वेब सीरीज का तड़का, सास बहू और बेटियां के इस शो में आपको मिलेगी मनोरंजन की हर खबर। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें।
6: तुम्हारे बदन की महक खाब सी है।
7: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, फूट फूट कर रोएगा एक माँ का दिल, अरमान बनेगा अभीरा का सहारा, तो हीरे में होगी संजू और वृंदा की लुका छुपे। वसुधा के ससुर जी की खतरे में होगी जान, चंद्रिका के घर पर होगी मुंडवा परिवार की एंट्री।

0: वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 में लगेगा सितारों का मेला।
1: तुम भी तो हो हंसती गाती लड़कियाँ, खिलखिलाती लड़कियाँ, चाहती सब क्या है ये सुनो।
0: अली बाबा और 40 भूत के कलाकार यानी कि आशा विशाल संग होगी ढेर सारी मस्ती।

सीरियल वसुधा में खतरे में है प्रभात की जिंदगी और इसे लेकर चंद्रिका और वसुधा काफी परेशान हैं। ऐसे में मुंडवा गांव से होती है एक ऐसी फैमिली की एंट्री जो लाएगी कहानी में ट्विस्ट। कैसे, चलिए देखते हैं।

0: जिंदगी और मौत से लड़ता प्रभात। चंद्रिका और वसुधा की टेंशन। घर में हुई मुंडवा परिवार की एंट्री। जी टीवी के सीरियल वसुधा में भाई चंद्रिका का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि प्रभात की जिंदगी खतरे में है। वो कोमा में चला गया है। तभी तो देखिए कैसे चंद्रिका अपना आपा खो बैठी है और बस प्रभात से यही बात कर रही है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर उनकी जिंदगी में लौट आए।
1: प्यार से हमें चंदा लेकर चुका जी, एक बार हमारी तरफ देखिए सर, प्लीज देखिए सर, आंखें खोलिए सर। साफ हमारी ताकत भी है और कमजोरी भी है। आपकी खामोशी हमें अंदर ही अंदर तोड़ रही है सर। जैसा कह दीजिए साहब कि एक बार फिर से हमारा डर हमेशा के लिए भाग जाए। हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो भी कहना पड़ेगा ख्याल रखिएगा।

वहीं दूसरी तरफ अपने पिता जैसे ससुर के लिए वसुधा भी परेशान हो रही है। वही वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो उन्हें कुछ खिला दे, सूप ही पिला दे, लेकिन प्रभात उस हालत में ही नहीं है कि किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड कर पाए। तभी तो देखिए कैसे वसुधा का हाल भी बेहाल है।

0: एक्चुअली प्रभात जी को इस हालत में बिल्कुल नहीं देख पा रही थी वैसे, इनफैक्ट कोई नहीं देख पा रहा था। तो जब बस ये लगता है कि अब इनको ड्रिप से ही खाना पिलाना करना पड़ेगा क्योंकि वो कोमा में चले गए हैं, तो वो थोड़ी एंशियस हो जाती है और वो बहुत ट्राई करती है कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ या उनका फेवरेट खाना सूप कुछ ऐसा पिला दूँ कि वो पीने लगें और उनको ये सब ना करना पड़े। लेकिन अब ऐसा होता तो नहीं है, मतलब उनको लास्ट में ट्रिप से ही खाना पिलाना करना पड़ता है, तो बस थोड़ा सा बहुत सैड माहौल हो गया था उस टाइम पे घर का।
1: इन सब के बीच वसुधा मुंडवा परिवार को अपने फिर एक बार घर ले आई है, और जैसे ही ये बात चंद्रिका को पता चलती है भाई वो भी उनके स्वागत के लिए आती है। लेकिन उसके पहले देखिए कैसे सारिका भाई पूरे घर में तहलका मचा देती है।
0: एक्चुअली अभी तो सिर्फ देवी हुकुम को ये बात पता चली है कि दूसरी फैमिली का इस घर में रहना कितना इम्पोर्टेंट है उनके खुद के सुहाग के लिए, और वसुधा इतने दिनों से यही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो ट्राई कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके सारी डिग्न ख़त्म हो जाए, और गुरुजी की भविष्यवाणी तो उसे याद ही है कि दशहरा से पहले बड़े हुकुम मतलब बड़े हुकुम को इन लोगों के श्राप से आज़ाद करना होगा, तो उसके लिए वो पूरे एफर्ट्स लगा रही है कि लोग घर में आए। अब फाइनली जब देवी हुकुम को ये बात समझ आई है तो लेकर आई है उन्हें घर में, लेकिन क्योंकि बाकी लोगों को ये बात नहीं पता तो पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग, बट हाँ वसु और देवी हुकुम दोनों सबको समझाने की पूरी कोशिश कर रही है।
1: भाई देखिए कैसे घर में आते ही लाजवंती ने वसुधा के परिवार की फोटो को दीवार से हटाया और अपने घर के दो सदस्यों की तस्वीरों को इस दीवार पर टांग दिया। और वैसे आपको बता दे कि ये दोनों ही इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनके ना होने का राज आपको बहुत जल्द इस कहानी में देखने को मिलेगा। तभी तो देखिए कैसे चंद्रिका भी हाथ जोड़कर लाजवंती और उसके परिवार का घर में स्वागत कर रही है।

0: अब आने वाले वक्त में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से मुंडवा परिवार के आने से प्रभात की तबीयत में सुधार आता है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मुंबई में बीती रात हार्पर्स बाजार इंडियन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2026 की रौनक देखने को मिली, जहां रेड कार्पेट पर बॉलीवुड, टीवी और ओटीटी के कई बड़े चेहरे अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे। डालते हैं इस खूबसूरत और ग्लैमरस शाम पर एक नजर।
0: रेड कार्पेट पर लगा सितारों का मेला। वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में नजर आई हसीनाएं। इनकी धड़कन में क्या सपने क्या है? एक शाम वुमेन एम्पावरमेंट के नाम। बीती शाम मुंबई में हार्पर बाजार ने किया एक खास अवार्ड शो, जिसका नाम था इंडियन वुमेन ऑफ द ईयर 2026। भाई कई सालों से ये अवार्ड फंक्शन होता आ रहा है और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कई सारे दिग्गज चेहरे। भाई यहाँ पर उन सभी वुमेन्स को सेलिब्रेट किया जाता है जो अपने अपने फील्ड में बेहद ही खूबसूरती के साथ अपना नाम बना रही हैं, और आज इसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नजर आए बॉलीवुड के कई सारे चेहरे। भाई यहाँ पर खास मेहमान बनकर पहुँची सोनाली बेंद्रे, शबाना आजमी, तापसी पन्नू, शर्वरी वाघ, करिश्मा कपूर, क्रिस्टल डिसूजा, आयशा खान, सुजैन, मधुरिमा तुली, माहिरा, कनिका कपूर और कई सारी ऐसी वुमेन्स जिनके जर्नी आपको इंस्पायर कर देंगी।

इसके अलावा यहाँ पर नजर आए फरदीन खान, बोनी कपूर, करण टैकर और राहुल देव, जो बने इस शाम के खास मेहमान। तो आइए आपको ले चलते हैं इस रेड कार्पेट पर और दिखाते हैं यहाँ के सभी एक्सक्लूसिव नज़ारे।

0: अब बात रियलिटी शो बिग बॉस 20 की, जहां इस हफ्ते हुए वीकेंड के वॉर में एक तरफ सलमान ने लगाई रिति को फटकार, तो वहीं आसिफ स्काउट और यंग के गैंग की भी लगाई क्लास। देखते हैं इसके नजारे।
1: रिति रिति रिवाजों में रहो, वो आपके लिए अच्छा होगा। ये जो लैंग्वेज जो आपकी है, ये कहीं और जा रही है, और इस लैंग्वेज की वजह से आपको तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके फादर को भी पड़ेगा, और फिर पापा होते तो देख लेते तुम्हें। इसका क्या मतलब हुआ? सिंगर मनोज तिवारी देखेगा, एक्टर मनोज तिवारी देखेगा, पॉलिटिशियन मनोज तिवारी देखेगा,
2: नो सर,
1: या फादर?
2: बस फादर सर मेरा, क्योंकि यही जाके मुझे सुनने में
1: आया कि मैं जितना मनोज को जानता हूँ वो इस एटीट्यूड को सपोर्ट नहीं करेंगे।
2: सर,
1: आपको पता है कि आपकी दादी भी ये शो देख रही होंगी। आप मनोज तिवारी की बेटी हो, डॉली बिंदा की बेटी नहीं हो। याद है जब डॉली ने बाप पे मत जाना वो किया था, आपके डैड का क्या रिएक्शन था? रिएक्ट कर सकते थे, वो चुप बैठ गए। अगर वो रिएक्ट करते तो हर चीज उनके अगेंस्ट जाती। आपने रिएक्ट किया, आप डॉली बन गई इस घर में, जो कि आप उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो। मेरा बाप होता तो देख लेता। वेयर इज योर बाप इन द बिग बॉस हाउस? नहीं है। अगर वो देखना भी चाहे ना तो नहीं देख पाता। वो अलग बात है कि ही विल लेट यू हैंडल इट। और कैसे देख लेता कि तौकीर के गाने नहीं सुनता? क्योंकि आपके फादर अब एक एक्टर नहीं रहे, पॉलिटिशियन है, पब्लिक फिगर है, रिस्पेक्टेड मैन है, 3 times MP है। बट अगर आप किसी और की भी बेटी होती तो आई डोंट थिंक एनी फादर वुड लाइक दैट। मेरा बाप होता तो देख लेता। बाप है आपका, और फिर सामने वाले को बोलना कि तेरे बाप का नाम भी नहीं जानती मैं। आपके फादर देख रहे हैं, आपकी मदर देख रही होगी सेपरेटली, आपकी दादी देख रही होगी सेपरेटली। याद है मंच पर क्या कहा था कि जिस शो से तुम इतने परेशान हो गए थे मनोज, अब तू अपनी बेटी को भेज रहा है इसमें परेशान होने के लिए? दादी वॉज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, बिकॉज पोती परेशान कर रही है घर वालों को, और इसका इफेक्ट पूरे घर वालों पर आएगा। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर किसी को रिति के रिएक्शंस और काम यहां पर या पर्सनालिटी पसंद नहीं आई, तो वो सिर्फ रिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: एब्सोल्युटली
1: सी नाउ, बिकॉज लाइक पिछले वीकेंड पर आपके अलावा किसी ने मुझे ये कहते हुए नहीं सुना कि आई एम डिसगस्टेड विथ काजी। सिर्फ आपके कानों ने यह सुना। मैंने आप सबसे क्लियरली कहा था काजी ने जो किया वो गलत था मेरी नजरों में, बिकॉज ऑफ यू 15 people, बट द ऑडियंस के नजरों में, क्योंकि वो ऑडियंस को काजी ने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, दे वर एंजॉयिंग इट लाइक अ प्रैंक। और ये भी मैंने कहा था कि काजी का इंटेंशन कभी किसी को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन मेरे जाते ही यू वेंट अहेड एंड यू वांटेड टू पुट काजी डाउन बाय टेलिंग हिम दैट आई एम फीलिंग डिसगस्टेड बाय यू। और एक बात, हाँ, व्हेन आई वाज गोइंग ब्रेक में ऐसे आप काजी पर चढ़ जाओ, आई डिड लाइक दैट इन अ जोक।
2: यस,
1: लेकिन आप लोगों ने उसे सीरियसली लिया, वो सीधे काम पर लग गए। और मुझे गिनाने की जरूरत भी नहीं कि उस वक्त डिसगस्टिंग कौन कौन लगे हैं। और काजी को तो ये पता ही होगा कि ये बात कभी ना कभी खुलेगी। तो रिति, एक इशू है ना जिसको मैं बहुत ही सीरियसली लेता हूं, दैट इज विमेन्स इशू। आप जो 16 के 16 इस घर में आए थे, अब 15 हैं। यार, दे आर ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हाउस, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बी सेफ। तो मैंने सुना रिति कि आपने काजी पे ये इल्जाम लगाया है कि वो आपके ऊपर चढ़ रहे थे। और आप ये कहना चाह रही थी कि यू डिडंट फील सेफ व्हाइल काजी वाज डूइंग दैट टास्क.
2: सर आई एग्जैक्टली सेड दिस कि वो मेरे पे चढ़ के आ रहे थे, बार बार चढ़ के आ रहे थे एंड मुझे ये अच्छा नहीं लगा.
1: आई वांट टू सिट डाउन एंड डू दिस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर.
2: ओके, तो मैं उस टास्क में, इफ वी टॉकिंग अबाउट द एप्पल वाला टास्क, उस टास्क में और भी लोग थे मेरे साथ एंड वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं टास्क के टाइम, बहुत एनर्जी आ जाती है उनमें, तो शायद उनको रियलाइज भी नहीं होता है कि वो कितने पावर एंड इंटेंस आ जाते हैं.
1: आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं थे.
2: जी वो थे सर मेरे इर्द गिर्द, इसलिए मैं उनके दिखा गई.
1: स्लो मोशन करके बार बार देखा है, मैं आपको दिखाऊं वो क्लिप.
2: सर बट दिस वाले एलिगेशन जो मैंने उनपे लगाई,
1: आर यू हैप्पी विथ योर डिस?
2: I was in a flow, sir. मैंने कुछ चीजें
1: बोली.
3: मैं तो मुटु भी ना तेरे मुंह पे.
1: That's flow.
2: So that was actually in a flow. वो तो actually मेरे किसी intention या किसी चीज से नहीं था.
1: फिर dis का मतलब क्या होता है?
2: To disrespect.
1: लेकिन एक limit में disrespect करना होता है. Young?
4: Yes, sir.
1: जैसे आप लोगों ने किया, आप लोगों ने कोई line cross नहीं की. तो मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है. आप लोगों को ये नहीं लगा कि ये डिसरिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस कर गई?
5: हाँ सर,
6: लगा
5: सर.
6: हम लोगों ने बोला भी
7: सर उसको.
1: कहाँ बोला? जितने मजे स्काउट आप और आसिफ ने लिए हैं ना, उस डिस में किसी ने नहीं लिए.
2: जी
1: हम आपसे ना सेंसिबल चीजें एक्सपेक्ट करते हैं. आप आती हो लाइन पर और भटक जाती है. मुझे आप ये बताओ कि रिथि को आपने कहा कि ये गलत है, इट गो अगेंस्ट यू, और उसके बाद इस हफ्ता तुमको जवाब देना पड़ेगा.
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट यू हैव सेड, क्योंकि वो.
1: लेकिन आपने ये मुझ पर क्यों डाला? आपको एज अ वुमन खुद को नहीं बुरा लगा, या आप उस भोजपुरी इंडस्ट्री की हैं और मनोज एक्टर है वहाँ के एंड दोस्त की बेटी है, सो यू सेड लेट इट गो?
2: नो नो नो नो नो नो नो सर, आई विल टेल यू व्हाट. जिस टाइम पर उसने, मतलब वो जो लास्ट स्टेटमेंट बोला, वो तो बहुत दूर की बात है. पहले ही जब अल्पिस ऑन योर फेस वाली बात,
1: अमरापाली जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, बिकॉज काउंटर यहाँ से आने वाला है.
2: जी सर, जिस समय पर वो बात आई थी ना, उसी टाइम से मैं ब्लैंक हो गई थी इन द होल थिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गलत जा रहा है. लास्ट में जब पूरी तरह गलत चला गया, मैंने जेन्युइनली ये सोचा हुआ था कि मुझे उससे बात करनी है, और बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने उससे इसी बारे में बात की. लेकिन उससे पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी कि उस कमरे में इतना कुछ हो जाएगा. उदिति भी अपने डिफेंस में सेम बातें बोल देगी, काजी जी जैकेट वैकेट फेंक के टेबल पे चढ़ने चले जाएंगे. ये सब मैंने नहीं उस जगह पर एक्सपेक्ट किया था. वो अचानक से आ गई, लेकिन इतने सब के बाद भी उस कमरे से बाहर निकल के मैंने सबसे पहले उसको यही बोला कि यू विल हैव टू फेस दिस बिकॉज इट वॉज रॉन्ग, द वर्ड वॉज नॉट राइट.
1: गुरु प्रेशर में आके आप भटक गई, क्योंकि आपने बाद में कहा कि तुम्हारा कहना जस्टिफाइड है क्योंकि उसने भी तो सेम चीज कही बाद में.
2: बाद में जब कह दी सर, उसके बाद मैंने ये बात बोली. मैंने ये बात उदिति से भी जाकर
1: थोड़ी
2: बोली.
1: होता अमरपाली,
2: मुझे उसका
1: उदिति का वो जोन ही नहीं है. यू कुड सी उदिति इज डिसकंफर्ट एंड आई लव्ड द वे उदिति इज हैंडल्ड हरसेल्फ. हैट्स ऑफ उदिति. आपको तो वहां पर रहना भी नहीं था उदिति. आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितने ही ऑकवर्ड अनकंफर्टेबल पोजीशन में थी उस वक्त. हाउ एम्बैरेस्ड यू वर, हाउ डिसगस्टिंग यू मस्ट हैव फेल्ट अबाउट दिस.
2: अच्छा, सब हंस रहे थे.
1: एंड हाउ इज दिस दिस व्हेन यू से दैट काजी.
8: I heard
1: that. What did you mean by that?
2: We really want to know this. We want to know.
1: Sir,
2: that's not what I meant. That's not what I said exactly.
1: See, Rithi, अगर जो टोन आपका रहा था, अगर वो मेरा टोन रहता अभी, it would have been justified. आप unjust में वो टोन लेके चली गई, और this तो छोड़ो, यू आर प्राउड ऑफ इट, बट आई एम थिंकिंग इट वाज द वर्स्ट डिस एवर. कह क्या रही थी आप, आपका मायने क्या था?
2: सर मेरा कोई मायने नहीं था इससे, मुझे तो ये याद
1: फिर ऐसी कुछ भी बोल दोगी आप यार।
2: मैंने जो चीज मुझे मैंने बोली मैंने उस पर स्टैंड भी किया कि यस आई सेड दिस, ये मुझे याद भी नहीं है। मैं एक फ्लो में थी, मैंने कुछ चीजें कही, मैंने कुछ मीन नहीं की सर।
1: फ्लो में मतलब कुछ भी कहोगी?
2: नहीं सर, आई डिडंट मीन ऑल ऑफ इट।
1: आई बिलीव यू दैट यू डिडंट मीन इट, बट ये ऐसे और टाइम्स आने वाले हैं कि मैं फ्लो में थी।
2: नो सर, ये तो मैंने जेन्युइनली जाके बोला भी है कि मुझे ऐसा बिहेवियर इस घर में नहीं करना है। रही गाली की भी बात, वो भी मुझे नहीं करनी है। मैं समटाइम्स आई लूज माई टेम्पर and this is
1: so
2: what happened
1: is, so
2: with
1: that
2: me.
1: Is something you should always keep in control.
2: Definitely, and mujhe iska prabhav abhi dikh gaya hai.
1: You keep the anger in you, temper to you take off. You should not have a temper. And baki sab bhi flow mein the. Main kisi nanap shanap nahi bola. And you're not the youngest out here.
2: I'm very sorry, sir.
1: You know, Amrapali, ye jo aapka expression is waqt hai na, jo dard jo dikh raha aapke chehre par. We were expecting this from you that time when the diss was going on. And everyone, and I blame Scout for this, I blame Asif for this, I blame Young for this, because they were all cheering Riti up. Aap log badhawa diye ja rahe the. You are more to blame than Riti. Wahi pe kare, stop it, Riti, you're going overboard. And because of you people, Riti did not know whether she was going wrong or right. Agar ye aapki behan hoti ya aapki girlfriend hoti, wo kahan ki biwi hai aapki?
4: Sir, Ireland.
1: Ireland ki biwi. Ye diss karne dete aap?
4: Sir, humne baad mein unko mana kiya.
1: Baad mein kya? Baad mein kya? Us waqt feel nahi hua, us waqt enjoy kar rahe the. Baad mein kya? Jahan feel hua ki galat ja rahi hai, wo aapki duty nahi thi ki stop it right there. If you felt ye galat ja rahi hai. बट उस वक्त तो आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, सबके सब हंस रहे थे और फिर वापस से काशी के ऊपर चढ़ गए। एंड आफ्टर दिस रीति, आप जो कह रही हो कि आपको बुरा लगा, तो बुरा लगने का मतलब क्या है? आई फेल बैड, आई सेड शिट, आई फील रियली बैड, आई शुड हैव डन इट। उदिति, आई एम सॉरी यार, दिस नेवर हैपन अगेन। डिड यू हैव द हार्ट और द माइंड टू जेन्युइनली से दैट उदिति यार माफ कर दे, सॉरी यार ब्रो?
2: मैं गई थी उनसे बात करने अबाउट दिस, बट आई सॉ कि शी वाज नॉट वेरी।
5: नहीं, वो रिजेक्शन वाले डे के बाद आप आए थे।
1: इट डजंट मैटर, शी विल बी अपसेट, शी विल बी हर्ट, इट विल टेक अ टाइम।
2: या
1: इट इज हर प्रेरोगेटिव कि शी वांट्स टू इन द फर्स्ट गो से इट्स ओके, इट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, और शी विल टेक हर टाइम, शी विल हील, दैट इज हर चॉइस।
2: या
1: आपने बल्कि ये कहा कि तुम उदिति मेरे वजह से दिखी तो सही। And you're so right. आपने उदिति को विजिबिलिटी ही नहीं दी, उसको आपने मींस एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ हर कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हर रिएक्शन टू यू। एंड काजी

0: या नितिन है वहीं पर यू शुड हैव पुट योर फुट डाउन कि यार ये गलत जा रही है भाई तू नीचे उतर इसमें मत जाना यू थिंक वो करती
1: नहीं
0: कि मैं फ्लो में कब होती है जब आप लोग किसी को चढ़ाते हैं ये आप लोग चढ़ा रहे थे और ये चढ़ रही थी और आप ही का कहना है ना स्काउट टास्क में लड़का लड़की नहीं देखते
1: हाँ जी
0: इस टास्क में क्या हुआ है कि लड़की लड़की के बीच में रहने दो
1: सर वो दोनों के बीच में था बोला कि लड़की लड़की लड़ रहे तो बीच में नहीं
0: अरे बट एक
1: वो सीन था
0: आप खुद ही कॉन्ट्रेडिक्ट करते हो अपने आप को और ये जो आप मानते हो आसिफ को कि आसिफ में अक्ल है कहां गई आसिफ आपकी अक्ल आपके घर में कौन कौन है
2: अम्मी है मेरी बहन है सर
0: बहन अगर ये डिस करती तो
2: सर मैंने छुड़ाया दोनों को मैंने कभी भी ऐसा खड़ा होकर देखा
0: नहीं ये तो बाद में यार आप लोग एंजॉय कर रहे थे यार कि कमाल है हाँ एक सेकंड अगर ये चलो मैं आपको दोनों एग्जांपल देता हूँ अगर आपकी बहन ये डिस करती
2: जी
0: तो आप रोकते नहीं
2: रोकता सर
0: रोकता अगर आपके बहन के ऊपर ये डिस होता कोई और करती तो आप क्या करते
2: तभी भी रोकता उसको
0: एग्जैक्टली तो यहाँ पे रोका क्यों नहीं
2: सर लास्ट जब उन्होंने सेंटेंस बोला उसके
0: लास्ट यार मैं आपको दिखा दूं क्या पूरे डिस में कम ऑन और जब तौकीर नीचे उतरा स्टेज से यू गाइस वांटेड हिम टू गो बैक स्काउट आपको डिस में बोली गई सारी बातें हजम हो गई लेकिन जब काजी ने आपको अभय बोला उससे आपको बहुत परेशानी हुई
1: अबे वाला चीज के लिए मैं ये नहीं हुआ था वो मैं उनको एक्चुअली साइड ही कर रहा था कि लड़कियों के बीच में हो रहा है आप हट
0: ये जब बाहर है मैं आपको दिखा दूं आप बोलते हैं कि वो एग्रेसिव हो गया काजी का मैं आपको क्लिपिंग्स दिखा देता हूं वो हमेशा पीछे हटते रहता है आप लोग जाते रहते हो उसके बाद फिर वो लोकेशन चेंज करता है फिर वापस से लोकेशन चेंज करता है फिर आता है फिर आप लोग आते हो
1: सर मैं अकेले
0: वो चढ़ता नहीं है वो आप देख लो
3: आज बहू और बेटियां की टीम पहुंची एक्ट्रेस वर्षा सोलंकी के पास जहां उनके साथ मिलकर हमने किया ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाने को एक्सप्लोर तो चलिए चलते हैं इस फूड फेस्टिवल में और हो जाते हैं इस स्वादिष्ट सफर में शामिल
4: हीरोइन मुझे बना देना $125 चढ़ाऊंगी बदले में
5: नाक पे नथ नववारी साड़ी और फुल ऑन महाराष्ट्र

0: मिले वर्षा सोलंकी से, जिनका रियल नाम है वर्षा कावड़े, लेकिन अब ये शादी के बाद बन गई हैं वर्षा सोलंकी, जो एक मशहूर इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री हैं। आज वर्षा ने लिया है महाराष्ट्रीयन अवतार, क्योंकि वो खास मेहमान बनी है मुंबई के होटल गोल्ड फिंच के द ग्रैंड मराठा क्विजीन फूड फेस्टिवल में, जहां पर महाराष्ट्रीयन खाने की सजावट है। और आज वर्षा सोलंकी इस महाराष्ट्रीयन खाने का मजा उठाने वाली है। आज वर्षा के साथ इस खास फूड फेस्टिवल में मेहमान बनकर आए हैं ढेर सारे कलाकार, जिनमें शामिल हैं उर्वशी परदेसी, सना सुल्तान, वर्षा हेगड़े जैसे कलाकार, जहां और साथ में बिग बॉस मराठी में देखने वाले विशाल कोटियान, विकास वर्मा और ढेर सारे और मेहमान। पर ये सब आज इस फूड फेस्टिवल का मजा उठाएंगे, लेकिन आज खास स्वैग और महाराष्ट्र अंदाज में है वर्षा सोलंकी, जो आज होटल गोल्ड फिंच के शेफ संग बताएंगी कि महाराष्ट्र के खाने में क्या है, चाहे वो खाना कोंकण का हो, चाहे विदर्भ का, चाहे खानदेश का हो या फिर हो मुंबई का। तो महाराष्ट्र के स्वाद संग लेकर आ गई हैं वर्षा अपने इस खास अंदाज में।
1: तो यहाँ पे जो थीम रखा है द ग्रैंड मराठा, और ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्र की मुलगी हूँ और मुझे वो लुक तो बनता ही है, सो सी तेरा पूरा लुक देख। स्पेशली हमारी जो महाराष्ट्र की जो शान है नथ, ये साड़ी मैंने नहीं पहनी है, मेरी भांजी ने पहनाई है, मेरे को साड़ी पहनने नहीं आती, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से ये साड़ी पहनाई है मुझे। काफी लोग मुझे कह रहे कि ये रेडीमेड है, बट ये रेडीमेड नहीं, ये साड़ी है जिसका हम लोगों ने लोवरी लुक किया है। ग्रीन कलर किया है, ये महाराष्ट्र की कलर रहते हैं, हिरवा चूड़ा मन देखे आँखों में
0: जाके है दिल में क्या क्या। ये है वर्षा सोलंकी का पूरा श्रृंगार। आज नवारी साड़ी पहनकर नाक में खास मारा

0: हाथों की हरी हरी चूड़ियाँ और खास गहने, ये सब पहनकर ये महाराष्ट्रीय मुलगी बन गई हैं। और इस पूरे स्वैग के साथ आज वो तो ग्रैंड मराठा फूड फेस्टिवल का टूर कराने वाली हैं। भैया यहाँ पर ढेर सारी डिशेस हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पापड़ के साथ। जी हाँ, महाराष्ट्रीय खाना बिना पापड़ के अधूरा होता है। और देखें, यहाँ पर पापड़ की ढेर सारी वैरायटी है जो वर्षा सोलंकी संग होटल गोल्ड फिश की टीम ने हमें दिखलाई और बताई।
1: ओके, तो तुम्ही सांगू शकता जे कसले पापड आहे?
2: एक कुडाई पापड आपल्याकडे,
1: कुडाईचा पापड
2: आपले पॉपकॉर्न तर नॉर्मल
1: होतं, तांदळाचा
2: पापड, व्हाईट नागली असणार,
1: बहुत ही अच्छा है आपने टीम बनाया, रियली बहुत अलग है।
0: महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश की खासियत है सोल कड़ी। भाई सोल कड़ी एकदम सोल डिश है जो आपके कट के लिए बहुत अच्छी होती है और इसे खाने के बाद पीते हैं। एक तरह का ये सूप और एपिटाइजर है जिसे आप खाने से पहले और खाने के बाद पी सकते हैं। सोल कड़ी एक बहुत ही हेल्दी ऑफरिंग है महाराष्ट्रियन खाने की और वर्षा सोलंकी की फेवरेट भी।
2: सोल कड़ी जो है यहाँ महाराष्ट्र का जो खास जो होता है ना, खास टाइप का है, बट आप एक बार ट्राई कीजिए और एक बार अपना टाइम
1: ऑब्वियसली। तो मैं ज्यादा करके ना जैसे फिश हो या मटन हो या चिकन हो उसके बाद ही मैं पीती हूँ, लेकिन सच में इसका जो पीने का जो मजा है ना बहुत ठंडा ही देती है, सच में बहुत अच्छा है। तो
0: महाराष्ट्रीयन क्विजीन बिना अचार यानी लोणची के पूरा नहीं होता। जी हाँ, महाराष्ट्र में अचार को लोणची कहा जाता है, फिर चाहे वो नींबू का हो, आम का हो या फिर हो मिर्च का। तो आज यहाँ पर द ग्रैंड मराठा फूड फेस्टिवल में तरह तरह के अचार यानी लोणची है और वर्षा सोलंकी को ये अचार बहुत ही पसंद है। तो देखते हैं कि इस फूड फेस्टिवल में क्या है अचार की वेरायटी।
1: तो चलो हम लोग जाते हैं अभी लोणची की तरफ, जो कि हिंदी में अचार कहते हैं और मराठी में ऑब्वियसली लोणची।
2: आपल्याकडे कच्चे कैरीचं लोणचं,
1: ओके, कच्चे कैरी का अचार आहे, ओके,
2: आवला,
1: आवला, ओ माय फेवरेट,
2: ग्रीन चिली,
1: ग्रीन चिली,
2: ग्रीन चिली लोणचं, व्हरायटीज ऑफ आम है, व्हरायटीज ऑफ आम है, उसमें तीन हम अचार बनाए।
1: यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको जैसे कैरी का यहाँ पे, ये लेमन का भी नहीं है ना?
2: लेमन का
1: अभी फिलहाल लेमन का नहीं है, लेकिन सच मुझे लेमन का बहुत अच्छा लगता है। कैरी, लेमन, आंवला, सब टाइप के आपको यहाँ पे लोणचं मिळेल। और
2: प्रत्येक जेवणात ताट मध्ये आम्हाला लोणचं असतं।
1: हमारे जो महाराष्ट्र का एक थीम है कि स्टार्टिंग में हमें लोणचं मतलब अचार देते ही है, तभी वो प्लेट पूरी तरह से
2: होता
1: है।
0: क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्टेपल फूड क्या होता है? भाई वो होता है वरण भात और पिठला भाकरी। भाई ये आया है खानदेश से और आज वर्षा को ज्वाइन किया शेफ सलीम ने और बताया कि आम महाराष्ट्रीयन थाली में लोग क्या खाते हैं, जिसे कहा जाता है घरगुती जीवन। तो जानते हैं क्या है महाराष्ट्र का स्टेपल फूड।
1: तो आज हमारे साथ है सलीम सर, वो ही बताएंगे कि आज खाने में क्या क्या है, स्पेशली खानदेश ना तड़का। तो सलीम सर प्लीज बताइए।
2: खानदेश का तड़का, खानदेश का खाना ये मोस्टली स्पाइसी बहुत ज्यादा माना जाता है,
1: स्पाइसी रहता है।
2: तो उनका ट्रेडिशनल है बाटी, ये बाटी है, देन उसका साथ वरण, कोटलेली वांग्याची भाजी, बैगन का सब्जी है घोटा हुआ,
1: माय फेवरेट।
2: हाँ, और ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, ये जो उसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तब ये कंप्लीट होता है। और वहाँ शादी में भी ऑलमोस्ट ये खाना वो लोग सर्व करते हैं, शादी में भी उनका खाना यही होता है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे वांग्याची भरी, ये बहुत फेमस है खानदेश का, बहुत ज्यादा फेमस। पिठलं और भाकरी, पिठलं भाकरी इमिजिएटली बनने वाली चीज है, तो अगर
1: और ये इतना टेस्टी है, मतलब मुंह में पानी आ रहा है। पिठलं भाकरी
2: के बाद सुकट है, ये उनके जो फार्मर लोग होते हैं, फार्मर लोग ऑलमोस्ट खेत में जाते हैं तो ये लेके जाते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि हीटिंग या कुछ भी हो तो ये पूरा दिन कुछ नहीं होता, इसको ना खराब होता है, ये पूरा दिन ही चल जाता है। इसके लिए फार्मर लोग ज्यादा खाना लेके जाना ये पसंद करते हैं खेतों में। ऐसे वेज भी है, वेज नॉन वेज दोनों भी है, इसके साथ भी भाकरी के साथ में भी ये चीज खा लेते हैं।
3: खेचा,
2: खेचा, सुकट, ये अलग अलग वैरायटीज में हमारे पास है।
0: द ग्रैंड मराठा फूड फेस्टिवल में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का मेन कोर्स खाना क्या होता है। भाई वो होता है जनजनी खाना, यानी मसालेदार खाना। कोई भी महाराष्ट्रीयन डिश मसाले के बिना पूरी नहीं होती। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र का जनजनी यानी मसालेदार मेन कोर्स खाना।
1: तो यहाँ पे लिखा है जनजनी चव साधे पनाची ओळख आणि परंपरेचा सुगंध ही महाराष्ट्राची खाद्य संस्कृती। इसका मतलब है जनजनी मतलब
2: स्पाइसी
1: और साधे पनाची मतलब बहुत ही सिंपल
2: दयालु
1: और परंपरेची दयालु जी आमची परंपरा है, महाराष्ट्राची परंपरा है। संस्कृत हीच आमची महाराष्ट्राची परंपरा।
2: शादी में भी मोस्टली यही चीज रखी जाती है, मसाली भात ने तो शादी में मतलब
1: नहीं, दाल चावल नहीं रहेगा लेकिन
2: मसाली भात होना चाहिए। और फिर हमने ये पूरा बुफे उस तरीके से प्रेजेंट किया है, पूरा महाराष्ट्रीयन थीम दिया है बुफे को।
1: ये बहुत अच्छा चीज है, ये सब मसाले इससे हमारा जो लाल मसाला रहता है ना वही
2: ये रखा है,
1: ये वाला
2: हाँ ये हैंगिंग करके रखते हैं।
1: हाँ।
2: जैसे ये अनियन हमारी खुद की अगर खेती रहना तो हम लोग उसका हैंगिंग करके रखते हैं।
1: तो ये सब मिला के ये मसाला मिला के ये रेड चिली पाउडर
2: देन ये गेहूँ, ये मैं मेरी खेत से लेके आया।
1: वाह
2: ये माझ्या शेती से है, मैं घरून घेऊन आलो। हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था, 10 स्टिक हमको 350 में मिला था। तो मैं पूरा बंच लेके आया था इसमें डालकर, कार में डालकर मैंने घर से लेकर। थ्री टाइप का हमारे पास में जो राइस के साथ खाने जाने वाली चीजें है, थ्री टाइप की, जैसे ताक जिसको दाल कड़ी अपना कड़ी बोलते है, पंजाबी कड़ी, राजस्थानी कड़ी, गुजराती कड़ी वैसी है,
3: महाराष्ट्री।
2: उसके बाद में ये उड़द दाल मखनी जैसा बनाते है ये महाराष्ट्रियन में, उड़द दाल वरण, ये है वाल की सब्जी, फैट बीन्स होती ना, फैट बीन्स की है वाल की सब्जी। अब कोई भी महाराष्ट्रियन खाने में कोई भी चीज में ग्रेवी यूज की नहीं जाती, बेसिकली वो कढ़ाई में जो चीज डालते हैं वो उसको ही पका दो, ग्रेवी बनती है, ग्रेवी एडिशनल नहीं होता है। शेवगे की भाजी, शेवगा और मसूर के साथ, शेवगा ऐसी चीज है जो सबके साथ में बैठ जाता है, फिश छोड़ के मटन चिकन वेज सबके साथ। तो इसमें पनीर है ये, ठीक है इसको हम लोग देते
1: हैं सा वड़ा। आणि मी आहे नागपूरची।
2: ओ ये लड़का मैं हमारे आती है।
0: अब बारी है स्वीट डिश की। जी हाँ महाराष्ट्र में भी तरह तरह की स्वीट डिश मिलती है, लेकिन वर्षा सोलंकी के फेवरेट है पूरनपोली। जी हाँ पूरा इंडिया महाराष्ट्र को पूरनपोली के लिए जानता है, और आज होटल गोल्डफिंच के द ग्रैंड मराठा फूड फेस्टिवल में पूरनपोली खास है और साथ साथ महाराष्ट्र की बाकी स्वीट डिश भी।
1: पूरनपोली की मेरी कुछ, मुझे तो पूरनपोली के बारे में नहीं पता, मैं सिर्फ खाने का काम करती हूँ। बिकॉज पूरनपोली हर एक का फेवरेट है वो, और वो स्पेशली जब होली के टाइम, हमारे जो होली के टाइम रहता है उस वक्त वो बनाई जाती है। उसको जो बनाने का जो थीम रहता है वो बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। वो मुझे नहीं पता वो कैसे बनाते, जब मेरी मम्मी बनाती है ना मैं सिर्फ खाने का काम करती हूँ और वो बेचारी मेहनत करती। सबसे सबको अच्छी लगती है पूरनपोली, और ऑब्वियसली महाराष्ट्र की आन बान शान पूरनपोली।
0: वर्षा सोलंकी के साथ आज द ग्रैंड मराठा फूड फेस्टिवल में ढेर सारे और सितारे आए हैं। भाई सभी अपने अपने अंदाज के साथ आए और इस फेस्टिवल के खाने का मजा उठाया, और यही कोशिश थी होटल गोल्डफिंच और इनकी टीम की कि महाराष्ट्र के हर प्रदेश का खाना इस फूड फेस्टिवल में ला सके और मेहमानों को दे सके फुल ऑथेंटिक स्वाद।
1: इनके जो फूड्स है मैंने टेस्ट किया और सच में बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग थीम रखी है, जैसे कि विदर्भ, खानदेश और नागपुर,
4: मराठवाड़ा,
1: ये सब कोल्हापुर, कोकम, ये बहुत सारे थीम, जहाँ जहाँ के हम लोग मराठी देश के है, मराठी शहर के है, वहाँ के उन्होंने फूड रखे है। स्पेशली अभी जस्ट मैंने इनका जो प्रॉन्स राइस है वो मैंने खाया और सच में अमेजिंग, इतना टेस्टी है वो। तो आपको प्लीज यहाँ पे आइए गोल्डफिंच में।
4: They are presenting Kolhapur, Konkan.
1: Yes, yes.
4: Konkan ka jo seafood hai, jo Vaidarbha ka jo fiery taste hai, जो यू नो मराठवाड़ा क्विज़ीन
1: और हमारी जो महाराष्ट्र और हमारी जो महाराष्ट्र की स्पेशल जो ड्रिंक रहती है जो कि सोन करी है वो भी अमेजिंग है सच में बहुत अच्छी टेस्टी है.
4: यू शुड टेस्ट द पूरनपोली.
1: यस यस आई एम रियली मैं वो टेस्ट करके जाऊंगी. प्लस मोदक ऑब्वियसली गणपति बाप्पा है तो मोदक तो बनता ही है.
3: गुलाबी साड़ी अणी लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा का.
0: तो ये थी वर्षा सोलंकी जिन्होंने आज द ग्रेट इंडियन मराठा फूड फेस्टिवल का टूर हमें कराया जो हुआ मुंबई के गोल्डफील्ड होटल में जहां पर बाकी मेहमानों ने भी इस फूड फेस्टिवल का मजा उठाया और महाराष्ट्रीयन जायके को फील किया. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
5: शा नेगी और विशाल वशिष्ठ की जोड़ी वेब सीरीज अली बाबा और 40 भूत में नजर आ रही है. सास बहु और बेटियां की टीम ने आशा और विशाल संघ की खास मुलाकात और जाना उनके शो के बारे में और खेले उनके साथ फन गेम. तो चलिए करते हैं इन दोनों संघ मजेदार मुलाकात.
6: मटर गश्ती खुली सड़क
7: बनी आशा नेगी और विशाल वशिष्ठ की जोड़ी.
6: गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में.
7: 40 भूतों का सामना करते अली और बाबा.
8: कौन सा भूत बकरियां मारता है यार.
9: हो सकता है चिकन मटन का शौकीन हो.
7: अली शाह और बाबा से खास मुलाकात.
6: चाहे जनाना या मर्दाना हो अटेंशन का नया पासा फिर दे गई जान.
7: जियो हॉटस्टार पर शुरू हो चुकी है नई वेब सीरीज जिसका नाम है अली बाबा और 40 भूत जिसमें साथ साथ नजर आ रहे हैं आशा नेगी जो बनी है अलीशा और साथ है विशाल वशिष्ठ जो बने हैं बाबा. भाई इन दोनों को आप छोटे पर्दे पर भी देख चुके हैं और अब इन दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर बनी है जहां पर अली यानी अलीशा और बाबा को 40 भूतों का सामना करना है और वो ये कैसे करते हैं ये तो सीरीज देखकर ही पता चलेगा. लेकिन आज हमारे साथ हैं आशा और विशाल जो बता रहे हैं कि इस सीरीज में क्या कुछ खास होने वाला है. साथ ही वो बता रहे हैं भूतों के साथ उनका एक्सपीरियंस यानी कि हो रही है मस्ती अनलिमिटेड. तो आइए करते हैं उनसे ये खास बातचीत.
2: अली बाबा और 40 चोर सुना था लेकिन अब अली बाबा के जो 40 चोर थे वो अब रिप्लेस हो गए 40 भूतों से. और ये जो भूतों का सामना अली और बाबा दोनों को करना पड़ा है वो कैसा रहा है जानेंगे. आशा और विशाल दोनों साथ में हैं तो ये तो जोड़ी पहले जो बनी है अली बाबा की वो कैसे बनी.
6: तेरा स्वैग सुभान अल्लाह.
1: वो कैसे फॉर्म हुई है.
10: नहीं नहीं ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है हम बस फ्रेम करने वाला
1: टाइम लगा. मतलब फॉर्म कैसे
10: हुई. कि एक साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा फिर फाइनली जब फ्लोर पे हुआ तो मैं दो बार ऑडिशन दिए हैं पहले तो.
1: अच्छा.
10: इट वाज ट्वाइस फॉर इट. उसके बाद हुआ लॉक और सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था एंड देन आशा केम ऑन बोर्ड 2 days बिफोर
1: द शूट. Yeah.
10: और इसके पास थे कुछ 40 एपिसोड पढ़ने के लिए
1: और उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है बहुत इन्फॉर्मेशन है तो बट लकीली सब बहुत अच्छे थे सेट पे और क्योंकि इसको सब पता होता था तो हेल्प हो जाती थी.
10: मेरे पास थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा हमें बस 10-11 दिन हमें मिल गए थे पढ़ने के लिए तो इवन तो 40 तो हमने भी नहीं पढ़े थे उस पर काम चल रहा था बट 20-25 रेडी था. तो मेरा भी गोल यही था कि मैं 20 तो एटलीस्ट पढ़ लूं 50% आई विल बी रेडी बाकी वहां धीरे धीरे वी विल हैव टाइम देयर आल्सो.
1: बट आई थिंक क्योंकि हम दोनों ने पहले भी काम किया था साथ में और जानते थे एक दूसरे को तो वो केमिस्ट्री जो हमारी थी कि दोनों के दोनों इजी से हैं पता था. हाँ कुछ वो नहीं है. इट इज गोइंग टू बी इजी एंड इट इज गोइंग टू बी फन ये तो पता ही था. तो आई थिंक वो जो इजी सी केमिस्ट्री हम दोनों की वो बहुत हमारे लिए वर्क कर रही.
10: इट वाज अ रिलीफ फॉर आवर टीम आल्सो बिकॉज़ दैट इज आल्सो सेम.
1: या सेम थिंग.
2: अच्छा तो कहाँ कुछ शूट हुआ है पूरा जो
1: ओरछा में शूट किया था हमने मध्य प्रदेश में 2 महीने हम वहाँ थे और फिर 2 महीने हम मुंबई में थे. सो हाँ बहुत खूबसूरत जगह है ओरछा हमें तो पता भी नहीं था नाम है ना. और झांसी गए थे हम ओरछा गए तो वहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री भी है उस जगह पे.
2: स्त्री वाला इफेक्ट आया कि नहीं.
1: हाँ हाँ
10: मैं तो उस समय स्ट्रेंजर थिंग्स दिख रहा था.
1: हाँ,
2: तो आप लोगों के साथ में कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स हुई.
11: कभी कभी कुछ कुछ होती थी जी।
12: क्या कुछ कैसा कुछ एक्सपीरियंस था, मतलब डरावना था कैसा?
11: हाँ, डरावने ही थे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस। और कभी कभी तो क्योंकि ऐसे थोड़ी सी लोकेशंस भी हमारी रियल सी ही थी, तो उसकी वजह से भी क्या होता था, थोड़ा हेवीनेस एक होती थी वो एनवायरमेंट में।
10: तो अगर कुछ नहीं भी हुआ है बट बिकॉज वो सेट क्रिएट किया गया है टू मेक द एनवायरमेंट फॉर अस ओनली, ना ताकि हम बेटर परफॉर्म कर सकें, बट वो सीन कर लेते हैं। एंड इफ यू लुक अराउंड दीज आर द एलिमेंट्स, भूतिया है तो स्मोक है, इट्स सॉर्ट ऑफ एंशिएंट, तो वो एक लाइक शी सेड कि वो हैवीनेस आ जाता है इवन इफ यू डोंट वांट इट। एंड व्हेन यू गो बैक टू योर रूम शूट के बाद, सो यू बेटर क्लेंज दैट एंड देन स्लीप, क्योंकि वो नेक्स्ट डे फिर क्या पता ओवर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है।
12: सोने के लिए डर लगता था?
11: या, या, या, बिल्कुल, मुझे तो लगता है
12: अभी भी इफेक्ट है।
11: हाँ, अभी तो और ज्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि शो भी देख रहे हैं और रात को सोते रहे, मतलब ना मोबाइल चलाने की आदत होती है, तो कितने सारे लोग रील्स बना रहे हैं और उसमें और ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक में भूतिया सी आवाज डाल दे रहे हैं, तो वो सब देख के अगर इंसान सोएगा तो मुझे तो लग रहा है डर।
10: हाँ नहीं, बनाओ, लेकिन ना आप लोग बनाओ, हम रोक नहीं रहे, कंटिन्यू, नींद वींद हम देख लेंगे।
11: हमने आपको डराया, आप हमें डराओ, क्योंकि विशाल का कैरेक्टर था मस्ती और ये सब, है ना, तो अभी ये टेक से पहले कुछ बोल देता था और मैं हंस देती थी, तो हमारा जो दूसरा एक्टर है मृदुल, हम दोनों की हंसी कंट्रोल नहीं होती थी, अरे बोल गया अपना निकल लेता था, और हम फंस जाते थे, हम हंस रहे हैं, हम टेक में हंस रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको ना देखे हम, ये सब चीजें बहुत इसकी वजह से हुई है।
13: पापा,
7: भैया भूतों की बात चली ही है तो आशा और विशाल से बनवा लेते हैं भूतों वाली ये ड्रॉइंग, तो आइए देखते हैं कि कैसे अली बाबा का भूत वाला फोटो बनाती है और बाबा अली का।
10: ऐसे देख रहे हो कितना प्रॉपरली बना देगी,
2: देख के
10: आर्टिस्ट है?
11: नहीं
10: नहीं ना, तब ठीक है, ना है तो फिर डंका बना, मैं घर लेके फ्रेम करूंगा।

0: मैंने बहुत थॉट देखे ऐसे, एक दो लाइन टानी हो ले, फिर बाकी का फोटो देखा।
1: अगर मैंने तेरा अच्छा बना दिया ना और तूने मेरा गंदा बनाया ना इस साल, फिर
2: तुझे बहुत ही बनाना है।
3: My thought behind this piece was go back.
0: The only thing I got right was this.
1: Oh God! अब उसे मेरा तो बहुत बढ़िया बन रहा है।
0: इसने हेयर भी बहुत बढ़िया किया है। अच्छा ऐसे करने से बाल बन जाते हैं?
1: कैसे करने से?
0: ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे।
1: गोल गोल गोल गोल।
0: वाह यार। Very nice. Very nice.
4: तो भाई इनका ड्राइंग टैलेंट तो आपने देख लिया, अब एक और खेल खेलने की बारी जिसका नाम है ट्रुथ एंड डेयर। तो आइए इन्हें देते हैं ये कार्ड्स और देखते हैं कि ये दोनों क्या चुनते हैं, ट्रुथ या फिर डेयर।
1: बता ट्रुथ और डेयर।
0: ट्रुथ।
1: इफ यू सडनली हैड अ मिलियन डॉलर्स हाउ वुड यू स्पेंड इट?
0: मिलियन डॉलर मतलब करीब करीब 9 करोड़ रुपए।
1: कितने हुए?
0: 9 करोड़ रुपए हो गए।
1: 9 करोड़।
0: 9 करोड़ रुपए में पहले तो मैं 10% साइड कर दूंगा।
1: ओके।
0: क्योंकि वो तो मैं अपने ऊपर उड़ाऊंगा।
1: हाँ।
0: अब 9 करोड़ है तो चल 15 ले लेते हैं, 15% वो मैं अपने ऊपर उड़ाऊंगा। बाकी के 20% मैं इन्वेस्ट करूंगा SIP और इक्विटी में। और उसके बाद मैं जो 70% बचेंगे, नहीं 65% बचेंगे, उसमें से मैं आधे की जमीन खरीदूंगा और उसको
1: देगा।
0: हाँ अब इतने हैं कहाँ ले बहुत है अब तो। मजा आ रहा
1: था।
0: What's the most embarrassing thing your parents have caught you doing? एकदम से कहाँ दिमाग जाता है ना।
1: Oh God, FIR वगैरह नहीं चाहिए।
2: वही ये तो बताना ही पड़ेगा
1: यार।
2: डेयर इससे बेटर डेयर।
0: अच्छा एक मिनट, ये अभी करना पड़ेगा। अभी करना पड़ेगा
2: तो
1: बोल।
0: चेंज योर फेसबुक रिलेशनशिप स्टेटस टू गेटिंग मैरिड।
1: मम्मी पापा ने ऐसा क्या देखा है embarrassing?
0: यार वापस चली गई। चल जो तेरे पहले आए वो बोल। इफ यू फील लाइक डूइंग दैट गेटिंग मैरिड थिंग।
1: करेक्ट।
2: तो क्या डिसाइड किया, ट्रुथ और डेयर? कौन
1: डेयर?
0: गेटिंग मैरिड।
1: गाइस ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज,
2: यूज कर लो।
1: फेसबुक नहीं है अभी मेरे फोन में। 2 मिनट, 1 सेकंड के लिए करूंगी, ठीक है?
0: हाँ हाँ हाँ हाँ। बट आपको करना पड़ेगा वो।
1: आर्टिस्ट की जगह मैरिड लिख दूँ?
0: गेटिंग मैरिड।
1: गेटिंग मैरिड
0: और वूहू ऐड कर देना एक।
1: वूहू पार्टी वाला। मम्मी का फोन आ जाएगा, बेटा हमने तुझे मना थोड़ी किया था, हमें बता देती। गाइस चेंज
2: लिखाओ।
1: अबे चेंज कर तू।
0: डेयरिंग डेयरिंग बाउ बाउ बाउ बाउ डेयरिंग है।
1: व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेड समवन एल्स क्राई? तेरे इतने इजी क्यों आ रहा है?
2: और कुछ निकाल लो। और कुछ निकाल लो।
1: हां हां फिर और
0: करो। इट्स माय गेम, आई मेक द रूल्स वाला हिसाब है।
1: किसको रुलाया था जल्दी बता, दीपाक्षी को? हाँ इसी को रुलाया होगा।
0: तो मनाया भी तो मैं। ट्रुथ और डेयर?
1: ट्रुथ।
0: फिर बता रहा हूँ डेयर
1: यार।
0: नेम वन थिंग, एक्चुअली दिस इज मोर डिफिकल्ट। नेम वन थिंग यू चेंज अबाउट एवरी पर्सन इन दिस रूम।
1: एवरी पर्सन तो मुश्किल होगा ना।
0: ये लिखा हुआ नहीं, वन थिंग। वन थिंग अबाउट एवरी पर्सन, वो तो एक चीज बोल जो हम सब में चेंज करना चाहेगी।
1: करना चाहूंगी सब में चेंज। क्या चेंज करना?
0: एक चीज कि भाई ये अगर ऐसे सब हो जाए तो मेरी दुनिया आए है
1: यार। क्या
0: बोला था ना, डिफिकल्ट है। बोला डेयर ले ले।
1: डेयर क्या है? सब मैं चाहती हूँ कि सब लोग बोले जय वक्र सिंह।
0: ओ
1: क्या
0: चलो
1: चलो गाइस, बोलेंगे सबको बोलना पड़ेगा जय मकर सिंघा,
0: ये रिकॉर्ड हो जाएगा,
1: जय मकर सिंघा। ओके गाइस, 1 2 3 गो,
0: जय मकर सिंघा।
4: तो देखा आपने, इंटरव्यू में इतनी मस्ती है तो सीरीज में कितनी मस्ती और कितने ड्रामे होने वाले हैं। भाई हम तो यही कहेंगे, आशा और विशाल ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: रुक करते हैं मनोरंजन की उस रंगीन दुनिया का, जहां से हम खास आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ रॉकिंग और कुछ शॉकिंग खबरें। ये छटपटी और मसालादार खबरें यकीनन आपके चेहरे पर भी ले आएंगी एक हल्की सी मुस्कान। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की रॉकिंग न्यूज।
6: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। नई बिग बॉस के मंच पर आने वाली है टीम दृश्यम, यानी कि अजय देवगन और जयदीप अलहावत, और देखिए कैसे कई शुरू हो चुकी है मस्ती अनलिमिटेड।
7: Please welcome Vijay Salgaonkar, Urf Ajay Devgan and Jaydeep Alawad.
8: Kazi, I'm a rock star, baby. Dikha do ek bar step.
9: I am a rock star, baby.
8: Salman aur main to isse bhi bahut zyada mushkil step karte hain. Ye hamare liye bahut easy hai. I think Jaydeep karega ye step.
10: Nahi, nahi, iske dono ye bahar jaate hain, iske dono.
6: बहुत जल्द रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की फिल्म आने वाली है। भाई हम सब तो जानते ही हैं, इसका नाम है लव एंड वॉर। संजय लीला भंसाली और बीती शाम ये सभी एक साथ हमारे कैमरे में कैद हुए, जहां इनका अजब गजब अंदाज देखकर दर्शक दीवाने हो गए हैं।

भाई कार्तिक आर्यन पहुंच गए हैं लंदन अपनी आने वाली फिल्म कैप्टन इंडिया की शूटिंग के लिए, जहां पर देखिए कैसे नेशनल अवार्ड जीत कराने के बाद जोरों शोरों से हुआ उनका स्वागत।

0: रूलर्स, कौन आपको लगता है अल्टीमेट रूलर बनने की रेस से बाहर होना चाहिए?
1: नजर डालते हैं राइज एंड फॉल के इस प्रोमो पर, जहां शो के शुरू होते ही शुरू हो गई है घमासान लड़ाई।
2: प्लीज कैन यू कीप क्वाइट।
3: चाटना बताता हूँ किसे कहते हैं।
4: समर्थन चाहिए थोड़ा सा कि भाई जब मैं स्वरा के सामने जाऊंगा ना तो मुझे सपोर्ट करना।
2: मैंने विषय के लिए मांगा सपोर्ट, तुमने दिया नहीं, भाग गए। तो
5: स्वरा ने तुझे बोला था ना सेवा के, तू सेवा की है।
2: मैं आपको इग्नोर कर रहा
5: हूँ, तू कर भी नहीं सकता बाबू।
6: स्वरा आग लगा दी।
5: लड़ो यार, लड़ो मरो।
2: शिवेद की हड्डी की हड्डी देखो कि वही स्वरा भास्कर के साथ बैठा है और मुझे लेक्चर दे रहा है। जो शिवेद टैटू बनाकर घूम रहा है वो शिवेद स्वरा भास्कर के साथ अब कुछ बंधन कर रहा है।
1: डोंट हिट हिम,
2: डोंट, इफ यू टच मी।
1: बीती शाम संदीप सिकंद की बर्थडे पार्टी थी, साथ ही साथ उनकी आने वाली शॉर्ट फिल्म ऑमलेट की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने रखी पार्टी। आर्या

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कबीर को लेकर मायरा की जिद ने तोड़ दिया है अभिरा अरमान का दिल। ऐसे में अरमान ने मायरा को खुद से दूर करने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि क्या बेटी की दूरी को अभिरा अरमान सह पाएंगे।

स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा को थप्पड़ मारने की वजह से अरमान ने अपने हाथ को ही नुकसान पहुंचा दिया है, उसे घायल कर दिया है। ऐसे में अभीरा उसकी हथेली पर मरहम लगा रही है और उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश भी कर रही है। इतना ही नहीं, जख्म इतना गहरा है कि अभीरा परेशान है। भाई जितना दर्द मायरा को थप्पड़ खाने से हुआ है उतना ही दर्द अरमान को भी हो रहा है, क्योंकि आज तक उसने अपनी बेटी पर कभी हाथ जो नहीं उठाया था। खैर अभीरा ये सब समझ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभीरा को लग रहा है कि वो खुद एक बुरी माँ है। तभी तो देखिए कैसे कमरे में जाकर अपने आप को वो आईने में देख रही है और देख देख कर कोस रही है। इतना ही नहीं, अपने लिपस्टिक से वो पूरे आईने में बैड मदर भी लिख रही है।

0: करो। अबीना तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो? तुम बुरी माँ नहीं हो, सुना तुमने? अबीना बस करो, स्टॉप।
1: मैं सच से नहीं भाग सकती अरमान,
0: पर ये सच नहीं है।
1: जब सबूत सामने हो, मैं कितना प्राउड फील करती थी कि मेरा मक्की मुझसे सब कुछ शेयर करता है, सब कुछ बताता है। क्रिश तो पी करना चाहना था, मैं तो बिल्कुल ही इतनी दुख थी कि मैं हमारे रिलेशनशिप को फ्रॉड करती रहती थी सबके सामने। इतनी बुझी हो गई कि मुझे दिखाई नहीं दिया कि मेरा बच्चा मेरे पीठ पीछे झूठ बोलता रहा, उस लड़के से मिलता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। और अब देखो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि उसने हमारी फीलिंग्स की, हमारी इमोशंस को इग्नोर करके सबके सामने अनाउंस कर दिया। मैं कैसे शिकायत करती थी ना कि वो मेरी बातें नहीं समझ पा रही है, असल में तो मैं उसे नहीं समझ पाई। कितनी बेवकूफ हूं मैं उसे समझ नहीं पाई।
0: क्या बोलने जा रही हो?
1: आज अब जाके मुझे समझ में आया कि मैं अपने बच्चे के लिए माँ नहीं हूँ, मजाक हूँ, जिस पर चलकर जब चाहे जा चाहे वो जा सकती है। ना वो पलट के सवाल करता है, ना मैंने किया।
0: Okay, now stop it, please.
1: जी का भरोसा, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं कमा पाई मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई।
0: पर उसके लिए तुम मुझे लताड़ो ना, खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो? बाप बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। मैं बायरा को तुमसे दूर लेकर गया था, उसने ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताया है, वो मेरे सामने बड़ी हुई है, मैंने हमारे बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दी।
2: भाई सारी जिम्मेदारी अरमान भले ही ले ले, लेकिन अभीरा को पता है कि कहीं न कहीं उसने कमी छोड़ दी है, क्योंकि उसे ऐसा ही फील हो रहा है और वो अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। इतना ही नहीं, अब तो अरमान ने फैसला ले लिया है कि वो मायरा को न्यूजीलैंड भेज देगा पढ़ने के लिए। ऐसे में ये खबर सुनकर अभीरा का दिल और भी टूट गया है। एक तो बचपन में ही वो अपनी बेटी से दूर रही और फिर जब मिली तो नफरत का शिकार हो गई, और धीरे धीरे जब रिश्ता सुधरा तो अब बेटी को प्यार हो गया और वो बगावत की वजह से मम्मी पापा से नफरत कर रही है। ऐसे में अभीरा अपने दर्द को पौधा लगाकर दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके आंसू है कि थम नहीं रहे, क्योंकि वो बेटी की जुदाई का गम सहज नहीं पा रहे।

बेटी को अपने से दूर भेज रही है ना, तो रो क्यों रही है? रोना बंद कर।

0: अभीरा अपनी मायरा को रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं पा रही क्योंकि पूरे परिवार वाले अरमान के साथ हैं। लेकिन अभी पूरे परिवार और अभीरा सभी को जोरदार झटका लगने वाला है क्योंकि मायरा घर से भागने वाली है और मायरा का घर से भागना कहानी में नया ट्विस्ट लाएगा जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल तू ही रे दिल में संजय का सच जानने के बाद टूट गया है वृंदा का दिल। ऐसे में वृंदा उस घर को छोड़कर स्वाति के मायके में आ गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे होता है संजय और वृंदा का सामना।

संजय संग वृंदा की लुका छिपी, प्यार के लिए तड़पता वृंदा का दिल, रिश्तों में उलझती वृंदा, के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा के सामने सारा सच आ गया है। और तो और वो जीतू से भी नाराज है, क्योंकि जीतू को पता होते हुए भी जीतू ने वृंदा को बताया नहीं और ना ही भाई होने का फर्ज निभाया। लेकिन आज जीतू अपना दर्द भी बयां कर रहा है, जिसे कहीं ना कहीं वृंदा समझने भी लगी है। लेकिन संजय वो तो अब भी अनजान है कि असली वृंदा है कौन। ऐसे में अनजाने में संजय सफेद गुलाब लेकर पहुंच जाता है नकली वृंदा के पास रसोई में, और देखिए कैसे उसे तोहफा देता है। क्योंकि उस अमू ने उसकी माँ का ख्याल जो रखा है, अब उसे क्या पता कि ये वो अमू नहीं जिसको वो समझ रहा है। खैर, गुलाब देते हुए असली वृंदा देख रही है, लेकिन जैसे ही संजय उस ओर जाने लगता है तो वो भी भाग निकलती है, क्योंकि वो संजय से छिपने की कोशिश में लगी है। ऐसे में जैसे ही नकली अमू वो सफेद गुलाब छोड़कर जाती है तो अमू उस गुलाब की ओर देखती है। इतना ही नहीं, वो तो अपने कदम रोक नहीं पाती और पहुंच जाती है रसोई में उस गुलाब को लेने के लिए। उस गुलाब का कांटा भी चुभता है, उसका दर्द भी आंखों से बयां हो रहा है।

यहाँ वृंदा संजय के सामने आना नहीं चाहती तो वहाँ संजय की माँ ने संजय को आदेश दिया है कि वो वृंदा को उसके घर छोड़कर आए। और यही बात चुपचाप खड़ा जीतू सुन रहा है और उसे डर भी लग रहा है कि कहीं इसी के चलते वृंदा और संजय का आमना सामना ना हो जाए। लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि वृंदा को उसके घर छोड़ने का मौका मिल जाता है जीतू को। ऐसे में जीतू वृंदा को लेकर पहुंच जाता है स्वाति के घर के बाहर, जहां पर नरेंद्र अपने भाई के साथ ताका झाकी कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अमू इस घर में क्या कर रही है। इतना ही नहीं, नरेंद्र को तो वृंदा और संजो को साथ में देखकर डाउट भी हो रहा है। खैर, नरेंद्र अब क्या सोचेगा ये तो आने वाली कहानी है। फिलहाल तो वृंदा अपना टूटा दिल लिए घर के अंदर जा रही है, जहाँ पर स्वाति के पापा अपनी बेटी स्वाति और दामाद संजय की तस्वीर पोछ रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आते हुए वृंदा को रोक रहे हैं और उनकी तस्वीर दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेचारी वृंदा चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही और अपना दर्द छिपाने की कोशिश में लगी हुई है।

0: उसके सर में बहुत बैगेज है ऑलरेडी, अब उसे पता चल चुका है संजू जी के बारे में। और फिर मैं घर वर लॉक करके बाहर निकलता हूँ, मुझे पता है कि वो घर से भाग के बाहर आ चुकी है। एंड देन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेशन, बहुत टेंशन है, बहुत इमोशंस शेयर हुए इसमें, हम रोने लग जाते हैं, जहाँ पे वो पूछती है कि आपको फर्स्ट डे से ही पता था वगैरह वगैरह। एंड देन वी पोर आर हार्ट्स आउट, जहाँ मैं भी बता रहा हूँ कि यार मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैंने आपसे डे वन से सच्चाई छुपाई है वगैरह वगैरह, पर अब क्या। देन शी इज़ लाइक, अब मुझे घर छोड़ के यहाँ से निकलना ही है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आज रात रुक जाओ, कल सुबह मैं आपको स्वाति के घर छोड़ आऊँगा। देन कट्टू, आज हमने वही सीन किया जहाँ पे मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ, नहीं उसके पहले ये होता है कि संजू जी और सरिता जी, इन दोनों के बीच कॉन्वर्जेशन हो रहा है कि वो कह रही कि अम्मू को ठीक नहीं है, बिकॉज स्टिल शी इज़ अम्मू फॉर देम, तो वो ठीक नहीं लग रहा है, उसको सर में दर्द है, तो तू प्लीज़ जाके स्वाति को छोड़ा। मैं पीछे से देख रहा हूँ, मेरी फट गई है कि अरे ये कैसे, अभी तो मुश्किल से यार उसको समझाया है, अभी तो मैं घर में ले आया हूँ वापस उसको, वो तो भाग रही थी, अब ये फिर से नया इश्यू। तो संजोग वहाँ पे अचानक से आ जाता है एंड संजू जी की मीटिंग है, तो वो संजोग को बोल देते कि प्लीज़ आप अम्मू को छोड़ के आ जाओ, और मैं आई टेक अ साई ऑफ रिलीफ कि भाई चलो फाइनली। और फिर हम साथ में ही छोड़ने जा रहे हैं, तो वो एक सीन हमने किया, हम उसकी गाड़ी से उतर रहे स्वाति के घर के बाहर, वृंदा को छोड़ने जा रहे, शी हैज़ अगेन लॉट ऑफ एपिसोड्स की यार इतना कुछ हो गया, वो घर देख रही है, संजोग जा रहे हैं, और कट्टू वहाँ से, नरेंद्र एंड विपुल वहाँ से देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, वृंदा यहाँ क्या कर रही है, आई डोंट नो वो लोग वहाँ पे कहाँ से आए वगैरह, बट वो लोग भी देख रहे हैं। सो अब ये भी एक नया सा ट्विस्ट आने वाला है इसमें।
1: फिलहाल तो वृंदा अपना दर्द छिपाने के लिए रसोई में चली जाती है चाय बनाने के लिए, ऐसे में वहाँ पर आ जाते हैं स्वाति के पापा भी, क्योंकि वो वृंदा को अपनी बेटी जो मानने लगे हैं। ऐसे में वृंदा को भी मौका मिल जाता है उनसे ये जानने का कि आखिर संजय और स्वाति दोनों की मुलाकात कैसे हुई। बस फिर क्या, स्वाति के पापा को मौका मिल गया उनकी प्रेम कहानी बयां करने का।
2: स्वाति पटेल बोलोगे मुझे पता, बस संजू ऐसा लगता है जब मैं उससे पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे से मिला।
3: ये बात तो है पापा, जो कोई भी संजू से मिलता है उसे क्या लगता है। संजू कहेंगे भाई, तो ये आप बेटी से
2: चाय बना रही हो, अब मिलके नाश्ता करेंगे और क्या।
1: यहाँ स्वाति और स्वाति के पापा खुश हैं क्योंकि वो सच से अनजान है और वृंदा चुपचाप गम को बर्दाश्त कर रही है। खैर फिलहाल तो स्वाति को डाउट हुआ है कि कुछ तो वृंदा को हो गया है, लेकिन स्वाति हमेशा वृंदा का साथ देने वाली है। ऐसे में वो अपने पापा को रसोई में छोड़ जाती है और वृंदा को अपने साथ ले जाती है, लेकिन देखना होगा कि जब स्वाति के सामने ये सच आएगा कि जाने अनजाने संजय और वृंदा की शादी हो चुकी है, तब रिश्तों में क्या ट्विस्ट आएगा।
4: माँ वैष्णो देवी का प्रसाद है तेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए और तेरी मैरिड लाइफ के लिए, पूजा करवाए।
5: किया था मेरा और अल्लाह तुम्हारा।
6: स्वाति निकालो वो प्रसाद बाहर, प्रसाद निकालो, वो प्रसाद तेरे लिए था, प्रसाद तेरे किसी का नहीं होता, होता है। आज प्रसाद बांटेगा पति बांटेंगे क्या, तो बांट लोगी ना बांटे।
1: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: मुंबई में हुआ फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का मिजवान फैशन शो, जहां आलिया और विक्की कौशल शो स्टॉपर बनकर रैंप पर उतरे। बता दें कि ये जोड़ी जल्द ही फिल्म लव एंड वॉर में भी नजर आएगी। चलिए देखते हैं इस फैशन शो के नजारे।

बीती शाम मुंबई में हुआ एक खास फैशन इवेंट जिसके रैंप वॉक पर वॉक करती हुई नजर आई बॉलीवुड की अप्सरा यानी कि आलिया भट्ट। मैं इस ऑफ व्हाइट कलर के आउटफिट में वो लग रही है बेहद ही कमाल। जितनी खूबसूरत वो है उतना ही खूबसूरत है उनका ये नेक पीस भी और उनका ये पूरा लुक आज की शाम को बेहद ही ज्यादा शानदार बना रहा है। भाई आलिया भट्ट काफी पॉपुलर एक्ट्रेस है और उनकी ये चाल उन्हें दर्शकों का और भी दीवाना बनाती है। भाई वैसे आज इस रैंप वॉक पर उनके पार्टनर है विक्की कौशल जो इस नेवी ब्लू कलर के शेरवानी में लग रहे हैं बेहद ही कमाल। भाई विक्की कौशल का अंदाज ही निराला है और जब ये दोनों साथ में आते हैं तो होता है डबल धमाका। और देखिए कैसे भाई इन दोनों के आने से रैप वॉक पर चार चांद लग गए। भाई वैसे इनके आउटफिट को डिजाइन किया है मनीष मल्होत्रा ने।

0: और इस खास इवेंट में कई सारे खास मेहमान हैं जो शो का हिस्सा बने। भाई आपको बता दें, यहाँ पर नजर आए सोनाली बेंद्रे, शिल्पा और शमिता शेट्टी, सानिया मल्होत्रा, रवीना टंडन, प्रतिभा रांटा, खुशी कपूर, शालिनी पसी,
1: देखो आया शनिवार, वाटी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार,
0: रोहानिका धवन,
1: पहन के जाती मैडम,
0: सोफी चौधरी,

वही वैसे यहाँ पर जोड़ियाँ भी साथ साथ नजर आई, जैसे कि माधुरी दीक्षित और नैने। शकुलप्रीत और जैकी, रोनित रॉय और रोहित रॉय दोनों भी अपनी वाइफ संग पहुंचे। इसके अलावा अगर मुंडो की बात करें तो यहाँ खास मेहमान बनकर पहुँचे सूरज पंचोली, दिव्येंदु, विजय वर्मा, अपार शक्ति खुराना और मिजान जैफरी। इनके अलावा कई और कलाकारों ने भी इस फैशन इवेंट पर शिरकत की और इस इवेंट को बना दिया और भी शानदार।

जिस तरीके से ये कलाकार आपको एंटरटेन करते हैं, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपका दिल इसी तरीके से जीतते रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

टेलीविजन की दुनिया की छटपटी खबरों और सीरियल्स के ड्रामे के साथ सास बहू और बेटियां में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे

0: है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी स्क्वैश में मिले 2 सिल्वर, अभय और अनाहत ने जीता पदक, भारत को अब तक कुल 32 मेडल। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ देखी बर्फ की सफेद चादर। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर, ऋषिकेश में जल, पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही अलर्ट। जापान में टीम इंडिया ने की बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया तक मसफर। आज मना जा रहा विश्व पर्यटन दिवस, जम्मू कश्मीर में सैलानियों का मेला, उड़ीसा भी पर्यटकों से गुलजार। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। शानदार खबर आपको दे दें, जापान में चल रहे एशियन गेम्स से भारत के लिए बड़ी खबर निकल कर आई, स्क्वैश में भारत को आज 2 सिल्वर मेडल मिल गए हैं। मैंस स्क्वैश में भारत के अभय सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया, अनाहत सिंह ने भी स्क्वैश में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया है। और अगर हम कुल पदक तालिका देखें तो भारत के पास अब तक कुल 32 मेडल हो चुके हैं, जिसमें देखिए 4 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज में शुमार है। तो ये बड़ी खबर, शानदार खबर है भारत के लिहाज से, एक एक मेडल का इंतजार पूरा हिंदुस्तान करता है। ऐसे में 2 और मेडल हिंदुस्तान के नाम हो चुके हैं और टोटल जो संख्या है अब तक पदकों की वो 32 हो चुकी है। तो जापान में ये जो

0: एशियन गेम्स चल रहे हैं, उसमें स्क्वैश में दो मेडल अपने नाम हो गए। और आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट जीएनटी एक्सप्रेस।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखा रहे हैं जलवा, आज प्रतियोगिता का आठवां दिन। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत को आज मिले दो पदक, स्क्वैश में भारत ने जीते दो सिल्वर। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में अभय सिंह लाए भारत के लिए 31वां मेडल, अब तक 4 स्वर्ण 14 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज। अभय सिंह ने सिल्वर जीतने के साथ रच दिया इतिहास, सौरभ घोषाल के बाद एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। भारत के स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने भारत के लिए जीता 32वां मेडल, जीता रजत। एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया टोक्यो से नागोया पहुंची, अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने बुलेट ट्रेन से किया सफर। भारतीय खिलाड़ियों ने नोजोमी शिंकानसेन में सफर का उठाया लुत्फ। बुलेट ट्रेन में टीम इंडिया के सफर की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर की। एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से होगा भारत टीम का पहला मुकाबला, 28 सितंबर को होने वाले मैच के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार। अलीगढ़ में धावक का गुलवीर सिंह के परिवार ने मनाया जश्न, मेडल जीतने की खुशी में महिलाओं ने जमकर डांस किया। देश के कई राज्यों में जमकर हो रही है बारिश, कई जगहों पर आईएमडी का रेड अलर्ट, अर्नब चक्रवात के चलते बदला मौसम। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में करीब 48 घंटे से लगातार बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। वाराणसी में साइक्लोन अर्नब के साथ जोरदार बारिश, तेज रफ्तार से चली हवाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी, आज के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जोरदार बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी, हाईवे पर दिखा नदी जैसा नजारा। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के बीच सांसद रवि किशन के आवास के बाहर भरा पानी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरुखाबाद में बारिश के चलते रेलवे की रफ्तार पर भी पड़ा असर, ट्रैक पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश जारी, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मूसलाधार बारिश से गिरे कई पेड़, कई इलाकों में जलजमाव। पीलीभीत में 48 घंटे से बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर, गांव गांव पुलिस का अलर्ट जारी, शारदा नदी पर प्रशासन की नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश जारी, गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर। नेपाल में भी उफनाई नदियां कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। नेपाल बिहार बॉर्डर के इलाकों में राहत बचाव का काम जारी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। नेपाल बिहार बॉर्डर पर भी दिखा बाढ़ का असर, कई जगहों पर फसलें डूबी। रायगढ़ में महानदी में उफान, गंगरेल बांध के 14 कपाट खोले गए। झारखंड के कई जिलों में भर गया बारिश का पानी, सड़कों और मकानों में भरा पानी। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति प्रभावित, रांची के ग्रामीण इलाकों में जोनहा में लोग मोबाइल चार्ज करने पहुंचे रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी, बाढ़ से फंसे लोग 10 का हुआ रेस्क्यू। बस्तर के जगदलपुर में 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश, बाढ़ के हालात। डोंगा घाट में बाढ़ के बीच 80 से ज्यादा लोग फंसे, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के चलते अभी तक केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी। सोनप्रयाग में रुके गए हजारों यात्री। बारिश के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में ही रुके हुए हैं। प्रशासन को मौसम के ठीक होने का इंतजार। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी मौसम ने ली करवट। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी से बढ़ी ठंड। 10 अक्टूबर तक चलेगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। अमेरिका के पूर्वी तट पर आए तूफान का न्यू जर्सी में दिखा असर। सड़कों पर भरा पानी। नॉर्थ ईस्टर तूफान में चलते बिजली व्यवस्था भी हुई प्रभावित। पेंसिल्वेनिया में 68,000 से ज्यादा घरों की कटी बिजली। बैंकॉक में भारी बारिश से जलजमाव। लोग कमर तक पानी में सामान लेते हुए नजर आए। बैंकॉक में 48 घंटे में करीब 300 मिलीमीटर बारिश हो गई। सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन डूब गए। बाढ़ से राहत के लिए 233 अस्थायी शेल्टर्स तैयार। करीब 4,200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी। काजा पिन घाटी और शिंकुला दर्रे समेत ऊंचाई के इलाकों में बदल गया मौसम। शिंकुला दर्रा और चंद्रताल इलाके में भी बर्फबारी। लाहौल घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन पहले ही बर्फबारी। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट। प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में देश की पहली LNG ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ट्रेन का 2,000 किलोमीटर से ज्यादा का हुआ सफल ट्रायल। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल के बीच स्विच कर सकेगा इंजन। डीजल 40% खपत कम करने में मदद मिलेगी। देशभर में आज से पितृपक्ष की शुरुआत। नदी घाटों पर तर्पण और पिंडदान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पितृपक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा समापन। पितृपक्ष को लेकर गया में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। देश भर से लोग पिंडदान और तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए श्रद्धा श्राद्ध तर्पण और पिंडदान की परंपरा है। आज प्रतिपदा श्राद्ध के साथ देश भर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। पितृपक्ष पर विधि विधान से कर रहे हैं तर्पण। पिशाच मोचन कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान। कांगड़ा में मां चामुंडा देवी मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। गर्भगृह का स्वरूप अब और भव्य नजर आएगा। तीन खेलों सोना 6 कुंतल चांदी से सजेगा मां चामुंडा का दरबार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुड़ पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुड़ पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुड़ पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी, स्क्वैश में मिले दो सिल्वर, अभय और अनाहत ने जीता पदक, भारत को अब तक कुल 32 मेडल। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जल स्तर, ऋषिकेश में जल, पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही अलर्ट। जापान में टीम इंडिया ने की बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया तक मस्त सफर। आज मनाया जा रहा विश्व पर्यटन दिवस, जम्मू कश्मीर में सैलानियों का मेला, उड़ीसा भी पर्यटकों से गुलजार।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। सनातनी आस्था कहती है कि जन्म मृत्यु के क्रम में बंधा है जीवन चक्र, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा शून्य में विलीन हो जाती है? किसने गढ़ी है स्वर्ग और नर्क, पाप और पुण्य की मान्यता? ये बातें ताउम्र हमारे सामने घूमती रहती हैं। देखिए, दावा किया जाता है कि गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के सच से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बताई गई हैं जो मृत्यु के बाद प्राणी के चक्र को बताती है। इसी के साथ आज हम आपको गरुड़ पुराण के उन्हीं रहस्यों से अवगत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहती है गरुड़ पुराण की अवधारणा।

0: आस्था कहती है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? कहां वाकई किसी लोक में यमलोक होता है और हमारी आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है? मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। सनातन संस्कृति में स्वर्ग और नरक बातें कही जाती हैं। सबसे यक्ष प्रश्न, जन्म पर मृत्यु का अधिकार क्यों है? धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिसने जन्म लिया उसे एक न एक दिन मरना है। सनातन धर्म से जुड़े संस्कार कहते हैं कि प्राणी अपने देह का त्याग करता है, उसके शरीर की आत्मा नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु, ये वो रहस्य हैं जिनका भेद आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन फिर भी लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये वो गूढ़ रहस्य हैं जिनको जितना समझने की कोशिश की गई ये उतने ही अबूझ होते गए। कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में जन्म मृत्यु का वर्णन मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु को विस्तार से समझाया गया है। हम आज आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों के बारे में बताएंगे, ताकि आप जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी को आसानी से समझ पाएं। गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से जन्म और मृत्यु के कई रहस्य पूछे। गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक के बारे में गूढ़ प्रश्न पूछे। भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है। इसका श्रवण या मनन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है।
1: गरुड़ पुराण हमें वैतरणी पार या मोक्ष प्राप्ति का योग दिखाता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि अपने पूरे जीवन में व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसके पश्चात सारे जीवन अच्छा कर्म किया हो, और अगर अपने पुत्रों से पिंड न प्राप्त हो, पुत्र की कामना भी इसीलिए करता है, पुम नामक नरक से त्राण देने वाला पुत्र होता है। पिंडदान आदि का अतिशय महत्व बताया गया, और जिस व्यक्ति दिवंगत का पिंडदान आदि हो जाता है वो किसी प्रकार की अधोगति नहीं जाता, पशु पक्षी प्रेत योनि में नहीं जाता, पितरों में या मोक्ष को प्राप्त करता है।
0: धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जो इस संसार में आया है एक दिन उसे यहाँ से जाना ही है। क्योंकि पृथ्वी को मृत्यु लोक माना गया है और मानव देह को नश्वर कहा गया है, यानी जिसका एक न एक दिन नाश हो जाएगा। माना जाता है कि परमात्मा के पांच तत्वों से बना यह शरीर मृत्यु के बाद पांच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। धर्म शास्त्रों का मानना है कि आत्मा अमर है, आज एक शरीर तो कल दूसरे शरीर में उसे जाना है, यही जीवन और मृत्यु के बीच का अटल सत्य है। जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आज तक ये कोई जान नहीं पाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु से जुड़े कर्मों को बताया गया है।
1: किसी शरीर पूरा होने पे या घर में किसी शोक की दृष्टि में व्यक्ति को सुनाया जाता, शोक संतप्त परिवार को सुनाया जाता, उसका कारण ये विष्णु पुराण का वो अंश है जो ये व्यक्ति को बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में या व्यक्ति के संतानों को जीवन के पश्चात किस प्रकार का कर्म करना चाहिए और किस कर्म के करने से व्यक्ति को नारकीय जीवन या शरीर छोड़ने के बाद किस किस गति को प्राप्त करना हो सकता है।
0: माना जाता है कि जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसी तरह से श्री हरि से गरुड़ को मृत्यु के बाद का सच बताया था, जिसे संसार गरुड़ पुराण के नाम से जानता है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड का स्वरूप बताया गया है। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में उल्लिखित नरक मन की विशेष अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, परंतु ये प्रतीकात्मक हैं, वास्तविक नहीं। ये बात जरूर है कि उसी तरह के परिणाम वास्तविक जीवन में भुगतने पड़ते हैं। ये परिणाम वास्तविक और मानसिक होते हैं।
1: वो कहता है गरुड़ पुराण के शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर वो फल भोगेगा, पर प्रत्यक्ष में देखा जाए तो इस जीवन में ही वो फल भोग रहा है। किसी व्यक्ति को अपने किए गए जीवन के कष्टों के कर्मानुसार ही व्यक्ति को आगे का भविष्य बनता है। वो शरीर छोड़ने के बाद या शरीर में इसी समय आपके आगामी आने वाले भविष्य क्या निर्माण करेगा, गरुड़ पुराण आपको ये समझाता है।
0: माना जाता है कि मृत्यु के बाद शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने और जीते जी जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि ये शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वो अपने अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष के सफर पर निकलती है।
1: सामान्यतः माना जाता है कि जब घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक संतप्त परिवार को अपने वृद्ध जन के निमित्त कारक यह सुनाया जाता है। तो क्योंकि माना जाता है वो सूक्ष्म शरीर से आत्मा जब तक कर्म पूरा नहीं होता तब तक घर में ही परिवार के समक्ष रहती है, तो उसके आगे के मार्ग मोक्ष मार्ग को आगे की मार्ग पे यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका पाठ परिवार को और उस दिवंगत आत्मा के निमित्त सुनाया जाता है।
0: माना जाता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। कहते हैं कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाले फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए आप धर्म की राह पर चलते हुए अपना जीवन यापन करें, क्योंकि ये संसार एक मोह माया है। इसलिए ना तो किसी चीज का लालच कीजिए और ना ही मृत्यु से भयभीत होइए। बस कर्म ऐसे कीजिए कि अनंत काल तक आप जिंदा रहें। गरुड़ पुराण से जुड़े और भी कई गूढ़ रहस्य हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आने जाने के चक्र से मुक्ति मिलना ही मोक्ष कहलाता है। जीवन के बाद मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद क्या होता है? सनातन धर्म की आस्था मानती है कि इंसान का सिर्फ शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नश्वर होती है, वो कभी नहीं मरती है। अगर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है तो क्या उसे स्वर्ग नर्क जैसी किसी अवस्था से गुजरना होता है? इस सवाल का भी जवाब गरुड़ पुराण में मिल जाता है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में।

0: और पुण्य, सच और झूठ, धर्म और अधर्म, और जीवन और मरण, ये हमारे जीवन में सांसों की तरह घुले हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु ही अटल सत्य है। प्राणी खाली हाथ ही इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही लौट जाता है, लेकिन अपनी जीवन यात्रा के इस कालखंड में वो कई ऐसे अनुचित कर्म कर जाता है जिसका लेखा जोखा यमपुरी में होता है। उसी आधार पर प्राणी के साथ व्यवहार होता है, ये सदियों से मानी जा रही सनातनी आस्था है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हर प्राणी को अपने ज्ञात अज्ञात कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के स्वर्ग या नर्क जाने की मान्यता है।
1: हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक अगली यात्रा का शुरुआत है। तो पंच महाभूत का शरीर शांत होने के बाद जो सूक्ष्म आत्मा शेष रह जाती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, परंतु व्यक्ति की जिस देह में आई है उस देह के कर्मानुसार उस आत्मा को आगे किस प्रकार के कर्म में जाना पड़ेगा ये हमें पता लगता है।
0: शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, जबकि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वो नर्क का अधिकारी होता है। गरुण पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आपकी यमपुरी की यात्रा कैसी होती है, चलिए वो आपको बताते हैं। आत्मा को सर्वप्रथम यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में यमराज पाप और पुण्य के आधार पर आत्मा की स्थिति को तय करते हैं। आत्मा के मृत्यु लोक से यमलोक तक के सफर का वर्णन गरुण पुराण में है, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी चीजें व्यक्ति को सदगति की ओर ले जाती हैं और इसका रहस्य क्या है, तो आइए इस गूढ़ रहस्य को जानते हैं। तुलसी पत्र और कुश का प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति से दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त होते हैं। इन कर्मों से व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाता है। जल और दूध का दान करना भी कल्याण में सहायक होता है। गुरु की कृपा से भी दंड शून्य होते हैं, व्यक्ति सदगति की ओर जाता है।
1: अगर आत्मा निकल जाए तो शव हो जाता है, आत्मा जब तक है तब तक वो शिव है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कहा गया कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो शरीर नाशवान है परंतु आत्मा नाशवान नहीं है। तो शरीर छोड़ने के बाद वो अपने कर्मानुसार अगली गति को जाती है, अपनी यात्रा पूर्ण करती है, अगले शरीर को प्राप्त करती है या मोक्ष को प्राप्त करती है, जो कि हमारे सनातन धर्म का अंतिम सोपान है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को प्राप्ति के लिए उस आत्मा का प्रयाण हो जाता है।
0: लोग ऐसा मानते हैं कि गरुण पुराण का पाठ सिर्फ मृत्यु के समय करना चाहिए और इसके पाठ से भय पैदा होता है। माना जाता है कि जीवित रहते हुए गरुण पुराण का पाठ करने से मनुष्य को अपने कर्मों का ज्ञान होता है, जिससे वो पाप कर्मों से बचकर अच्छे मार्ग पर चलता है। इससे मृत्यु का भय कम होता है और जीवन में सही दिशा मिलती है। और तो और, इसे घर में रखने या पढ़ने से कभी अशुभ नहीं होता। गरुण पुराण का पाठ अगर भाव समझ कर किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। इसका पाठ कभी भी कर सकते हैं। अमावस्या को इसका पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। इसका भाव समझने पर ये बिल्कुल भी भय पैदा नहीं करता। गरुण पुराण के भाव को समझने के लिए इसके साथ गीता भी जरूर पढ़ें। माना जाता है कि गरुण पुराण का पाठ इंसान को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करता है और साथ ही ये उस रहस्य से भी पर्दा उठाता है जिसे जानने और समझने की जिज्ञासा हर इंसान में होती है।
1: सबसे पहले व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि वो जीवन मिला है उसके प्रारब्ध के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप। इस जीवन में और फल स्वरूप अच्छे कार्य करेगा तो व्यक्ति अपने उत्तम गति को प्राप्त करता है। जैसे या तो वो स्वयं में सुखी रहेगा जीवन में, और धर्मात्मा हो तो आगे जाके अपने पितरों में या मोक्ष को भगवान को साक्षात प्राप्त कर लेता, भगवान में समाहित हो जाता है।
0: तो भय से दूर होकर जन्म और मृत्यु के इस रहस्य को समझिए। जीते जी अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि सत्कर्म ही उत्तम गति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि ये अटल सत्य है जिसे ना तो कोई झुठला सका है और ना ही इसे झुठलाया जा सकता है।
2: तो आज हम आपको गरुड़ पुराण के रहस्य बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु का सच आखिर क्या है। देखिए, गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर कुछ बातों का पालन किया जाए तो आत्मा को सदगति और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।

0: जीते जी मोक्ष का आधार है गरुड़ पुराण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की धुरी है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में जिस तरह जन्म और मृत्यु का वर्णन है, उसी तरह इस पुराण में छिपे हैं सफलता के कई रहस्य। इसमें वर्णित एक श्लोक के अनुसार माना जाता है कि अगर 6 चीजों की पूजा आप करें तो आपको सब कुछ मिल सकता है। ये श्लोक है, विष्णु एकादशी गंगा तुलसी विप्र देवनः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु अपने भक्तों के दुखों को खत्म करके उन्हें सुख और शांति देते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए स्नान आदि कर खुद को पहले शुद्ध कर लें, एकादशी का व्रत रखें। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे इसका निश्चित लाभ मिलता है। गंगा का पूजन करें। सभी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी को देवी माना गया है, इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए। किसी रूप में इनका अपमान आपको भारी पड़ सकता है। गंगा ही सफलता की जननी है।
1: गरुड़ पुराण में सबसे पहले बताया गया है कि दिवंगत शरीर समाप्त होने के साथ में ही परिवारजन को उस दिवंगत आत्मा के लिए क्या कर्म करने चाहिए, विशेष तौर पे उसके जो हमारे दैनिक कर्म है उनको किस विधि से करना है, पिंडदान आदि, तर्पण आदि। गरुड़ पुराण का मूल मंत्र है भगवान विष्णु का मूल मंत्र और महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने वाला साक्षात गरुड़ पुराण का पुण्य फल सुन लेता है। इस मंत्र का जाप करने वाला अगर 108 माला कर ले तो 18,000 श्रीमद् भागवत का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है।
0: तुलसी का पूजन करें। तुलसी त्याग का प्रतीक है। इन्हें अपने घर में स्थान देने और जल देने से अवरुद्ध विकास भी खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। ज्ञानी का सम्मान करें। योग्य ज्ञानी मनुष्यों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इनका मजाक उड़ाना सर्वथा अनुचित है। जो मनुष्य ज्ञानी लोगों का सम्मान करता है वो खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। गाय की पूजा करें। गाय को हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना गया है। गाय में सभी देवता निवास करते हैं। जो मनुष्य गाय को पूजता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो गरुड़ पुराण की इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा ताकि परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे और मोक्ष का मार्ग खुल जाए। चलिए आपको गरुड़ पुराण से जुड़े मोक्ष प्राप्ति के कुछ दान बताते हैं जो ज्योतिष और धर्म ग्रंथों के ज्ञान पर आधारित हैं, जिससे आपकी मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। गोदान सर्वोत्तम दान माना गया है। वैतरणी पार करवाने में सहायक है। भूमि दान से परलोक में आश्रय मिलता है। तिल का दान पाप नाशक माना गया है। स्वर्ण का दान यमलोक के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। अन्न का दान यमलोक के मार्ग में भूख और प्यास से मुक्ति दिलाता है। गुड़ के दान से पितरों की शांति होती है। चांदी के दान से मानसिक शांति और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आप भी जीवन की इस अमित सच्चाई का ध्यान रखें। गरुड़ पुराण में लिखी मानव के पुरुषोत्तम बनने की सीख को अपनाएं, सत्कर्म करें जिससे आपका और आपके परिवार का जीवन धन्य हो सके और आपको जीते जी मोक्ष की प्राप्ति सहज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी एनटी के साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गई भारतीय क्रिकेट टीम के बुलेट ट्रेन में सफर की तस्वीरें। जापानी अंदाज में सफर करते हुए श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी वाली भारतीय क्रिकेट मेंस टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को टोक्यो से नागोया पहुंच गई। टोक्यो से नागोया तक का ये सफर टीम ने जापान की मशहूर नोजोमी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से तय किया। सफर के दौरान सभी खिलाड़ी बेहद आरामदायक मूड में नजर आए और उन्होंने इस हाई स्पीड ट्रेन यात्रा का जमकर लुत्फ उठाया। बीसीसीआई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपने सफर की शुरुआत कल 28 सितंबर से करने वाली है। भारतीय टीम की पहली टक्कर अफगानिस्तान से होगी। इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले बुलेट ट्रेन में उनके सफर की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें खिलाड़ी मौज मस्ती करते हुए नजर भी आ रहे हैं।
2: Beautiful. Konnichiwa Nagoya.

0: குட் நியூஸ் டுடே பார்.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
9: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी, स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर, अब तक का कुल मेडल्स की संख्या 32। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी चादर। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर, ऋषिकेश में जल पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही है अलर्ट। जापान में टीम इंडिया ने की बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया तक शानदार सफर। आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस, जम्मू कश्मीर में सैलानियों का मेला, उड़ीसा भी पर्यटकों से गुलजार।

0: नमस्कार, गुड न्यूज टूडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म हनुमान अंश की, जो अब 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने के करीब है। देखिए, बरसों बाद एक धार्मिक फिल्म कमाई के मामले में शानदार मुकाम पर पहुंची है और नया इतिहास अपने नाम कर रही है। फिल्म को कैसे मिली है कामयाबी? क्या ये महज संयोग है या फिर बाबा नीब करौरी का करिश्मा है? फिल्म के निर्देशक, इसकी निर्माता और बाल कलाकार से हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है इसकी सफलता की कहानी। आप भी देखिए।
1: फिल्म हनुमान अंश अब एक सिर्फ फिल्म नहीं रह गई है, फिल्म से अलग हटके बहुत ऐसी हो गई। आमतौर से फिल्मों में, थिएटर्स में वो सारी चीजें नहीं होती जो हनुमान अंश के साथ हो रही हैं। लोग वहां हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लोगों में भक्ति बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। और यही वजह है कि जब हनुमान अंश के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार जब भजन क्लबिंग में पहुंचे तो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। इस फिल्म के साथ बहुत सारे ऐसे संजोग जुड़े हैं, उसमें एक संजोग यह भी है, प्रधानमंत्री जी का आना। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता तीनों हमारे साथ हैं। इन सब का यही कहना कि किसी को कुछ पता नहीं था, अचानक प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री जी ने भजन के साथ साथ

0: अपनी वो डफली भी बजाई और उसके साथ गाया भी। तो ऐसे बहुत सारे संजोग वाली ये फिल्म है जो फिल्म के शूटिंग से लेकर विचारों से लेकर और इसके प्रदर्शन तक बहुत सारे संजोग ऐसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं और मान्यताएं हैं जो उल्टी हैं। आमतौर से फिल्में जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे वो नीचे की ओर चलती हैं, लेकिन हनुमान अंश ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जिम अमोघ रघुपति कर वाना यही भांति चले वो हनुमाना। तो हम फिल्म की निर्माता भी हमारे साथ हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो इन त्रिदेव से हम बात कर रहे हैं इसमें। ये फिल्म कई लोग पूछ चुके होंगे कि शुरू में उम्मीद थी क्या, लेकिन अब शुरू में अगर फिल्म चलती तो उसको लोग अलग ढंग से लेते, लेकिन इसने जब देर से रफ्तार पकड़ी है तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पत्थर में पहाड़ पर पांव जमाया और सीधा उड़ चले।
1: हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा तो है ही, मतलब आप अगर देखें तो कोई लॉजिकल तो है नहीं कि सेकंड वीक में उठी है और फिर जब उठी है तो फिर जब जहाँ जा रहे हैं वहां जा रही है, उसकी अपनी जर्नी है। आप हनुमान जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी कह रही हूँ, सेम है, हम सभी उनके अंश हैं। आई थिंक विशाल और मैं जब बैठते थे तो हम लोग को क्लियरली मालूम था कि डिवोटीज के लिए हमने पिक्चर बनाई है। 50 मिलियन डिवोटीज है महाराज जी के इंडिया में, उसमें हमें लगता था कि एक एक नंबर जो होनी होता कि लोग बात कब करना शुरू करते हैं जब कुछ लोग साथ में मिलते हैं, तो हम चाहते थे कि डिवोटीज एटलीस्ट 50,000 लोग देख पाए, क्योंकि जो भी पिक्चर उससे पहले देख रहा था उनको पसंद आ रही थी, तो हमें थिएटर के एक्सपीरियंस के बारे में पता था कि वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वो नंबर नहीं हम हिट कर पा रहे थे। 2 हफ्ते तक 35,000 लोगों ने ही देखी थी, तो जब तक लेकिन जब वो उठा तो उसके बाद तो आई थिंक हमारे हाथ में सिर्फ आई थिंक श्रोता का प्यार है, सिर्फ तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है,
2: आपके हाथ से भी निकल गया।
1: हाँ बिल्कुल, बता हमारे तो हाथ में है ही।
3: एक फिनोमेनन था जो हम नोटिस कर रहे थे कि पहले वीक में जितने लोग फिल्म देखने गए थे पर थिएटर वर्सेस नेक्स्ट जो वीक था विच इज सेकेंड वीक वीकेस्ट वीक, जिसमें बोलते हैं कि 46 लाख का कलेक्शन था, लेकिन 46 लाख का कलेक्शन 27 थिएटर में था, जबकि 86 लाख का कलेक्शन 350 थिएटर में था, 350 शोज में था। तो जो रेशियो है वो 500% बढ़ गया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना फिल हो रहे थे हमारे थिएटर, तो उसका साइन तो दिखाई दे गया था हमको। लेकिन वही होता है कि थिएटर जो बिजनेस है, सिनेमा जो बिजनेस है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि डिपेंड करता है अगली फिल्म कौन सी आ रही है, उस वक्त जनता का मूड कैसा है, बहुत सारी चीजें, क्या दुनिया में वॉर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं अगला शो कौन सा है, तो मैं चाहूंगा विहान इसके बारे में बताएं। विहान बताएं।
4: हाँ, तो पहले 2 हफ्ते में तो फिल्म थोड़ी टफ गई थी, पर जो जनता ने पब्लिश किया है तो और लोगों को इंटरेस्ट आ गया हनुमान अंश देखने के लिए। तो जनता के प्यार से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, नीम करोल बाबू जी के आशीर्वाद से हमारी फिल्म इतनी हिट हो गई है। और मेन तो छोटे बच्चों ने भी शुरू कर दिया देखने के लिए, उनके पेरेंट वो छोटे बच्चे वो भी उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि चलो हम मूवी देखते, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं थोड़ा नर्वस था कि लोगों को मेरा रोल कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नीम करोली बाबू जी के बारे में पहले पता नहीं था, पर जैसे मुझे पता चला वैसे वैसे मैंने रोल किया, पर बहुत लोगों को मेरा रोल अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए मुझे।
3: सबको बहुत अच्छा लगा।
2: मेरे मन में ये सवाल था कि महाराष्ट्र का एक बच्चा मध्य उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक बच्चे की को कैसे अपने अंदर जीता है, कितना टफ था ये तुम्हारे लिए?
4: टफ तो हाँ, मैं मराठी हूँ तो मेरी मातृभाषा मराठी है, और मैं भी थोड़ा नर्वस था कि मतलब मैं तो मैं विशाल सर को थैंक यू करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, क्योंकि मैं मराठी हूँ और उन्होंने मुझे हिंदी रोल दे दिया, मतलब उन्होंने मुझे बहुत विश्वास रखा, थैंक यू विशाल सर।
3: मेरा मानना है कि मराठी और हिंदी जो है ना बहने हैं आपस में, तो ये कि मैंने इसको मराठी होते हुए भी हिंदी रोल, कोई ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है, हम वो दोनों भाषाएं, दोनों की लिपि जो है ना सेम है, दोनों देवनागरी में लिखी जाती हैं, उनके 90% तक शब्द जो है ना सेम है, दोनों संस्कृत से डराइव होते हैं, और सिर्फ एक सिंटेक्स में और कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस, इसके लिए ऐसा नहीं होता कि दो बहनें, एक माँ की दो बहनें बेटियां हैं और वो आपस में डिफरेंशिएट करने लगे।
2: रोल में कैसे उतारा किरदार में, कैसे इसको?
3: पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो है ना काफी टैलेंटेड है और इसको डायलॉग्स बहुत तेजी से याद होते हैं, तो जब किसी को अगर डायलॉग्स याद हो जाते हैं और इसका जो थोड़ा सा कॉनोटेज, जिसमें थोड़ा सा भाषा में मराठी जो टोनालिटी आ रही थी, अगर तो मुझे अपने आप दिमाग को पहले खुद को समझाना था कि कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप 1930 के दशक की फिल्में देखें या 40 के दशक, जब से टॉकीज आया था, तो उस समय की भाषा, उस समय की हिंदी जो है बहुत आज की मराठी से मिलती है, क्योंकि मराठी जो स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है वो बहुत ज्यादा फोनेटिक्स पे वैसे ही वर्क करते हैं जैसा लिखा होता है। अब हमारी जो हिंदी है उसमें थोड़ा सा टोनैलिटी नॉर्थ की जो बोलियां हैं उनका आया है, तो शुद्ध हिंदी और शुद्ध मराठी में जो बोल लो हिंदी बोलते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कुछ शब्दों में, कुछ मात्राओं में समस्या थी, तो उसको मैंने उसको बोलता जाता था, लेकिन कई बार सेट पे ऐसा होता था कि जो बोल गया तो मैंने उसको फिर उसको फ्लो में तोड़ा नहीं, उस पोर्शन को डब कर लिया, और वो ज्यादा डब नहीं करना पड़ा, कुछ ही डब्स। लेकिन अगर मैं कहूं विहान को अपने डायलॉग्स, तो एक बड़े ही सीनियर एक्टर हैं जिनके साथ में हम, और बहुत मतलब बड़े एक्टर हैं वो नॉर्थ के, और वो जब उसके साथ में लाइनें कर रहे थे तो इसको अपनी लाइन भी याद होती थी, उनकी लाइन भी याद है, तो कहते यार किसके साथ में तुमने बिठा दिया है, इसको तो मेरी लाइन भी याद है। तो चूंकि ये बहुत दिनों से स्क्रिप्ट पढ़ भी रहा था, मेरा एक प्रोसेस है कि मैं सबको स्क्रिप्ट पढ़ाता हूं बार बार, जिससे मेरी टीम को, जिस वजह से शोभनव को भी जब उसको मैंने टेस्ट किया तो उसको स्क्रिप्ट याद थी, क्योंकि मेरा असिस्टेंट था, और उसको जब मैंने वो रोल दिया तो उसको सारे डायलॉग्स याद थे। तो इससे होता क्या है कि जब आपको डायलॉग्स पता है, आपको उसका मतलब पता है, तो आपका इंटेलिजेंट माइंड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज सो इंटेलिजेंट कि वो अडॉप्ट कर सकता है। यदि आप उसको ओवरफीड किसी चीज से, इन्फॉर्मेशन से कर देते हो, तो मेरा मानना है कि वो फिर डायमाइज हो जाता है, कि उसको आप कम्युनिकेशन जो वर्ड से कर रहे हो वर्सेज आप अपने दिमाग में जो प्रोसेस कर रहे हो, जो भावना लिखनी थी वो मैंने कागज पे लिखी है, उस भावना को उसको पकड़ने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसको रीडायरेक्ट करूंगा, मैं उसको सिर्फ उसको थोड़ा ट्वीक करूंगा, जिससे जनरली एक्टर्स पकड़ लेते हैं। और 22 दिन के अंदर फिल्म, इसीलिए 2.5 घंटे की फिल्म खत्म हो पाई है, या 21 दिन कहें क्योंकि एक दिन हमारा और वेस्ट हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं लोगों को ओवर इन्फॉर्म नहीं करता, मैं सिर्फ उनको उनके उनके सीन से पहले किरदार को बताता हूं, और उनके सीन से पहले उनके साथ में कॉन्स्टेंट रेसाइटेशन करता रहता हूं, एज एन रेसाइटेशन एज एन प्रैक्टिस करता रहता हूं, सो वो डायलॉग्स उनको याद एटलीस्ट रहे, बाकी जो ट्वीकिंग करनी वो कर लेंगे।
1: विहान हैज सर्टेन कामनेस अबाउट हिम, उसमें अंदर बहुत स्थिरता है, एंड फॉर अ चाइल्ड राइट, एंड वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा था, उसका सीन नहीं भी होता था वो बैठा रहता था हमेशा सेट पे और सबको नोटिस कर रहा था, ही हैज एबिलिटी टू, मेरे को स्पॉन्ज की तरह लगता है वो, और बहुत ही शांत स्पॉन्ज है। मतलब हमारे सेट में बहुत कुछ हो रहा था पर उस सेट में ये हमेशा शांत दिखता था, सो ही लुक लाइक अ आइलैंड कंपेयर टू ऑल ऑफ अस, तो वो एक उसमें इक्वालिटी है आई थिंक, विच इज आई थिंक।
2: हाँ नहीं, इससे पूछना चाहता था कि फिर करने के पहले तुम्हें बाबा नीम परोरी जी के बारे में इतना पता था, और स्पिरिचुअलिटी क्या पहले से की या फिल्म करते करते?
4: तो रोल करने से पहले तो मुझे पता नहीं था कि नीम करोली बाबा जी कौन है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में बहुत कम लोगों को पता है नीम करोली बाबा जी के बारे में। पर जैसे ही मुझे रोल मिला तो फिर मैंने रिसर्च की, विशाल सर ने भी मुझे समझाया कि वो 12 साल की उम्र में उनकी, मतलब जो छोटे थे तब उनकी माँ गुजर गई, और वो जब वो 12 साल के थे तब वो घर से भाग गए, और उनका ये एक ही सपना था, यस, और उनका एक ही सपना था राम जी के पास पहुंचना। तो विशाल सर ने मुझे सब समझा, इसलिए मुझे इजी गया रोल करने को। और जैसे जैसे शूटिंग होती चली गई, सिर्फ मेरे रोल पे नहीं ध्यान देता था, जैसे शूटिंग होती थी तो फिर मुझे स्टोरी भी पता चली कि ये चमत्कार किए बाबा ने, जैसे वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटेड लगा उनकी स्टोरी। और मेरा भी मतलब यही है मानना कि हनुमान अंश 2 भी आना चाहिए, पर मुझे टेंशन भी है कि अगर मेरा रोल है कि नहीं उस फिल्म में, तो ये
2: उसमें फ्लैशबैक लगाएंगे।
4: यस हाँ,
2: तुम्हारा रोल है। ये बताओ हनुमान चालीसा तुम्हें पूरी याद थी पहले, या रोज के पाठ से 22 दिन के पाठ से तुम्हारे को?
4: नहीं, मुझे याद नहीं थी, जो मेरा पहला दिन था शूटिंग का, तो वो जो हनुमान चालीस वाला सीन है वही था, तो फिर सर ने बताया मुझे जो मतलब जो पार्ट है, तो फिर मैंने वो लर्न किया। पर अभी मैं हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और अभी मैं ये लर्न कर रहा हूँ हनुमान चालीसा।
2: मतलब ये बदलाव आया?
4: यस।
2: और जैन जी में ये बदलाव आया, बिहान तो उसका एक, जब मटकी में बहुत सारे चावल बक रहे हैं तो उसका एक नमूना, इसमें जैन जी में बदलाव आया, और मुझे लगता है कि ये फिल्म से आगे बढ़ के बहुत कुछ है
0: जी,
2: क्योंकि लोग थिएटर में फिल्म चलने के दौरान, फिल्म से पहले हनुमान चालीसा का कोई कल्चर नहीं था, इस फिल्म ने पूरे कल्चर पे मोड़ दिया।
3: मुझे लगता है एक तो पार्ट ये कि हम जो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो शब्दों में उसका बयान उसको नहीं किया सकता, तो जब फिल्म बनाते वक्त जो मैं जिन भावनाओं से लिख रहा था शायद वो भावनाएं ट्रांसपायर हो गई और लोगों ने उन भावनाओं को पता नहीं कैसे पकड़ा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली इतना लोग भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े इसके साथ में और उन्होंने कितना ये हनुमान चालीसा पढ़ना, जूते उतारना। आपको बताऊं पहले दो वीक में लोग जूते नहीं उतारते थे, या हमारी जितनी स्क्रीन हुई यही इस यहां पे भी अब ये हो रहा है कि अब कीर्तन भी वो थिएटर वाले करने दे रहे हैं, अब जो है वो हनुमान चालीसाएं भी लोग पढ़ रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, ऑल्टर बन रहा है। तो ये सब हमारे सोच के समझ से बाहर है, परे है। कहीं ना कहीं एक हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पे एक स्पिरिचुअल प्लेन भी है जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप सुन सकते हो, आप उसको सिर्फ समझ सकते हो अगर आपके अंदर वो आप उसको समझ सकते हो, यदि आपके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके अंदर अगर वो दृष्टिकोण है तो ही आप उसको देख सकते हो।
2: उस समय फिल्म जब बन रही थी और फिल्म बनने का सपने कैसे कैसे आते, नॉर्मल सपने आते थे या कुछ उसमें भी यही चिंता टेंशन रहती थी फिल्म को देखकर?
3: चिंताएं ही रहती थी, तो सपने तो बहुत दूर की बात है, फिल्म को बहुत थक जाते थे। नहीं सपने का मतलब उनका कहने का मतलब है ये जो हो गया आज उसके सपने आते थे
2: क्यों वहां कहीं कोई डायरेक्शन आ रहा हो कहीं कुछ आ रहा हो ऐसा कुछ?
3: हाँ वो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होता है ना, वही कह रहा हूँ दृष्टिकोण है। यदि आप उस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअलिटी एक दृष्टिकोण है, यदि आप देखना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे साइंस दिखने शुरू होते हैं। स्वाभिनव का रिप्लेस होना उसके साथ में, चंदन के आनंद को भोसले बनाना, वो मिश्रा जो है उनको बनाना, क्या नाम है, नासिर अली बनाना राजीव मिश्रा को, और वो जो सुखी राम जो रोल प्ले कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे रोल चेंज हुए। पर वो मैं बहुत ही इंस्टेंट, जैसे बोलते हैं ना इंट्यूशन बेस्ड कई बार होती बात, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक लग रहा होता कि ये ऐसे ऐसे होगा ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे करने पे बहुत सारे रोल चेंज किए हमने। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारी फिल्म में जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों अंग्रेज जो जिन्होंने रोल किया है वो रशियंस हैं, और बाकी अंग्रेज क्या हैं वो नम्रता बताएंगे।
1: मैं बताऊंगी, हलवाई और अल्बिनोज है, लोकल हलवाई और अल्बिनोज है, दैट लिव यू शुड सर्कल, दैट इज सो फनी।
2: महाराज जी ने अपने जीवन में हनुमान जी के मूर्तियां स्थापित करने का सुंदर हैंड के पाप पे बहुत सुंदर कांड आपके इस फिल्म में कितना रोल पड़ा?
3: सुंदर कांड की वो कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाई, ये लाइन हमने सुंदरकांड की फिल्म के एंड करने के समय इसका प्रयोग किया है। और ये सुंदरकांड भी बहुत सारे महामंत्रों से भरा हुआ एक, जिसे बोलते हैं कि वो पोर्शन रामचरितमानस का, और इसके अलावा हनुमान चालीसा का हमने बहुत आयत उसमें मात्रा में प्रयोग किया है। जब वो अपने जब महान जी से बात करता है तो हनुमान चालीसा के रेफरेंसेस देता है कि तुम्हारे भजन राम जी को पावे, है ना। हनुमान चालीसा वो हनुमान चालीसा का अष्ट सिद्धि नवनीति दाता से जब वो पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो 30 चौपाइयां पढ़ चुका है पानी के अंदर, इसलिए वो 31वीं से पढ़ते पढ़ते बाहर निकलता है। ऐसे हमने उसको एस्टेब्लिश किया कि बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा फिल्म के एंड में लास्ट जो फाइनल सिक्वेंस है वो पूरा हनुमान चालीसा के अराउंड ही है। हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जानी चाहिए, क्यों पढ़ी जानी चाहिए, और हनुमान चालीसा को शुद्ध रूप से ऐसे पढ़ते हैं वो तो खैर मैं बताने वाला कोई नहीं हूं, पर पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, अंदर से पढ़ना, आत्मसात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को हमने तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जिसे बोलते हैं ना कि उनका जो अनोखा हम सभी को एक जो उपहार वो देके गए हैं पूरी पूरी पूरी मानव जाति को, तो हमने उसका हमने प्रयोग कर लिया। इसके लिए हम बहुत जिसे बोलते हैं वी आर वेरी लकी।
5: और कब तक वो दूसरा पार्ट आएगा?
3: दूसरा पार्ट वो फिर इनकी कृपा से ही बना है, वो उनकी कृपा से ही दूसरा पार्ट ही बनेगा। वैसे ही आपको हो सकता है कि नम्रता जी ज्यादा बेटर आंसर देंगे।
1: सो आई कीप रेफरिंग टू दिस कि जब भाव ठीक होगा, जब महाराज जी की मर्जी होगी। एंड हमारे पास एक स्लाइड है, रिमेंबर दैट स्लाइड जिसमें टिली जी की स्लाइड है ऑरेंज कलर की, जिसमें आई वाज जस्ट फाइंडिंग इट द अदर डे, उस पर लिखा है डायरेक्टेड बाय महाराज जी, एग्जीक्यूटिव बाय विशाल चतुर्वेदी। जिस दिन वो होगा उस दिन हो जाएगा मेरे ख्याल से।
3: हाँ, उसमें था कि डायरेक्टेड बाय हनुमान जी एज डायरेक्टेड बाय विशाल चतुर्वेदी। अच्छा हनुमान जी एक जगह कहीं किसी और जगह मैंने किसी प्लेट पे लिखा था कि डायरेक्टेड बाय हनुमान जी, नहीं डायरेक्टेड बाय विशाल चतुर्वेदी एज डायरेक्टेड बाय हनुमान जी।
0: तो
2: मैंने एक रील देखी जिसमें विदेशी एक तारे थे
3: जा रहे हैं जी,
2: और रे भरोसे वो अपने भाव से गा
3: मैंने तेरे ही भरोसे अच्छा था, ब्यूटीफुल इट वाज गुड या धन्यवाद।
0: इन सारे लोगों से बातचीत करके सुंदरकांड की यही चौपाई जहन में आती है, जिस विनम्रता से इन सारे लोगों ने सफलता को आत्मसात किया है और महाराज जी के नाम किया, हनुमान जी के नाम किया है, कि उसमें यही समझ में आता है कि सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।
6: बाबा नीब करौरी के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश सफलता के झंडे गाड़ रही है। फिल्म के मुख्य अभिनेता शोभिनय सत्य ने खास बातचीत में बताया कि इस फिल्म के लिए काफी पहले बाबा ने उनके जीवन में क्या खास बदलाव किए, तब तो उन्हें भी खुद पता नहीं चला था, अब इसका पता चलता है तो वे रोमांचित हो उठते हैं। देखिए शोभिनय सत्य के साथ हमारी खास बातचीत और सुनिए फिल्म की कहानी खुद हीरो की जुबानी, जानिए कैसे शोभिनय सत्य बने हनुमान अंश के हीरो, बाबा का किरदार करने से जुड़े कितने चमत्कार शोभिनय को महसूस हुए ये देखिए।
0: क्योंकि शोभिनय सत्य हमारे साथ हैं और ये संजोग से यहां पर मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो फिल्म में देख रहा था उसे मैंने देखा कि आमतौर से फिल्म के दौरान जो हीरो होता है वो वजन कम करता है, सिक्स पैक एब्स बनाता है, क्या आपको वजन बढ़ाने की जरूरत पड़ी क्या उसमें?
7: देखिए ना तो मुझे वजन बढ़ाने की जरूरत पड़ी और ना ही घटाने की, क्योंकि जैसा मैं था मुझे वैसे ही हमारे डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी सर ने सेलेक्ट किया। सो हुआ ये था कि मैं फिल्म के सेट पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था और फिर हमारे जो लीड एक्टर हैं उनकी कुछ तबीयत खराब होती है और फिर उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन ढूंढा जाता है, तो सर मेरा टेस्ट लेते हैं और मैं उसमें पास हो जाता हूं और फिर मैं इस फिल्म में आ जाता हूं। तो
0: शोभिनय सत्य जी सबसे जरूरी, इस फिल्म के साथ बहुत सारे संजोग जुड़े हुए हैं, तो उन संजोग में से सबसे ज्यादा मतलब आपको बिल्कुल हमेशा ना भूलने वाला ऐसा कौन सा संजोग, कौन कौन सी घटना है?
7: देखिए क्या होता है कि लीला चमत्कार अलग होता है और आप बोल रहे हैं संजोग, तो मैं तो संजोग जैसा कुछ बिलीव नहीं करता हूं इस फिल्म में जो कुछ भी हुआ, मेरे लिए तो वो सब कुछ एक लीला है, एक चमत्कार है। लेकिन फिर भी अगर संजोग की बात करें तो वो ये है कि मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी और डेथ के बाद में मैंने अपने सारे बाल हटा दिए थे, एक शिखा रखी हुई थी और दाढ़ी पूरी हट गई थी और मूछें रखी हुई थी, तो उस वक्त पे जो मेरा लुक था वो कहीं ना कहीं सर को, हमारे डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर्स को, सारे लोगों को, कहीं ना कहीं टीम के भी लोगों को लगता था कि मैं बाबा जी जैसा दिखता हूं, उनके यंग एज जैसा दिखता हूं। तो ये संजोग था कि उस तरीके का लुक था, अगर मेरे दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते तो शायद किसी के माइंड में वो इमेज नहीं आती, तो ये एक तरीके का संजोग था जो एक चमत्कार बन गया मेरे लिए जी।
0: हनुमान अंश फिल्म के बाद आमतौर से फिल्में जैसे जैसे समय गुजरता जाता है फिल्मों की लोकप्रियता, कमाई, कुछ भी कहें, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड्स जाती है और ये लगातार ऊपर की तरफ जाती जा रही है।
7: देखिए मतलब जो कई सारी ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्में रहती हैं जो इनिशियल लेवल पे, चूंकि अब ये फिल्म में हमारे पास में बहुत ज्यादा ऐसा बजट नहीं था कि हम बहुत अच्छा प्रमोशन करें, और फिल्म पहले हफ्ते में अच्छा कर रही थी, देन थोड़ा सा ऐसा डाउन हुई, तो मैं ये सारी चीजें क्या है, ये जो आगे चलती जा रही है जो हुआ है, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि सेकेंड वीक से थोड़ा सा चलना शुरू हो जाती है और फिर कुछ दूर तक हम जाते, लेकिन यहां तक जो मूवी आई है उसका तो मतलब भगवान का तो एक क्रेडिट है ही है कि उनकी वजह से सब हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो भारत की जनता का है। भारत की जनता ने मतलब इस फिल्म को अपनी फिल्म समझ लिया और इस तरह से प्रमोट किया है जैसे वो अपनी किसी फिल्म को प्रमोट कर रहे हो या अपने किसी घर के फंक्शन को प्रमोट कर रहे हो, इस तरह से उन्होंने बिल्कुल अपनेपन से हमारी फिल्म को प्रमोट किया है, लोगों को पहुंचाया है, जितने भी लोगों को नहीं पता था उनको भेजा, तो ये कहीं ना कहीं हम इतनी दूर तक तभी चलकर आए हैं कि कहते हैं ना कि जब कुछ दूर तक चलना हो तो अकेले चलो, लेकिन मीलों दूर तक चलना है तो किसी के साथ चलो, तो यहां पे तो पूरा भारत देश ही साथ हो लिया, तो कहां तक जाना है वो तो हमें भी नहीं पता है।
0: जेन जी को लेकर आप लोग कितने निश्चिंत थे कि जेन जी इस फिल्म को लेकर इतना फैसिनेट होगा?
7: देखिए, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब वो बहुत छोटे बच्चे भी जैसे हैं, और उनका जो सोचने का तरीका है वो हर किसी वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो और उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी एक सिंगर है, उन्होंने गाना भी गाया हुआ है। तो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्शन मूवी में डाला हुआ है, उन्होंने 11 सॉन्ग्स डाले हुए हैं गाने में, फिल्म में गाने डाले हुए हैं, और वो जो भी है वो ऐसा है कि वो जेंजीज को पसंद ही आने वाला था, ऐसा उनका भी मानना था, और हमने भी जब सुना तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था, और होपफुली वो सारे जेंजीज को समझ में भी आ रहा है। और दूसरी बात ये कि स्टोरी लाइन भी ऐसी है, क्योंकि बाबा की कहानी जो है ना वो बहुत ही मिरेकुलस भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बाबा की कहानी है, उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, तो जब उनकी कहानी हम पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या जेंजी, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वो पसंद ही आने वाली थी। और लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संत के बारे में कुछ दिखा रहे होते हैं, तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो उनकी कृपा रही कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निखर के आया कि वो सिर्फ जेंजीज ही नहीं, हर वर्ग को पसंद आ रहा है।
0: इसमें जो नई पीढ़ी के बच्चों की मानसिकता है उसको अध्यात्म की ओर ले जा रही है, भजन क्लबिंग की ओर ले जा रही है। भजन क्लबिंग में प्रधानमंत्री खुद भी आए और पूरी टीम का मनोबल भी बढ़ाया, और जेंजी के साथ वो दिखे भी भजन क्लबिंग में, जिसमें हनुमान अंश की टीम ने वहां पर संगीत प्रस्तुत किया था।
7: जी जी, मैंने वो देखा, और उसकी तो जितनी भी तारीफ, मतलब वो तो हर जो चीज वो करते हैं देश के लिए और देश की जनता के लिए। अब देश की जनता में बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, और जेंजीज भी आते हैं, जेन अल्फा भी आते हैं, तो हर तरीके के जनरेशन के लोग आते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इतने, उनको तो मैं सिद्ध पुरुष बोलता हूँ, सिद्ध संत बोलता हूँ, कि उनके पास में एक सिद्धि है कि वो हर वर्ग के लोगों को, हर किसी को मोह सकते हैं। और इस समय वो काम कर रहे हैं जेंजीज पे, और उनके साथ में वो बच्चों की तरह नाच रहे, मतलब बेसिकली वो एक झूम रहे थे अपने हाथ में वो कुछ ऐसा गोल सा लेके, करताल मंजीर, हाँ, तो वो ऐसा करके ऐसे झूम रहे थे, तो वो कितना वो बच्चे जैसे वो बिल्कुल हो गए थे। तो वो इतनी प्यारी इमेज, मैं तो मतलब क्या ही, मैं तो ऐसे धन्य हो जाता हूँ कि मैं उनके टाइम पे मैं उनको देख पाया, और ऐसे टाइम पे हमने जन्म लिया कि उनको हम देख पा रहे हैं। हम तो बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते
0: हैं। एक आखिरी सवाल ये कि फिल्म से पहले और फिल्म के बाद जीवन में, शैली में क्या बदलाव महसूस कर?
7: फिल्म के बाद में
0: पहले कैसा था?
7: पहले तो मैं
0: इतने स्पिरिचुअल थे या
7: हमेशा से, क्योंकि अगर मेरा जो स्पिरिचुअलिटी को लेके जो सोचना है, या जो मतलब मैं करता था अपनी रियल लाइफ में, और या फिर वो सात्विक भोजन करना हो, सात्विक जिंदगी जीना हो, भाषा का जो प्रयोग है वो भी बहुत सात्विक था मेरा हमेशा से, और मैं मतलब ऑफिस में भी हंसता खेलता रहता था और खुश ही रहता था हमेशा, और ये सारी चीजें टिक मार्क थे जिस वजह से डायरेक्टर सर ने मेरे बारे में सोचा, वरना शायद वो भी ना सोचते। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा जी ने और हनुमान जी ने ऐसी लीला रची थी कि उन्होंने सालों से मुझे प्रिपेयर करके भेजा था। उस वक्त पे लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इतना सात्विक और ये सब ऐसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहा हूं, तो अब जाके उसका आंसर मिला है कि ये तो सालों की तैयारी थी, और इस फिल्म में काम करना था तो हनुमान जी ने और बाबा जी ने ये लीला रची हुई थी। जी,
0: फिल्म के बाद कैसा?
7: बाद तो ऐसा हुआ कि अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि बाबा ने एक ऐसा मौका दिया है मुझे और इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और मैं उसको लेकर बहुत सजग भी रहता हूं, और मुझे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी है आगे भी जीवन में, और इसके लिए मैंने बोला भी हुआ है कि आने वाले जीवन में मैं मर्यादित करेक्टर करूंगा। और अब मैं और ज्यादा मतलब हाँ, ये बदलाव आ गया है कि अब ना बाबा को, मतलब जैसे बाबा ना दूसरों के बारे में, उनका पूरा जीवन, एक संत का जो जीवन होता है वो खुद के लिए तो होता ही नहीं है, वो समाज के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए, इन सब के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं उनसे वो चीजें सीख के एक फील आता है, जब भी मैं लोगों से मिलता हूं और कहीं भी किसी भी जगह पे जाता हूं, तो कहीं ना कहीं एक फील आता है कि कुछ करेंगे समाज के लिए, लोगों के लिए, और जिम्मेदारी से काम करेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे। जी,
0: शोभिनो सत्या ने अपने दिल की बात कही, अब इनके दिल की बात थोड़ा हम भी बता दें, क्योंकि लीगल और सुप्रीम कोर्ट कवर करते करते हम भी एडवोकेसी थोड़ी तो कर ही नहीं लगे हैं। इन्होंने जो कहा नहीं, वो चेरी ऑन द केक टॉप यही है कि जन्म हमार सुफल भा आजू प्रभु के कृपा भयो सब काजू। यानी प्रभु की कृपा से सारा काम हो गया और जन्म सफल हो गया। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर, 200 मीटर दौड़ में हिरता भद्रा ने जीता ब्रॉन्ज। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर, ऋषिकेश में जल पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही अलर्ट। जापान में टीम इंडिया ने की बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया तक शानदार सफर। आज मनाया जा रहा विश्व पर्यटन दिवस, जम्मू कश्मीर में सैलानियों का मेला, उड़ीसा भी पर्यटकों से गुलजार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखा रहे हैं जलवा, आज प्रतियोगिता का 8वां दिन। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत को आज मिले 2 पदक, स्क्वैश में भारत ने जीते 2 सिल्वर। आईशी नागोया एशियन गेम्स 2026 में अभय सिंह लाए भारत के लिए 31वां मेडल, अब तक 4 स्वर्ण, 14 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। अभय सिंह ने सिल्वर जीतने के साथ रच दिया इतिहास। सौरव घोषाल के बाद एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। भारत के स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने भारत के लिए जीता 32वां मेडल, जीता रजत। एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया टोक्यो से नागोया पहुंची, अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने बुलेट ट्रेन से किया सफर। भारतीय खिलाड़ियों ने नोजोमी शिंकानसेन में सफर का उठाया लुत्फ। बुलेट ट्रेन में टीम इंडिया के सफर की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर की। एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से होगा भारत टीम का पहला मुकाबला, 28 सितंबर को होने वाले मैच के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार। अलीगढ़ में धावक का गुलवीर सिंह के परिवार ने मनाया जश्न, मेडल जीतने की खुशी में महिलाओं ने जमकर डांस किया। देश के कई राज्यों में जमकर हो रही है बारिश, कई जगहों पर आईएमडी का रेड अलर्ट, अर्नब चक्रवात के चलते बदला मौसम। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में करीब 48 घंटे से लगातार बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। वाराणसी में साइक्लोन अर्नब के साथ जोरदार बारिश, तेज रफ्तार से चली हवाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी, आज के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जोरदार बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी, हाईवे पर दिखा नदी जैसा नजारा। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के बीच सांसद रवि किशन के आवास के बाहर भरा पानी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरुखाबाद में बारिश के चलते रेलवे की रफ्तार पर भी पड़ा असर, ट्रैक पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश जारी, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी मूसलाधार बारिश से गिरे कई पेड़, कई इलाकों में जलजमाव। पीलीभीत में 48 घंटे से बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर, गांव गांव पुलिस का अलर्ट जारी, शारदा नदी पर प्रशासन की नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश जारी, गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर। नेपाल में भी उफनाई नदियां, कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। नेपाल बिहार बॉर्डर के इलाकों में राहत बचाव का काम जारी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। नेपाल बिहार बॉर्डर पर भी दिखा बाढ़ का असर, कई जगहों पर फसलें डूबी। रायगढ़ में महानदी में उफान, गंगरेल बांध के 14 कपाट खोले गए। झारखंड के कई जिलों में भर गया बारिश का पानी, सड़कों और मकानों में भरा पानी। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति प्रभावित, रांची के ग्रामीण इलाकों में जोनहा में लोग मोबाइल चार्ज करने पहुंचे रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी, बाढ़ से फंसे लोग 10 का हुआ रेस्क्यू। बस्तर के जगदलपुर में 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश, बाढ़ के हालात। डोंगा घाट में बाढ़ के बीच 80 से ज्यादा लोग फंसे, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के चलते अभी तक केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी, सोनप्रयाग में रुके गए हजारों यात्री। बारिश के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में ही रुके हुए हैं, प्रशासन को मौसम के ठीक होने का इंतजार। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी मौसम ने ली करवट, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी से बढ़ी ठंड, 10 अक्टूबर तक चलेगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। अमेरिका के पूर्वी तट पर आए तूफान का न्यू जर्सी में दिखा असर, सड़कों पर भरा पानी। नॉर्थ ईस्टर तूफान में चलते बिजली व्यवस्था भी हुई प्रभावित। पेंसिल्वेनिया में 68,000 से ज्यादा घरों की कटी बिजली। बैंकॉक में भारी बारिश से जलजमाव, लोग कमर तक पानी में सामान लेते हुए नजर आए। बैंकॉक में 48 घंटे में करीब 300 मिलीमीटर बारिश हो गई। सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन डूब गए। बाढ़ से राहत के लिए 233 अस्थायी शेल्टर्स तैयार, करीब 4,200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, काजा पिन घाटी और शिंकुला दर्रे समेत ऊंचाई के इलाकों में बदल गया मौसम। शिंकुला दर्रा और चंद्रताल इलाके में भी बर्फबारी, लाहौल घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन पहले ही बर्फबारी। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट, प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में देश की पहली LNG ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, ट्रेन का 2,000 किलोमीटर से ज्यादा का हुआ सफल ट्रायल। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल के बीच स्विच कर सकेगा इंजन, डीजल 40% खपत कम करने में मदद मिलेगी। देशभर में आज से पितृपक्ष की शुरुआत, नदी घाटों पर तर्पण और पिंडदान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पितृपक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा, सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा समापन। पितृपक्ष को लेकर गया में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, देश भर से लोग पिंडदान और तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए श्रद्धा श्राद्ध तर्पण और पिंडदान की परंपरा है। आज प्रतिपदा श्राद्ध के साथ देश भर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, पितृपक्ष पर विधि विधान से कर रहे हैं तर्पण, पिशाच मोचन कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान। बुंदेलखंड के मऊरानीपुर में जल विहार महोत्सव की धूम, बुंदेली आस्था की 303 साल पुरानी परंपरा। इस महोत्सव में भगवान श्री गूदर बादशाह को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। गूदर बादशाह परंपरा की सबसे अहम कड़ी है श्री गूदर बादशाह सरकार की देव विमान यात्रा। गूदर बादशाह के विमान के पीछे करीब 100 देव विमान भी निकले, जो रात भर नगर की विभिन्न गलियों में घूमे और लोगों ने दर्शन पूजन किया। इस महोत्सव का सीधा संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से है, बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त इस महोत्सव में भगवान कृष्ण से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। कांगड़ा में मां चामुंडा देवी मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण, गर्भगृह का स्वरूप और होगा भव्य। 3 किलो सोना 6 क्विंटल चांदी से सजेगा मां चामुंडा का दरबार। गुंबदों की फिनिशिंग के साथ दीवारों पर मार्बल लगाने का काम जारी। चामुंडा धाम के गर्भगृह में लगाया जा रहा है वियतनाम से लाया गया संगमरमर। बाड़ेर खड्ड के किनारे स्थित चामुंडा देवी मंदिर में हर साल पहुंचने लाखों की संख्या में श्रद्धालु, गर्भगृह में 100 श्रद्धालुओं के एक साथ बैठने की व्यवस्था। राजधानी दिल्ली में वॉक फॉर हेल्थी सिटी वॉकाथॉन का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। वॉक फॉर हेल्थी सिटी वॉकाथॉन को पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में संडे साइकिल रैली का आयोजन किया गया, लोगों ने जुम्बा डांस किया। हैदराबाद में पिंक पावर रन का हुआ आयोजन, फिल्मी कलाकारों और मशहूर लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। तिरुचिरापल्ली में हार्ट अवेयरनेस रेस का आयोजन किया गया, नीली ड्रेस में प्रतिभागियों ने शिरकत की। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा जी का जलस्तर चेतावनी स्तर के ऊपर, पुलिस अनाउंसमेंट करके घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से कर रहे हैं सावधान रहने की अपील। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में भीम गोडा बैराज पर गंगा का जलस्तर 293 मीटर चेतावनी के स्तर तक पहुंचा। जल स्तर में और बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आसपास के गंगा के पास के इलाकों को करा जा रहा है खाली। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बीच रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम चमोली में रुद्रनाथ ट्रैक पर 150 फीट गहरी खाई में गिरे ट्रैकर्स को निकाला। गनीमत रही कि भारी बारिश के बीच ट्रैकर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बागेश्वर में खाईखाल के समीप भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 109 बंद। रास्ता बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई, जल्द से जल्द वाहन को दुरुस्त करने की कोशिश। ओडिशा के भद्रक में भी तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में घुस गया पानी, प्रशासन की ओर से पानी निकासी की कोशिश है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का किया जिक्र, बोले 10 साल पहले पूरी दुनिया को हो गई थी हैरत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी मद्रास यूनिकॉर्न वेंचर फंड किया लॉन्च। गुजरात के कांडला में देश के पहले पोर्ट आधारित ई मेथनॉल प्लांट की रखी गई आधारशिला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेजी से चलाई जा रही है ग्रामीण विकास की योजनाएं, कम्युनिटी बायोगैस प्लांट से किया जा रहा है ऊर्जा उत्पादन। श्रीनगर से बुक का रीडर्स के लिए शानदार खबर, दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों की शानदार प्रदर्शनी। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पुरटासी पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना। पुरी में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर चंद्रभागा बीच पर देखा खूबसूरत नजारा। जयपुर के विद्याधर नगर में ग्रीन फिट हाफ मैराथन सीजन का आयोजन। जोधपुर में ऑपरेशन तरंग शक्ति का आज दूसरा दिन, अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल। जोधपुर वायुसेना स्टेशन इलाके में 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026। मदुरई के ऐतिहासिक गांधी मेमोरियल संग्रहालय की मरम्मत और जीर्णोद्वार का काम हुआ पूरा, कल मुख्यमंत्री विजय करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की ओर से चला गया स्वच्छता ही सेवा अभियान, सफदरजंग के मकबरे की गई सफाई। मनाली से रैली ऑफ हिमालयस 2026 का शानदार आगाज। हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों पर बनेगा रफ्तार का नया इतिहास, रैली पहली बार जस्कार के बर्फीले इलाके में पहुंचे। क्रॉस कंट्री रैली में छठे संस्करण में 140 से ज्यादा साहसी प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। गुजरात के अंबाजी भादरवी पूनम महामेले में आस्था का महाकुंभ, मेले के समापन पर धाम में उमड़े लाखों श्रद्धालु। भादरवी पूनम महामेले में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड जमावड़ा, 7 दिन में 42 लाख आंकड़ा पार। दूर दूर से पदयात्रा करके पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु, मां अंबा के जयकारों की गूंज। सतरंगी रोशनी से जगमगाया अंबाजी धाम, मंदिर की भव्य सजावट ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। 358 स्वर्ण कलशों से सजाया गया है अंबाजी मंदिर का स्वर्ण शिखर। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की नई फिल्म द वीवान की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, 2 दिन में भारत में 22 करोड़ का आंकड़ा पार। 51 विदेन हनुमान अंश पर बरसी नीम करौरी बाबा की कृपा, कुल 5,58,00,000 का कारोबार, 352 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। फिल्म द पैराडाइज ने कल 15,25,00,000 का कारोबार किया। मिर्जापुर द मूवी ने शनिवार को करीब 1 करोड़ कमाए, 23 दिन में भारत में क्रॉस 267 करोड़ का कलेक्शन। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण के मेकर्स का डबल धमाल, जारी की फिल्म के दो नए पोस्टर, रावण का लुक देखकर चहकुटे फैंस।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: बचपन में देखा अखबार में छपने का सपना, मेहनत के दम पर छाप दी कीर्तिमानों की किताब, अपनी दमदार पारी से पक्का किया गोल्ड, जीत की स्मृतियों का शानदार सिलसिला, वंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: बात करेंगे फिल्म लव एंड वॉर की, जो संजय लीला भंसाली अपकमिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद। विक्की कौशल का पहला लुक निकलकर सामने आया। दुनिया भर में ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने जा रही है और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा।
2: मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। ये बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी क्रेज बना हुआ है। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से विकी कौशल का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है। लव एंड वॉर से सामने आई विकी कौशल के फर्स्ट लुक पोस्टर में एक्टर का काफी धांसू अंदाज देखने को मिल रहा है। वो काफी डैशिंग लग रहे हैं। विकी कौशल को इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखा गया है। विकी के लुक को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में विकी कौशल काफी दमदार और इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। माथे पर चोट का निशान, मोटी मूछें और विंटेज हेयर स्टाइल उनके लुक को रेट्रो टच दे रहे हैं। डार्क शर्ट और उंगली में पहनी गोल्ड रिंग उनके लुक को और भी खास बना रही है। विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि नजरें मिलेंगी लेकिन हटेंगी नहीं। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जल्द मिलते हैं। लव एंड वॉर से सबसे पहले रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया था। पोस्टर में रणबीर कपूर कार में चश्मा लगाए बैठे हुए काफी रोबीले अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका एक हाथ खून से साना हुआ दिख रहा है। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, इश्क भी जंग भी। इसके बाद आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक पोस्टर आया जिसमें उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है। पोस्टर में वो मरून कलर की हाई स्लिट स्कर्ट और हेडपीस पहने कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आग भी दिलों की जान भी। लव एंड वॉर को संजय लीला भंसाली ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। अब ये 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लव एंड वॉर की रिलीज डेट अब तक कई बार बदली जा चुकी है। सबसे पहले इसकी रिलीज की घोषणा जनवरी 2024 में हुई थी। उस समय फिल्म को क्रिसमस 2025 पर रिलीज करने की योजना थी। बड़े स्तर पर हो रही शूटिंग और प्रोडक्शन में ज्यादा समय लगने के कारण रिलीज को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद मार्च 2026 में फिल्म रिलीज होने की बात सामने आई। इस बीच 14 अगस्त 2026 की रिलीज डेट की भी चर्चा हुई थी। हालांकि फिल्म का काम तय समय से पूरा नहीं हो सका, खासतौर पर बड़े VFX और हवाई एक्शन सीन्स के कारण समय बढ़ा। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट तय की है जो 2027 के जनवरी की है। उम्मीद की जा रही है कि 21 जनवरी को फिल्म रिलीज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें
5: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले दो सिल्वर मेडल। 200 मीटर दौड़ में हिरदा भद्रा ने जीता ब्रॉन्ज। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर, ऋषिकेश में जल पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही है अलर्ट। जापान में टीम इंडिया ने की बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया तक शानदार सफर। आज मनाया जा रहा विश्व पर्यटन दिवस, जम्मू कश्मीर में सैलानियों का

एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हासिल हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तां, सुनिए।

हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बनने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशीबाजी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गईं। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को

0: से लेकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छूलेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थी। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तसव्वुर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाली स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाले स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 इयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा कर देते। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी, तब मैं इंजर्ड हुई थी एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वाज 22 जून एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ्स से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द एनसीएस स्टाफ बीसीसीआई स्टाफ वर रियली हेल्पफुल एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो वी विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड क्वीन बन गईं। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहीं। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवद गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवद गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagav hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under-19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli में स्मृति का पूरा बचपन बिताई, यहाँ तक कि Sangli के चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। कमाल यह है कि Sangli में रहते हुए महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए किस्सों को, पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले दो सिल्वर मेडल, 200 मीटर दौड़ में हिरता भद्रा ने जीता ब्रॉन्ज। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ देखा बर्फ ही बर्फ का नजारा। मायो पॉलीमर प्लांट की भीम का मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक सेफ निकासी के लिए, उत्तर प्रदेश के चंदौली में हो रही है चौड़ी। 3 दिनों से महाबली ट्रक देखने वालों का लगा है तांता। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर, ऋषिकेश में जल पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही है अलर्ट। जापान में टीम इंडिया ने बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया तक शानदार सफर। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की खपत होगी कम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
2: एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखा रहे हैं जलवा, आज प्रतियोगिता का 8वां दिन। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत को आज मिले 2 पदक, स्क्वैश में भारत ने जीते 2 सिल्वर। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में अभय सिंह लाए भारत के लिए 31वां मेडल, अब तक 4 स्वर्ण, 14 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। अभय सिंह ने सिल्वर जीतने के साथ रच दिया इतिहास, सौरभ घोषाल के बाद एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। भारत के स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने भारत के लिए जीता 32वां मेडल, जीता रजत। एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया टोक्यो से नागोया पहुंची, अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने बुलेट ट्रेन से किया सफर। भारतीय खिलाड़ियों ने नोजोमी शिंकानसेन में सफर का उठाया लुत्फ। बुलेट ट्रेन में टीम इंडिया के सफर की तस्वीरें निकलकर सामने आई, बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर की। एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से होगा भारत टीम का पहला मुकाबला, 28 सितंबर को होने वाले मैच के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार। अलीगढ़ में धावक का गुलवीर सिंह के परिवार ने मनाया जश्न, मेडल जीतने की खुशी में महिलाओं ने जमकर डांस किया। देश के कई राज्यों में जमकर हो रही है बारिश, कई जगहों पर आईएमडी का रेड अलर्ट, अर्नब चक्रवात के चलते बदला मौसम। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में करीब 48 घंटे से लगातार बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। वाराणसी में साइक्लोन अर्नब के साथ जोरदार बारिश, तेज रफ्तार से चली हवाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी, आज के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जोरदार बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी, हाईवे पर दिखा नदी जैसा नजारा। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के बीच सांसद रवि किशन के आवास के बाहर भरा पानी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरुखाबाद में बारिश के चलते रेलवे की रफ्तार पर भी पड़ा असर, ट्रैक पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश जारी, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी मूसलाधार बारिश से गिरे कई पेड़, कई इलाकों में जलजमाव। पीलीभीत में 48 घंटे से बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर का असर, गांव गांव पुलिस का अलर्ट जारी, शारदा नदी पर प्रशासन की नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश जारी, गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर। नेपाल में भी उफनाई नदियां, कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। नेपाल बिहार बॉर्डर के इलाकों में राहत बचाव का काम जारी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। नेपाल बिहार बॉर्डर पर भी दिखा बाढ़ का असर, कई जगहों पर फसलें डूबी। रायगढ़ में महानदी में उफान, गंगरेल बांध के 14 कपाट खोले गए। झारखंड के कई जिलों में भर गया बारिश का पानी, सड़कों और मकानों में भरा पानी। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति प्रभावित, रांची के ग्रामीण इलाकों में जोनहा में लोग मोबाइल चार्ज करने पहुंचे रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी, बाढ़ से फंसे लोग 10 का हुआ रेस्क्यू। बस्तर के जगदलपुर में 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश, बाढ़ के हालात। डोंगा घाट में बाढ़ के बीच 80 से ज्यादा लोग फंसे, हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के चलते अभी तक केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी, सोनप्रयाग में रुके गए हजारों यात्री। बारिश के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में ही रुके हुए हैं, प्रशासन को मौसम के ठीक होने का इंतजार। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी मौसम ने ली करवट, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी से बढ़ी ठंड, 10 अक्टूबर तक चलेगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। अमेरिका के पूर्वी तट पर आए तूफान का न्यू जर्सी में दिखा असर, सड़कों पर भरा पानी। नॉर्थ ईस्टर तूफान में चलते बिजली व्यवस्था भी हुई प्रभावित, पेंसिल्वेनिया में 68,000 से ज्यादा घरों की कटी बिजली। बैंकॉक में भारी बारिश से जलजमाव, लोग कमर तक पानी में सामान लेते हुए नजर आए। बैंकॉक में 48 घंटे में करीब 300 मिलीमीटर बारिश हो गई, सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन डूब गए। बाढ़ से राहत के लिए 233 अस्थायी शेल्टर्स तैयार, करीब 4,200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, काजा पिन घाटी और शिंकुला दर्रे समेत ऊंचाई के इलाकों में बदल गया मौसम। शिंकुला दर्रा और चंद्रताल इलाके में भी बर्फबारी, लाहौल घाटी की ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन पहले ही बर्फबारी। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट, प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में देश की पहली LNG ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, ट्रेन का 2,000 किलोमीटर से ज्यादा का हुआ सफल ट्रायल। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल के बीच स्विच कर सकेगा इंजन, डीजल 40% खपत कम करने में मदद मिलेगी। देशभर में आज से पितृपक्ष की शुरुआत, नदी घाटों पर तर्पण और पिंडदान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पितृपक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा, सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा समापन। पितृपक्ष को लेकर गया में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, देश भर से लोग पिंडदान और तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए श्रद्धा श्राद्ध तर्पण और पिंडदान की परंपरा है, आज प्रतिपदा श्राद्ध के साथ देशभर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, पितृपक्ष पर विधि विधान से कर रहे हैं तर्पण, पिशाच मोचन कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान। बुंदेलखंड के मऊरानीपुर में जल विहार महोत्सव की धूम, बुंदेली आस्था की 303 साल पुरानी परंपरा। इस महोत्सव में भगवान श्री गूदर बादशाह को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। गूदर बादशाह परंपरा की सबसे अहम कड़ी है श्री गूदर बादशाह सरकार की देव विमान यात्रा। गूदर बादशाह के विमान के पीछे करीब 100 देव विमान भी निकले जो रात भर नगर की विभिन्न गलियों में घूमे और लोगों ने दर्शन पूजन किए। इस महोत्सव का सीधा संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से है। बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त इस महोत्सव में भगवान कृष्ण से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। कांगड़ा में मां चामुंडा देवी मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण, गर्भगृह का स्वरूप और होगा भव्य। 3 किलो सोना 6 क्विंटल चांदी से सजेगा मां चामुंडा का दरबार। गुंबदों की फिनिशिंग के साथ दीवारों पर मार्बल लगाने का काम जारी। चामुंडा धाम के गर्भगृह में लगाया जा रहा है वियतनाम से लाया गया संगमरमर। बाड़ेर खड्ड के किनारे स्थित चामुंडा देवी मंदिर में हर साल पहुंचने लाखों की संख्या में श्रद्धालु। गर्भगृह में 100 श्रद्धालुओं के एक साथ बैठने की व्यवस्था। राजधानी दिल्ली में वॉक फॉर हेल्थी सिटी वॉकाथॉन का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। वॉक फॉर हेल्दी सिटी वॉकाथॉन को पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में संडे साइकिल रैली का आयोजन किया गया, लोगों ने जुम्बा डांस किया। हैदराबाद में पिंक पावर रन का हुआ आयोजन, फिल्मी कलाकारों और मशहूर लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। तिरुचिरापल्ली में हार्ट अवेयरनेस रेस का आयोजन किया गया, नीली ड्रेस में प्रतिभागियों ने शिरकत की। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा जी का जलस्तर चेतावनी स्तर के ऊपर। पुलिस अनाउंसमेंट करके घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से कर रहे हैं सावधान रहने की अपील। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में भीम गोडा बैराज पर गंगा का जलस्तर 293 मीटर चेतावनी के स्तर तक पहुंचा। जलस्तर में और बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आसपास के गंगा के पास के इलाकों को कराया जा रहा है खाली। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बीच रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम चमोली में रुद्रनाथ ट्रैक पर 150 फीट गहरी खाई में गिरे ट्रैकर्स को निकाला। गनीमत रही कि भारी बारिश के बीच ट्रैकर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बागेश्वर में खाईखाल के समीप भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 109 बंद। रास्ता बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई, जल्द से जल्द वाहन को दुरुस्त करने की कोशिश। ओडिशा के भद्रक में भी तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में घुस गया पानी, प्रशासन की ओर से पानी निकासी की कोशिश है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का किया जिक्र, बोले 10 साल पहले पूरी दुनिया को हो गई थी हैरत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास यूनिकॉर्न वेंचर फंड किया लॉन्च। गुजरात के कांडला में देश के पहले पोर्ट आधारित ई मेथनॉल प्लांट की रखी गई आधारशिला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेजी से चलाई जा रही है ग्रामीण विकास की योजनाएं, कम्युनिटी बायोगैस प्लांट से किया जा रहा है ऊर्जा उत्पादन। श्रीनगर से बुक का रीडर्स के लिए शानदार खबर, दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों की शानदार प्रदर्शनी। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पुरटासी पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना। पुरी में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर चंद्रभागा बीच पर देखा खूबसूरत नजारा। जयपुर के विद्याधर नगर में ग्रीन फिट हाफ मैराथन सीजन का आयोजन। जोधपुर में ऑपरेशन तरंग शक्ति का आज दूसरा दिन, अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल। जोधपुर वायुसेना स्टेशन इलाके में 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026। मदुरई के ऐतिहासिक गांधी मेमोरियल संग्रहालय की मरम्मत और जीर्णोद्वार का काम हुआ पूरा, कल मुख्यमंत्री विजय करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की ओर से चलाया गया स्वच्छता ही सेवा अभियान, सफदरजंग के मकबरे की गई सफाई। मनाली से रैली ऑफ हिमालयस 2026 का शानदार आगाज। हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों पर बनेगा रफ्तार का नया इतिहास। रैली पहली बार राह जस्कार के बर्फीले इलाके में पहुंचे। क्रॉस कंट्री रैली में छठे संस्करण में 140 से ज्यादा साहसी प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। गुजरात के अंबाजी भादरवी पूनम महामेले में आस्था का महाकुंभ और मेले के समापन पर धाम में उमड़े लाखों श्रद्धालु। भादरवी पूनम महामेले में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड जमावड़ा, 7 दिन में 42 लाख आंकड़ा पार। दूर दूर से पदयात्रा करके पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु, मां अंबा के जयकारों की गूंज। सतरंगी रोशनी से जगमगाया अंबाजी धाम, मंदिर की भव्य सजावट ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। 358 स्वर्ण कलशों से सजाया गया है अंबाजी मंदिर का स्वर्ण शिखर। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की नई फिल्म द वीवान की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, 2 दिन में भारत में 22 करोड़ का आंकड़ा पार। 51 विदेन हनुमान अंश पर बरसी नीम करौरी बाबा की कृपा, कुल 5,58,00,000 का कारोबार, 352 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। फिल्म द पैराडाइज ने कल 15,25,00,000 का कारोबार किया। मिर्जापुर द मूवी ने शनिवार को करीब 1 करोड़ कमाए, 23 दिन में भारत में क्रॉस 267 करोड़ का कलेक्शन। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण के मेकर्स का डबल धमाल, आ जारी की फिल्म के दो नए पोस्टर, रावण का लुक देखकर चहकुटे फैंस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अब आपको दिखाते हैं एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के बुलेट ट्रेन के सफर की शानदार तस्वीरें। ये देखिए जापानी अंदाज में सफर करते हुए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को टोक्यो से नागोया पहुंच गई। टोक्यो से नागोया तक का ये सफर टीम ने जापान की मशहूर नोजोमी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से तय किया। सफर के दौरान सभी खिलाड़ी बहुत आरामदायक मूड में नजर आए और उन्होंने हाई स्पीड ट्रेन यात्रा का जमकर लुत्फ उठाया। बीसीसीआई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की गई हैं। भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपने सफर की शुरुआत कल 28 सितंबर को करने जा रही है। भारतीय टीम की पहली टक्कर अफगानिस्तान से होने जा रही है। इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हैं। इससे पहले बुलेट ट्रेन में उनके सफर की शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें खिलाड़ी मौज मस्ती करते हुए नजर आए। देखिए
7: तस्वीर।
2: बात करेंगे बंगाल के रंग में रंगने वाली दिल्ली की, अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, संगीत और व्यंजनों के सांस्कृतिक केंद्र दिल्ली हाट में बंगाल की संस्कृति का उत्सव चल रहा है। शारदीय नवरात्र यानी दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली हाट में बंगाल प्री पूजा एक्सपो चल रहा है, जहां पर पारंपरिक लाल सफेद साड़ियां, विशेष कलाकृतियां और मिट्टी से बनी आभूषण आकर्षण का केंद्र इस वक्त बनी हुई हैं। यहां पर बंगाल के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। 30 सितंबर तक दिल्ली हाट जाने पर आपको बंगाल से जुड़ा हर रंग देखने को मिलेगा।

0: हों या धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे अवसरों पर श्रृंगार और सजनी संवरने की परंपरा का गहरा महत्व है। श्रृंगार से त्योहारों की रौनक और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कई त्योहार आ रहे हैं, जिनमें शामिल शारदीय नवरात्रि का पर्व भी बेहद खास है, जिसके आते ही वातावरण में एक अलग तरह की भक्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा खुल जाती है। नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना और उनके नौ स्वरूपों को पूजने का त्योहार है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन होता है, जिस पर हर तरफ माता के जयकारे गूंजने लगते हैं। माँ दुर्गा यानी माता रानी के जयकारों की गूंज सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को उत्साह, उमंग और उल्लास से भर देती है। पावन त्योहार शारदीय नवरात्रि अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हालांकि दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भव्य तरीके से सजने, संवरने और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत मौका भी होता है। नवरात्रि के दौरान सुबह के अंजलि अनुष्ठान से लेकर रात में पंडाल घूमने तक हर समय के लिए अलग और खास लुक अपनाया जाता है। इसलिए दुर्गा पूजा से पहले ही दिल्ली पर बंगाल का पारंपरिक और सांस्कृतिक रंग चढ़ने लगा है। दिल्ली हाट में बंगाल प्री पूजा एक्सपो चल रहा है, जहां बंगाल की सांस्कृतिक रौनक और पारंपरिक कला देखने लायक है। वहां की हस्तकला अपनी अनूठी संस्कृति, सुंदरता और समृद्ध परंपरा के लिए मशहूर है। इन्हीं में से एक टेराकोटा ज्वेलरी है, जिन पर होने वाले रंग भी इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल है। पूजा में परंपरा को बरकरार रखने के लिए बेहद खास रानी हार है। इस मिट्टी की ज्वेलरी में दुर्गा माँ की छवि दिखना भी विशिष्ट है।
1: यहाँ पर कुछ चीजें आपको इतनी खास मिलेंगी कि आप उन्हें लेने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत खास चीज दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये इयररिंग्स हैं महिलाओं की, और देखने में आपको सिंपल सी लग सकती है, लेकिन खास बात है इनकी। क्या खास बात है इनकी? खास बात ये है कि ये मिट्टी के बने हुए हैं, और ये उस मिट्टी से बनाए गए हैं जिस मिट्टी से बंगाल में दुर्गा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। अब आप सोचिए कि इसके मायने कितने अलग हो गए हैं, खासकर जब आप पूजा के लिए, दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए आप शॉपिंग करने आए हो। नीलम शॉ जी मेरे साथ में हैं। मैम, अब क्या कुछ लेकर आई हैं?
2: मिट्टी के ज्वेलरी हैं, टेराकोटा, उसे हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है, हमारे बंगाल में टेराकोटा बोलते हैं। और ये जो कलरिंग वाले सामने, ये केमिकल बीट्स के बने हुए हैं, ये भी चल रहा है। और यहाँ का डिमांड
1: जितने दिन की होती है, क्या अलग अलग दिन के हिसाब से भी लोग ज्वेलरी पहनते हैं?
2: हाँ हाँ, ये भी है। जैसे मैं फूल लाई थी, आज तो खत्म हो गया, वो बालों में लगाने के लिए, हल्दी मेहंदी, उन सब रस्मों के लिए। अभी है छोटे वाले फूल बचे हुए हैं, बड़े वाले सब निकल गए।
0: दुर्गा पूजा में लाल और सफेद रंग की साड़ी पहनने की परंपरा है, जिसे बंगाल के लोग लाल पार्ट साड़ी भी कहते हैं, जो बंगाली संस्कृति और परंपरा का सबसे खास और पवित्र प्रतीक मानी जाती है, जिसे मटका सिल्क, कोरा सिल्क, गरद या टसर सिल्क फैब्रिक में भी चुना जा सकता है।
1: दुर्गा पूजा में जो साड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं, उनमें व्हाइट और रेड कलर की जो साड़ी होती है, वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, सबसे ज़्यादा वो डिमांड में भी होती है। तो जब आप दिल्ली हाट आएंगे, तो आपको यहाँ पर इस रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलने वाली हैं। रूपाली जी और पीपा शाह जी मेरे साथ में हैं, और दोनों ही वेस्ट बंगाल से आए, और क्या शानदार कलेक्शन लेकर आए हैं। आप ये साड़ी देखिए, ये रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में है, और इस पर दुर्गा माँ की जो छवि है वो भी बनी हुई है, और बिल्कुल हाथ से ये सारा काम किया गया है। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि रेड और वाइट सबसे ज़्यादा शुभ होता है पूजा के लिए, तो कितने तरह की रेड और वाइट साड़ी हैं आपके पास? ये कौन सी है?
3: ये सिल्क कॉटन आएगा, ये सब दुर्गा माँ के लिए। रेड ब्लाउज पीस आएगा, रेड और पल्लू, और बॉडी से व्हाइट आएगा।
1: ये सिल्क में?
3: हाँ, सिल्क के गौरद बॉर्डर।
1: क्या है?
4: गौरद का साड़ी है, सिल्क।
3: सिल्क साड़ी का नाम गौरद साड़ी, साड़ी का नाम
4: सिल्क।
3: गौरद साड़ी बहुत चलती है, पूजा कर लिए।
0: आमतौर पर दिल्ली हाट में पुरुषों के लिए कुछ खास नहीं मिलता है, लेकिन इस एक्सपो में शादी ब्याह के पारंपरिक कपड़ों के अलावा नवरात्र समेत दूसरे त्योहारों के दौरान पुरुषों के पहनने के लिए ब्रोच भी है।
5: ब्रोच है जैसे पुरुष के लिए, वो बंगाली में जो पंजाबी और कुर्ता पंजाबी बोलते हैं, उसमें त्योहार के समय ये पहन सकते हैं आप लोग।
1: तो मैं कुछ ट्राई करेंगे मुझे, चलिए निकालते हैं फिर। देखिए, बहुत सारे ब्रोच है, और मैंने भी इत्तेफाक से आज कुर्ता पहन रखा है, हालांकि लॉन्ग कुर्ता नहीं है, शॉर्ट कुर्ता है। कुछ चीजें मैं ट्राई करता हूँ। ये ट्राई करें।
5: हाँ, ये भी
6: पहन सकते हैं।
1: निकालिए आप, निकालिए।
6: हाँ, ये भी पहन सकते।
1: ये क्या है?
6: ये लक्ष्मी जी का सवारी, हमारी आउल पैचा।
1: ठीक है, आप लगाएंगे? ठीक है। ये किस चीज के बने हुए हैं?
6: काट का, कूट का है, लकड़ी का है और हैंड से स्केच किया हुआ है।
1: लकड़ी का है और हैंड से इसको स्केच
6: किया। हाँ।
1: आपने अपने हाथ से किया?
6: नहीं नहीं, ये लोग बनाते हैं, जो लोग काम करते हैं इसमें ऊपर।
1: अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ। ये रिंग है,
6: रिंग है।
1: और वाकई जब ये पहनेंगे आप तो बहुत सुंदर लगे, बहुत ट्रेडिशनल भी लग रही है।
6: एक रूप होता है ना, बड़न जो होता है ना, वधु बड़न, माँ का जो बड़न होता है ना दशमी के दिन, उससे उसी रूप से ये गमछे के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बनाया मैंने।
1: ये भी गमछा माँ का जो ट्रेडिशनल गमछा।
6: हाँ, इसके ऊपर ही मुझे प्राइज मिला है माँ के ऊपर।
0: नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा के भव्य श्रृंगार की परंपरा है। ऐसे में माँ के भक्त भी सज संवर कर उनकी आराधना करते हैं और अद्भुत जोश और उत्साह से नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बात करेंगे फिल्म लव एंड वॉर की, जो संजय लीला भंसाली अपकमिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद विक्की कौशल का पहला लुक निकलकर सामने आया। दुनिया भर में ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने जा रही है और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा।
8: मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। ये बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी क्रेज बना हुआ है। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से विकी कौशल का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है। लव एंड वॉर से सामने आई विकी कौशल के फर्स्ट लुक पोस्टर में एक्टर का काफी धांसू अंदाज देखने को मिल रहा है। वो काफी डैशिंग लग रहे हैं। विकी कौशल को इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखा गया है। विकी के लुक को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में विकी कौशल काफी दमदार और इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। माथे पर चोट का निशान, मोटी मूछें और विंटेज हेयर स्टाइल उनके लुक को रेट्रो टच दे रहे हैं। डार्क शर्ट और उंगली में पहनी गोल्ड रिंग उनके लुक को और भी खास बना रही है। विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि नजरें मिलेंगी लेकिन हटेंगी नहीं। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जल्द मिलते हैं। लव एंड वॉर से सबसे पहले रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया था। पोस्टर में रणबीर कपूर कार में चश्मा लगाए बैठे हुए काफी रोबीले अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका एक हाथ खून से सना हुआ दिख रहा है। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, इश्क भी जंग भी। इसके बाद आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक पोस्टर आया जिसमें उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है। पोस्टर में वो मरून कलर की हाई स्लिट स्कर्ट और हेडपीस पहने कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आग भी दिलों की जान भी। लव एंड वॉर को संजय लीला भंसाली ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। अब ये 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लव एंड वॉर की रिलीज डेट अब तक कई बार बदली जा चुकी है। सबसे पहले इसकी रिलीज की घोषणा जनवरी 2024 में हुई थी। उस समय फिल्म को क्रिसमस 2025 पर रिलीज करने की योजना थी। बड़े स्तर पर हो रही शूटिंग और प्रोडक्शन में ज्यादा समय लगने के कारण रिलीज को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद मार्च 2026 में फिल्म रिलीज होने की बात सामने आई। इस बीच 14 अगस्त 2026 की रिलीज डेट की भी चर्चा हुई थी। हालांकि फिल्म का काम तय समय से पूरा नहीं हो सका, खासतौर पर बड़े VFX और हवाई एक्शन सीन्स के कारण समय बढ़ा। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट तय की है जो 2027 के जनवरी की है। उम्मीद की जा रही है कि 21 जनवरी को फिल्म रिलीज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर मेडल, 200 मीटर दौड़ में हिस्सा, भद्रा ने जीता ब्रॉन्ज। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बायो पॉलीमर प्लांट की भीम का मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक, सेफ निकासी के लिए उत्तर प्रदेश चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी, 3 दिनों से महाबली ट्रक देखने वालों का लगातार था। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर, ऋषिकेश में जल पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही अलर्ट। जापान में टीम इंडिया ने बुलेट ट्रेन की सवारी, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो, टोक्यो से नागोया तक शानदार सफर। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की खपत होगी कम।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौत।
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। आज बात कर रहे हैं दुनिया के दमदार जोड़ीदारों की, शुरुआत सरहद के करीब युद्धाभ्यास कर रहे दमदार जोड़ीदारों से करेंगे, आसमान में अपाची की दहाड़ और जमीन पर

0: से आंख मिलाते, अपनी शान बताते। जब परवाज भरता है, दिल दुश्मन का डरता है। हवा के पैरों पर पराक्रम का हस्ताक्षर है ये, अपाचे है ये। और इसकी ताकत की नुमाइश एक बार फिर हुई बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां भारत और अमेरिका की फौज मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। देखिए हवा का टैंक कहा जाने वाला ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर कैसे पिन पॉइंट मार करता है। एक बार लक्ष्य तय हुआ तो बस समझिए कि दुश्मन गया। हेलीकॉप्टर से निकलती 30 mm गोलियों की रफ्तार देखिए और जमीन पर उनकी मार देखिए। गोलियों की आवाज से रेगिस्तान गूंज उठा और दूर कहीं लक्ष्य धुआं धुआं हो गया। युद्धाभ्यास 2026 में एविएशन की ताकत जोड़ते हुए भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया। उसकी ताकत और कौशल को दोनों देशों के जवानों ने आजमाया और अपाचे ने अपनी खूबियां बता दी। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी और इसके नीचे लगी राइफल से एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और एक उड़ान में करीब 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है अपाचे। कई तरह के मिसाइलों से लैस है ये हेलीकॉप्टर। दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शुमार है और इसका युद्धाभ्यास में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1: पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के सैनिक न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ साथ अब हवाई करतब भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही किस तरह से एक युद्ध में अपने एयर असेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए खास फायरिंग भी इस युद्धाभ्यास में की है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका से ही लिए हैं, हाल ही में भारतीय सेना के एविएशन विंग का हिस्सा बने हैं और अब अमेरिका के सैनिक भारत में आकर इन एविएशन ड्रिल्स को देख रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक एविएशन की बात हो या फिर तोप की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, हर तरफ भारत का कौशल, भारत की स्किल और भारत के युद्ध में जो नई तकनीक है वो कैसे आगे बढ़ रही है और अमेरिका इससे सीख भी रहा है और इसे देख भी रहा है।
0: असल में अभ्यास के दौरान भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक मिशन की योजना बनाई और इसी के तहत जमीन पर मौजूद सैनिकों और हवा में उड़ान भर रहे अपाचे के बीच तालमेल बनाया गया। मकसद ये देखना था कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और जमीनी सैनिक मिलकर कितनी तेजी से काम कर पाएंगे। इस तरह हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई को साथ जोड़ने और साथ ही संपर्क बनाए रखने और टाइमिंग का अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे के रण कौशल को करीब से देख समझ रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रक्रिया, संचार और तालमेल को बेहतर बनाया जा रहा है। जाहिर है कि इसमें सिर्फ जमीनी तैयारी नहीं बल्कि फोकस हवा और जमीन की ताकत के बीच तालमेल बनाने का है। और जहां तक बात जमीनी ताकत की है तो उन्हें इन धमाकों से समझा जा सकता है। जो M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र धनुष तो और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के हैं। अत्याधुनिक तकनीक वाले

0: रणभूमि में दुश्मन के लिए काल हैं, जिनके सटीक इस्तेमाल का अभ्यास सरहद के पास किया गया। बला की तेजी के साथ तोप के गोले डाले गए और जब फायरिंग हुई तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। अब जरा पिनाका की ताकत भी देख लीजिए। कमांड मिलते ही इसकी मल्टी बैरल लॉन्चर से कई रॉकेट लक्ष्य की ओर लपके। बीकानेर के इस रेतीले इलाके में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने मिलकर एयर डिफेंस तोपों और एम लीज प्रणालियों को भी परखा। इस दौरान फायरिंग की योजना बनाई गई और उसमें आपसी तालमेल भी परखा गया। लेकिन भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में फोकस कई और चीजों पर भी है। युद्ध या मिशन के दौरान सर्विलांस की रणनीति क्या हो, टोही अभियानों की तैयारी कैसी की जाए और इसमें ड्रोन्स का बेहतर तालमेल कैसे हो, इन सभी जरूरी मुद्दों पर दोनों देशों के सैनिक मंथन कर रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों सेनाओं की ऑब्जर्वेशन पोस्ट टुकड़ियों ने भी साथ मिलकर काम किया। लक्ष्य की पहचान करने के साथ एक्शन की रणनीति तय हुई। ये तस्वीरें भारत और अमेरिकी सैनिकों की ताकत और कौशल की नुमाइश है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरहद के करीब ये युद्धाभ्यास दुश्मन के लिए एक संदेश भी है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर को हुई। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: क्वाड देशों में शामिल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बहुत मजबूत है और ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के आपसी विश्वास की पहचान है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका और भारत ने अभ्यास के लिए दो अलग अलग इलाकों को चुना, एक तरफ उत्तराखंड का औली और दूसरी तरफ राजस्थान का बीकानेर। भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ दुश्मनों से निपटने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ एक अभ्यास उत्तराखंड की औली में, फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। तो वही ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैंपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लियरेंस और रोम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेन डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेन डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल, जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिट्रीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना, क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड, विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली LSE यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों, विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करेंगे तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से इस वक्त गूंज रहा है। भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 में भारत सहित 8 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण है अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने जा रहा है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस वायु शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लोमास्टर, जोधपुर में देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा। जोधपुर में आज से ऐसे शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हुई है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टील्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। आज से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग ले रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और भारत अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे। इसमें 3,000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स भाग ले रहे हैं, खासतौर से राफेल, तेजस, सुखोई 30 MKI, पांचवी पीढ़ी का F-35, F-16 और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कई विमान एक साथ ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर हैं। पांचवी पीढ़ी का ये स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचा है। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल है। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी। तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा है। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचा है। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 600 विमान के साथ आया है। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130J, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन, अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा। जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी अभी खत्म हुआ है। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बात करेंगे शहादत की याद में पूर्व सैनिक के एक अभियान की, जिसका मकसद 26/11 के शहीदों के सम्मान में 26 पर्वत की चोटियों पर चढ़ाई करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना था। गाजियाबाद के रहने वाले पूर्व सैनिक दीपक कुमार ने अपनी टीम के साथ 11 दिन में 6000 मीटर की ऊंचाई वाली 26 पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहराया। मुंबई हमले के दौरान देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले हर शहीद की फोटो भी उन्होंने लगाई। इस अभियान का एकमात्र मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि 26/11 के शहीदों को पर्वतारोहण अभियान के जरिए श्रद्धांजलि देना था।
5: आमतौर पर माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वतारोहण का मकसद नए और मुश्किल पर्वत शिखरों को फतह करना होता है। इस दौरान पर्वतारोही की शारीरिक और मानसिक सीमाओं की परख भी हो जाती है, साथ ही प्रकृति की सुंदरता देखने समझने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन पर्वतारोहण के पीछे भारतीय सेना में रहे इस पूर्व सैनिक का मकसद कुछ और है। देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना हर सैनिक का सर्वोपरि और बुनियादी कर्तव्य है। देश की रक्षा के संकल्प के दौरान कई बार शहादत भी देनी पड़ती है, जिसकी कद्र करना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना यानी सर्वोच्च कुर्बानी की अहमियत एक सैनिक से ज्यादा कौन समझ सकता है। ऐसे में पूर्व सैनिक और पर्वतारोही दीपक कुमार की तरफ से अलग अलग पर्वत के शिखरों तक पहुंचने का मकसद बेहद नेक है।
6: किसी शहीद के बलिदान के मायने एक सैनिक से ज्यादा शायद ही कोई समझ सकता है। आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक के घर लेकर आए हैं जिसकी दीवारें ऐसे तमाम रिकॉर्ड से भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड से परे इस सैनिक ने एक नया मिशन अपनाया। उन्होंने कहा कि वो 26/11 के हमले में शहीद हुए तमाम बलिदानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना पहाड़ का। 11 दिन के भीतर 26 ऊंची पर्वत की चोटियों की इन्होंने चढ़ाई की, जिसमें से हर चोटी की ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा की थी। मिलवाते हैं आपको आज उसी सैनिक से।
5: 26/11 मुंबई हमला भारत के इतिहास का काला अध्याय है, जिसे देश का कोई भी नागरिक कभी नहीं भूल सकता है। तब सैकड़ों मासूम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 18 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी। ऐसे शहीदों के प्रति मन में सम्मान की वजह से पर्वतारोही दीपक कुमार ने श्रद्धांजलि देने की अपनी भावना को खास अभियान से जोड़ दिया। सेना मेडल तक पा चुके दीपक कुमार 31 जुलाई को रिटायर हुए हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवा भी मुश्किल से सांस लेती है, जहां तापमान -5 डिग्री से -20 डिग्री तक होता है, जहां हर कदम बढ़ाना पहाड़ जैसी चुनौती के बराबर होता है, वहां दीपक कुमार अपनी टीम के साथ 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा लहराते हैं। खास बात यह है कि शहादत के सम्मान से जुड़े इस अभियान के लिए उन्होंने 26 नवंबर की तारीख नहीं चुनी, बल्कि 11 दिनों में 26 पर्वत की चोटियों पर तिरंगा फहराने का फैसला किया।
7: मैंने सोचा एज ए आर्मी पर्सन कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो शहीदों के लिए कुछ हो। तब एज ए माउंटेनियर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, तो जैसे एकदम मेरे दिमाग में ये चीजें आई सडन कि 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था तो मैं उन शहीदों को ट्रिब्यूट करता हूँ। तो उसी के व्याप पे हम जो है 11 दिन में 26 पीक क्लाइम करेंगे जो सारी 6000 मीटर से अबव होंगी, और इसके जरिए जो शहीद हुए हैं हम उनको एक ट्रिब्यूट करेंगे।
5: दीपक कुमार की टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें भारतीय सेना के 3 सर्विंग सोल्जर के अलावा 2 सिविलियन भी शामिल है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रॉन्च पर्वत से शुरू हुए इस अभियान के दौरान कई मशहूर पर्वत चोटियों पर शहीदों की फोटो लगाई और तिरंगा लहराया, वो भी अल्पाइन स्टाइल में, जो पर्वतारोहण की एक ऐसी शैली है जिसमें पर्वतारोही बिना किसी बाहरी मदद, भारी साजो सामान, फिक्स्ड रस्सियों और खाने पीने की चीजों के साथ तेजी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं।
7: हमने स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस से 15 अगस्त से स्टार्ट किया था, और इसमें जो टीम थी हमारी 6 बंदों की टीम थी, और 6 बंदों की टीम थी। तो हमने जो ये मिशन था ये हमने स्टार्ट किया था कारजोक से। हमने फर्स्ट में ग्यामा रेंज को, मेंटोक रेंज को कंप्लीट किया था एक दिन में। उसके बाद दूसरा दिन हमारा था यालुंगनांग की तरफ हम गए। तीसरा फेज था हमारा ग्यामा मैसिव की जो पीक्स हैं उसका था, और चौथा फेज था हमारा पोलोगोंका की जो रेंज थी, और पांचवें फेज में हमने खत्म किया था ये अपना थोगजे रेंज को।
5: दीपक के इस अभियान का मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि 26/11 के शहीदों को पहाड़ों के जरिए श्रद्धांजलि देना है। हालांकि पर्वतारोहण का शौक उन्हें सेना में रहते लगा। 2006 में भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद पर्वतारोही के तौर पर दीपक कुमार का सफर लगातार ऊंचाइयां छूता गया। 2013 से 2025 के बीच दीपक 65 चोटियों को फतह कर चुके हैं। इनमें नेपाल की 8,685 मीटर ऊंची माउंट मकालू से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटियां तक शामिल हैं। 2019 में भारतीय सेना के एडवेंचर विंग के अभियान के तहत उन्होंने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया था। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। पर्वतारोहण की दुनिया में दीपक कुमार ने सिर्फ चोटियां फतह नहीं की बल्कि रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 2019 में कजाकिस्तान में 9 दिनों के भीतर 15 चोटियों को छू लिया था। इसके बाद दीपक ने साल 2021 में 24 घंटे के भीतर 12 पर्वत चोटियों का आरोहण किया। दीपक रूस की 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस और अफ्रीका की 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो की चोटियों पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो चुका है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दीपक 3 बार जगह बना चुके हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार उनका नाम दर्ज हो चुका है, और इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दीपक की उपलब्धियां दर्ज है। -25 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफानों और खतरनाक ग्लेशियर पर लगातार चढ़ाई के पीछे एक और मकसद है, त्याग, बलिदान और शहादत के सम्मान के जरिए पूर्व सैनिक दीपक कुमार आने वाली पीढ़ियों और युवाओं में राष्ट्रवाद और सेवा की भावना को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
8: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है। गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी, स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर मेडल, 200 मीटर दौड़ में हिरता भद्रा ने जीता ब्रॉन्ज। प्रभु श्री राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगाए जाएंगे श्री राम स्तंभ, अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक। बायोपॉलीमर प्लांट की भीमगाय मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक सेफ निकासी के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी, 3 दिनों से महाबली ट्रक देखने वालों का हुजूम। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर, ऋषिकेश में जल पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही अलर्ट। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की खपत होगी कम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: एशियन गेम्स में चमक रहा भारत, हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर रेस में जीता कांस्य, उन्नति अय्यप्पा छठे स्थान पर रहे। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत को आज मिले 2 पदक, स्क्वैश में भारत ने जीते 2 सिल्वर। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में अभय सिंह लाए भारत के लिए 31वां मेडल, अब तक 4 स्वर्ण, 14 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज। अभय सिंह ने सिल्वर जीतने के साथ ही रच दिया इतिहास, सौरभ घोषाल के बाद एशियन गेम्स में सिंगल्स मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय स्क्वैश प्लेयर बन गए। भारत की स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने भारत के लिए जीता 32वां मेडल। एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया टोक्यो से नागोया पहुंची, अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने बुलेट ट्रेन की सवारी। भारतीय खिलाड़ियों ने नोजोमी शिंकानसेन में सफर का उठा लुत्फ, बुलेट रेल में टीम इंडिया ने सफर की तस्वीरें शेयर की, बीसीसीआई ने सोशल मीडिया में शेयर की तस्वीरें। एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से होगा भारतीय टीम का पहला मुकाबला, 28 सितंबर को होने वाले मैच के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार। अलीगढ़ में धावक का गुलवीर सिंह के परिवार ने मनाया जश्न। मेडल जीतने की खुशी में महिलाओं ने जमकर डांस किया। बायोपॉलीमर प्लांट की भीमकाय मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक सेफ निकासी के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी। 3 दिनों से महाबली ट्रक देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ट्रक के साथ विशेषज्ञों की टीम भी चल रही है। लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में बन रहे बलरामपुर चीनी मिल के एथेनॉल प्लांट में इस मशीन को किया जाएगा स्थापित। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज। अयोध्या से रामेश्वरम तक वनवास के दौरान जिन जिन जगहों से गुजरे थे प्रभु श्री राम, वहां अब लगेंगे श्री राम स्तंभ। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से किया जा रहा है निर्माण। बुंदेलखंड में मौरानीपुर जल विहार महोत्सव की धूम। बुंदेली आस्था की 303 साल पुरानी परंपरा। इस महोत्सव में भगवान श्री गुदर बादशाह को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। गुदर बादशाह परंपरा की सबसे अहम कड़ी है श्री गुदर बादशाह सरकार की देव विमान यात्रा। गुजर बादशाह के विमान के पीछे करीब 100 देव विमान भी निकले जो रात भर नगर विभिन्न गलियों में घूमेंगे। इस महोत्सव का सीधा संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से है। बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त इस महोत्सव में शामिल होते हैं। कांगड़ा में मां चामुंडा देवी मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। गर्भगृह का स्वरूप होगा और भव्य। 3 किलो सोना 6 किलो क्विंटल चांदी से सजेगा मां चामुंडा का दरबार। दुबई से आएगी स्वर्ण रजत सामग्री। गुंबदों की फिनिशिंग के साथ दीवारों पर मार्बल लगाने का काम जारी। चामुंडा धाम के गर्भगृह में लगाया जा रहा है वियतनाम से लाया गया संगमरमर। माणेर खड्डी के किनारे स्थित चामुंडा देवी मंदिर में हर साल पहुंचने लाखों की संख्या श्रद्धालु। गर्भगृह में 100 श्रद्धालुओं के एक साथ बैठने की होगी व्यवस्था। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा जी का जलस्तर चेतावनी स्तर तक। पुलिस अनाउंसमेंट करके घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से कर रहे हैं सावधान रहने की अपील। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में भीमकोडा बैराज पर गंगा का जलस्तर 293 मीटर चेतावनी स्तर तक। जलस्तर में और बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आसपास की गंगा के पास इलाकों में कराया जा रहा है खाली। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बीच रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। गनीमत रही कि भारी बारिश के बीच ट्रैकर को सुरक्षित रेस्क्यू करके समय रहते अस्पताल में पहुंचाया गया। बागेश्वर में रवाई खाल के समीप भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 109 बंद। रास्ता बंद होने से वाहनों की लगी लंबी कतारें। जल्द से जल्द रास्ता बहाल करने की प्रशासन की कोशिश। ओडिशा के भद्रक में तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। देश के कई राज्यों में जमकर हो रही है बारिश। कई जगहों पर आईएमडी का रेड अलर्ट। अर्नब चक्रवात के चलते बदल गया मौसम। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में करीब 48 घंटे से लगातार बारिश। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वाराणसी में साइक्लोन अर्नब के चलते जोरदार बारिश। तेज रफ्तार से चली हवाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश। आज के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जोरदार बारिश के चलते जगह जगह भर गया पानी। हाईवे पर देखा नदी जैसा नजारा। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश के बीच सांसद रवि किशन के आवास के बाहर भर गया पानी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरुखाबाद में बारिश के चलते रेलवे की रफ्तार पड़ी धीमी। ट्रैक पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश जारी। शहर के कई हिस्सों में जलजमाव। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मूसलाधार बारिश से गिर गए पेड़, कई इलाकों में जल जमाव। पीलीभीत में 48 घंटे से बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण गांव-गांव पुलिस अलर्ट, शारदा नदी पर प्रशासन की नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश जारी, गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर। नेपाल में भी उफनाई नदियां, कई इलाकों में बाढ़ जैसा खतरा। नेपाल बिहार बॉर्डर के इलाकों में राहत बचाव काम युद्ध स्तर पर जारी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। नेपाल बिहार बॉर्डर पर भी देखा बाढ़ जैसा नजारा, कई जगहों पर फसलें डूब गई। रायगढ़ में महानदी में उफान, गंगरेल बांध के 14 कपाट खोले गए। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश, सड़कों और मकानों में भरा पानी। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति प्रभावित, रांची के ग्रामीण इलाकों जोना में लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। छत्तीसगढ़ में हेलीकॉप्टर से मिशन जिंदगी जारी, बाढ़ में फंसे 10 लोगों को बचाया। बस्तर के जगदलपुर में 5 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, बाढ़ के हालात। डोंगा घाट में बाढ़ के बीच 80 से ज्यादा लोग फंसे, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग के केदारधाम में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी, तापमान में गिरावट। बारिश चलते अभी तक केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी, सोनप्रयाग में रोके गए हजारों यात्री। बारिश चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में ही रुके हुए हैं, प्रशासन को मौसम के ठीक होने के इंतजार। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में भी मौसम ने ली करवट, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी से बढ़ी ठंड, अब 10 अक्टूबर तक चलेगी हेमकुंड साहिब यात्रा। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, काजापिन घाटी और शिंकुला दर्रे समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बदल गया मौसम का मिजाज। शिंकुला दर्रा और चंद्रताल इलाके में बर्फबारी लगातार जारी, लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिन पहले ही हुई थी बर्फबारी। बर्फबारी से पहले इलाकों में तापमान की भारी गिरावट। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, ट्रेन का 2000 किलोमीटर से ज्यादा का हुआ सफल ट्रायल। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल के बीच स्विच कर सकेगा इंजन, डीजल 40% खपत कम करेगा। देशभर में आज से पितृपक्ष की शुरुआत, नदी घाटों पर तर्पण और पिंडदान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। पितृपक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा, सर्वपित्र अमावस्या के साथ होगा समापन। पितृपक्ष को लेकर गया में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, देश भर से लोग पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की परंपरा, आज प्रतिपदा श्रद्धा श्राद्ध के साथ देश भर में धार्मिक अनुष्ठान। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पुरटासी पूर्णिमा पर विशेष पूजा। पुरी में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर चंद्रभागा बीच पर देखा खूबसूरत नजारा। जयपुर के विद्याधर नगर में ग्रीनफील्ड हाफ मैराथन का 3 सीजन आयोजन। जोधपुर में ऑपरेशन तरंग शक्ति का आज दूसरा दिन, अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेना शामिल हो। जोधपुर वायुसेना स्टेशन इलाकों में 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026। मदुरई के ऐतिहासिक गांधी मेमोरियल संग्रहालय की मरम्मत और जीर्णोद्वार का काम हो गया पूरा, कल मुख्यमंत्री विजय करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की ओर से चलाया गया स्वच्छता ही सेवा अभियान। मनाली से रैली ऑफ हिमालयाज 2026 का शानदार आगाज, जंस्कर की बर्फीली वादियों में रेसर्स दिखाएंगे दमखम। हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों पर बनेगा रफ्तार का नया इतिहास। क्रॉस कंट्री रैली में छठे संस्करण के 140 से ज्यादा साहसी प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। प्रमुख कैथोलिक तीर्थस्थल लूर्डेस में पोप लियो ने रविवार को लोगों को अभिवादन किया। पोप लियो ने दर्शकों और कैथोलिक उपासकों का अभिवादन स्वीकार किया। इकोलॉजिकल कुशों के बाद जीवंत हो उठी बीजिंग की लियांगमा नदी। चीन अंतर्राष्ट्रीय पांडा सहयोग के लिए अमेरिका को भेजे दो विशाल पांडा। पांडा की रवानगी से पहले चेंगदू विशाल पांडा प्रजनन अनुसंधान केंद्र ने इस जोड़ी के लिए विदाई समारोह का आयोजन भी किया। शंघाई में संपन्न हुआ 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का बागवानी कार्यक्रम। प्रतियोगिताओं ने बिल्कुल शुरुआत से काम करते हुए डिजाइन रेखा चित्रों को नेचुरल डिजाइन बदल दिया। चीनी प्रतिभागियों ने मात्र 22 घंटे में तैयार कर दिया उद्यान। चीन के यू फीलोंग ने जीता पहला पायदान। जर्मनी की ओलंपिक समिति ने 2036, 2040 या 2044 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के म्यूनिक को जर्मनी के शहर के रूप में तब्दील किया। सीमित ने यह फैसला मतदान के बाद दिया। म्यूनिक ने 54 साल पहले आखिरी बार ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी की थी। अमेरिका के पूर्वी तट पर आए तूफान का न्यू जर्सी में दिख रहा असर, सड़कों पर भरा पानी। नॉर्थ ईस्टर तूफान के चलते बिजली व्यवस्था हो गई ठप। पेंसिल्वेनिया में 68,000 से ज्यादा घरों में कट गई बिजली। बैंकॉक में भी भारी बारिश से जलजमाव, लोग कमर तक पानी में चलते हुए नजर आए। बैंकॉक में 48 घंटे में करीब 300 मिलीमीटर बारिश हुई, सड़कों पर पानी का जलजमाव। बाढ़ से राहत पाने के लिए 233 अस्थायी शेल्टर तैयार, करीब 4,200 लोगों को शिफ्ट किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की द विवान की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई, दो दिन में भारत ने 22,60,00,000 का आंकड़ा पार। 51वें दिन हनुमान अंश पर बरसी नीम करौरी, बाबा की कृपा, कुल 5,58,00,000 का कारोबार, इंडिया में 352 करोड़ का आंकड़ा पार। फिल्म द पैराडाइज निकल 15,25,00,000 का कारोबार किया। मिर्जापुर द मूवी ने शनिवार को करीब 1 करोड़ कमाए, 23 दिन में भारत में ग्रॉस 267 का कलेक्शन। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण के मेकर्स का डबल धमाका, जारी किए फिल्म के दो नए पोस्टर्स, रावण का लुक देखकर चहकोटे फैंस।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
8: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम
0: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
4: बात करेंगे बंगाल के रंग में रंगने वाली दिल्ली की, अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, संगीत और व्यंजनों के सांस्कृतिक केंद्र दिल्ली हाट में बंगाल की संस्कृति का उत्सव चल रहा है। शारदीय नवरात्र यानी दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली हाट में बंगाल प्री पूजा एक्सपो चल रहा है, जहां पर पारंपरिक लाल सफेद साड़ियां, विशेष कलाकृतियां और मिट्टी से बनी आभूषण आकर्षण का केंद्र इस वक्त बनी हुई हैं। यहां पर बंगाल के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। 30 सितंबर तक दिल्ली हाट जाने पर आपको बंगाल से जुड़ा हर रंग देखने को मिलेगा।

0: त्योहार हो या धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे अवसरों पर श्रृंगार और सजने संवरने की परंपरा का गहरा महत्व है। श्रृंगार से त्योहारों की रौनक और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कई त्योहार आ रहे हैं, जिनमें शामिल शारदीय नवरात्रि का पर्व भी बेहद खास है, जिसके आते ही वातावरण में एक अलग तरह की भक्ति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा खुल जाती है। नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना और उनके नौ स्वरूपों को पूजने का त्योहार है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन होता है, जिस पर हर तरफ माता के जयकारे गूंजने लगते हैं। माँ दुर्गा यानी माता रानी के जयकारों की गूंज सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को उत्साह, उमंग और उल्लास से भर देती है। पावन त्योहार शारदीय नवरात्रि अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हालांकि दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भव्य तरीके से सजने संवरने और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक बेहद खूबसूरत मौका भी होता है। नवरात्र के दौरान सुबह के अंजलि अनुष्ठान से लेकर रात में पंडाल घूमने तक हर समय के लिए अलग और खास लुक अपनाया जाता है। इसलिए दुर्गा पूजा से पहले ही दिल्ली पर बंगाल का पारंपरिक और सांस्कृतिक रंग चढ़ने लगा है। दिल्ली हाट में बंगाल प्री पूजा एक्सपो चल रहा है, जहां बंगाल की सांस्कृतिक रौनक और पारंपरिक कला देखने लायक है। वहां की हस्तकला अपनी अनूठी संस्कृति, सुंदरता और समृद्ध परंपरा के लिए मशहूर है। इन्हीं में से एक टेराकोटा ज्वेलरी है, जिन पर होने वाले रंग भी इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल है। पूजा में परंपरा को बरकरार रखने के लिए बेहद खास रानी हार है। इस मिट्टी की ज्वेलरी में दुर्गा माँ की छवि दिखना भी विशिष्ट है।
1: यहाँ पर कुछ चीजें आपको इतनी खास मिलेंगी कि आप उन्हें लेने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत खास चीज दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये इयररिंग्स हैं महिलाओं की, और देखने में आपको सिंपल सी लग सकती है, लेकिन खास बात है इनकी। क्या खास बात है इनकी? खास बात ये है कि ये मिट्टी के बने हुए हैं, और ये उस मिट्टी से बनाए गए हैं जिस मिट्टी से बंगाल में दुर्गा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। अब आप सोचिए कि इसके मायने कितने अलग हो गए हैं, खासकर तब जब आप पूजा के लिए, दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए आप शॉपिंग करने आए हो। नीलम शॉ जी मेरे साथ में हैं। मैम, अब क्या कुछ लेकर आई हैं?
2: मिट्टी के ज्वेलरी हैं, टेराकोटा, उसे हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है, हमारे बंगाल में टेराकोटा बोलते हैं। और ये जो कलरिंग वाले सामने, ये केमिकल बीट्स के बने हुए हैं, ये भी चल रहा है। यहाँ का डिमांड
1: जितने दिन की होती है, क्या अलग अलग दिन के हिसाब से भी लोग ज्वेलरी पहनते हैं?
2: हाँ हाँ, ये भी है। जैसे मैं फूल लाई थी, आज तो खत्म हो गया, वो बालों में लगाने के लिए, हल्दी मेहंदी, उन सब रस्मों के लिए। अभी है छोटे वाले फूल बचे हुए हैं, बड़े वाले सब निकल गए।
0: दुर्गा पूजा में लाल और सफेद रंग की साड़ी पहनने की परंपरा है, जिसे बंगाल के लोग लाल पाट साड़ी भी कहते हैं, जो बंगाली संस्कृति और परंपरा का सबसे खास और पवित्र प्रतीक मानी जाती है, जिसे मटका सिल्क, कोरा सिल्क, गरद या टसर सिल्क फैब्रिक में भी चुना जा सकता है।
1: दुर्गा पूजा में जो साड़ियां महिलाएं पहनती हैं, उनमें व्हाइट और रेड कलर की जो साड़ी होती है, वो सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है, सबसे ज्यादा वो डिमांड में भी होती है। तो जब आप दिल्ली हाट आएंगे तो आपको यहाँ पर इस रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन की बहुत सारी वैरायटीज मिलने वाली हैं। रूपाली जी और पीपा शाह जी मेरे साथ में हैं, और दोनों ही वेस्ट बंगाल से हैं, और क्या शानदार कलेक्शन लेकर आए हैं। आप ये साड़ी देखिए, ये रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में है, और इस पर दुर्गा माँ की जो छवि है वो भी बनी हुई है, और बिल्कुल हाथ से ये सारा काम किया गया है। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि रेड और वाइट सबसे ज़्यादा शुभ होता है पूजा के लिए, तो कितने तरह की रेड और वाइट साड़ी हैं आपके पास?
3: ये सिल्क कॉटन आएगा, ये सब दुर्गा माँ के लिए। रेड ब्लाउज पीस आएगा, रेड और पल्लू, और बॉडी से व्हाइट आएगा।
1: ये सिल्क में
3: है, सिल्क के गौरद बॉर्डर।
1: क्या है?
4: गौरद का साड़ी है, सिल्क।
3: साड़ी का नाम गौरद साड़ी, साड़ी का नाम
4: सिल्क,
3: गौरद सिल्क बहुत चलती है, पूजा कर लिए।
0: आमतौर पर दिल्ली हाट में पुरुषों के लिए कुछ खास नहीं मिलता है, लेकिन इस एक्सपो में शादी ब्याह के पारंपरिक कपड़ों के अलावा नवरात्र समेत दूसरे त्योहारों के दौरान पुरुषों के पहनने के लिए ब्रोच भी है।
5: ब्रोच है जैसे पुरुष के लिए, वो बंगाली में जो पंजाबी और कुर्ता पंजाबी बोलते हैं, उसमें त्योहार के समय ये पहन सकते हैं आप लोग।
1: तो मैं कुछ ट्राई करेंगे मुझे, चलिए निकालते हैं फिर। देखिए बहुत सारे ब्रोच है, और मैंने भी इत्तेफाक से आज कुर्ता पहन रखा है, हालांकि लॉन्ग कुर्ता नहीं है, शॉर्ट कुर्ता है। कुछ चीजें मैं ट्राई करता हूँ। ये ट्राई करें,
6: ये भी पहन सकते हैं।
1: निकालिए आप, निकालिए।
5: हाँ, ये भी पैसा।
1: ये क्या है?
5: ये लक्ष्मी जी का सवारी, हमारी आउल पैचा।
1: आप लगाएंगे? ठीक है। ये किस चीज के बने हुए हैं?
5: काठ का, कूट का है, लकड़ी का है और हैंड से स्केच किया हुआ है।
1: लकड़ी का है और हैंड से इसको स्केच किया।
5: हाँ।
1: आपने अपने हाथ से किया?
5: नहीं नहीं, ये लोग बनाते हैं, जो लोग काम करते हैं इसमें ऊपर।
1: अच्छा, अच्छा लग रहा है। ये रिंग है,
5: रिंग है।
1: और वाकई जब ये पहनेंगे आप तो बहुत सुंदर लगे, बहुत ट्रेडिशनल भी लग रही है।
5: एक रूप होता है ना, बड़न जो होता है ना, वधू बड़न, माँ का जो बड़न होता है ना दशमी के दिन, उसी रूप से ये गमछे के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बनाया मैंने।
1: ये भी गमछा माँ का जो ट्रेडिशनल गमछा है।
5: हाँ, इसके ऊपर ही मुझे प्राइज मिला है माँ के ऊपर।
0: नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा के भव्य श्रृंगार की परंपरा है। ऐसे में माँ के भक्त भी सज संवर कर उनकी आराधना करते हैं और अद्भुत जोश और उत्साह से नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे फिल्म लव एंड वॉर की, जो संजय लीला भंसाली अपकमिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद विक्की कौशल का पहला लुक निकलकर सामने आया। दुनिया भर में ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होने जा रही है और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा।
7: मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। ये बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी क्रेज बना हुआ है। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से विकी कौशल का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है। लव एंड वॉर से सामने आई विकी कौशल के फर्स्ट लुक पोस्टर में एक्टर का काफी धांसू अंदाज देखने को मिल रहा है। वो काफी डैशिंग लग रहे हैं। विकी कौशल को इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखा गया है। विकी के लुक को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में विकी कौशल काफी दमदार और इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। माथे पर चोट का निशान, मोटी मूछे और विंटेज हेयर स्टाइल उनके लुक को रेट्रो टच दे रहे हैं। डार्क शर्ट और उंगली में पहनी गोल्ड रिंग उनके लुक को और भी खास बना रही है। विकी कौशल ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि नजरें मिलेंगी लेकिन हटेंगी नहीं। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जल्द मिलते हैं। लव एंड वॉर से सबसे पहले रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया था। पोस्टर में रणबीर कपूर कार में चश्मा लगाए बैठे हुए काफी रोबीले अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका एक हाथ खून से सना हुआ दिख रहा है। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, इश्क भी जंग भी। इसके बाद आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक पोस्टर आया जिसमें उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है। पोस्टर में वो मरून कलर की हाई स्लिट स्कर्ट और हेडपीस पहने कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, आग भी दिलों की जान भी। लव एंड वॉर को संजय लीला भंसाली ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। अब ये 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लव एंड वॉर की रिलीज डेट अब तक कई बार बदली जा चुकी है। सबसे पहले इसकी रिलीज की घोषणा जनवरी 2024 में हुई थी। उस समय फिल्म को क्रिसमस 2025 पर रिलीज करने की योजना थी। बड़े स्तर पर हो रही शूटिंग और प्रोडक्शन में ज्यादा समय लगने के कारण रिलीज को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद मार्च 2026 में फिल्म रिलीज होने की बात सामने आई। इस बीच 14 अगस्त 2026 की रिलीज डेट की भी चर्चा हुई थी। हालांकि फिल्म का काम तय समय से पूरा नहीं हो सका, खासतौर पर बड़े VFX और हवाई एक्शन सीन्स के कारण समय बढ़ा। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट तय की है जो 2027 के जनवरी की है। उम्मीद की जा रही है कि 21 जनवरी को फिल्म रिलीज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
9: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं, क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है
15: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
6: एशियन गेम्स में आज भारत की चांदी स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर मेडल। 200 मीटर दौड़ में हिरता भद्रा ने जीता ब्रॉन्ज। प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभ

0: विश्व चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी, तीन दिनों से मां वाली ट्रक देखने वालों की भीड़। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फी बर्फ। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर, ऋषिकेश में जल, पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही है अलर्ट। गुजरात में मुख्यमंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की खपत होगी कम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: अब की बार दवा कीमतों पर वार, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मुद्दा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये केवल और केवल मरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आम नागरिकों के अधिकारों की भी बात है। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल दवा कीमतों पर इस बार वार हुआ है और उसको लेकर आज हम बात करेंगे। कैंसर की जरूरी दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है और उसने इसे दिन दहाड़े डकैती बताया है, और इसी को लेकर देश में अब एक नई बहस भी छिड़ गई है। मामला पूरा महंगी दवाओं को लेकर ही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी भी की है, उन्होंने इसको लूट करार दिया है। अब सबसे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कैंसर की दवाओं की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिन दहाड़े एक डकैती और एक लूट बताया है। कोर्ट में दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई थी। कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि रिटेलर को 2700 रुपए में मिलने वाली दवा की एमआरपी 27,000 तक छापी जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि अंतर कितना ज्यादा होता है। 2700 की दवा आप तक पहुंचती है 27,000 में। साथ ही साथ अस्पतालों की इनहाउस फार्मेसी से भी महंगी दवाओं पर कोर्ट ने आपत्ति भी जताई है, नाराजगी भी जताई है। सुप्रीम अदालत ने पूछा है कि मरीजों को इतनी महंगी दवा बेचकर कैसे ठगा जा रहा है, कैसे मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस भारी कीमत के अंतर पर अधिकारी चुप क्यों है, संबंधित जो विभाग है वो अभी तक क्यों कुछ नहीं बोले, वो चुप क्यों है। असल में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी। एक कैंसर पीड़ित महिला के पति ने याचिका दायर की थी और महिला के परिवार ने मरीजों तीमारदारों के शोषण को करीब से देखा है। निजी अस्पतालों में कैंसर पीड़ित महिला का इलाज हुआ। अब परिवार ने इलाज के दौरान महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक जेनरिक दवाओं की मांग करने वाले तीमारदारों को धुतकारा जाता है। और वहीं एक और दूसरी याचिका भी थी और वो याचिकाकर्ता ने अनैतिक मुनाफाखोरी का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने डॉक्टर से भी सस्ती जेनरिक दवाएं लिखने की मांग की थी। अब दोनों ही मामलों में जेनरिक दवा लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती डॉक्टर की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या डॉक्टर्स को भी मजबूर किया जाता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि दवा कीमतों में होने वाली लूट रुकनी चाहिए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी भी की है। इस मामले पर सुनवाई 28 सितंबर को होगी। मामले से जुड़ा और पक्ष भी सामने आएंगे, जाहिर सी बात है। तो दवाओं की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, उसने अपनी नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा विस्तार से बता रहे हैं।
1: कैंसर की दवाइयों की मनमानी कीमत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में सुनवाई के दौरान यह कहा कि ये तो जनता के पैसे की लूटपाट है, ये तो डकैती है। जिस तरह से कैंसर के मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस पूरे मामले में बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं। उनका ये कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने जब उन्हें बताया, इस मामले में कई याचिकाकर्ता हैं जो खुद पीड़ित हैं, एक याचिकाकर्ता की पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर था, एक की मां को ब्रेस्ट कैंसर था, और उन्होंने आकर ये बताया कि ये नरक हमने खुद भोगा है, जिसमें अस्पताल उन्हें मजबूर करते हैं अपनी ही फार्मेसी की दवा लेने पे, और वो दवा जो मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ 2700 रुपए की पड़ती है, वो 27,000 रुपए में

0: मरीजों को अस्पतालों की फार्मेसी से खरीदनी पड़ती है, जिसमें एक पैसा भी वो छोड़ते नहीं। इस पर अदालत ने बहुत संवेदना के साथ और बहुत नाराजगी के साथ कहा कि ये एक तरह की लूट है, जनता के पैसों की लूट है। न केवल सीधे सीधे मरीजों की मजबूरी का फायदा है, बल्कि ये सरकार को भी चूना लगाने की साजिश है, क्योंकि वही दवाएं जिन पर 2700 की दवाई पर 27,000 रुपए की मैक्सिमम अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा रहता है, उसे वो सरकारी एजेंसियों को देते हैं। CGHS है, आयुष योजना है, DGHS है, राज्यों की संस्थाएं हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार का जवाब क्या आता है और बाकी अन्य संस्थानों का जवाब क्या आता है, कि आखिर जनता के पैसों की लूट का, जनता की मजबूरी के फायदा उठाने को लेकर सरकारें कितनी संजीदा है अब पता चलेगा। कोर्ट ने तो अपनी संजीदगी दिखा दी, अब सरकारें कितनी संजीदा हैं और सरकारी महकमे कितने संजीदा हैं, इस पर अब बात आ गई।
1: तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपनी टिप्पणी को लेकर, संजय शर्मा मेरे सहयोगी बता रहे थे, और ये मामला काफी अहम भी हो जाता है क्योंकि महंगी दवा पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। अदालत ने कहा कि कई मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत और दूसरी योजनाओं के तहत हो रहा है, इसीलिए टैक्स पेस का पैसा इन सब में जाता है। जो दवा 200 रुपए में बिकती है, बिकनी चाहिए, वो 2000 रुपए में दे दी जाती है और अस्पताल को रीइंबर्समेंट भी मिलता है, यानी ये भी एक अहम मुद्दा है। वैसे इसी मुद्दे पर हमने आम लोगों से भी बात की है, लोगों को क्या वाकई महंगी दवाएं मिलती हैं और ये कितना बड़ा मामला है, इसको लेकर आम लोगों की राय क्या है, एक बार वो भी सुनवाते हैं आपको।
2: देखिए, जिस तरह से बहुत महंगाई बढ़ रही है और भारत में बहुत बड़ी जनता जो गरीबों की तादाद है, तो अगर उनके ऊपर इस तरह महंगाई का बोझ बढ़ेगा दवाइयों का, क्योंकि दवाई जीवन रक्षक होती है, कैंसर की जैसे दवाई है वो तो बेहद बहुत ही मजबूरी में इंसान लेता है, और जितना भी पैसा हो अपना घर बेच देगा, कुछ भी करेगा, गरीबी रखेगा और आपके दवाइयों का वो करेगा, पर ये क्यों बढ़ रही हैं, ये सब सरकार को देखना चाहिए।
3: देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपने आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दखलअंदाजी की है। दवाएं, यानी कि आप देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा पे हम बात करते हैं तो ये बेसिक नीड है आम जनता की, तो इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, ये महंगी नहीं होनी चाहिए, ना शिक्षा महंगी होनी चाहिए, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होनी चाहिए, दवाएं सस्ती दर पे मिलनी ही चाहिए, इलाज भी सस्ते दर पे मिलना चाहिए।
4: देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में 80-85% जो जनसंख्या है वो गरीब मजदूर और किसान वर्ग से आते हैं, और जब पहले तो पेट की लड़ाई है, और अगर मतलब कैंसर जैसी अगर गंभीर बीमारी किसी सामान्य वर्ग के परिवार के व्यक्ति को हो जाए जो, तो बहुत दुख की बात है। और ये समय अगर ऐसा कुछ हो रहा है और कि 2700 की दवाई को आप 27,000 MRP लगा के भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: चलिए, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर दवा की कीमतों पर हमारा कानून क्या कहता है, हमारे देश का कानून क्या कहता है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का नियम भी है, और इसमें दवाओं की अनावश्यक कीमतों पर लगाम का भी नियम है। आवश्यक दवाओं के दाम की अधिकतम सीमा का निर्धारण सभी ब्रांड्स के औसत मूल्य पर 16% मार्जिन जोड़ने का भी इसमें नियम है। तो गैर अनुसूचित दवाओं की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी 10% तक की जा सकती है। वहीं सरकार के पास किसी भी दवा का दाम नियंत्रित करने का अधिकार भी है। तो आज बात दवा की कीमतों पर हो रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। डॉक्टर रवि मेहरोत्रा इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर CEO है इंडियन कैंसर रिसर्च ICMR से, और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी मौजूद हैं, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अंशुमन, साथ ही साथ इंदिरा जसूजा कैंसर सर्वाइवर भी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन कैंसर सोसाइटी से भी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर वरांची शाह फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड नेशनल स्पोक्स पर्सन IDMA इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगी सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल जो कि आपसे करना चाहूंगी इंदिरा जी, क्योंकि आप खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं, सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, दो याचिकाएं कोर्ट के पास गई, दोनों याचिकाओं को कोर्ट ने सुना, उस पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 2700 की दवा 27,000 में बेच दी जाती, यानी कितनी ज्यादा महंगी कैंसर की दवाएं बेची जा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, कहा है कि लूट है। इस पर आपकी राय पहली।
5: बिल्कुल ठीक है, बिकॉज यू सी क्या है, एक तो मिडल मैन भी खाते हैं, एक जो अस्पतालों में फार्मेसी से अगर आप कोई दवाई लो तो उसमें अस्पतालों का भी एक तरह से उनका भी एक प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमको फिक्स करनी चाहिए दवाई कि अस्पताल से कितने कितने पैसों में दवाई जाएगी हर हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मिडल मैन ने भी खाना है, फार्मेसिस्ट ने भी पैसा लेना है और केमिस्ट ने भी पैसा लेना है। तो सबका जो है प्रॉफिट, वो परसेंटेज हम लोगों को पहले सबसे बतानी चाहिए कि कौन कितना कितना पैसा ले सकता है। उससे ये होगा कि दवाइयों का दाम जो है वो बढ़ेगा नहीं। हमने कई बार देखा है, जैसे हम लोग भी पेशेंट्स को दवाई देते हैं, वह हमारा ना एक अस्पतालों के साथ एक हमारा संबंध है। हम उनको बोलते हैं कि हमारे कुछ केमिस्ट है जो हमको 30-40% जो है वो हमको रिडक्शन देते हैं दवाइयों में। तो हम उनको बोलते हैं कि हम वहां से दवाई ला के आपको देंगे, क्योंकि वो, और हमको अस्पतालों ने, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी हमको अलाउ कर दिया है, क्योंकि हम जो भी एक दो हम केमिस्ट हमने रखे हुए हैं उनसे जितनी भी हमको दवाइयाँ मिलती हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक मिलती हैं। बिकॉज डॉक्टरों को यही मुश्किल होती है कि कहीं स्पूरियस दवाई तो नहीं बाहर से आ रही। तो अब हम इतने सालों से जो दवाइयाँ हम केमिस्ट से ले रहे हैं और डॉक्टर्स हमसे लेते हैं, तो उनको पता है कि ये जो दो केमिस्ट हमने रखे हुए हैं यहाँ पे से जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो ठीक आती हैं। एक बात मैं और भी कहूंगी कि हमारे दिमाग में एक धारणा जो गलत बनी हुई है कि जेनरिक दवाई हमने नहीं लेनी, क्योंकि वो हिंदुस्तान में बनी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है।
1: ठीक
5: तो
1: है।
5: कसूर कुछ हमारा भी है, क्योंकि हम अगर जेनरिक दवाई लेंगे उसकी कीमत कम से कम 1/3 ऑफ द जो बाहर से दवाइयां या फार्मेसी से जो
1: हाँ
5: दवाइयां आती हैं वो आती हैं। तो ये मेरा थोड़ा
1: इंदिरा
5: सा
1: जी, आपने जेनरिक दवाओं की बात कही है और इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा है। जेनरिक दवा वाला जवाब मैं डॉक्टर अंशुमन से बाद में लूंगी, क्योंकि बहुत सारे मरीजों ने ये शिकायत भी की है कि बार बार कहने के बावजूद हमें जेनरिक दवाइयां लिख के नहीं दी जाती। उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या प्रावधान है, क्या प्रेशर डॉक्टर्स पर भी रहता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर शाह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठाया गया है मिडिल मैन का। सर, जब 2700 की दवा है तो आते आते मरीज तक पहुंचते पहुंचते 27,000 कैसे हो जाती है?
6: मैम, पहले तो आईडीएमए को इस चर्चा में शामिल करने के लिए
1: प्राइस
6: आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मैडम, इंडिया में जो मेडिसिन मार्केट हो रही है और जो हमारे मिड साइज कंपनीज जो आईडीएमए है में है, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर मार्केटिंग थ्रू इथिकल मार्केटिंग, जहां पर इनके जो रिटेल और होलसेल के जो मार्जिन्स है वो फिक्स्ड होते हैं। यूजुअली हमारी कंपनीज 20% मार्जिन रिटेलर्स को देती है और 10% उनके होलसेलर और सीएनएफ को देती है। तो ऑर्गेनाइज कंपनी से मैडम ये 2700-27,000 वाला होना बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं लग रहा है। ये जो हो रहा है वो शायद क्योंकि जो न्यूज चल रहे हैं उसमें कहीं पर कौन सी ब्रांड है और कौन उसका मैन्युफैक्चरर है ये ध्यान में नहीं आया है, तो मैं स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि जो प्लेयर्स जेनरिक मेडिसिन इन द सेंस के जो उनका खुद का कोई मार्केटिंग सेटअप नहीं है या स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई भी एमआरपी शायद करते होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज कंपनी से ये होना बहुत रेयर है। काफी ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी प्राइस कंट्रोल है, जहां गवर्नमेंट ने उसका एक एमआरपी फिक्स किया हुआ है, और करीब 40 प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ 2-3 साल पहले एक ट्रेड मार्जिन रेस्टलाइजेशन का भी एक नोटिफिकेशन था, जिसमें हॉस्पिटल्स बाइंग प्राइस से मैक्सिमम 40% मार्कअप करके ही उनको पेशेंट पे देना है। ये भी एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा एनपीपीए ने दिया हुआ है। तो मुझे वो स्पेसिफिक मेडिसिन्स कौन सी है ये मालूम नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि कोई ऑर्गेनाइज कंपनीज की ये नहीं है।
1: ठीक है। अब डॉक्टर अंशुमन, एक तरफ कैंसर से लड़ता मरीज है, दूसरी तरफ उसके हाथ में जान बचाने की पर्ची है, लेकिन जान की कीमत इतनी ज्यादा है जिसे देखकर मरीज सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं दवा की दुकान पर जाऊं या मैं पीछे अपना घर देखूं, क्योंकि समय भी कम है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां पर आप इलाज बीच में रोक नहीं सकते हैं। दोनों सवाल जो इंदिरा जी ने भी कहा है और जो कोर्ट की टिप्पणी है, इस पर आपका जवाब चाहूंगी। जेनरिक दवा से लेकर और क्या वाकई 2700 की दवा 27,000 में बिकती है, क्या मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? आप खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं आपके पास, सर इसको क्लियर कीजिए, बताइए जरा।
7: जी, इसको बिल्कुल डिकोड कर देता हूं, पहले समझने की जरूरत है कहां कहां क्या झोल है। शाह साहब ने हमारे कहा कि अनऑर्गेनाइज कोई कंपनी या फार्मा सेक्टर ने ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज फार्मा सेक्टर पे, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरे इंटरव्यू का आर्काइव आप उठा ले, 2015 2016 में भी एक मामला उठा था, तब भी मेरे सारे आर्काइव में यही थे कि 2000 रुपए में जो दवा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल रही है उस पे एमआरपी 18,700 रुपए क्यों रखा गया। सिमिलरली अभी है 2700 से 27,000, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर किसी आप खूंखार शेर को आप खून देंगे और कहेंगे तुम शिकार मत करना, खून तो हम दे रहे हैं, मतलब ये दवा उतर गई होलसेलर के पास या रिटेलर को मिल गई दवा 2700 रुपए में, एमआरपी 27,000 रखने की जरूरत किसने की? अब कहानी यही शुरू होती है कि जब कोई भी कंपनी एमआरपी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में जब अप्लाई करता है कि मैं ये दवा लेके आ रहा हूं, इसकी ये पैकेजिंग है और एमआरपी में 27,000 रखना चाहता हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के पास है, एनपीपीए उन्हीं का डिविजन है, वो इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस के लिए अलाउ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उसका रिपरकशन ये हुआ कि अभी 4 साल पहले 492 दवाइयों को, जिसमें कैंसर की काफी दवाइयां थी, हम लोग बहुत समय से इससे लगे हुए थे, उस पे कैपिंग की गई और कहा गया कि एसेंशियल ड्रग्स पे कैप कर दिया, जिसके रिटर्न में मैंने काफी सोशल मीडिया पे इसको डाला था, इंटरव्यू में भी बोला कि एसेंशियल ड्रग्स मतलब बाकी चीजें नॉन एसेंशियल ड्रग्स क्या है, न्यूट्रोसिटिकल्स की बात नहीं करो, जो कैंसर में इलाज में अगर खर्च हो रहा है, दवाइयां लग रही है, सारी दवाइयां एसेंशियल ड्रग्स हैं, तो ड्रग की एमआरपी निर्धारित करने का तरीका तय किया जाए। तब हमने कहा था, शाह साहब से बिल्कुल सहमति है कि 20% से 40% तक मार्जिन हो, इतनी ज्यादा मार्जिन हो, 10 गुना मार्जिन, कभी कभी 500-600% मार्जिन रखा जा रहा है। ये मार्जिन कहां जा रहा है? आज प्राइवेट हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के फार्मेसी में देखिए, उनका आईपीडी जो पेशेंट है उस पर बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है कि दवा बाहर से नहीं ला सकते हैं, आर किया लिया गया नकली दवाइयों का, जिसका मैं समाधान अभी बताता चलूंगा, सब हर चीज का समाधान। उसके बाद उसके मरीज का बिल सिर्फ इन दवाइयों के चक्कर में इतना ज्यादा होता है। आज भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि हर साल कितने मरीज इलाज की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं, ये भी आंकड़ा है। अब इसके कारण क्या होता है, इन्हीं दवाइयों का, चार दिन पहले आपने पढ़ा होगा, नकली दवाइयों को काउंटरफिट मेडिसिन का इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया कि दवाइयां महंगी है, नकली बनाओ, स्पूरियस बनाओ, एक्सपायरी डेट चेंज करो और पैसे कमाओ, क्योंकि एमआरपी लिखने की छूट दी गई है। अगर ये सेंट्रली कंट्रोल करें, नंबर वन, नंबर टू जो बात मैंने कही थी काउंटरफिट मेडिसिन पकड़ने की, दवाइयों का मिसयूज ना हो उसके लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, आप क्यूआर कोड स्कैन करो, देखो इसका लैंडिंग प्राइस, मतलब रिटेलर के पास पहुंचने में दवा कितने की, आपको पता रहेगा, और एमआरपी इसका 20% से ऊपर ना हो, दवाइयां बेवजह ना दी जाएगी लोगों को, मुनाफा खोरी नहीं होगी, काउंटरफिट मेडिसिन नहीं होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री की एमआरपी को कंट्रोल कर सकती है, इतना सिंपल फॉर्मूला है। आज सुप्रीम कोर्ट को पता चला, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपको लगता है कि गवर्नमेंट से इसके बारे में कोई सोल्यूशन दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा।
1: वो तो दो याचिकाएं गई ना, इसीलिए कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की, बिल्कुल याचिका नहीं जाएगी तो टिप्पणी नहीं होगी। जल्दी से सर मैं डॉक्टर मेहरोत्रा के पास जाऊंगी, इंदिरा जी ने जो एक और अहम सवाल किया था, हाँ आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा लेकिन उस पर भी रख दीजिए, क्या जेनरिक दवा लिखे या ना लिखे, क्या डॉक्टर्स के पास मजबूरी होती है पर्टिकुलर दवा लिखने की, क्या जेनरिक आम दवाएं डॉक्टर नहीं लिखते हैं क्या?
7: जेनरिक दवा का मतलब आप समझिए, डॉक्टर पे इंस्ट्रक्शन है कि डॉसिटेक्सल फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी करना है, पैक्लिटेक्सल, मतलब आप क्या है इस दवा के अंदर ये लिख दो, ब्रांड नेम ना लिखो। अब क्या है, फार्मेसी पे बैठा जो व्यक्ति है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी चल रही है उसको इंस्ट्रक्शन है कि इसी कंपनी की दवा तुमको देनी है, डॉक्टर कुछ भी लिखे वो कंपोजिशन लिखेगा तुम यही दो, ये तो वही होगा जो उसके अंदर रखा हुआ दवा लिखी जाएगी। और जेनरिक दवाइयां जब बायोइक्विवेलेंट से स्टैंडर्ड मिला के दी जा रही है तो उसमें क्या नुकसान है भाई, वो दवा सस्ती मिल रही है आप उसको दीजिए।
1: ठीक है, चलिए डॉक्टर मेहरोत्रा, क्या जान की कीमत मरीज की मजबूरी से तय होती है? कोर्ट की टिप्पणी तो यही बता रही है,
8: कोर्ट की ये टिप्पणी कि जान की कीमत क्या उसके दवा से ज्यादा हो सकती है, ये तो मतलब सेल्फ एविडेंट है, नो ब्रेनर है। जान तो सबसे जरूरी है, जान गई तो क्या बोलते हैं, जान गई तो पूरी आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया, और एक जान से उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंड होता है, उसका एम्प्लॉयमेंट डिपेंड होता है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जान जो है वो सर्वप्रिय है और नंबर वन पे आती है। नंबर दो जो आपने कहा कि क्या ऐसी दवाओं के दाम हों कि जा वो दाम सुनते ही जान निकल जाए, ये भी बिल्कुल सेल्फ एविडेंट है कि दाम ऐसे होने चाहिए कि कम से कम वो पेशेंट अफोर्ड कर पाए। अब समस्या ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर अंशुमान जी, कि ये आंकड़े हैं कि 80% लोग जो हैं वो दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हिंदुस्तान में, जो बहुत महंगी महंगी होती हैं, या सर्जरी महंगी होती है, ये कैंसर के इलाज महंगा होता है। तो अगर ये देखा गया है कि इंडिविजुअल बैंक्रप्सी यानी कि दिवालिया होने का जो सबसे अहम कारण है, इसको बोलते हैं एब्जेक्ट पेन्यूरी में जाना या बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जाना फाइनेंशियल, वो कैंसर का इलाज है। बहुत छोटी मात्रा में हमारे यहाँ देश में हमारे लोग जो है वो इंश्योर्ड है, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस हो, सरकारी हो, या कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड हो। धीमे धीमे करके वो नंबर बढ़ रहा है, परंतु आज भी अधिकांश लोग जो है वो अनइंश्योर्ड है। अभी हाल में ही एक सरकार ने पिछले कुछ सालों से आयुष्मान भारत का जो स्कीम शुरू करी है, इसमें कि 30% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 30% पॉपुलेशन वो कवर होती है। और फिलहाल अभी बहुत ही रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही या कुछ महीने पहले ही जो 70 के ऊपर लोग हैं जो किसी और इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है उनको भी कवर करा है। तो उस तरीके से जो पैकेज बनाए जाते हैं वो भी एक लिमिट के अंदर रखे जाते हैं। तो अगर दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी तो ये जो आयुष्मान भारत का स्कीम है ये भी कामयाब नहीं होगी। अभी हमारी कुछ दिनों पहले इंश्योरेंस वालों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमें सब हेल्थ इंश्योरेंस करने में बहुत नुकसान होता है क्योंकि ज्यादातर इतनी महंगी महंगी दवाएं, इतना महंगे महंगे इलाज हो गए हैं खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि हम बाकी चीजों को कवर नहीं कर पाते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा घाटा होता है। तो इसमें तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं कि जो दवाएं होनी चाहिए वो कम से कम मरीज के, पहली बात तो जरूरत होनी चाहिए, हर दवा को हर मरीज को जरूरत नहीं है, वो अप्रोप्रिएट दवा हर जगह पाई जाए। बायोसिमिलर्स या जेनरिक की आपने बात करी, मेरे समझ से तो इससे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो ही नहीं सकती है। और तीसरी बात, पेशेंट से ये ना कहा जाए कि आपको हमारे ही फार्मेसी से दवा लेनी है, खासतौर से जब वो अर्जेंट मामला नहीं है, फौरन नहीं देनी है या कोल्ड चेन का मामला नहीं है, वो पेशेंट को पूरी आजादी होनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में ये किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी है वहां से खरीद सके।
1: लेकिन सर ये कितना ग्राउंड पर ये कितना वर्क करता है आप ये बताइए।
8: कुछ जगह करता है,
1: ज्यादातर जगह। अभी डॉक्टर अंशुमन ने पूरा नेक्सस बता ही दिया, आप जैसे डॉक्टर्स अगर लिख भी देंगे तो वहां पर फार्मासिस्ट उसको देगा ही नहीं।
8: ये बात तो देखिए काफी हद तक सही है, मैं अंशुमन जी से पूरा एग्री करता हूँ। और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पहली बात तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर जो फार्मेसी, चूंकि उसका ही एक तरीके से वो प्रॉफिट सेंटर होता है, तो आसानी से तो नहीं होगा।
1: ठीक है,
8: अब इसमें मेरे ख्याल से हमारे सरकार की भी और एनपीपीए जो ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, शाहजी डिक पॉस के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, कि अगर ये क्लियर गाइडलाइंस हो, और मुझे अंशुमन जी का ये आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि अब हर जगह तो क्यू आर कोड हो गए हैं, अब आप जो पेमेंट करते हैं ऑनलाइन वो भी क्यूआर कोड से करते हैं, तो अगर आप उस पे देखेंगे कि वो चेन ऑफ लाइन क्या, कितने मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कितने रिटेलर ने लिया, अगर ये सामने होगा और ये हो कि अगर मरीज ने उसकी रसीद दिखाई कि उस पे 40% से या 30% से ऊपर है, तो वो कम से कम एक एविडेंस हो जाता है। ये आइडिया बहुत अच्छा है और बहुत दिनों से बात हो रही है पर ऑब्वियसली अभी तक तो अमल में नहीं।
1: एक बार डॉक्टर शाह इस पर मैं आपसे भी एक रिएक्शन चाहूंगी, डॉक्टर अंशुमन ने, डॉक्टर मेहरोत्रा ने, दोनों ने इस पर बात की है।
6: ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन का डिस्कशन चल रहा है और गवर्नमेंट भी एक सीरियस लेवल पे इसको कंसिडर कर रही है, तो आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है जो गवर्नमेंट लेने जा रही है, उनके साथ ये चल रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि क्यूआर कोड भी पॉसिबल है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए, मैं ये 2700 का 27000 को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात भी आपको कह रहा हूं कि आपको अगर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन वगैरह चाहिए तो देर विल बी अ कॉस्ट टू इट, और एक रिजनेबल प्राइस भी हमें देनी पड़ेगी और प्रॉपर सप्लाई चेन से लेनी पड़ेगी। कहीं जगह पर अगेन मैं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है ये पर्टिकुलर किस कौन सी मॉलिक्यूल का है और कौन सी प्रोडक्ट का है, लेकिन कहीं ये बहुत सस्ता लेने में स्पूरियस मेडिसिन भी सिस्टम में घुस जाती है और जो ठीक मेडिसिन नहीं है वो भी आ जाती है।
1: सर, तो सर, ये सब एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड, बिल्कुल सर, मैं इस पर एक और क्लैरिटी आपसे चाहूंगी। आपने कहा कि अच्छी क्वालिटी और सही तरह की दवाएं लेनी होंगी, और तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें रेट वेरी करेंगे। सर एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अगर मैं एक पेशेंट हूं, मैं कहीं जाके दवा ले रही हूं, तो मुझे जो मेरा डॉक्टर लिख के देगा मैं वही दवा लूंगी ना। मेरा डॉक्टर अगर जेनरिक दवा लिख के दे रहा है, उनको मेरी कंडीशन पता है कैसी है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे हिसाब से मेरी, हम नॉर्मल मरीज जो अफोर्ड कर पाए, डॉक्टर जान जाता है इतने में कि वो क्या वाकई वो अफोर्ड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो वही दवा तो हम जाके लेंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सस्ती दवाएं इतनी इफेक्टिव नहीं और हमें महंगी दवाओं पर जाना चाहिए?
6: नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैडम। इसमें सस्ती महंगी का सवाल इसलिए नहीं है कि एमआरपी जो है उन्होंने शायद जो स्ट्रक्चर्ड कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज है, उसके हिसाब से रखी है, और कहीं ना कहीं सप्लाई चेन से यहाँ सस्ती पहुंची है, और वो क्या है मुझे नहीं मालूम है। देखिए, हम एज अ पेशेंट कहे या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कहे या पूरा कंट्री कहे, हमें डॉक्टर पे तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा। और किसी भी पेशेंट के, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसे भी कोई डॉक्टर होंगे जो किसी फाइनेंशियल लेने के लिए कोई पेशेंट को मिसगाइड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका काम है और उनका फोकस होता है पेशेंट। अगर वो पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट भी उनके पास नहीं आएंगे। तो इसमें ऐसा मैं कुछ डॉक्टर का कोई नेगेटिव रोल है या ऐसा नहीं मान रहा हूं। मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा सिस्टम में कुछ गैप्स अगर भी है, तो जैसे ट्रेड मार्जिन रेस्टलाइजेशन वगैरह है, उसके ऊपर काम ऑलरेडी हो रहा है, और गवर्नमेंट में 40 प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी मार्कअप हॉस्पिटल्स के लिए कर गए हैं। इसके ज्यादा भी हम कर सकते हैं, सॉल्यूशंस है। मैं सिर्फ ये स्पेसिफिक केस में कमेंट नहीं करना चाहता, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा मॉलिक्यूल और किस प्रोडक्ट पर ये बात हो रही थी।
1: जी जी डॉक्टर अंशुमन
7: जी, इसको क्लियर करके चले, अदरवाइज पब्लिक समझ नहीं पाएगी कि मामला है कहाँ, नकली दवा, असली दवा और अच्छी दवा बुरी दवा हो जाएगी। जेनरिक मेडिसिन एक इशू है, जेनरिक मेडिसिन सस्ती है, जेनरिक मेडिसिन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये सच है कि जेनरिक मेडिसिन जितनी प्रोडक्शन है कंट्री की वो फुलफिल नहीं कर रही हमारे रिक्वायरमेंट को। एक तो ये, चलिए बात क्लियर हो गई, जेनरिक मेडिसिन को अलग करें। अब मैं बात करता हूं उसकी, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मजबूरी हो गई है, सिप्ला, फाइजर, रॉस, जो जो कैंसर की अच्छी कंपनी है, मैं उसकी बात कह रहा हूं, उसमें दवा की कीमत लिखी हुई है 18,000 या डिस्कशन में चल रहा 27,000, एग्जाम्पल रख लें 27,000। यही दवा डायरेक्टली होलसेलर से जब लेके आते हैं या ये दवा अस्पताल की फार्मेसी पर रखी जा रही है 2700 रुपए की, मतलब कंपनी 2700 में वही अच्छी दवा अच्छे सप्लाई चेन को मेंटेन करके पहुंचा चुकी है 2700 में। तो एमआरपी 27,000 रखी क्यों गई थी? दवा की क्वालिटी मेंटेन्ड है,
1: बिल्कुल
7: कंपनी इंश्योर कर रही है कि दवा हमारी है, बैच नंबर हमारे, जो कि प्योर कोर्स से जो मैं कह रहा हूँ, इसका भी सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल दवा है, 2700 में मिल सकती थी, लेकिन उससे 27,000 एमआरपी रखी गई, कहानी यहाँ है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही कोर्ट ने भी कहा है कि भारी अंतर है कीमतों में, और ऐसा क्यों है, और संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: अब की बार दवा कीमतों पर वार, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसी को लेकर अपनी बात रखी और अगली सुनवाई, अब कहा है कि संबंधित अधिकारी संबंधित विभाग जो है इस पर अपनी बात रखे। दरअसल दो याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसके बाद कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है और टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिन दिहाड़े डकैती का मामला करार दिया। इंदिरा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पर जो एक नेक्सस चल रहा है, जो अभी हाल फिलहाल में रीइंबर्समेंट वाली बात डॉक्टर मेहरोत्रा ने उठाई थी उस पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इंदिरा जी, नरपिशाची आदमखोर से कई गुना ज्यादा भयानक शब्द है जिसका मतलब है इंसानों का शिकार करना। सीधे तौर पर इंदिरा जी, कोर्ट की टिप्पणी के पीछे यही बात है कि आप खेल रहे हैं एक इंसान की जान से, ये हमारे अधिकारों का भी हनन है।
5: यस, वो तो है ही, बिकॉज यू सी जो मरीज है वो उसके उसका हमको पहले सबसे पहले देखना चाहिए कैसा मरीज है, उसके मुताबिक ही डॉक्टर को दवाई को लिख के देना चाहिए। क्योंकि जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके बाद जो दवाइयां दी जाती हैं ऑपरेशन होने के बाद, उसमें कई दवाइयां तो हैं जो बाहर से आती हैं और बहुत महंगी हैं। तो अगर तो आप इंश्योरेंस, आप उसके पास इंश्योरेंस है किसी के पास, या कोई बहुत अमीर है, तो उनको आप बाहर की दवाइयों को ही लिख के दीजिए, और जो बाकी जो गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी दवाई जो है वो एक एक रुपए की भी गोली है। तो आप डॉक्टर को ये ख्याल करना चाहिए कि अगला वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं वो अफोर्ड कर सकता, उसके मुताबिक ही दवाई लिख के देनी चाहिए। एक मुद्दा मैं और भी उठाऊंगी। अब देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक है, मैंने कई बार देखा है कि जो दवाइयां कश्मीर में दी जाती हैं, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन दे आर इन दिल्ली। दिल्ली में क्यों वो सस्ती हैं और वही दवाइयां कश्मीर में जाके ज्यादा महंगी हो गई हैं? इसके बारे में भी आई थिंक हमको सोचना चाहिए, जबकि एक ही देश है और जगह जगह पे जो दवाइयां मिलती हैं, क्यों जो है, क्या GST है या ISD, क्या किस कारण उसकी दवाई की प्राइस ज्यादा हो गई है? उसके लिए भी हमको देखना चाहिए कि सरकार को देखना चाहिए कि वो ठीक तरह से उसके ऊपर कीमत लगाए।
1: इंदिरा जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मैं चाहूंगी डॉक्टर शाह अगर आप इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नियम इसके बारे में बता सके।
6: नहीं मैडम, एज पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मेडिसिन के पूरे इंडिया में एक ही MRP होती है, तो चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, MRP जो होती है अक्रॉस इंडिया सेम रहती है एक पर्टिकुलर ब्रांड की।
1: इंदिरा जी, ऑलमोस्ट सेम रहती है, डॉक्टर शाह बता रहे
5: है, नहीं ऐसी बात, वो हम सोचते हैं।
1: डॉक्टर अंशुमन, इस पर आप कोई बात रखना चाहेंगे?
5: आप कश्मीर में जाके पूछे, वहां के लोग सब रो रहे हैं, वो कहते हैं कि प्राइसेस ज्यादा है।
1: ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर अंशुमन।
7: बिल्कुल डॉक्टर शाह की टिप्पणी से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। MRP कंपनी की सेम लिखी जाती है,
1: ठीक है।
7: कुछ दवाइयां जो पेटेंट लाइसेंस से बाहर आ गई, दिल्ली क्योंकि एक मेजर मेडिकल हब है, उस पर डिस्काउंट रिटेलर या होलसेलर अपनी तरफ से देता है, दवाइयां सस्ती मिलती है। कश्मीर की मेन प्रॉब्लम क्या है? काउंटरफिट मेडिसिन। मैं कश्मीर जाता हूँ मरीजों को देखने के लिए, नकली दवाइयां बहुत ज्यादा है मार्केट में, कश्मीर के मार्केट में। कुछ ही ऐसी फार्मेसी है जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनका सप्लाई चेन या तो डायरेक्टली कंपनी से या दिल्ली से दवा मंगवाते हैं, उसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, उनके पास क्योंकि इतना मार्जिन नहीं बचता है, इसलिए डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं। तो वहां पे दवाइयां MRP और कभी कभी स्टॉक कम हो जाए तो उससे ज्यादा भी ले लेते हैं ये लोग, इसलिए कश्मीर में दवाइयां महंगी लगती है, लेकिन रिटेल प्राइस सेम होगा, अलग नहीं।
1: डॉक्टर मेहरोत्रा, एक बार आपके पास आना चाहूंगी, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अस्पताल जो है वो महंगी कीमत पर दवा ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर सरकारी योजना के तहत इसका रीइंबर्समेंट हो जाता है, आपने भी रीइंबर्समेंट का मुद्दा उठाया था।
8: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, देखिए उनकी भी अपनी समस्याएं होंगी, और वो ज्यादातर चूंकि बल्क में दवा लेते हैं, उनको जैसे कि इंदिरा जी ने भी बताया कि इंडियन कैंसर सोसाइटी जिसको वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो उनको 30-40% पैसे कम मिल लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको साल में या महीने में 100 वायल उठाने हैं, 500 वायल उठाने हैं, तो वो जो जैसे डॉक्टर साहब अंशुमन ने भी बोला कि क्योंकि वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, खासतौर से ऐसे एनसीआर में है, तो वो डिस्काउंट आगे पास ऑन कर देते हैं। और रही बात इसकी कि आप कम पैसे में लें और ज्यादा पैसे में बेचें, ये तो देखिए होता है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक ट्रेल अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई ये दवा 27, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है दवा का नाम क्या है, 2700 रुपए की दवा थी, उस पर मैक्सिमम 40% बढ़ना चाहिए, तो अमूमन 4000 के अंदर ही आनी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी हो और उस पे QR कोड से या उसके साथ पे कागज जो इंसर्ट आते हैं जो कोई पढ़ता नहीं है अमूमन, अगर उस पे लिखा हो तो ये समस्या आएगी नहीं। तो अगर हमारे NPPA है, हमारे जो IDMA या इस तरीके की बॉडीज हैं जो कि रेगुलेशन करती हैं और देखती हैं कि किस तरीके से प्राइसिंग करी जाए, तो ये प्रॉब्लम मेरे समझ से पहले से बहुत कम हो जाएगी।
1: ठीक है इंदिरा जी,
8: दूसरी बात ये है,
1: हाँ चलिए सर अपनी बात रख लीजिए,
8: बस हम खत्म ये करना चाह रहे थे कि NPPA जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी है, और जो इनिशियली कोई भी मैन्युफैक्चर आता है तो वो बताता है हम इतने पैसे में इसकी NRP रखेंगे। तो NPPA का जो काम है वो ये नोटिस करना है, रेगुलेट करना है कि उसके बाद जो बढ़ोतरी होती, मान लो 100 रुपए की दवा है वो बढ़ के 110 रुपए होगी, 120 रुपए होगी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा से बढ़ के 500 हो जाएगी। पर जो इनिशियल रेगुलेशन है कि कितने पे रखा जाए MRP, ये NPPA अगर थोड़ा उस पर ध्यान दें और उस पर समझ के रखें इससे आगे नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से आगे जाके भी ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी।
1: इंदिरा जी, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें मरीज के अधिकारों का भी ख्याल रखा गया है, जिसमें तमाम नियमों को पालन करने के लिए, यहाँ अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसका सीधे तौर पर मतलब ये कि उसका उल्लंघन हो रहा है। मैम अगर आप बता पाए, आपने खुद अपना एक एग्जाम्पल दिया जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि आप भी सस्ती दवाएं लेती हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको सस्ती दवाएं दी जाती हैं, फिर ये प्राइस कौन बढ़ाता है?
5: ये तो मेरा बहुत मुश्किल कह रहा है, मेरे को लगता है कि जो केमिस्ट है वो भी ज्यादा प्राइस करते हैं, और जो मिडिल मैन एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट्स मैं कम से कम ये सोचती हूँ कि सारे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सभी थोड़ी थोड़ी प्राइस बढ़ाते जाते हैं।
1: ठीक है, साफ शब्दों में समझाया जाए तो आपका ये कहना है कि सब अपना कट रखते हैं।
5: सब अपना कट रखते हैं।
1: डॉक्टर अंशुमन,
7: देखिए चीजों को हम मिक्स ना करें, इसमें कोई प्राइस बढ़ाने वाला नहीं बैठा है। डॉक्टर मल्होत्रा ने बिल्कुल क्लियर कर कहा कि एक फॉर एग्जांपल मैंने दवा कंपनी बनाई, मैं आज दवा लेके जा रहा हूं, इसको मुझे मार्केट में लाना है, मैंने लैंडिंग प्राइस बोलते हैं कि मुझे बनाने में, पैकिंग करने में और दुकान तक उतार देने में मेरा कितना खर्चा होगा मेरी कंपनी का, मैंने वहां पे NPPA को आइडिया दिया कि मैं इस दवा को 2700 रुपए में उतार सकूंगा, लेकिन कागज में लिखा हुआ है, डब्बे पे मैंने लिख रखा है MRP 27,000 में रखना चाहता हूं। ऑब्वियसली मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ना कि मेरी दवा ज्यादा बिकेगी अस्पतालों में, डॉक्टर ज्यादा लिखेंगे क्योंकि इस पे मार्जिन है, मतलब अस्पताल की फार्मेसी दवा होलसेलर से खरीद लेगी 2700 रुपए में, और 27,000 MRP होने के बजाय, सॉरी 20% प्रॉफिट रखने के बजाय इस पे 27,000 मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखा गया है, तो ये बीच का पैसा कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? जो डॉक्टर उस दवा को लिखेगा और जिस अस्पताल की फार्मेसी से दवा बिकेगी उस अस्पताल के बिजनेस प्रमोटर को पैसा जाएगा, तो दवा निश्चित जल्दी चलेगी, फिर वही दवा CGHS और जितने गवर्नमेंट बेनिफिशरी हैं, इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिशरी हैं, उनको लिखी जाएगी और ये सारी कंपनी उनको रिटर्न करेंगे, रिइंबर्स करेंगे, तो पैसा भी मिला। तो आप बताइए कि कौन, अगर आप अलाउ कर देंगे तो NPPA को वही रोक देना चाहिए कि जब लैंडिंग प्राइस आपका 2700 रुपए है तो 27,000 MRP क्यों लिख लाए हो आप, 3200 रुपए करो, 2700 खर्चा हो रहा है आपका, 3200 MRP लिखो, इससे ज्यादा आपको ड्रग हैंडलिंग में फार्मेसी को पैसा नहीं मिलेगा।
1: डॉक्टर अंशुमन,
7: रोक वहां लगा लेंगे।
1: डॉक्टर अंशुमन, एक एक हमारे आम दर्शकों के लिए, सबके लिए जो भी इस शो को देख रहे हैं, उनको जरा समझाने के लिए, आप खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बता दीजिए कि क्या प्रक्रिया रहती है कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखने की, कितना ऑनेस्ट रहता है डॉक्टर जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है?
7: देखो, तो प्रिस्क्रिप्शन का दो हेडिंग में बांट दें, एक OPD प्रिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल इंदिरा जी जानती हैं ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है, बाद में उसको एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल, टेमोक्सिफेन इस तरह की दवा चल रही है, ओपीडी प्रेस्क्रिप्शन आप लिख दिए, मरीज कहां से लेगा, आपके कंट्रोल में नहीं है, जाके ले ले। इसमें सच में कई दवाइयां बिल्कुल सस्ती उपलब्ध है, एक रुपए की गोली है उसमें। दूसरा, जिस प्रेस्क्रिप्शन में सबसे ज्यादा मारामारी हो रही है आईपीडी पेशेंट, मतलब मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती है और एक जगह नहीं हो रहा है, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही है, तो मरीज जाके बाहर से दवा खाने से दवा ला रहा है। और उस पे एमआरपी में जो लूट चल रहा है, इसी लूट को कम करने के लिए पिछले 15-17 साल से हम लोग भिड़े हुए हैं कि एमआरपी का खेल बंद करो भाई, ट्रांसपेरेंसी करो लैंडिंग प्राइस पे, ट्रांसपेरेंसी करो प्रॉफिट मार्जिन में, और क्यूआर कोड से स्कैनिंग करो। कहीं नहीं सकता है अस्पताल का जो लाला होता है, एमबीए किया हुआ जो अस्पताल चला रहा होता है, वो कह नहीं सकता है नकली दवाई है, बाहर से लाए हम नहीं चलाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन करके देख लेगा मरीज की दवा ओरिजिनल है, ओरिजिनल कंपनी का बैच नंबर लगा हुआ, सब कुछ है, नकली कैसे कह रहे हो। ये ट्रांसपेरेंसी जरूरत है, अदरवाइज आपको बताओ, इंडिपेंडेंट इंडिया का लार्जेस्ट स्कैम है हेल्थ केयर स्कैम, इवन फ्रॉडर स्कैम, दिस स्कैम, दैट स्कैम, 2G 5G सब भूल जाओगे अगर सच में हेल्थ केयर स्कैम का आपको अंदाजा लग जाए, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है।
1: डॉक्टर मेहरोत्रा, अब इसको रोकेगा कौन? कोर्ट ने भी जवाब तलब किया है संबंधित अधिकारियों से, विभागों से, कौन रोकेगा, किस तरीके से रोका जाएगा? और अगर डॉक्टर अंशुमन यहाँ कह रहे हैं कि वो भी लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो फिर अभी तक सुनी क्यों नहीं जाती है?
8: इसका तो जवाब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ रूल्स तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं हिंदुस्तान में, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में कितनी समस्याएं होती हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें कि एनपीपीए है या गवर्नमेंट के और बॉडीज हैं जो कि इस तरीके की चीजों को रेगुलेट करते, जिनका काम है रेगुलेट करना, अगर फार्मेसी के पास आप चले जाओ, आपके घर के पड़ोस में भी हर हर दुकान, हर बाजार में एक फार्मेसी है, उसमें कितने फार्मेसिस्ट जो है क्वालिफाइड है, एक फार्मेसिस्ट जो है वो 10 जगह उसका लाइसेंस लगा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान की, देखिए उसको हम लोग नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। तो अच्छा, तीसरी बात जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बात हुई, अभी बात करी अंशुमन जी ने कि जो हमारे जो MBA बैठे हुए हैं या ओनर्स बैठे हैं उनको भी प्रॉफिट चाहिए। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर दवाएं जो अब मिलना पहले से बेहतर हो गई हैं, बट कहीं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका, अगर मैं एक सेंटेंस में जवाब दूं, ये एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहना कि सिर्फ सरकार करेगी वो भी मुश्किल है, पुलिस करेगी वो भी मुश्किल है, ये तो मेरे ख्याल से मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को साथ में बैठ के डिसाइड करना है कि कैसे इस, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है।
1: बिल्कुल।
8: अभी हाल में आपने सुना होगा एक बड़ा स्कैम हुआ था कि चंडीगढ़ में एक इंसान रीफिल, बैंगलोर में रीफिल कर करके वो दवाई दे रहे थे नकली, और करोड़ों के रुपए वो पकड़े गए।
1: सर, हमने कोविड समय में भी देखी थी कि कौन सी दवा, मैं डॉक्टर अंशुमन या डॉक्टर मेहरोत्रा आपको याद होगा वो कौन सी दवा थी जो लाखों में बिकी थी,
7: रेमडेसिविर की जगह पानी भर दिया गया,
1: वो देखा था हमने। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि जब तक सुप्रीम डंडा नहीं पड़ेगा तब तक कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और ना ही उसका पालन करेगा। अब जवाबदेही संबंधित विभागों की है, 28 तारीख को वापस से कोर्ट में उन्हें पहुंचना है, अपना जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप फिर हमारे साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करेंगे शहादत की याद में पूर्व सैनिक के एक अभियान की, जिसका मकसद 26/11 के शहीदों के सम्मान में 26 पर्वत की चोटियों पर चढ़ाई करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना था। गाजियाबाद के रहने वाले पूर्व सैनिक दीपक कुमार ने अपनी टीम के साथ 11 दिन में 6000 मीटर की ऊंचाई वाली 26 पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहराया। मुंबई हमले के दौरान देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले हर शहीद की फोटो भी उन्होंने लगाई। इस अभियान का एकमात्र मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि 26/11 के शहीदों को पर्वतारोहण अभियान के जरिए श्रद्धांजलि देना था।
2: आमतौर पर माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वतारोहण का मकसद नए और मुश्किल पर्वत शिखरों को फतह करना होता है। इस दौरान पर्वतारोही की शारीरिक और मानसिक सीमाओं की परख भी हो जाती है, साथ ही प्रकृति की सुंदरता देखने समझने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन पर्वतारोहण के पीछे भारतीय सेना में रहे इस पूर्व सैनिक का मकसद कुछ और है। देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना हर सैनिक का सर्वोपरि और बुनियादी कर्तव्य है। देश की रक्षा के संकल्प के दौरान कई बार शहादत भी देनी पड़ती है, जिसकी कद्र करना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना यानी सर्वोच्च कुर्बानी की अहमियत एक सैनिक से ज्यादा कौन समझ सकता है। ऐसे में पूर्व सैनिक और पर्वतारोही दीपक कुमार की तरफ से अलग अलग पर्वत के शिखरों तक पहुंचने का मकसद बेहद नेक है।
3: किसी शहीद के बलिदान के मायने एक सैनिक से ज्यादा शायद ही कोई समझ सकता है। आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक के घर लेकर आए हैं जिसकी दीवारें ऐसे तमाम रिकॉर्ड से भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड से परे इस सैनिक ने एक नया मिशन अपनाया। उन्होंने कहा कि वो 26/11 के हमले में शहीद हुए तमाम बलिदानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना पहाड़ का। 11 दिन के भीतर 26 ऊंची पर्वत की चोटियों की इन्होंने चढ़ाई की, जिसमें से हर चोटी की ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा की थी। मिलवाते हैं आपको आज उसी सैनिक से।
2: 26/11 मुंबई हमला भारत के इतिहास का काला अध्याय है, जिसे देश का कोई भी नागरिक कभी नहीं भूल सकता है। तब सैकड़ों मासूम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 18 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी। ऐसे शहीदों के प्रति मन में सम्मान की वजह से पर्वतारोही दीपक कुमार ने श्रद्धांजलि देने की अपनी भावना को खास अभियान से जोड़ दिया। सेना मेडल तक पा चुके दीपक कुमार 31 जुलाई को रिटायर हुए हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवा भी मुश्किल से सांस लेती है, जहां तापमान -5 डिग्री से -20 डिग्री तक होता है, जहां हर कदम बढ़ाना पहाड़ जैसी चुनौती के बराबर होता है, वहां दीपक कुमार अपनी टीम के साथ 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा लहराते हैं। खास बात यह है कि शहादत के सम्मान से जुड़े इस अभियान के लिए उन्होंने 26 नवंबर की तारीख नहीं चुनी, बल्कि 11 दिनों में 26 पर्वत की चोटियों पर तिरंगा फहराने का फैसला किया।
4: मैंने सोचा एज ए आर्मी पर्सन कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो एक शहीदों के लिए कुछ हो। तब एज ए माउंटेनियर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो जैसे एकदम मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई सडन कि 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था तो मैं उन शहीदों को ट्रिब्यूट करता हूँ। तो उसी के ब्याप पे हम जो है 11 दिन में 26 पीक क्लाइम करेंगे, जो सारी 6000 मीटर से अबव होंगी, और इसके जरिए जो शहीद हुए हैं हम उनको एक ट्रिब्यूट करेंगे।
2: दीपक कुमार की टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें भारतीय सेना के 3 सर्विंग सोल्जर के अलावा 2 सिविलियन भी शामिल हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रॉन्च पर्वत से शुरू हुए इस अभियान के दौरान कई मशहूर पर्वत चोटियों पर शहीदों की फोटो लगाई और तिरंगा लहराया, वो भी अल्पाइन स्टाइल में, जो पर्वतारोहण की एक ऐसी शैली है जिसमें पर्वतारोही बिना किसी बाहरी मदद, भारी साजो सामान, फिक्स्ड रस्सियों और खाने पीने के चीजों के साथ तेजी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं।
4: हमने स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस से 15 अगस्त से स्टार्ट किया था, और इसमें जो टीम थी हमारी 6 बंदों की टीम थी, और छह बंदों की टीम थी, तो हमने जो ये मिशन था ये हमने स्टार्ट किया था कारजोक से। हमने फर्स्ट में ग्यामा रेंज को, मेंटोक रेंज को कंप्लीट किया था एक दिन में। उसके बाद दूसरा दिन हमारा था यालुंगनांग की तरफ हम गए। तीसरा फेज था हमारा ग्यामा मैसिव की जो पिक्स हैं उसका था। और चौथा फेज था हमारा पोलोगोंका की जो रेंज थी। और पांचवें फेज में हमने खत्म किया था ये अपना थोगजे रेंज को।
2: दीपक के इस अभियान का मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि 26/11 के शहीदों को पहाड़ों के जरिए श्रद्धांजलि देना है। हालांकि पर्वतारोहण का शौक उन्हें सेना में रहते लगा। 2006 में भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद पर्वतारोही के तौर पर दीपक कुमार का सफर लगातार ऊंचाइयां छूता गया। 2013 से 2025 के बीच दीपक 65 चोटियों को फतह कर चुके हैं। इनमें नेपाल की 8,685 मीटर ऊंची माउंट मकालू से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटियां तक शामिल हैं। 2019 में भारतीय सेना के एडवेंचर विंग के अभियान के तहत उन्होंने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया था। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। पर्वतारोहण की दुनिया में दीपक कुमार ने सिर्फ चोटियां फतह नहीं की बल्कि रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 2019 में कजाकिस्तान में 9 दिनों के भीतर 15 चोटियों को छू लिया था। इसके बाद दीपक ने साल 2021 में 24 घंटे के भीतर 12 पर्वत चोटियों का आरोहण किया। दीपक रूस की 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस और अफ्रीका की 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो की चोटियों पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो चुका है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दीपक 3 बार जगह बना चुके हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार उनका नाम दर्ज हो चुका है। और इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दीपक की उपलब्धियां दर्ज है। -25 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफानों और खतरनाक ग्लेशियर पर लगातार चढ़ाई के पीछे एक और मकसद है। त्याग, बलिदान और शहादत के सम्मान के जरिए पूर्व सैनिक दीपक कुमार आने वाली पीढ़ियों और युवाओं में राष्ट्रवाद और सेवा की भावना को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 8 मेडल। स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर मेडल। हाई जंप और लॉन्ग जंप भी बरसी चांदी। राम वनगमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। बायोपॉलीमर प्लांट की भीमकाय मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक सेफ निकासी के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी। 3 दिनों से मां वाली ट्रक देखने के लिए लग रही है कतार। हिमाचल प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज, स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, चारों तरफ बर्फी बर्फ। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, नैनीताल में बढ़ा झील का जल।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
1: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सच्ची और अच्छी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मैदानी इलाकों में भारी बारिश की वजह से बनने के बाद लू प्रेशर बेल्ट अब हिमालय की तरफ बढ़ गया है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, पूरा इलाका चांदी से चमक रहा है और लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब में तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।

0: पेड़ों पर बर्फ, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, सड़क और घरों की छतों पर बर्फ। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। यहाँ की स्पीति घाटी में सीजन की पहली बारिश ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी है। सुबह सुबह काजा, चीचम, पिन घाटी समेत लांगजा की पहाड़ियों समेत आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जो बाद में कई जगहों पर तेज हो गई। देखते ही देखते पहाड़ों और आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। स्पीति में हुई इस पहली बर्फबारी के साथ ही घाटी में ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में कुछ दिन पहले से ही बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई है और कहा है कि बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन और मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले पर्वतीय मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। पूरा इलाका सफेद, मानो प्रकृति ने अपने हाथों से पहाड़ों का श्रृंगार किया है। तस्वीरें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की है। यहाँ पर जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। लोग पूरी आस्था के साथ मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। आसपास के पहाड़ों पर बर्फ ने अभी से ही कब्जा जमा लिया है। जिधर नजरें जाती हैं, बर्फ ही बर्फ दिख रही है। उत्तराखंड के ही चमोली जनपद में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। शुक्रवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारत चीन सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। कई जगहों पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। वहीं निचले इलाकों में लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। कड़ाके की ठंड के बीच सीमा क्षेत्र में सेना, ITBP और BRO के जवान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भारी बर्फबारी और विपरीत मौसम के बावजूद सीमांत क्षेत्रों में जवानों की तैनाती लगातार बनी हुई है।
1: भारत चीन सीमा जहां पे भारतीय सेना इस समय मौजूद है, वहां पे जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। हेमकुंड साहिब में भी तड़के सुबह से बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ की चोटियों पे बर्फबारी का दौर जारी है। बारिश लगातार हो रही है। नाले उफान पर हैं, अलकनंदा नदी उफान पर है, सब कुछ उफान पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ बदलाव देखने को मिल रहा है तो ठंड बढ़ चुकी है, एकदम ठंड, सर्दी का एहसास पहाड़ों में इस समय हो रहा है।
0: अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा रोक दी गई है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। बद्रीनाथ धाम में पितृ तर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है। भगवान बद्री विशाल के प्रति आस्था के आगे मौसम की मुश्किलें भी छोटी नजर आ रही हैं। बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी अचानक मौसम बदलने से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम खराब होने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। गोमुख ट्रैक के चीड़वासा, भोजवासा और गोमुख क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई है। वहीं भारत चीन सीमा से लगे नीलांग, जादुंग क्षेत्र में भी बर्फबारी की सूचना है। दरअसल मैदानी इलाकों में भारी बारिश के लिए जिम्मेदार लो प्रेशर बेल्ट अब पहाड़ी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट कर गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पहाड़ी राज्यों में 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: लेह में 3 दिन लद्दाख महोत्सव 2026 शुरू हो चुका है।

इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने किया। इस महोत्सव में देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, तो स्थानीय कलाकार अपनी कला से लद्दाख की कला और संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं।

0: लद्दाख अपनी बर्फीली चोटियों, नीले पानी की झीलों और अद्भुत रेगिस्तानी वादियों के साथ धरती पर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। नुब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में दो कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी हो या खरदुम लापास की सड़कें दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है, जो बादलों के ऊपर होने का एहसास कराती है। शांति स्तूप और थिक्से जैसे प्राचीन बौद्ध मठ आध्यात्मिक शांति और खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। लद्दाख की संस्कृति और परंपरा के रंगों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर साल लद्दाख फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 26 से 28 सितंबर तक 3 दिन के उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से आए कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये फेस्टिवल सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और बेमिसाल जज्बे का जश्न है।
1: महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और आप सभी के बेमिसाल जज्बे का जश्न है। लद्दाख मतलब सिर्फ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और नीचे झील नहीं है। लद्दाख इन वंडर्स से कहीं अधिक आगे है। यह साहस, शांति, अध्यात्म और एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रतीक है। सिंधु नदी के पवित्र लहरों से लेकर इन बर्फीली चोटियों तक लद्दाख के कणकण में एक अनूठी ऊर्जा बहती है।
0: इस साल महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार दिया गया है। उद्घाटन समारोह में शिलोंग चेंबर कायर ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 14 सदस्य विशेष सांस्कृतिक दल को आमंत्रित किया गया है। ये दल सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अगले 3 दिनों में अपनी प्रस्तुतियां देगा। इसके जरिए लद्दाख के लोगों और पर्यटकों को अंडमान निकोबार की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के सहयोग से एक विशेष फ्यूजन कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के कलाकारों को मिलाकर 47 सदस्य दल तैयार किए गए हैं। कलाकार विभिन्न उत्तर भारतीय संस्कृति और संगीत परंपराओं का संगम पेश करेंगे। लद्दाख फेस्टिवल में लद्दाख के सभी जिलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को जगह देने की कोशिश की गई है। साथ ही उभरते और नई पीढ़ी के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराया गया है। महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को सामने लाने के साथ देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विविधता से लोगों को परिचित कराना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुन न्यूज़ टुडे।
2: पहाड़ों की हरी भरी वादियां, खिली धूप में चमकती चोटियां और समुद्र के किनारे कुदरत की आगोश में सुकून तलाशते सैलानी विश्व पर्यटन दिवस पर बात उस खूबसूरत जगह की करेंगे जो सिर्फ आंखों को ही नहीं भाती, बल्कि संस्कृति, विरासत और स्थानीय लोगों की जिंदगी को भी दुनिया से जोड़ती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत की विविधता की कुछ ऐसी ही शानदार तस्वीरें, जिनसे रूबरू होने के साथ साथ उन्हें कायम रखना भी बहुत जरूरी है।
3: पहाड़ों की ऊंची चोटियां, हरे भरे घास के मैदान, खिली धूप और वादियों में बिखरी कुदरत की बेशुमार खूबसूरती, कश्मीर की फिजाएं हमेशा से सैलानियों को अपनी ओर खींचती रही हैं। जहां नजर जाए वहां हरियाली की कालीन बिछी है, सामने आसमान छूते पहाड़ हैं और उनके बीच धूप में नहाते ये हरे भरे मैदान मौजूद हैं। कश्मीर की वादियों में कुदरत जैसे हर रंग को अपने सबसे खूबसूरत अंदाज में सजाती है। ये तस्वीरें कश्मीर के डोडा के भालेसा इलाके की हैं। सर्दियों में जहां एक और यही इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है, वहीं गर्मियों और साल के बाकी समय यहां हर नजारा सुकून की अलग ही कहानी कहता है। आसपास के इलाकों में भी लोग इस माहौल का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। यहां पर आकर वो फुर्सत के पलों को खूब एंजॉय करते हैं।
4: चले भी आओगे गुलशन का कारोबार,
3: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्थानीय लोगों का कहना है कि कश्मीर में ऐसी तमाम जगहें हैं जो सैलानियों को आकर्षित कर सकती हैं, लिहाजा इन जगहों को टूरिज्म के नक्शे पर लाने और सैलानियों के लिए यहाँ पहुँचने की सुविधाओं का इंतजाम करने की जरूरत है।
5: बेसिकली यहाँ पे टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ हमारा जैसे बलेस एरिया हो गया, बलेस एरिया में लाखनदार, पदरी, गाशा टाप, कांठी दहार जो ये हैं, ये हिली एरियाज हैं, यहाँ मीडोज हैं। यहाँ पे जो कल्चरल टूरिज्म है, जैसे हमारे गुजर बकरवाल लोग यहाँ पे अपने माल मवेशी लेके आते हैं, उनके उनकी पौनीज पे हम चढ़ के वहाँ पहाड़ों की सैर कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं।
6: अब ये सोचा था कि हम पिकनिक जाएंगे, लेकिन हमारे पास रोड की वजह से हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ा, हम चल नहीं सकते। नई जनरेशन जो बिल्कुल चल नहीं पाते, तो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट से यही गुजारिश रहेगी कि इन हमारे ये जो भलेसा एरिया है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए आप टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो ही हमारा टूरिज्म है भलेस में भी होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी जगहें देखो, पहाड़ियाँ देखो, हमारे यहाँ से कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, हमारे यहाँ ग्रीनरी है, बहुत सारी जगहें हमारे पास। इस वक्त हम कांठी के मकाम पर आए हुए हैं, जैसे हमारे पास बाल पदरी है, डोसा टॉप है, बाजदार है, बहुत सारी जगह है, लेकिन हमारे रोड कनेक्टिव की वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं।
3: ये तस्वीरें भले ही कश्मीर का एक हिस्सा दर्शाती हों, लेकिन इन वादियों की असली खूबसूरती शायद उस एहसास में है जो यहाँ आने वाला हर मुसाफिर अपने साथ लेकर लौटता है, और वो है प्रकृति के बेहद करीब होने का एहसास। लोगों का कहना है कि इन इलाकों में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए ताकि टूरिज्म को पंख लगे।
7: कश्मीर वैली के बाद सबसे ज्यादा टूरिज्म का जो पोटेंशियल है हमारे भलेस में है। आप दिखाइए जरा किस तरह का यहाँ पे ये एरिया है। यहाँ पे अगर पैराग्लाइडिंग का होता और रोड की कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, हमारे जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, और आज जो टूरिस्ट लोग हैं ट्रैकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आ पाएँ। अगर यहाँ पे फैसिलिटी दी जाए तो पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और भले इसको एक टूरिज्म हब बना दिया जाएगा अगर कोई यहाँ पे काम।
3: आपको बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी। 27 सितंबर 1970 को UNWTO के नियमों को अपनाया गया था। इसी की याद में 1980 से इसी तारीख को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद पर्यटन की अहमियत के प्रति जागरूकता फैलाना है। विविधताओं से भरे देश भारत में केवल पहाड़ और हरियाली ही नहीं, बल्कि पूर्वी से लेकर दक्षिण भारत तक शानदार समुद्री किनारे भी हैं, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त सहित बेहतरीन कुदरती नज़ारे बेहद आकर्षक होते हैं। पर्यटन दिवस का मौका भारत की इस बेशुमार विरासत को न केवल दुनिया के सामने लाने का है, बल्कि देश के लोगों के लिए भी इन्हें देखने और सहेजने का है, ताकि देश की ये पहचान आने वाले समय में भी बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अयोध्या में भगवान राम लला के नगरी के साथ साथ अब जिन जिन जगह पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे, उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित सभी स्थलों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। उसमें देखिए उस जगह की महिमा का वर्णन और राष्ट्रलोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखा होगा। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से स्तंभ का बाकायदा निर्माण किया गया है। इसे वेद श्रुति नदी कवराज धाम और तमसा तट गोराघाट प्राचीन दशरथ महल मंदिर नंदीग्राम भारत कुंड हनुमान भरत मिलंत मंदिर और जटाकुंड नंदीग्राम भारत कुंड मैं देखिए सिंह ऋषि आश्रम प्राचीन सूर्य कुंड दशरथ समाधि स्थल मखोड़ा धाम प्राचीन सीता कुंड में स्थापित किया जा रहा है। भगवान केदारनाथ का धाम में सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन आजकल केदारनाथ धाम समेत चार धाम यात्रा में प्लास्टिक कचरा एक मुसीबत बन चुका है। इसके निजात पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रशासन के साथ साथ मिलकर कई स्वयंसेवी संस्थाएं कचरे के निस्तारण में लगी हुई हैं। साथ ही साथ कैरी मी बैग का अभियान भी चलाया जा रहा है।

0: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है। मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। खासकर केदारनाथ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ हिमालय के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी हो रही है। केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर बढ़ता कूड़ा, खासकर प्लास्टिक कचरा, हिमालय के पर्यावरण के लिए चिंता का सबब बन रहा है। इस साल अब तक 15,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जबकि यात्रा को अभी एक महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। तस्वीरें हैं बाबा केदार की नगरी केदारनाथ की। एक तरफ श्रद्धालुओं की आस्था तो दूसरी तरफ इसी आस्था के बीच हिमालय पर बढ़ता कूड़े का बोझ। केदारनाथ जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन हर साल बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या के साथ ये चुनौती और भी गंभीर होती जा रही है। सबसे ज्यादा चिंता प्लास्टिक कचरे को लेकर है। बोतलें, पैकेजिंग और दूसरे प्लास्टिक उत्पाद अगर सही तरीके से एकत्र और निस्तारित नहीं किए गए तो इनका असर बेहद संवेदनशील हिमालय क्षेत्र और बुग्यालों पर पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन के सहयोग से कैरी मी बैग अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत भक्त 12 टन से ज्यादा कूड़ा अपने साथ वापस लाए हैं, जबकि कूड़े की सफाई में टीमें भी लगी हुई हैं।
1: इस बार जो कूड़े के आंकड़े सामने आए हैं वो पिछले वर्षों के सापेक्ष जो बहुत ज्यादा मात्रा में कूड़ा है, और प्रशासन और हमारे जो यहाँ पर स्वयंसेवी संस्था हैं सभी ने मिलकर के अच्छा काम किया, उस कूड़े को कलेक्ट करके नीचे लाने का काम किया है। और जो हमारे MRF सेंटर्स हैं वो फंक्शनल हैं। इसके अलावा जो कूड़े का सेग्रीगेशन है वो काम हो रहा है, और जो बॉटल्स को लेकर के डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो कूड़े की समस्या जो है उसको प्रशासन ने बहुत ही चुनौती के रूप में लिया है और सभी टीमें इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी कूड़ा श्री केदारनाथ धाम में या ट्रैक रूट पे या रास्ते में हम लोगों को मिल रहा है उसको हम साइंटिफिकली डिस्पोज करें, इसको कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट करें। साथ ही मेरी सभी से अपील भी है कि इस यात्रा में आने वाले लोग हमारे पर्यावरण की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मेरी अपील है।
0: पिछले वर्षों की तुलना में केदारनाथ में इस बार कूड़ा अधिक हुआ है और प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण को चुनौती के रूप में लिया है। प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं कूड़ा निस्तारण करने में जुटी हुई है। धाम और पैदल मार्ग से कूड़ा एकत्रित कर निस्तारण के लिए सोनप्रयाग लाया जा रहा है। चारधाम यात्रा में चुनौती सिर्फ बाबा केदार तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने की नहीं है, बल्कि हिमालय के पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी है। आस्था सिर्फ बाबा केदार की भक्ति की ही नहीं, बल्कि हिमालय की इस पवित्र धरती को स्वच्छ रखना भी उसी आस्था का हिस्सा है। इसलिए इस प्राकृतिक विरासत को बचाने की जरूरत है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज़ टुडे।

भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज का दिन एक नए और ऐतिहासिक युग की शुरुआत लेकर आया है। आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

0: देश की पहली एलएनजी ट्रेन को पटरियों पर उतार दिया है। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। अब इस नए कदम ने भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये ट्रेन डुअल फ्यूल सिस्टम से लैस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के साबरमती से देश की इस पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने वाली हरित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटरियों पर उतारने से पहले इस ग्रीन ट्रेन यानी एलएनजी इंजन वाली ट्रेन के सफल ट्रायल किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2000 किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दिखाई गई है। भारतीय रेलवे की इस एलएनजी ट्रेन के पीछे का उद्देश्य ईंधन की लागत कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। एलएनजी ट्रेनों को चलाने के लिए डुअल फ्यूल दोहरे ईंधन इंजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ट्रेन का इंजन केवल एक ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय डीजल और एलएनजी दोनों के मिश्रण से चलता है, जैसे कि कार में सीएनजी और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। एलएनजी यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जो स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। प्राकृतिक गैस को लगभग -162 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो ये गैस से द्रव्य में बदल जाती है। तरल रूप में बदलने से इसका आयतन लगभग 600 गुना कम हो जाता है, जिससे इसे ट्रेन के छोटे टैंकों में अधिक मात्रा में स्टोर करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान हो जाता है। भारतीय रेल एलएनजी फ्यूल का इस्तेमाल अब ट्रेन चलाने के लिए करने लगा है। भारत में पहली एलएनजी ट्रेन साबरमती से शुरू हो गई है। एलएनजी का इस्तेमाल अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा और स्पेन जैसे देश कर रहे हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। फिलहाल गुजरात में साबरमती और मेहसाणा जंक्शन के बीच ये ट्रेन चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, भारत ने एशियन गेम्स में आज 4 सिल्वर समेत 7 मेडल अपने नाम कर लिए। सर्वेश कुशारी ने मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 2.25 मीटर की बेस्ट जंप की। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में 9.08.67 के पर्सनल बेस्ट के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। इससे पहले एनसी सोजा ने महिला लॉन्ग जंप में 6.53 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर, और तेजस्विन शंकर ने डीकैथलॉन में 7,934 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हरिता बद्रा ने महिला 200 मीटर में 23.20 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करा। और इस तरह से एशियन गेम्स में भारत मेडल्स की संख्या अगर हम देखें तो गोल्ड की अब 4 हो गई है, 16 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज के साथ अगर कुल आंकड़ा देखें तो 37 पहुंच गया है। अब आपको दिखाते हैं एशियाई खेलों में भाग लेने गई भारतीय क्रिकेट टीम के बुलेट ट्रेन में सफर की तस्वीरें। जैपनीज अंदाज में सफर करते हुए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को टोक्यो से नागोया पहुंच गई है। तस्वीरें देखिए, टोक्यो से नागोया तक का ये सफर। टीम ने जापान की मशहूर नोजोमी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से तय किया। सफर के दौरान सभी खिलाड़ी बहुत आरामदायक मूड में नजर आए और उन्होंने इस हाई स्पीड ट्रेन यात्रा का जमकर लुत्फ भी उठाया। बीसीसीआई के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की गई हैं। भारतीय टीम एशियन गेम्स में अपने सफर की शुरुआत कल यानी 28 सितंबर से करने जा रही है। भारतीय टीम की पहली टक्कर अफगानिस्तान से होगी और इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हैं। इससे पहले बुलेट ट्रेन में उनके सफर की शानदार तस्वीरें निकलकर सामने आईं, जिसमें खिलाड़ी मौज मस्ती करते हुए नजर आए। देखिए
2: अरे भाई, लेकिन लिए तो पूरी कहीं ना कहीं देखा हुआ कह रहे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक बड़े अद्भुत पुराण के बारे में बात करेंगे, जिसका पाठ आम तौर पर किसी की मृत्यु हो जाने के दौरान किया जाता है। आज बात करेंगे गरुड़ पुराण की और इसके रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 सितंबर 2026, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 7:13 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 10:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:16 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 सितंबर 2026, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में, और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु के बारे में, यमलोक यात्रा के बारे में, नरक योनियों के बारे में और सदगति के बारे में अनेक रहस्य वाले और गूढ़ सवाल पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत की और उन्हें इन तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं, गरुड़ पुराण में लिखे गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का नियम है। लोगों के घर में किसी का देहांत हो जाने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है। प्रकल्प के बारे में बताया गया है। इसको सुनने से या पढ़ने से या चिंतन करने से सद्गति की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। गरुड़ पुराण पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। यात्रा के योग बनते हैं इस समय। शिक्षा में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होती जाएंगी। नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो गरुड़ पुराण में नरक योनियों, प्राणियों, जीवन और मुक्ति के बारे में बताया गया है। तो गरुण पुराण में किस प्रकार के नरक और गतियों के बारे में बताया गया है और जो बताया गया है क्या वो सही है? देखिए, गरुण पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। गरुण पुराण में जो नरक बताए गए हैं कि तेल में तलना, शूल पर चलना, अग्नि में फेंकना, ये मन की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। ये प्रतीकात्मक हैं, ये वास्तविक नहीं हैं। आपके मन को अपने कर्मों के अनुसार कैसा फल भुगतना होगा इस बारे में गरुण पुराण एक इशारा करता है, लेकिन वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। हालांकि ये बात जरूर है कि आपके कर्मों के परिणाम वास्तविक जीवन में आपको वैसे भुगतने पड़ते हैं, मानसिक रूप से आपको उतनी पीड़ा या उतना कष्ट उठाना पड़ता है। और जो कष्ट उठाना पड़ता है आपके मन को अपने कर्मों के फल स्वरूप, वो परिणाम वास्तविक और मानसिक होते हैं। अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को मुक्ति की तरफ, सदगति की तरफ ले जाती हैं। तुलसी पत्र यानी तुलसी का पत्ता और कुश घास, इसका प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति करने से व्यक्ति के दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाता है। जल का दान करना और दूध का दान करना भी व्यक्ति के कल्याण में सहायता करता है। अगर आप अपने गुरु की शरण में हैं, आपके गुरु की कृपा है आपके ऊपर, तो आपके दंड शून्य होंगे और आप सदगति की तरफ जाएंगे। यानी कर्म बंधन को काटने के लिए, दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। गरुण पुराण पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, काम टालने से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि काम की अधिकता से परेशानी होगी, प्रिय जनों से वाद विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।

मिल रहे हैं आपके ग्रहों से आपके जीवन साथी को लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी रखें, शिव जी को जल अर्पित करने से दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सामान्यतः आपने घर में देखा होगा कि लोग रामायण पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, लेकिन गरुण पुराण रोज नहीं पढ़ते या सामान्यतः नहीं पढ़ते। किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी आकर के घर के लोगों को गरुण पुराण पढ़ करके सुनाते हैं। तो क्या गरुण पुराण केवल किसी की मृत्यु के समय ही पढ़ना चाहिए? देखिए, गरुण पुराण का पाठ अगर आप उसके भाव को समझ करके करें तो सर्वोत्तम होगा। आत्मा और मन अलग अलग चीजें हैं। कष्ट, सुख या दुख आपके मन को होता है, आत्मा निष्प्रिय रहती है, आत्मा केवल उसको देखती है, आत्मा के ऊपर कोई छाया कोई परछाई नहीं पड़ती। आप गरुण पुराण का पाठ कभी भी कर सकते हैं। वैसे अगर महीने में एक बार अमावस्या पर आप गरुण पुराण का पाठ अपने पूर्वजों के लिए करें तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। और अगर गरुण पुराण का भाव आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी वास्तविकता क्या है, तो आप डरेंगे नहीं, आपको भय नहीं लगेगा। अगर आप गरुण पुराण को गहराई से जानना चाहते हैं तो गरुण पुराण के साथ भगवत गीता का पाठ जरूर करिएगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि जीर्णानि तिनरोपराणि, यानी जिस तरह आत्मा अपने शरीर बदलती है, जैसे व्यक्ति अपना शरीर बदलता है, यानी आत्मा पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। आत्मा को न जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न सुखा सकते हैं। तो गरुण पुराण में कहा गया सजा दी जाती, सजा देते किसको है जब आत्मा के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। सजा मिलती है, सजा भोगता है आपका मन जो आत्मा के साथ जुड़ा होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम लेकिन बढ़ा रहेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और खुद को ज्ञान देने के लिए, खुद मोह के जाल से बाहर निकलने के लिए आप गरुण पुराण का पाठ कर सकते हैं। अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में अगर आप रोज या जब भी मौका मिले प्रातः काल अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके प्रार्थना करें तो इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो पितृपक्ष में गरुण पुराण भी पढ़िए और अपने पूर्वजों के लिए गजेंद्र मोक्ष भी पढ़िए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को चमकाने के लिए एक लकी टिप। अपने घर में किसी भी तरीके से गमले में, जमीन में पीपल का पौधा मत लगाइए, लेकिन चूंकि पितृपक्ष का पवित्र समय चल रहा है तो आप चाहें तो सार्वजनिक स्थानों पर, पार्क में, सड़क के किनारे पीपल का पौधा लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करिएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल। स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर मेडल। हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी जान। प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन। स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। बायोपॉलीमर प्लांट की भीम का मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक। सेफ निकासी के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी। 3 दिनों से महाबली ट्रक देखने वालों का लगा तांता। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। नैनीताल में बढ़ा झील का जलस्तर। ऋषिकेश में जल पुलिस श्रद्धालुओं को कर रही अलर्ट। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन। नई तकनीक से 40% डीजल की खपत होगी कम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीते की सफलता की। भारत में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में चीतों की वापसी होगी, लेकिन 1922 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई और महज 4 साल में 8 चीतों के शुरू हुआ यह सफर आज 56 तक पहुंच गया है। हालांकि ज्यादातर जो चीते हैं वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही हैं, लेकिन भविष्य की अगर योजना की बात करें तो भविष्य की योजना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सरकार की योजना चीतों की संख्या गांधी सागर, अभयारण्य और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बढ़ाने की है ताकि उनका स्थायी और सुरक्षित विस्तार हो सके। 7 दशक बाद भारत के जंगलों में एक बार फिर से चीते की जो रफ्तार है वो लौट रही है। ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं बल्कि भारत की जैव विविधता को फिर से समृद्ध करने की कोशिश है।

0: ये तस्वीर एक नए युग की शुरुआत है, एक नया ऐतिहासिक पल है। जब 8 विदेशी चीतों से शुरू हुआ सफर आज कारवां बन गया है। 4 साल में 29 से 56 तक पहुंची चीतों की ये संख्या किसी जादू से कम नहीं है। भारत में चीतों की बढ़ती संख्या इस बात का भी सबूत है कि वन विभाग और इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने किस अदम्य मेहनत और साहस से काम किया है, जिसकी वजह से ही आज ये प्रोजेक्ट सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी कह रहा है। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को कोनो नेशनल पार्क लाया गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाकर इस कार्यक्रम को विस्तार दिया गया, जिससे भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के बाद एक बार फिर से भारत की धरती पर चीतों की संख्या बढ़ने लगी है। इस तरह से हिंदुस्तान जंगल में चीतों को फिर से बसाने वाला एकमात्र देश भी बन गया है। पिछले 4 सालों में प्रोजेक्ट चीता को कामयाबी भी मिली तो कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ा है। इनमें बीमारी, चोट और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के कारण कई वयस्क चीतों और उनके बच्चों का साथ छूटा है, तो दूसरी तरफ कई नवजातों के सफल आगमन ने इस प्रोग्राम की सफलता की संभावनाओं को और मजबूत करने में मदद की है।
1: जो 70 साल

0: नजर आ रहा है।
1: प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क से हुई थी, इसलिए कोनो नेशनल पार्क भारत में चीता संरक्षण की कोशिशों का केंद्र बन गया है, जहां पशु चिकित्सक, वन्य जीव विशेषज्ञ और वन अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर और चीतों पर कड़ी निगरानी करते हैं। हर नए बच्चे का जन्म कीमती जेनेटिक विविधता में योगदान देता है और एक स्थिर प्रजनन आबादी स्थापित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है।
0: खट्टे मीठे चुनौतीपूर्ण अनुभवों के साथ जोखिम पूर्ण वातावरण के बीच विदेशी चीते भारत की धरती पर ढल गए हैं। इसके अलावा जिन चीतों ने यहाँ पर जन्म लिया था वो चीते भी दिन ब दिन यहाँ पर ढलकर जैव विविधता को एक नया संदेश दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसे लेकर काफी आशान्वित है और यह चीता प्रोजेक्ट लगातार सफलता की राह पर चल निकला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो स्थित उनके बाड़े में छोड़ा था। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है और विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में यही वो जगह था जहां पर नामीबिया से आकर जलवायु के मुताबिक ये चीते रह सकते थे। कहा तो ये भी गया था कि भारत में प्रोजेक्ट चीता सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, लेकिन नामीबिया में चीतों के रहन सहन के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में परिस्थितियां तैयार की गई, उसके बाद चीतों को लाया गया। और अब अफ्रीकी देशों से आए चीतों ने तो वंश वृद्धि भी की है। अब तो भारत में जन्मे चीता भी ऐतिहासिक खुशी देने के साथ साथ परिवार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रोजेक्ट चीता के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक और खुशी का पल। भारत के चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे होने के एक दिन बाद भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने कूनो में 4 शावकों को जन्म दिया है। 4 साल 4 नई जिंदगियां, ये उम्मीद, हिम्मत और भारत में चीता संरक्षण की बढ़ती सफलता का एक शानदार प्रमाण है। भारत में चीता प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए अब तक कुल 29 चीते विदेशों से लाए गए हैं। इनमें सबसे पहले नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं। इसके बाद भारत की धरती पर कुल 36 चीतों का जन्म हुआ, यानी कुल मिलाकर भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ भी चीतों का नया घर बनता जा रहा है। मंदसौर नीमच के जंगलों में एक बार फिर से चीते की दहाड़ गूंजने जा रही है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ में 20 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता CCB-2 को बाड़े से रिलीज किया तो एक नया इतिहास बन गया। ये CCB-2 चीता बोत्सवाना से 28 फरवरी को भारत लाई गई थी, जिसे अब नया नाम भी दिया गया है, राधा। राधा के गांधी सागर पहुंचने के साथ ही यहां चीता परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया। गांधी सागर में इससे पहले 20 अप्रैल 2025 को 2 नर चीते प्रभास और पावक को लाया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को यहां छोड़ा गया। अब राधा की एंट्री के साथ गांधी सागर में कुल 4 चीते हो गए हैं, 2 नर और 2 मादा।
2: मध्य प्रदेश में नहीं, ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। एशिया से चीते गायब हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं। ये हमारे अपनी सरकार के काम करने के तरीके भी हैं और ये हमारी वन्य जीवों के प्रति जीव और जीने दो के सद्भाव के आधार पर ये उपलब्धि भी है।
1: गांधी सागर में चीतों को बसाने का मकसद सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि भारत में इस विलुप्त प्रजाति के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास तैयार करना भी है। मध्य प्रदेश में अब 50 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश की पहचान देश में चीता स्टेट के तौर पर मजबूत हो रही है।
2: हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्य प्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहां सैकड़ों साल पहले चीते खत्म हो गए थे वो दोबारा खेलते कूदते किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं, हमारे जंगल को आबाद कर रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है।
1: गांधी सागर

0: में चीतों के लिए करीब 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें 8 क्वारंटाइन बाड़े भी शामिल हैं। चीतों की सुरक्षा, निगरानी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्हें ऐसा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है जहाँ चीते सुरक्षित तरीके से रह सकें और धीरे धीरे अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुरूप ढल सकें। यानी गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके सुरक्षित पुनर्वास और संरक्षण के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में गांधी सागर के जंगलों में चीतों का कुनबा और बढ़ेगा। उनकी रफ्तार और दहाड़ इस जंगल की पहचान बनेगी और भारत में चीता संरक्षण की मुहिम को एक नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही चीतों का एक नया बसेरा भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में और उसके बाद गुजरात के बन्नी घाट मैदान में भी चीते ट्रांसलोकेट किए जाने की तैयारी है, तो निश्चित रूप से चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर है। और जो 3 देशों से ग्लोबल पार्टनरशिप में हम 29 चीते लाए थे अभी तक, उससे अब तक 56 चीते हो चुके हैं, तो एक निश्चित रूप से दुगने हो गए और चीता प्रोजेक्ट ये सफलता की ओर है।
0: गांधी सागर की तरह ही चीतों के लिए एक नए घर की तैयारी पूरी की जा रही है। इसी के साथ यहाँ के लोगों का चीते को करीब से देखने का सपना भी पूरा हो सकेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने केन्या से कच्छ के बन्ने इलाके में 4 शानदार चीतों को लाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन चीतों में 2 नर और मादा जोड़े के आने की उम्मीद है।
2: बन्नी के ग्रासलैंड पे जो ग्रासलैंड का सबसे बड़ा जो बिग कैट है वो चीता है और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर की गई है, बहुत जल्दी ही चीता के री इंट्रोडक्शन का कार्य भी हम ये बन्नी के ग्रासलैंड में करने जा रहे
0: हैं। बन्नी ग्रासलैंड में चीतों के पहले जत्थे के आने पर 1 साल के अंदर 12 चीते लाने की योजना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। चीतों के ये जोड़े सबसे पहले भुज पहुंचेंगे और फिर उन्हें बन्नी स्थित सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा, जो भारत का पहला चीता संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यहां उन्हें करीब 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 500 हेक्टेयर के एक बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसे केन्या के घास के मैदानों जैसा खुला माहौल देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे यहाँ के माहौल में ढल सके और उनका प्रजनन भी हो सके। आपको बता दें कि बन्नी घास मैदान इलाका शुष्क घास भूमि का क्षेत्र है। ये 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ किसी समय में चीतों की बहुतायत हुआ करती थी, इसलिए बड़े घास के जंगल अभी भी चीतों के लिए अनुकूल आवास हैं। इसलिए इसे फिर से चीतों से आबाद करने की योजना है। गुजरात के कच्छ के बन्नी में वन विभाग चीतों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए सवाना जैसा वातावरण देने के लिए युद्ध स्तर पर क्षेत्र तैयार कर रहा है। गुजरात में आने वाले केन्या के चीते मध्य प्रदेश के नामीबियाई चीतों से अलग हैं और एक नई अनुवांशिक और परिस्थितिक वंशावली के साथ आएंगे, इसलिए यहाँ पर खास व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर चीतों को भागने से रोकने और बड़े मांसाहारी जानवरों को अंदर आने और खतरनाक मुठभेड़ों को टालने के लिए करीब 9,830 मीटर की सीमा पर एक मजबूत चेन लिंक फेंसिंग लगाई जा रही है। बड़े बाड़े के इस मॉडल की मिसाल गुजरात के देवलिया सफारी पार्क में मौजूद है, जहां शेर संरक्षण प्रजनन के लिए विस्तृत संरक्षित स्थान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। गुजरात में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जंगली जानवर चीते को लाने का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही गुजरात आने वाले चीतों की तारीख तय करेगी और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों के लिए नया पनाहगाह साबित होने वाला है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट चीता में गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भारत में चीतों का इतिहास जितना खूबसूरत है, उनकी संख्या के कम होने का इतिहास भी उतना ही परेशान करने वाला है। प्रकृति के हर रंग को खुद में समेटने वाले हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया था जब शिकारियों ने इस प्यारे से जानवर को खतरे में डाल दिया, लेकिन आज वो सुनहरा दौर फिर से वापसी कर रहा है और विदेश से आए चीते भारत में खूब फल फूल रहे हैं।

0: कहते हैं प्रकृति से एक बार जो चीज विलुप्त हो जाए उसे वापस प्रकृति में स्थापित करना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन सा हो जाता है। अगर बात वन्य जीवों की हो तो ये बात सच भी मालूम होती है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण वन्य जीवों के इतिहास से भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो डायनासोर है, जिसकी चर्चा तो होती है लेकिन वो दुनिया में मौजूद नहीं है। कोशिश हो रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन चीता को लेकर ऐसा नहीं है। भारत में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ गूंज रही है। दरअसल चीतों को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में एक बार फिर चीतों को अटखेलिया करते हुए देखा जा रहा है। चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है, लेकिन धरती के सभी जानवरों की रफ्तार में सबसे तेज। चीते इंसानों पर हमला नहीं करते और न ही वो इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन इंसानों ने चीतों का खूब शिकार किया है। भारत में पाए जाने वाले एशियाई चीते का उन्मूलन मूलतः शिकार और निवास के उचित वातावरण की कमी के कारण हुआ। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के पास सैकड़ों चीते थे। हालांकि मुगल शासक चीतों का शिकार भी करते थे, उसके बाद ब्रिटिश राज ने इस जानवर के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके अधीन राजे राजवाड़ों के शिकार का शौक कुलाचे भरते रहे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसी साल देश चीता मुक्त भी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया महाराज ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। दरअसल राजा महाराजाओं के शिकार के शौक ने चीता ही नहीं कई अन्य जंगली जीवों को विलुप्त कर दिया है। एक वक्त था जब चीते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। वो झाड़ियों में घर बनाते और घास के खुले मैदानों में अटखेलिया किया करते थे। भारत में अब भी घास के खुले मैदान है, उनका रकबा जरूर घट गया है, लेकिन उनमें स्वच्छंद विचरण के लिए चीते मौजूद नहीं है। हालांकि भारत में चीता की वापसी वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें 36 का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर माने जाने वाले चीते हमेशा से भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरवाई में 6000 साल पहले की पेंटिंग में चीता दिखाया गया है, जो दिखाता है कि हिमालय क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में चीता पाया जाता था। इसलिए चीता को मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे क्षेत्र पसंद आएंगे। एमपी में अभी चीता कूनो के आसपास के 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घूम रहा है। कूनो से गांधी सागर और उसके बाद जल्द ही नौरादेही भी चीतों का नया घर बनने जा रहा है। नौरादेही के बाद माधो नेशनल पार्क में भी चीतों को बसाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा वन विभाग कूनो और गांधी सागर में मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप को चीतों के लिए विकसित करने की तैयारी कर रहा है। कूनो से लेकर गांधी सागर तक ये 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा। इसको तैयार किए जाने का काम चल रहा है। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क को चीतों की वजह से राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसी वजह से पर्यटन की गतिविधियां भी वहां तेज हुई हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देश में मौजूद 56 चीतों में से ज्यादा कुनो नेशनल पार्क में ही हैं, जबकि 4 मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में है। परियोजना के 4 साल के दौरान चीतों के प्रजनन, शावकों के जीवित रहने और उन्हें खुले जंगल में बसाने की दिशा में कई अहम काम हुए हैं। पहले साल परियोजना से जुड़े दल को चीतों के व्यवहार, स्वास्थ्य और भारतीय परिस्थितियों में उनके प्रबंधन को लेकर कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों से टीम को चीतों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन में मदद मिली। दूसरे साल परियोजना का मुख्य ध्यान भारत में जन्मे शावकों के जीवन और विकास पर रहा। भारत में जन्मे 13 शावक 1 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे, इसे परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया है। तीसरे साल यानी 2025 में चीतों को कुनो के खुले जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतर्राज्यीय क्षेत्र में फैले 12 जिलों में चीतों की 24 घंटे निगरानी की गई। धीरे धीरे इन चीतों ने नए इलाकों के मुताबिक खुद को ढालना शुरू किया। फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 9 और चीते भारत लाए गए। इससे भारत में चीता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे आधार को और मजबूती मिली। कोनों में मौजूद चीतों में से 17 खुले जंगल में हैं। इनमें 10 नर और 7 मादा चीते हैं। बाकी चीते फिलहाल विशेष बाड़ों में रखे गए हैं। इनमें 5 नर, 8 मादा और 1 साल से कम उम्र के 19 शावक शामिल हैं। परियोजना के चौथे साल में प्रजनन करने वाली मादा चीतों की स्थापना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का सफलतापूर्वक जीवित रहना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इनके साथ भारत में जन्मे 22 चीते जोड़ने पर नामीबिया से आए चीतों और उनकी संतानों की जीवित संख्या 25 हो जाती है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे। इनमें 8 अभी भी जीवित हैं। भारत में पैदा हुए 10 शावकों को जोड़ने पर दक्षिण अफ्रीकी मूल के चीतों और उनकी संतानों की संख्या 18 हो गई है। इनमें 15 पुनो और 3 गांधी सागर में है। अगर साल दर साल चीतों की बढ़ती संख्या पर नजर डाली जाए तो 2022 में पहली बार देश में 8 चीता लाए गए थे। साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई। साल 2024 में ये 24 तक पहुंचे, तो साल 2025 में ये संख्या 30 पहुंच गई, जबकि अब देश में इनकी संख्या 56 हो चुकी है। भारत में 1947 में आखिरी चीते का शिकार होने का दावा किया जाता है। इसके बाद देश में कहीं भी चीता नहीं दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हुई और 1970 के दशक में चीता को एक बार फिर से भारत में लाने का प्रयास भी शुरू हुआ, लेकिन उस दौरान ईरान से चीता लाने की बातचीत के बीच ईरान में एक बड़ी क्रांति हो गई, जिसके कारण ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल प्रोजेक्ट चीता काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीतों की बढ़ती संख्या इस प्रोजेक्ट की सफलता को भी बयां कर रहा है। हालांकि वन्य जीव विशेषज्ञ इस सफर को और लंबा बताते हैं और आने वाले समय में देश के कई राज्यों में इस शानदार वन्य जीव की मौजूदगी की भी उम्मीद जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जल, जंगल और जमीन की संस्कृति से जुड़े हिंदुस्तान का इतिहास वन्य जीवों की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रकृति को भगवान का दर्जा देने के चलते भी यहाँ के लोगों का वन्य जीवों से गहरा रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, चीते का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भी मिलता है। माना जाता है कि चीते के कुनबे का विस्तार मध्य भारत, राजस्थान, दक्षिण और गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था, जिसे विलुप्त होने के बाद फिर इन्हीं इलाकों में आबाद करने की कोशिश हो रही है।
0: चीता वन्य जीवन के लिए बेहद जरूरी जीव है। दरअसल ये एक शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। चीता खासतौर पर छोटे मध्यम आकार के शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, जिनमें से मुख्य रूप से हिरण, चिंकारे, इम्पाला, गजेल आदि होते हैं। ऐसे में इन शाकाहारी जानवरों की संख्या का संतुलन बना रहता है। अगर चीता नहीं होगा तो इन शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। भारत से चीता की जुड़ाव की बात करें तो राजे राजवाड़ों के वक्त चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में लाया जाने लगा था। राजे महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए चीतों की मदद भी लेते थे। चीतों को जंगली जानवरों, खासकर काले हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुगलों ने तो इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया। लायंस, चीताज एंड अदर्स इन द मुगल लैंडस्केप नामक पुस्तक में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए थे। वहां चीते ने इतनी फुर्ती से शिकार किया कि अकबर गदगद हो गए। बादशाह ने चीते के गले में आभूषण पहना दिया और ढोल नगाड़े बजवाकर उसकी सराहना की। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 के अपने शासनकाल में करीब 9000 चीतों का संग्रह किया था। अकबर के काल को चीतों के लिए सुनहरा दौर माना जाता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर भी चीते के शौकीन थे। इससे पहले फिरोज शाह तुगलक के दौर से ही शाही शिकार में चीतों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होते होते एशियाई चीते तेजी से विलुप्त होने लगे थे। अंग्रेजों के बीच जंगली जानवरों के शिकार की प्रतिद्वंदिता होती थी। चूँकि चीता खूंखार नहीं होते हैं और इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, इसलिए वो मानते थे कि चीतों के शिकार में शौर्य के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। चूंकि चीतों का शिकार साहसिक नहीं माना गया, इसलिए अंग्रेजों का इनसे ध्यान हटा ही रहा। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश राज में चीतों के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ चीतों की कीमत भी कम ही लगती थी। एक आंकड़े के अनुसार साल 1870 से 1925 के बीच हर वर्ष सिर्फ 1.2 की औसत से चीतों का शिकार किया गया था। 1800 से 1950 के 150 वर्षों में 127 चीते मारे गए थे, जो सालाना औसत 1 से भी कम का आंकड़ा है। हालांकि चीतों की संख्या उस तेजी से बढ़ी भी नहीं। इस कारण कुछ राजवाड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका से चीते आयात करने शुरू कर दिए थे। 1918 में पहली बार चीते विदेश से मंगवाए गए और 1950 के दशक के शुरुआती सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। दूसरा कारण ये रहा कि चीता को पालतू बना लिया जाए और उसे बाड़ों में बंद कर दिया जाए तो उसके वंश वृद्धि की क्षमता घट जाती है, इसलिए वो खुले मैदान में ही रहना पसंद करते हैं। वो खुलेपन में ही वंश की वृद्धि करते हैं। मुगल शासक जहांगीर के काल में वर्ष 1613 में आखिरी बार किसी पालतू चीते ने बच्चे को जन्म दिया था। हाथ में बंदूक थामे तीन मृत चीतों के साथ खड़े कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव की यह तस्वीर काफी वायरल है। माना जाता है कि भारत के आखिरी तीन चीते वही थे जिनका शिकार महाराजा ने किया था। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि झारखंड में 1975 में एक चीता दिखा था। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आयात की डील हुई और चीते भारत पहुंच गए और मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में इनको बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: क्या पूर्वजों और पितरों के स्वप्न अशुभ होते हैं? सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है? क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं? पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ, अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन, उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। बायोपॉलीमर प्लांट की भीम का मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक सेफ निकासी के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली में, रोड हो रही है चौड़ी, 3 दिनों से महाबली ट्रक देखने वालों का लगा तांता। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की खपत होगी कम। एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल, स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर मेडल, हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की बेशुमार उपलब्धियों की स्मृतियों का सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत की महिला क्रिकेट टीम लगातार चैंपियन बन रही है। एशियन गेम्स के फाइनल में उसकी यादगार पारी की वजह से भारत की विमेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की शान स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना पिछले एक साल से जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, जिसकी वजह से भारतीय विमेन टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी और उसके बाद एशिया कप की विजेता बनी और अब एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। एशियन गेम्स के फाइनल में ओपनिंग करने उतरी स्मृति ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि श्रीलंका की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। और इतना ही नहीं, फाइनल में खेली गई अपनी तूफानी पारी के जरिए स्मृति ने एक साथ कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से स्मृति आज देश की नारी शक्ति की प्रेरणा बन चुकी है। वैसे बेहद रोचक है उनके क्रिकेटर बनने की दास्तां, सुनिए।

0: हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम पिछले करीब एक साल से अपराजेय बनी हुई है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को हुए खिताबी भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। उसके बाद 13 सितंबर 2026 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका को 72 रनों से शिकस्त देकर महिला ब्रिगेड ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। एशिया चैंपियन बने के 10 दिन के भीतर 22 सितंबर 2026 को जापान के निशिन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में उसी श्रीलंकाई टीम को 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर टीम ने एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। निसंदेह इस विराट जीत की सबसे बड़ी शिल्पकार रही इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंथाना, जिन्होंने निर्णायक भिड़ंत में 45 गेंदों पर 79 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर श्रीलंकाई ब्रिगेड के मैदान पर उतरने से पहले ही भारत के लिए गोल्ड मेडल करीब करीब पक्का कर दिया। एशियाई गेम्स के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्मृति मंथाना ने कई विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाली वो दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान इससे पहले भारत की ही मिताली राज के नाम था, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 10,868 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, इसी पारी में स्मृति विमेन टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई। विस्फोटक 79 रनों के साथ टी20 इंटरनेशनल में स्मृति के कुल 4,788 रन हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके इस फॉर्मेट में 4,758 रन हैं। गोल्ड मेडल कब्जाने वाले इस मैच में स्मृति ने एक और विश्व कीर्तिमान बना दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने इस मैच में 99 रन बनाए और इस तरह दोनों ने मिलकर विमेन टी20 इंटरनेशनल में 4,000 रनों की पार्टनरशिप पूरी की। महिला क्रिकेट में ये मकाम हासिल करने वाली ये पहली जोड़ी है। इस मैच में स्मृति अगर शतक बना देती तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाता। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की कप्तान लारा वोलवार्ट के साथ संयुक्त रूप से स्मृति मंधाना के नाम है। दोनों के नाम 18-18 इंटरनेशनल शतक हैं। अपनी यादगार पारी के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले स्मृति को पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है। महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन का विश्व कीर्तिमान बनाने पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जय शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि महिला टी20 इंटरनेशनल रन चार्ट में शिखर पर पहुंचने के लिए स्मृति मंधाना को बेशुमार शुभकामनाएं। इतिहास को फिर से लिखकर आप महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं और सपने देखने वाले युवाओं के लिए नया मानक स्थापित कर रही हैं। कई और कीर्तिमान आपकी राह देख रहे हैं। जो लड़की आज इंटरनेशनल वीमेन क्रिकेट के कीर्तिमानों की मल्लिका बन चुकी है, क्रिकेट से उसके जुड़ने का किस्सा आपके दिल को छू लेगा। वक्त के पुराने आईने में दिखने वाली इसकी धुंधली तस्वीर की तासीर मर्मस्पर्शी है। ये संवेदनशील तस्वीर है साल 2002-2003 की। तब बमुश्किल 6-7 साल की रही होंगी स्मृति अपने क्रिकेटर भाई की मैदान में हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर अखबार में छपी खबरों की कतरन बनाती थी और उसे बड़े ही करीने से सहेज कर अपने पास रखती थी। तब निश्चल स्मृति के मन में एक ही तसव्वुर होता था, काश मेरा भी नाम अखबार के किसी कोने में छप जाता। कमाल देखिए कि लोकल अखबार के किसी कोने में अपनी खबर छपने की हसरत सजोने वाले स्मृति को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इसी साल विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन की साल 2026 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में शामिल होने वाली वे अकेली भारतीय हैं। कहने की जरूरत नहीं कि किसी लोकल अखबार के लोकल पेज पर छपने की हसरत टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बन गई। जिस सूची में विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को जगह नहीं मिल पाई, उस लिस्ट में स्मृति मंधाना पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हकीकत बनने वाले स्मृति के क्रिकेटर बनने की दास्तान बेहद रोचक और हृदय स्पर्शी है। 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति जब महज 2 साल की थी तो उनका परिवार सांगली जिले के माधव नगर इलाके में शिफ्ट हो गया। केमिकल का बिजनेस शुरू करने से पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जिला स्तर के क्रिकेट से आगे वो नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपने अधूरे सपनों की रानाइयों को सहेजने की जिम्मेदारी स्मृति से 4 साल बड़े अपने बेटे श्रवण मंधाना के कंधों पर डाल दी। श्रीनिवास मंधाना 6 साल के श्रवण को जब प्लास्टिक का बैट देकर खेलने को कहते तो 2 साल की स्मृति का मन बल्ला पकड़ने को मचलने लगता था। चूंकि अपने टाइम में श्रीनिवास बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसीलिए श्रवण ने भी बाएं हाथ से बैटिंग शुरू की। उधर पिता और भाई को देखकर स्मृति को भी जब मौका मिलता वो बाएं हाथ से बैटिंग करने लगती।
1: गुस्सा नहीं आता था तब तो, मैं जब भैया के साथ प्रैक्टिस के लिए जाती थी तब मैं कुछ 5 या 6 ईयर्स की होती थी, तो पापा को डर लगता था कि मुझे बॉल लग जाएगी, इसके लिए मुझे नेट के पीछे खड़ा करते थे। बट आई गेस अभी जब सोचती हूँ उसके बारे में, वो नेट के पीछे रुक के जब मैं भैया की बैटिंग देखती थी, आई गेस उससे ही सब कुछ मुझे सीखने मिला, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड बैट था और वैसे ही मैं भी लेफ्ट हैंड बैट हुई। तो आई गेस अभी जब मैं सोचती हूँ, हंसने से ज़्यादा आई फील कि उस टाइम ज़रूर गुस्सा आता था कि मुझे और बैटिंग देते क्यों नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड लर्निंग कर्व एंड लेसन्स फॉर मी।
0: श्रीनिवास मंधाना अपने बेटे श्रवण को नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में लेकर जाते थे तो स्मृति भी साथ हो लेती थी। नेट पर अपने भाई को बाएं हाथ से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते देख नन्ही स्मृति के मन में न जाने कब इंटरनेशनल क्रिकेट बनने का जुनून पैदा हो गया। नादान उम्र का वही जुनून आज क्रिकेट की दुनिया के कीर्तिमानों की किताब में जगमगा रहा है। स्मृति की कंसिस्टेंसी गजब की है। 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल से डेब्यू करने के बाद स्मृति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलबत्ता उन्होंने लगातार अपने परफॉर्मेंस को पहले के मुकाबले और बेहतर किया है। दरअसल जिस स्मृति के चेहरे पर मुसलसल माधुर्य की लड़ियां तैरती रहती हैं, वो भीतर से अत्यंत मजबूत और जीवट की महिला हैं। कई मौकों पर उन्होंने इसे साबित भी किया है। काबिले गौर है कि जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में खेलते समय स्मृति के बाएं घुटने का एंटीरियर क्रूसिलेट लिगामेंट रैप्चर हो गया, साथ ही मेनिस्कस में भी चोट आ गई थी। इस चोट के बाद उनका मेजर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने कम से कम 6 महीने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। उधर टीम मैनेजमेंट के मन मस्तिष्क में स्मृति के भविष्य को लेकर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी, पर सांगली की ये बेटी अपने भविष्य को लेकर बिंदास थी। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दवा इस दुनिया में नहीं बनी। आत्मविश्वास से लबरेज स्मृति ने चोट से उबरने के बाद महिला विश्व कप 2017 से वापसी की और 22 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 72 गेंदों पर 90 रन की शानदार मैच विनिंग पारी खेलकर क्रिकेट जगत को पैगाम दे दिया कि बल्ले से उनका रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है।
1: मैं दिसंबर में बिग बैश खेल रही थी तब मैं इंजर्ड हुई थी, एंड उसके बाद आई रिमेम्बर कुछ 22 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ था, एंड फर्स्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप वॉज 22 जून, एंड ऑल द डॉक्टर्स हैड टोल्ड दैट 6 मंथ से पहले तो यू वोंट बी एबल टू प्ले, बट ऑल द NCS स्टाफ BCCI स्टाफ वर रियली हेल्पफुल, एंड उन्होंने सब ने बोला कि नो विल ट्राई एंड मेक इट दैट आप वर्ल्ड कप खेल पाओ। तो आई रिमेंबर वो 5 मंथ्स आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट 22 जून, एंड यू नो आई वॉन्ट टू गो आउट एंड परफॉर्म, सो दैट 5 मंथ्स आई हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ दैट डे, एंड यू नो जब वो स्कोर किया एंड वुमेन ऑफ द मैच जब मैं लेने गई थी तब इट वॉज लाइक ये ड्रीम मैंने 5 मंथ से ऑलरेडी देखा था, लाइक एवरी नाइट आई वॉज रियली वॉचिंग दैट ड्रीम, सो इट वॉज अ गुड थिंग।
0: सच तो ये कि उस चोट के बाद स्मृति मैदान पर और ज्यादा मजबूत हो गई और एक के बाद एक शानदार और यादगार पारियां खेलते हुए रिकॉर्ड क्वीन बन गईं। वीमेन क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक के हर पन्ने पर आज स्मृति का नाम किसी न किसी रूप में दर्ज मिलता है। क्या आप यकीन करेंगे कि वनडे इंटरनेशनल में इंडिया की ओर से सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड स्मृति के नाम दर्ज है? स्मृति ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंद पर शतक लगाकर विराट कोहली का 52 गेंद पर सेंचुरी का कीर्तिमान तोड़ दिया। स्मृति मंधाना वीमेन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान भी स्मृति के नाम दर्ज है। साल 2025 में स्मृति मंधाना ने 1703 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैच विनिंग पारियों के मामले में वीमेन क्रिकेट में स्मृति मंधाना का वही स्थान है जो मेंस क्रिकेट में विराट कोहली का है। 2025 के ICC महिला विश्व कप के फाइनल समेत कुल 9 पारियों में स्मृति ने 434 रन बनाए थे और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहीं। ये महिला विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है।
2: निष्ठा स्मृति के जीवन का मूल मंत्र है। क्रिकेट के प्रति निष्ठा, टीम के प्रति निष्ठा, जीवन के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा। निष्ठा के लिए स्मृति बड़े से बड़ा फैसला लेने से भी परहेज नहीं करती और इसके अलावा खेल के मैदान और जीवन में अनुशासन को वो बहुत ज्यादा महत्व देती हैं। स्मृति का नेतृत्व कौशल भी गजब का है। इन सब के साथ स्मृति एक बेहद आस्थावान महिला भी हैं। आपको बता दें कि भगवत गीता का स्मृति के जीवन पर बहुत गहरा असर है। गीता का पॉकेट एडिशन वो हमेशा अपने साथ रखती है।
0: क्रिकेट की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बनाने वाली स्मृति मंधाना की भगवत गीता में अब अटूट आस्था हो चुकी है। स्मृति हमेशा अपने पास भगवत गीता का पॉकेट एडिशन रखती है। भगवत गीता के प्रति स्मृति का अटूट विश्वास कब और कैसे जागृत हुआ, इसके पीछे एक मार्मिक कहानी है। हुआ ये कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान 19 अक्टूबर को भारत की महिला ब्रिगेड का मुकाबला इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंडिया को 289 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना जीत के इरादे से बल्ला लेकर मैदान में उतरी, लेकिन इंडिया का स्कोर जब 3 विकेट पर 234 रन था, स्मृति 94 गेंदों पर 88 रनों के शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गईं। पवेलियन लौटने के बाद स्मृति इस रोमांचक मुकाबले को सांसें थाम कर अपलक देखती रही। इस मैच में जीत को लेकर स्मृति तब बहुत ज्यादा क्रेजी हो गई थी। पूरे 50 ओवर खेलने के बाद जब इंडियन टीम जीत के लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई तो स्मृति खुद को संभाल नहीं पाई और उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे। 4 रन से हार का स्मृति के दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। बेचैनी में करवट बदलते उनकी रात गुजरी। अगले दिन सोशल मीडिया पर जब लोगों ने महिला ब्रिगेड को ट्रोल करना शुरू किया तो स्मृति का अवसाद और बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख दिया कि आप अपने असली जगह किचन में जाओ। इस तरह की ट्रोलिंग देखकर स्मृति का अवसाद और गहरा गया और एक समय उन्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मन पर छाए अवसाद के घने कोहरे के बीच अचानक ही स्मृति को भगवत गीता की सुध हुई और उन्होंने उसे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस कालजयी सनातन ग्रंथ ने स्मृति के मानस को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दिया। भगवत गीता पढ़ने के बाद स्मृति को इल्हाम हुआ कि जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में संभाव रहना ही मानवता का तकाजा है। फिर तो वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट पर आई और पूरे उत्साह उमंग के साथ अगले मैच की तैयारी में जुट गईं। अमेरिका की मशहूर वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भगवत गीता का उनके जीवन पर पड़े असर के बारे में बताते हुए स्मृति ने कहा कि
3: जब हमने खेलना शुरू किया तो हम क्या चाहते थे, यही ना कि खचाखच भरा स्टेडियम हो, लोग विमेन क्रिकेट को चीयर करें, प्रशंसक हमारे प्रदर्शन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इसलिए चीजें जब हमारे अनुकूल ना हो तो हमेशा आलोचना को स्वीकार करना भी सीखना होगा। मैंने अपने सारे सवालों का जवाब भगवत गीता में पाया। मेरे लिए ये ग्रंथ एक थेरेपी की तरह है।
0: भगवत गीता से स्मृति ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी बल्कि जीत का मंत्र भी पाया। इसका असर 23 अक्टूबर 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अगले ही मैच में साफ तौर पर दिख गया। सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरी स्मृति ने इस मैच में सिर्फ 95 गेंदों पर 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 341 रनों का भारी भरकम लक्ष्य पेश किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी। भगवत गीता के शरण में तो स्मृति बहुत बाद में आई, लेकिन वो बचपन से ही सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमरस रही हैं। स्मृति से जब आप बात करेंगे तो उनकी सहजता और सरलता देखकर लगेगा ही नहीं कि वो ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर हैं। खाली वक्त में जमकर सोना या मूवी देखना उन्हें बहुत पसंद है।
1: सोना मुझे मतलब बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, क्योंकि पता नहीं शायद मेरे बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लगती है। और एल्स देन स्लीपिंग मुझे प्ले स्टेशन बहुत पसंद है, फीफा बहुत खेलती हूँ, और मूवीज़ देखना आई गेस मतलब आईपैड के साथ। तो मोस्टली अगर हमको ऑफ डे है तो मोस्टली मैं रूम में इधर आई विल बी स्लीपिंग और प्लेइंग पीएस और वॉचिंग सम मूवी।
0: आमतौर पर सेलिब्रिटीज का एक अलग ऑरा होता है, स्वैग होता है, लेकिन स्मृति को लगता है कि स्टारडम उनकी निजी जिंदगी की आजादी में एक ग्रहण की तरह है। आज स्मृति जब अपने होम टाउन सांगली जाती हैं, तो आउटिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांगली में शायद ही ऐसा कोई है जो उन्हें नहीं पहचानता हो।
1: Definitely, people have been stalking my car and they have been following my car in Sangli. So in Sangli, like 100 out of 99 people are recognizing me, and it's been really hard to go out for movies or for dinner. Earlier, I used to go anywhere, like take a car, just go out and have dinner. But now I have to think 10 times before going out in Sangli. And in other metro cities, it's just like 10 people out of 100 recognizes you, and you just have to... put your face down and start walking and not look right and left, because then people will start recognizing you.
0: In sab ke bawajood Sangli se Smriti ka bahut gehra lagao hai. 2 saal ki thi Smriti jab Sangli se unka nata juda, aur aaj bhi Sangli jana aur wahan waqt bitana unhe bahut pasand hai.
1: The way Sangli people supported me when I was in under 19, I don't think I would have got that much of support in any other city. So I'm really actually happy that I was from Sangli.
0: Sangli mein Smriti ka pura bachpan bitai, yahan tak ki Sangli ke Chintaman Rao College of Commerce se hi unhone apna BCom complete kiya. Kamal ye hai ki Sangli mein rehte hue महज 9 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया, और अंडर 15 में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए 11 साल की उम्र में स्मृति का सिलेक्शन अंडर 19 टीम के लिए हो गया। 16 की उम्र में स्मृति का 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ बड़ोदरा में इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया। साफ है कि छोटे से शहर और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर स्मृति ने टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट लेवल के जुनून, कड़ी मेहनत और लगन के बिना ऐसी बेनजीर कामयाबी संभव नहीं है।
2: बंदे में है दम में आज आपने स्मृति मंधाना के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए किस्सों को, पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: चलिए खबरों में अब बात करते हैं मौसम की। मैदानी इलाकों में भारी बारिश की वजह से बनने के बाद लू प्रेशर बेल्ट अब हिमालय की तरफ बढ़ गया है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका चांदी से चमकने लगा और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब में तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है।

0: पेड़ों पर बर्फ, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, सड़क और घरों की छतों पर बर्फ। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। यहाँ की स्पीति घाटी में सीजन की पहली बारिश ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी है। सुबह सुबह काजा, चीचम, पिन घाटी समेत लांगजा की पहाड़ियों समेत आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जो बाद में कई जगहों पर तेज हो गई। देखते ही देखते पहाड़ों और आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। स्पीति में हुई इस पहली बर्फबारी के साथ ही घाटी में ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में कुछ दिन पहले से ही बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई है और कहा है कि बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन और मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले पर्वतीय मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। पूरा इलाका सफेद, मानो प्रकृति ने अपने हाथों से पहाड़ों का श्रृंगार किया है। तस्वीरें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की है। यहाँ पर जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। लोग पूरी आस्था के साथ मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। आसपास के पहाड़ों पर बर्फ ने अभी से ही कब्जा जमा लिया है। जिधर नजरें जाती हैं, बर्फ ही बर्फ दिख रही है। उत्तराखंड के ही चमोली जनपद में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। शुक्रवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारत चीन सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। कई जगहों पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। वहीं निचले इलाकों में लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। कड़ाके की ठंड के बीच सीमा क्षेत्र में सेना, ITBP और BRO के जवान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भारी बर्फबारी और विपरीत मौसम के बावजूद सीमांत क्षेत्रों में जवानों की तैनाती लगातार बनी हुई है।
1: भारत चीन सीमा जहां पे भारतीय सेना इस समय मौजूद है, वहां पे जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। हेमकुंड साहिब में भी तड़के सुबह से बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ की चोटियों पे बर्फबारी का दौर जारी है। बारिश लगातार हो रही है। नाले उफान पर हैं, अलकनंदा नदी उफान पर है, सब कुछ उफान पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ बदलाव देखने को मिल रहा है तो ठंड बढ़ चुकी है। एकदम ठंड, सर्दी का एहसास पहाड़ों में इस समय हो रहा है।
0: अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा रोक दी गई है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। बद्रीनाथ धाम में पितृ तर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है। भगवान बद्री विशाल के प्रति आस्था के आगे मौसम की मुश्किलें भी छोटी नजर आ रही हैं। बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी अचानक मौसम बदलने से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम खराब होने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। गोमुख ट्रैक के चीड़वासा, भोजवासा और गोमुख क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई है। वहीं भारत चीन सीमा से लगे नीलांग, जादुंग क्षेत्र में भी बर्फबारी की सूचना है। दरअसल मैदानी इलाकों में भारी बारिश के लिए जिम्मेदार लो प्रेशर बेल्ट अब पहाड़ी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट कर गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पहाड़ी राज्यों में 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और शानदार खबर आपको बता दें, क्रिकेट के मैदान से शानदार खबर निकल कर आई है। तिरुवनंतपुरम वनडे मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार शतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को सीरीज के पहले ही मुकाबले में 8 विकेटों से करारी शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज की ओर से रखे गए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 41 ओवर 4 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर ही 300 रन बनाकर शानदार जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना दी है। आपको बता दें, विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली। विराट का यह वनडे करियर का कुल 55वां और उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 86वां शतक है। इसके साथ ही आपको बता दें, कोहली ने अपने वनडे करियर में 315वें मैच की 303 पारियों में 15,000 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने लगभग 60 की औसत के साथ यह आंकड़ा छुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली वनडे प्रारूप में फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन से पीछे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड उनके नाम।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: क्या पूर्वजों और पितरों के स्वप्न अशुभ होते हैं? सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है? क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं? पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तरकाशी में हो रही लगातार बारिश। बायो पॉलीमर प्लांट की भीमकाय मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक, सेफ निकासी के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी। 3 दिनों से महाबली ट्रक देखने वालों का तांता।

0: और तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हराया। विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक, सबसे तेज 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड। कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज, कुल 7 मेडल्स। स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर। हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी जान।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU, फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है। मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम दैट इज मेन इंजन जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट

0: जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
1: एपीयू की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है, इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
0: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
0: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हो और पूरी हो रही हो तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है कि नहीं।
1: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिप कर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
0: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों? 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूअसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर हैं, जो आवाज के जो सिग्नेचर हैं, वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। सो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तो एपीयू गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
1: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है सिस्टम, कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप एपीयू द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है, आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
1: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है, जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं, और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है। जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है, वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
0: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसलिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज्ड कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
1: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ते हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है। ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की, अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक की मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन, उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1 लाख मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल, घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की खपत होगी कम। और तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से हराया, विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक सबसे तेज, 15,000 रन पूरा करने का बनाया रिकॉर्ड, कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक का भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल। स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर मेडल, हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
8: तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, बल्लेबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन, विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक सबसे तेज, 15,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड, विराट कोहली ने 10 चौके और 9 छक्के की मदद से नाबाद 88 गेंदों में 139 रन बनाए। कैप्टन शुभमन गिल ने भी खेली शतकीय पारी, बनाए 110 रन। पारी के दौरान 13 चौके और एक छक्का। रोहित शर्मा ने दी टीम इंडिया को मजबूती, 35 गेंदों में 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाए 32 रन। सर्वेश कुशारी ने रचा इतिहास, मैंस हाई जंप में जीता सिल्वर। सर्वेश कुमार ने एशियन गेम्स में भारत का 56 साल का सूखा खत्म कर दिया। 1970 बैंकॉक एशियन गेम्स में भीम सिंह ने जीता था ब्रॉन्ज। भारत की लॉन्ग जंप क्वीन एनसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप में जीता सिल्वर। एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, 7 मेडल टोटल। एशियन गेम्स में अब तक भारत के खाते में कुल 37 मेडल, 4 गोल्ड, 16 सिल्वर। भारत को एशियाई खेल में पहला सिल्वर मेडल दिलाने वाली सोनम मस्कर का हुआ कोल्हापुर में जबरदस्त स्वागत। परिवार के साथ अन्य रिश्तेदार भी सोनम का स्वागत करने के लिए पहुंचे, भावुक नजर आई सोनम। एशियाई खेल 2026 में सोनम मस्कर ने भारत को दिलाया 10 मीटर एयर राइफल में पहला सिल्वर। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में भारत को ब्रॉन्ज दिलाने वाली प्राची के घर में मना जश्न। परिवार ने प्राची से वीडियो कॉल करके बातचीत की। प्राची पेरिस ओलंपिक में भी कर चुकी हैं प्रतिनिधित्व। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी बनी एशिया बॉक्सिंग कमेटी की निर्विरोध वाइस चेयरपर्सन। दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर चलो भगत सिंह के साथ कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल। भगत सिंह के जीवन, विचार और उनके साथ देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों की कहानी को मिनी म्यूजियम में तस्वीर के जरिए किया जाएगा पेश। म्यूजियम में अदालत का मॉडल भी किया गया है तैयार, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाएं स्थापित। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भगत सिंह के संघर्ष, विचार और देश के लिए बलिदान से परिचित कराना है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास के परिचालन चरण की शुरुआत करने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले इस बहुपक्षीय वायु अभ्यास का विषय है साझेदारी में शक्ति। भाग लेने वाले विदेशी विमानों में F-35 लाइटनिंग 2 राफेल और F-16 A-400M शामिल। युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले दल भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर करेंगे काम, साथ ही विभिन्न मशीनों में अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान और सहायक इकाइयों का करेंगे उपयोग। तरंग शक्ति 2026 अभ्यास भारतीय वायु सेना को देता है अपनी परिचालन क्षमताओं, पेशेवर मानकों और संस्थागत मूल्यों को प्रदर्शित करने का अवसर। बायोपॉलीमर प्लांट की भीमकाय मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक सेफ निकासी के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी। 3 दिनों से मावली ट्रक देखने के लिए लगी है लंबी लंबी कतार। लखीमपुर खीरी जिले में कुंभी में बन रहे हैं बलरामपुर चीनी मिल के एथेनॉल प्लांट में होगा इस्तेमाल। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज, अयोध्या से रामेश्वरम तक वनवास के दौरान जिन जिन जगहों से गुजरे थे प्रभु श्री राम वहां लगेंगे श्री राम स्तंभ। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे हैं पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से किया जा रहा स्तंभ का निर्माण। सोनभद्र में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेधावी छात्रों को मिल रही है मुफ्त कोचिंग। लखनऊ में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 स्कूली छात्रों को स्टडी टेबल। बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ चिट्ठी लिखकर उनको धन्यवाद दिया। बच्चों ने इन पत्रों को फूलों, रंगीन पेंसिल और चित्रों से सजाया। छात्रों के लिए दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने आयोजित किया सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम। फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी बच्ची, रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। बुंदेलखंड में मौरानीपुर जल विहार महोत्सव की धूम, बुंदेली आस्था की 303 साल पुरानी परंपरा। इस महोत्सव में भगवान श्री गुदर बादशाह को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। गुदर बादशाह परंपरा की सबसे अहम कड़ी है श्री गुदर बादशाह सरकार की देव विमान यात्रा। गुदर बादशाह के विमान के पीछे करीब 100 देव विमान भी निकले जो रात भर नगर की विभिन्न गलियों से घूमे। इस महोत्सव का सीधा संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से है, बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त शामिल हुए। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा को हीना और डोबाटा होल्डिंग प्वाइंट पर रोकने के दिए निर्देश। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र और स्मार्ट कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड में रखा गया। बर्फबारी के बीच उच्च हिमालय में ट्रैकर्स और पोर्टर्स को सुरक्षित लाने में जुटे हुए प्रशासन। उत्तर प्रदेश के बांदा में नाव समेत नदी में बह गए युवक को पीएससी एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया। दरअसल मछली पकड़ने आया युवक नाव पर सो गया था और नदी का जलस्तर बढ़ने पर नाव समेत बह गया। जब युवक घर नहीं पहुंचा तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी और युवक की तलाश शुरू की। नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी और लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की संभावना। बाढ़ की संभावना को देखते हुए गंडक और बागमती नदी के आसपास गांव कराए जा रहे हैं खाली। बगा में गंडक नदी में 5 लाख क्यूसेक पानी, चेतावनी स्तर पर। बिहार के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा, किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में बाढ़ के बाद 4 गांव कराए गए खाली, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्थानीय प्रशासन और विधायक ने मिलकर लोगों की मदद के लिए चलाया बोट से रेस्क्यू अभियान। बिजनौर के रामगंगा बांध से बाढ़ का अलर्ट, 7 जिलों के डीएम को भेजी गई चेतावनी। पर हो रही लगातार भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा जी का जलस्तर चेतावनी स्तर के ऊपर। पुलिस अनाउंसमेंट करके घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से कर रहे हैं सावधानी बरतने की अपील। 2 दिन से हो रही है लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में भीम गोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 293 मीटर चेतावनी स्तर तक पहुंच गया। जलस्तर में और बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आसपास के गंगा के पास के इलाकों को कराया जा रहा है खाली। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बीच रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम चमोली में रुद्रनाथ ट्रैक पर 150 फीट गहरी खाई में गिरे ट्रैकर्स को निकाला गया। गनीमत रही कि भारी बारिश के बीच ट्रैकर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बागेश्वर में रवाई खाल के समीप भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 109 बंद। रास्ता बंद हो जाने की वजह से वाहनों की लग गई है लंबी कतारें, जल्द रास्ता खुलने का प्रयास। ओडिशा के भद्रक में भी तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में घुस गया पानी। स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, काजापिन घाटी और शिंगुला दर्रे समेत ऊंचाई के इलाकों में बदल गया मौसम। शिंगुला दर्रा और चंद्रताल इलाके में भी जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में तापमान में दर्ज की गई गिरावट, प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, ट्रेन का 2000 किलोमीटर से ज्यादा सफल ट्रायल। लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल के बीच स्विच कर सकेगा यह इंजन। देशभर में आज से पितृपक्ष की शुरुआत, नदी घाटों पर तर्पण और पिंडदान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ध्रुवाक्ष 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। पक्ष को लेकर गया में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। देश भर से लोग पिंडदान और तर्पण करने के लिए पहुंच रहे। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की परंपरा। काशी में पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़, पितृपक्ष पर विधि विधान से कर रहे हैं तर्पण। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पुरटासी पूर्णिमा पर विशेष पूजा। पुरी में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर चंद्रभागा बीच पर देखा खूबसूरत नजारा। जयपुर के विद्यासागर नगर में ग्रीन फिट हाफ मैराथन सीजन 3 का आयोजन। जोधपुर में ऑपरेशन तरंग शक्ति का आज दूसरा दिन। अमेरिका समेत कई देशों की वायुसेनाएं शामिल। जोधपुर वायुसेना स्टेशन इलाके में 12 अक्टूबर तक चलेगा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026। मदुरई के ऐतिहासिक गांधी मेमोरियल संग्रहालय के मरम्मत और जीर्णोद्वार का काम हुआ पूरा, कल मुख्यमंत्री विजय करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की ओर से चला गया है स्वच्छता ही सेवा अभियान। मनाली से रैली ऑफ हिमालयाज 2026 का शानदार आगाज। हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों पर बनेगा रफ्तार का नया इतिहास। रैली पहली बार जंस्कार के बर्फीले इलाके में करेगी प्रवेश। क्रॉस कंट्री रैली के छठे संस्करण में 140 से ज्यादा साहसी प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। प्रमुख कैथोलिक तीर्थ स्थल लूडेस में पोप लियो ने रविवार को लोगों को अभिवादन स्वीकार किया। पोपलियो ने दर्शकों और कैथोलिक उपवासकों का अभिवादन स्वीकार किया। इकोलॉजिकल कोशिशों के बाद जीवंत हो उठी बीजिंग की लियांगमा नदी। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय पांडा सहयोग के लिए अमेरिका को भेजे 2 विशाल पांडा। पांडा की रवानगी से पहले चेंगदू विशाल पांडा प्रजनन अनुसंधान केंद्र में इस जोड़ी के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शंघाई में संपन्न हुआ 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का बागवानी कार्यक्रम। प्रतियोगियों ने बिल्कुल शुरुआत से काम करते हुए डिजाइन रेखा चित्रों को नेचुरल अंदाज में तब्दील किया। प्रतिभागियों ने मात्र 22 घंटे में तैयार कर दिया उद्यान। जर्मनी की ओलंपिक समिति ने 2036, 40 और 44 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की म्यूनिख को जर्मनी के शहर के रूप में दी। समिति ने यह फैसला मतदान के बाद लिया। अमेरिका के पूर्वी तट पर आए तूफान का न्यूजर्सी पर दिख रहा असर, सड़कों पर भर गया पानी। नॉर्थ ईस्टर तूफान के चलते बिजली व्यवस्था हुई प्रभावित। पेंसिल्वेनिया में 68,000 से ज्यादा घरों में कटी बिजली। बैंकॉक में भारी बारिश के चलते जलजमाव, लोग कमर तक पानी में जाते हुए नजर आए। बैंकॉक में 48 घंटे में करीब 300 मिलीमीटर हुई बारिश। बाढ़ से राहत के लिए 233 अस्थायी शेल्टर्स तैयार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भगवान केदारनाथ का धाम में सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है, हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन आजकल केदारनाथ धाम समेत चार धाम यात्रा में प्लास्टिक कचरा एक मुसीबत बन चुका है। इसके निजात पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, प्रशासन के साथ साथ मिलकर कई स्वयंसेवी संस्थाएं कचरे के निस्तारण में लगी हुई हैं, साथ ही साथ कैरी मी बैग का अभियान भी चलाया जा रहा है।

0: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है। मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। खासकर केदारनाथ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ हिमालय के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी हो रही है। केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर बढ़ता कूड़ा, खासकर प्लास्टिक कचरा, हिमालय के पर्यावरण के लिए चिंता का सबब बन रहा है। इस साल अब तक 15,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जबकि यात्रा को अभी एक महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। तस्वीरें हैं बाबा केदार की नगरी केदारनाथ की। एक तरफ श्रद्धालुओं की आस्था तो दूसरी तरफ इसी आस्था के बीच हिमालय पर बढ़ता कूड़े का बोझ। केदारनाथ जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन हर साल बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या के साथ ये चुनौती और भी गंभीर होती जा रही है। सबसे ज्यादा चिंता प्लास्टिक कचरे को लेकर है। बोतलें, पैकेजिंग और दूसरे प्लास्टिक उत्पाद अगर सही तरीके से एकत्र और निस्तारित नहीं किए गए तो इनका असर बेहद संवेदनशील हिमालय क्षेत्र और बुग्यालों पर पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन के सहयोग से कैरी मी बैग अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत भक्त 12 टन से ज्यादा कूड़ा अपने साथ वापस लाए हैं, जबकि कूड़े की सफाई में टीमें भी लगी हुई हैं।
1: इस बार जो कूड़े के आंकड़े सामने आए हैं वो पिछले वर्षों के सापेक्ष जो बहुत ज्यादा मात्रा में कूड़ा है, और प्रशासन और हमारे जो यहाँ पर स्वयंसेवी संस्था है सभी ने मिलकर के अच्छा काम किया, उस कूड़े को कलेक्ट करके नीचे लाने का काम किया है, और जो हमारे MRF सेंटर्स हैं वो फंक्शनल हैं। इसके अलावा जो कूड़े का सेग्रीगेशन है वो काम हो रहा है, और जो बॉटल्स को लेकर के डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो कूड़े की समस्या जो है उसको प्रशासन ने बहुत ही चुनौती के रूप में लिया है और सभी टीमें इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी कूड़ा श्री केदारनाथ धाम में या ट्रैक रूट पे या रास्ते में हम लोगों को मिल रहा है उसको हम साइंटिफिकली डिस्पोज करें, इसको कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट करें। साथ ही मेरी सभी से अपील भी है कि इस यात्रा में आने वाले लोग हमारे पर्यावरण की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मेरी अपील है।
0: पिछले वर्षों की तुलना में केदारनाथ में इस बार कूड़ा अधिक हुआ है और प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण को चुनौती के रूप में लिया है। प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं कूड़ा निस्तारण करने में जुटी हुई है। धाम और पैदल मार्ग से कूड़ा एकत्रित कर निस्तारण के लिए सोनप्रयाग लाया जा रहा है। चारधाम यात्रा में चुनौती सिर्फ बाबा केदार तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने की नहीं है, बल्कि हिमालय के पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी है। आस्था सिर्फ बाबा केदार की भक्ति की ही नहीं, बल्कि हिमालय के इस पवित्र धरती को स्वच्छ रखना भी उसी आस्था का हिस्सा है। इसलिए इस प्राकृतिक विरासत को बचाने की जरूरत है, इसके लिए लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज़ टुडे।

0: अयोध्या में भगवान रामलला के नगरी के साथ साथ अब जिन जिन जगह पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे उन उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित सभी स्थलों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। उसमें देखिए उस जगह की महिमा का वर्णन और राष्ट्रलोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखा होगा। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से स्तंभ का बाकायदा निर्माण किया गया है। इसे वेद श्रुति नदी कवराज धाम और तमसा तट गोराघाट प्राचीन दशरथ महल मंदिर नंदीग्राम भारत कुंड हनुमान भरत मिलंत मंदिर और जटाकुंड नंदीग्राम भारत कुंड मैं देखिए सिंह ऋषि आश्रम प्राचीन सूर्यकुंड दशरथ समाधि स्थल मखोड़ा धाम प्राचीन सीता कुंड में स्थापित किया जा रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या पूर्वजों और पितरों के स्वप्न अशुभ होते हैं? सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है? क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं? पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन, उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल, घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की कम होगी खपत। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया, विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक सबसे तेज, 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड, कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। और एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल, स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर, हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
10: नमस्कार,
9: देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा गहरा लगाव होता है, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो शारीरिक रूप से हमें छोड़ के चले जाते हैं, यानी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है, हमारे दिल में उनकी स्मृतियां जरूर होती हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो रात में उनके स्वप्न हमें आते हैं। तो देखिए पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में हमारे पूर्वजों के जो स्वप्न हमें आते हैं खासतौर पर पितृपक्ष के दौरान, क्या कुछ इसका अर्थ होता है, पंडित जी इसे डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे जान लेते हैं आज का गुडलक मंत्र क्या है।
2: जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष की वर्जनाएं, पितृपक्ष की सावधानियां और नियम लागू नहीं होते। कहने को आप कहते रहिए लेकिन वास्तव में जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं तो माता पिता पितृपक्ष का पालन करेंगे, वो पुरुष तो करेगा नहीं। इसी तरह से जिन महिलाओं के सास ससुर जीवित हैं तो सास ससुर करेंगे उसका पालन, वो महिला नहीं करेगी। तो इसलिए उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम, सावधानियां और वर्जनाएं लागू नहीं होते।
9: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 28 सितंबर 2026 यानी कि दिन सोमवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 7:13 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 10:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:16 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
9: तो चलिए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वप्नों की, यानी सपनों की। तो पंडित जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सपने होते क्या हैं, क्या ये महज एक क्या बोलेंगे कोइंसिडेंस है कि हमने कुछ सोचा और वो हमें दिख गया, या फिर इसका कुछ कनेक्शन है हमारे जीवन से और खास तौर पे पितृपक्ष चल रहे हैं, पूर्वजों के सपने आना, क्या अर्थ है इसका, कैसे डिकोड करेंगे आप इसे?
2: जी देखिए, बाकायदा जैसे ज्योतिष शास्त्र है, लक्षण विज्ञान है, वैसे ही स्वप्न का एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा साइंस है, सिगमंड फ्रायड से लेकर के और तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में स्वप्नों की मान्यता है, हर धर्म में अलग अलग तरीके से स्वप्न की मान्यता बताई गई है। स्वप्न होते क्या हैं? सामान्यतः हम ऐसा समझते हैं कि नींद में, निद्रा की अवस्था

0: कृत अवस्था के बीच में आते हैं जिसको तुरिया अवस्था कहते हैं। कच्ची नींद सुने हैं, कच्ची नींद पूरी तरह से जगे नहीं है, अर्ध निद्रा के बीच में है, मन थोड़ा कमजोर वाले पार्ट पे चला गया, वहां पर सपने आपको दिखाई देते हैं। बहुत गहरी नींद में सपने कभी नहीं आते। सपने आने के पीछे आपका खान पान, आपकी मानसिक स्थिति, आपके घर का माहौल, इन चीजों का बड़ा असर पड़ता है आपके मन के ऊपर, और मन बड़ा असर डालता है आपके सपनों के ऊपर। जैसा सरगम ने कहा कि बहुत बार जो सपने होते हैं वो आपके मन का प्रोजेक्शन होते हैं, जो आप विचार करते हैं, जो आप सोचते हैं, कई बार वो सपने में दिखाई देता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपका खान पान, आपका माहौल, आपका मन, ये सपनों के बारे में बताता है। अब एक बड़ी अद्भुत बात ये है कि अलग अलग व्यक्तियों के सपने, अलग अलग समय के सपने, सबका असर अलग अलग होता है। जो सपना किसी वृद्ध व्यक्ति को आएगा वही सपना नौजवान को आएगा, उसमें अंतर होगा। बच्चा क्या सपना देखता है, जो कहते हैं लोग ना कि भोर का सपना सत्य होता है, तो किस समय का सपना है, कौन देख रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, ये बहुत सारी चीजों को देख करके तब सपनों का अध्ययन किया जाता है। मेडिकल साइंस में बाकायदा स्लीप की स्टडी की जाती है कि आपकी नींद कितनी गहरी है, और जब नींद के साथ सपनों को एसोसिएट कर दिया जाता है तो आपके जीवन के बहुत सारे रहस्यों को जाना जा सकता है।
1: तो सपने क्या होते हैं, सपने कब आते हैं, इसके बारे में जो हमारी चर्चा है यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल।
0: मेष राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, यात्रा के योग बनते हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होती जाएंगी, नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, वो कौन से लोग हैं जिन्हें स्वप्न ज्यादा आते हैं, क्या ये अमूमन वो लोग होते हैं जो कि ज्यादा सोचते हैं?
0: देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं रात भर सपने आते रहे, उलझल उल सपने आते रहे, मैं गहरी नींद सो ही नहीं पाया।

0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे तो सपने आते ही नहीं है, मैं तो पलंग पे गिरता हूं, सुबह ही आंख खुलती है, बीच में कुछ पता नहीं चलता। तो आखिर सपने आते किसको हैं और ज्यादा सपने किसको आते हैं? देखिए, जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, जैसा सरगम ने कहा कि सोचते ज्यादा हैं, एक ही बात के पीछे दिमाग दौड़ाए रहते हैं, चिंता ज्यादा करते रहते हैं, ऐसे लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। जो लोग रात में सोने के पहले बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या कभी भी ज्यादा खाना एक साथ खा जाते हैं तो पेट पर प्रेशर पड़ता है और आपकी जो आंतें हैं वो आपके ब्रेन के केमिकल जैसी हैं। तो जब पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, सपने ज्यादा आएंगे। जिन लोगों का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता उन्हें अजीब सपने आते हैं। अब जिनको रोज पीने की आदत है ना, वो अजीब सपने देखेंगे, डरावने भी देखेंगे, खराब सपने भी देखेंगे, नींद में चिल्लाएंगे भी, परेशान भी होंगे। यानी जिनका आहार और आचरण ठीक नहीं होता उन्हें भी अजीब तरह के उल्टे सीधे सपने आते हैं। किसी तरह का अगर मन पे दबाव है, कोई प्रेशर है आपके ऊपर, आपके मन में किसी तरह की चिंता लगातार चल रही है, तो आपको बहुत सपने आएंगे। क्योंकि मन जो है ना वो परेशान होगा तो आपको नींद अच्छी तरह नहीं लेने देगा, वो तमाम विचार आपके मन में इंजेक्ट करेगा और वो विचार सपने के रूप में आपको दिखाई देंगे।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, धन आसानी से इस समय प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ का योग बन रहा है, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, काम टालने से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता से इस समय परेशानी होगी, प्रियजनों से वाद विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न रीतिका ने हमें लिखा है और रीतिका हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। 7 मई 1982 का जन्म है। मध्यरात्रि में 1:35 सिवनी मध्य प्रदेश। रितिका कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें चली आ रही हैं, मुझे चिंताएं बहुत होती हैं, तनाव बहुत होता है, तो मैं क्या करूं कि मेरा स्वास्थ्य और मेरा मन बेहतर हो जाए। रितिका, आपकी सेहत में मामला बिल्कुल भी जटिल नहीं है, बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। मामला कोई गंभीर या खराब होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी जो मार्च 2027 तक का समय है ना, वो आपके मन को थोड़ा परेशान कर रहा है, थोड़ा आपके मन को परेशानियों में डाल रहा है। तो मार्च तक थोड़ी शांति रखिए, उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी उनसे जानकारी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, काफी पसंद करते हैं और सोच रहे हैं कि पंडित जी से सवाल पूछना है, कैसे पूछें, तो आपको बता दें कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसके साथ अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिख दें। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें लखनऊ से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1979। जन्म का समय सुबह के 6:42। जन्म स्थान है अयोध्या। अभिषेक कह रहे हैं कि काफी समय से मैं एक फ्लैट लेने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है, तो मैं अपना फ्लैट, अपना मकान कब तक ले पाऊंगा और इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से संपत्ति खरीदने में अभी थोड़ा वक्त है। अप्रैल 2027 के बाद कोशिश करिएगा, मई 2027 से दिसंबर 2027 के बीच में प्रयास करने पर आप अपना फ्लैट जरूर खरीद पाएंगे, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बनती है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में पैसे रुपए को लेकर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप बेवजह चिंता मत करिए, कोई इतना बड़ा मुश्किल का मामला नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए अभिषेक जी, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा।
1: मृत लोगों या फिर पूर्वजों के जो सपने हैं वो क्यों आते हैं और क्या फल देते हैं, क्या ये शुभ संकेत है या शुभ, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
0: जिनका देहांत हो चुका है ऐसे लोगों के सपने, या जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, पूर्वज हैं, दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के सपने क्या बताते हैं। देखिए, आम तौर पर मृत लोगों के जो सपने हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके सपने कुछ न कुछ संकेत जरूर देते हैं। ये आने वाली दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा भी करते हैं और कभी कभी आपको चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में दुर्घटना हो सकती है, सतर्क रहो। व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है, और जब ज्यादा सोचेंगे तो ये मेंटल प्रोजेक्शन है। उस मृत व्यक्ति के, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके बहुत सपने आते हैं, लेकिन इस तरह के सपने इंट्यूटिव नहीं होते, इस तरह के सपने नॉलेजेबल, ज्ञानवान नहीं होते। ये मन का प्रोजेक्शन है, इसीलिए इस तरह के सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, ये मन का एक खेल है, आपका मेंटल प्रोजेक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त मृत व्यक्ति है, वो स्वप्न के माध्यम से अपनी किसी इच्छा के बारे में संकेत देता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे सपने में मेरी दादी आई थी, वो कुछ खाने को मांग रही थी। मेरे पिता का सपना दिखा, मेरे पिता कोई कपड़ा मांग रहे थे। दरअसल उनका जो मन है ना, वो अभी मुक्त नहीं हुआ है, अतृप्त है। तो जैसे मान लिया कि कोई आपसे स्वप्न में आपके अपने परिवार का मृत व्यक्ति भोजन मांग रहा है, तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा के प्रार्थना कर लीजिए। या कोई वस्त्र मांग रहा है, किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का दान देके प्रार्थना कर लीजिए। जैसे आप उसकी अतृप्त इच्छा को पूरा करेंगे, संकेत को समझ करके काम करेंगे, ऐसे सपने का दिखना बंद हो जाएगा। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के सपने आपको आते ही है ना, तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करिए। अगर उसका संकेत, उसका अर्थ आप समझ करके उस हिसाब से काम करें, तो मुझे लगता है काफी बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
0: तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को आपकी किस्मत से लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से इस समय मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कहते हैं कि हर सपने का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो अगर पितरों या फिर पूर्वजों के सपने आ रहे हो, लगातार स्वप्न आ रहे हो, तो उसे किस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं, क्या उसके मायने हैं?
0: देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप किसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं ना, लगातार विचार कर रहे हैं, वो सपने में आपको दिखेगा और ये आपका मेंटल प्रोजेक्शन है, ये कोई इंट्यूटिव सपना नहीं है। इस तरह के सपने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अचानक सपने में कि कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको दिख गया, कोई आपके बड़े बुजुर्ग पूर्वज जिनका देहांत हो गया था वो आपको दिख गए, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि उसका अर्थ क्या है। अगर सपने में कोई एक पूर्वज दिख रहा है, एक ही व्यक्ति दिखा जिसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो कुछ कहना चाहता है, आपको बताना, समझाना, बचाना चाहता है। उसका संदेश समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर बहुत सारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की आयु के लिए संकट आ सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है कि जिन लोगों का अंतिम समय आ जाता है तकरीबन उसके 6-8 महीने पहले, उनको अपने बहुत सारे पूर्वज एक साथ दिखने लगते हैं या दिख जाते हैं कई बार, तो वो उस व्यक्ति के जीवन का अंतिम समय का इंडिकेशन हो सकता है या परिवार में किसी के जीवन का अंतिम समय है इस बात की सूचना हो सकती है। अगर सपने में आप अपने पूर्वज को कुछ दे रहे हैं, सपने में, वास्तव में नहीं, सपने में आपने देखा कि आपके दादाजी जिनका देहांत हो गया था वो आए हैं, आप उनको खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाला समय आपका बेहतर नहीं है, आने वाले समय में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। अगर सपने में आपका कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तब तो आप समझिए बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है। आने वाले समय में आप चमकेंगे, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, आपका पूर्वज आपको स्वप्न में किस्मत दे रहा है आपकी, जो लेने के बाद आप चमक जाएंगे। अगर स्वप्न में किसी पूर्वज के साथ, किसी मृत व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना देख रहे हैं या देख रहे हैं कि आपके दादाजी का सपना आपको आया, बड़े बीमार हैं, स्वास्थ्य काफी खराब है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है। देखिए, पूर्वजों का सपना, बहुत सारे पूर्वज एक साथ दिखें, तब थोड़ी चिंता की बात है। और अगर उम्र ज्यादा है, 80 हो गई, 85 हो गई, 90 हो गई और ऐसे सपने आ रहे हैं, तो वो हो सकता है आपके आयु का अंतिम समय हो। दूसरी बात यह है कि अगर सपने में आपके पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं या सपने में आपके पूर्वज आते हैं, शांति से खड़े रहते हैं, चले जाते हैं, तो दरअसल वो आपको आशीर्वाद देने आते हैं, आपके कष्ट को दूर करने के लिए आते हैं, तो उसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी चाहिए।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें इस समय, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा निजी प्रश्न भी ये है कि बहुत से लोग कहते हैं, खासतौर पे बड़े बुजुर्ग घर के कहते हैं कि जो पितृपक्ष होता है इस दौरान कभी भी नए कपड़े, शुभ कार्य ये नहीं करना चाहिए, ये से वर्जित है। लेकिन आजकल देखिए मॉल में इतनी भीड़ लगी रहती है, लोग नहीं मानते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या खरीदना चाहिए हमको पितृपक्ष दौरान सामान?
0: जी देखिए, बहुत सारे लोग, माता पिता अपने बच्चों को मना करते हैं कि पितृपक्ष में नया कपड़ा मत खरीदो, नया जूता मत खरीदो, कोई नई चीज मत ले आओ। कितना रिलेवेंट है, कितना सही है ये? देखिए, आपको शुरुआत में बताया कि जिन बच्चों के, जिन लड़कों के, पुरुषों के माता पिता जीवित हैं, तो उनके माता पिता पितृपक्ष के नियम का पालन करेंगे। बच्चे के माता पिता जीवित हैं उसके ऊपर पितृपक्ष का नियम अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई लड़की है, बहू है, कोई स्त्री है जिसके सास ससुर जीवित हैं, तो सास ससुर नियमों का पालन करेंगे, लड़की या बहू के ऊपर इस तरह के नियम लागू नहीं होंगे। तो पितृपक्ष में नया सामान खरीदने की मनाही नहीं है, लेकिन जो लोग पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, जिनको रोज तर्पण करना है, जिनको रोज नियमों का पालन करना है, ऐसे लोगों को पितृपक्ष में नई चीजें खरीदने से बचना चाहिए।
1: तो चलिए, अब समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न हमें अमृता जी ने लिखा है और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं हैदराबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 2000, जन्म का समय है रात में 10:35 और जन्म का स्थान है हैदराबाद। ये कह रही हैं कि मेरे घर वाले पिछले 2-3 सालों से मेरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा? अमृता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इतनी जल्दी शादी नहीं होगी, 26 साल के लगभग आपकी उम्र हो रही है, लेकिन अभी शादी होने में 1.5 साल का समय है। 2027 के अंत में या 2028 के शुरुआती समय में आपका विवाह हो सकता है, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। दूसरी बात देखो ये है कि आपको जल्दबाजी में वैसे भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपकी शादी समय पे हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें और एक मोती बनवा के, लगभग 12-14 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहनाने से काफी लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जानते हैं कि आज का अगला यानी कि चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लेकर के भेज सकते हैं। तो चलिए, अब पंडित जी से ही जान लेते हैं आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अंतिम प्रश्न हमें विराट गुप्ता ने लिखा है और विराट गुप्ता हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 2002, जन्म का समय सुबह के 10:10, जन्म स्थान है पटना बिहार। विराट कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्या मैं उच्च पद जीवन में पा सकता हूं? विराट, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखिए, 24 साल आपकी उम्र हुई है और 27-28 साल की उम्र में आपको सफलता, 27वें के आसपास ज्यादातर आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो आप परिश्रम करते रहिए, आपको प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में एक ठीक ठाक नौकरी अवश्य मिल जाएगी। भटकाव से, दोस्ती यारी से, संगति से, गलत खान पान से, इनसे थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन, जिनका बर्थडे 28 सितंबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं।

0: जन्मदिन 28 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन और संपत्ति की स्थिति ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
0: देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पितृपक्ष का समय बड़ा अशुभ होता है, बड़ा खराब समय है, सावधान रहो। क्या ऐसा होता है? क्या पितृपक्ष का समय अशुभ समय है? देखिए, पितृपक्ष का समय पितरों की कृपा पाने का समय है। इस समय अगर आप साधना करें, उपासना करें, दान करें तो आप अपनी बहुत सारी समस्या दूर कर सकते हैं। हालांकि देखिए, चातुर्मास के बीच में पितृपक्ष आता है, इसलिए इसमें नए और मांगलिक कार्य आप नहीं कर सकते। फिर भी पितृपक्ष में पूजा, उपासना, साधना, दान करना बहुत ही अच्छा है। और अगर आप पितृपक्ष में सात्विकता, पवित्रता से रहें, दान पुण्य करें तो ये समय आपके लिए बड़ा शुभ और बड़े अनुकूल परिणाम देकर जाएगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 28 सितंबर 2026 यानी कि दिन सोमवार का शुभ पहर यानी अच्छा पहर कौन सा है।
0: दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार शुभ पहर का समय है। शाम को 6 बजे से 7:30 तक इस समय में जितना संभव हो अधिक से अधिक शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जप करिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 28 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में कौन सी चीजों का प्रयोग जरूर करें। आज की गुडलक राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। इनको पूजा में फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब पंडित जी से जानने का समय हो गया है कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, देखिए, जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि आपके ऊपर गलत आरोप, झूठा आरोप लगा दिया गया और आपको फंसा दिया गया, तो आप क्या करेंगे? काले वस्त्र धारण कर लें, ऊपर से नीचे तक वस्त्र धारण करके स्नान कर लें, नदी में कर लें या घर पर भी कर लें। वस्त्र पहनकर, काले वस्त्र बदलकर कोई अन्य कपड़ा इसके बाद पहन लीजिएगा और काले कपड़ों को अगले दिन बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और अगर काले कपड़े पहनकर नदी में नहा रहे हैं तो नहाने के बाद कपड़ा वहीं घाट पर काला वाला छोड़ दीजिएगा और घर चले आइएगा। आप जल्दी से जल्दी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे।
1: पंडित जी, हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: चलिए खबरों में अब बात करते हैं मौसम की। मैदानी इलाकों में भारी बारिश की वजह से बनने के बाद लू प्रेशर बेल्ट अब हिमालय की तरफ बढ़ गया है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका चांदी से चमकने लगा और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब में तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है।

0: पेड़ों पर बर्फ, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, सड़क और घरों की छतों पर बर्फ। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। यहाँ की स्पीति घाटी में सीजन की पहली बारिश ने इलाके की खूबसूरती बढ़ा दी है। सुबह सुबह काजा, चीचम, पिन घाटी समेत लांगजा की पहाड़ियों समेत आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जो बाद में कई जगहों पर तेज हो गई। देखते ही देखते पहाड़ों और आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। स्पीति में हुई इस पहली बर्फबारी के साथ ही घाटी में ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में कुछ दिन पहले से ही बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जताई है और कहा है कि बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन और मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले पर्वतीय मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। पूरा इलाका सफेद, मानो प्रकृति ने अपने हाथों से पहाड़ों का श्रृंगार किया है। तस्वीरें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की है। यहाँ पर जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। लोग पूरी आस्था के साथ मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। आसपास के पहाड़ों पर बर्फ ने अभी से ही कब्जा जमा लिया है। जिधर नजरें जाती हैं, बर्फ ही बर्फ दिख रही है। उत्तराखंड के ही चमोली जनपद में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। शुक्रवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारत चीन सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। कई जगहों पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। वहीं निचले इलाकों में लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। कड़ाके की ठंड के बीच सीमा क्षेत्र में सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भारी बर्फबारी और विपरीत मौसम के बावजूद सीमांत क्षेत्रों में जवानों की तैनाती लगातार बनी हुई है।
1: भारत चीन सीमा जहां पे भारतीय सेना इस समय मौजूद है, वहां पे जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। हेमकुंड साहिब में भी तड़के सुबह से बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ की चोटियों पे बर्फबारी का दौर जारी है। बारिश लगातार हो रही है। नाले उफान पर हैं, अलकनंदा नदी उफान पर है, सब कुछ उफान पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ बदलाव देखने को मिल रहा है तो ठंड बढ़ चुकी है। एकदम ठंड, सर्दी का एहसास पहाड़ों में इस समय हो रहा है।
0: अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा रोक दी गई है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। बद्रीनाथ धाम में पितृ तर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है। भगवान बद्री विशाल के प्रति आस्था के आगे मौसम की मुश्किलें भी छोटी नजर आ रही हैं। बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी अचानक मौसम बदलने से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम खराब होने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। गोमुख ट्रैक के चीड़वासा, भोजवासा और गोमुख क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई है। वहीं भारत चीन सीमा से लगे नीलांग, जादुंग क्षेत्र में भी बर्फबारी की सूचना है। दरअसल मैदानी इलाकों में भारी बारिश के लिए जिम्मेदार लो प्रेशर बेल्ट अब पहाड़ी राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट कर गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पहाड़ी राज्यों में 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: लेह में 3 दिन लद्दाख महोत्सव 2026 शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने किया। इस महोत्सव में देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, तो स्थानीय कलाकार अपनी कला से लद्दाख की कला और संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं।

0: लद्दाख अपने बर्फीली चोटियों, नीले पानी की झीलों और अद्भुत रेगिस्तानी वादियों के साथ धरती पर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। नुब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में दो कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी हो या खरदुम लापास की सड़कें दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है, जो बादलों के ऊपर होने का एहसास कराती है। शांति स्तूप और थिक्से जैसे प्राचीन बौद्ध मठ आध्यात्मिक शांति और खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। लद्दाख की संस्कृति और परंपरा के रंगों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर साल लद्दाख फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 26 से 28 सितंबर तक 3 दिन के उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से आए कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये फेस्टिवल सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और बेमिसाल जज्बे का जश्न है।
1: महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और आप सभी के बेमिसाल जज्बे का जश्न है। लद्दाख का मतलब सिर्फ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और नीचे झील नहीं है। लद्दाख इन वंडर से कहीं अधिक आगे है। यह साहस, शांति, अध्यात्म और एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रतीक है। सिंधु नदी के पवित्र लहरों से लेकर इन बर्फीली चोटियों तक लद्दाख के कणकण में एक अनूठी ऊर्जा बहती है।
0: इस साल महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार दिया गया है। उद्घाटन समारोह में शिलोंग चेंबर कायर ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 14 सदस्य विशेष सांस्कृतिक दल को आमंत्रित किया गया है। ये दल सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अगले 3 दिनों में अपनी प्रस्तुतियां देगा। इसके जरिए लद्दाख के लोगों और पर्यटकों को अंडमान निकोबार की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के सहयोग से एक विशेष फ्यूजन कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के कलाकारों को मिलाकर 47 सदस्य दल तैयार किए गए हैं। कलाकार विभिन्न उत्तर भारतीय संस्कृति और संगीत परंपराओं का संगम पेश करेंगे। लद्दाख फेस्टिवल में लद्दाख के सभी जिलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को जगह देने की कोशिश की गई है। साथ ही उभरते और नई पीढ़ी के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराया गया है। महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को सामने लाने के साथ देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विविधता से लोगों को परिचित कराना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुन न्यूज़ टुडे।
2: पहाड़ों की हरी भरी वादियां, खिली धूप में चमकती चोटियां और समुद्र के किनारे कुदरत की आगोश में सुकून तलाशते सैलानी विश्व पर्यटन दिवस पर बात उस खूबसूरत जगह की करेंगे जो सिर्फ आंखों को ही नहीं भाती, बल्कि संस्कृति, विरासत और स्थानीय लोगों की जिंदगी को भी दुनिया से जोड़ती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत की विविधता की कुछ ऐसी ही शानदार तस्वीरें, जिनसे रूबरू होने के साथ साथ उन्हें कायम रखना भी बहुत जरूरी है।
3: पहाड़ों की ऊंची चोटियां, हरे भरे घास के मैदान, खिली धूप और वादियों में बिखरी कुदरत की बेशुमार खूबसूरती, कश्मीर की फिजाएं हमेशा से सैलानियों को अपनी ओर खींचती रही हैं। जहां नजर जाए वहां हरियाली की कालीन बिछी है, सामने आसमान छूते पहाड़ हैं और उनके बीच धूप में नहाते ये हरे भरे मैदान मौजूद हैं। कश्मीर की वादियों में कुदरत जैसे हर रंग को अपने सबसे खूबसूरत अंदाज में सजाती है। ये तस्वीरें कश्मीर के डोडा के भालेसा इलाके की हैं। सर्दियों में जहां एक और यही इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है, वहीं गर्मियों और साल के बाकी समय यहां हर नजारा सुकून की अलग ही कहानी कहता है। आसपास के इलाकों में भी लोग इस माहौल का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। यहां पर आकर वो फुर्सत के पलों को खूब एंजॉय करते हैं।
4: बादलों बहार चले,

0: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्थानीय लोगों का कहना है कि कश्मीर में ऐसी तमाम जगहें हैं जो सैलानियों को आकर्षित कर सकती हैं, लिहाजा इन जगहों को टूरिज्म के नक्शे पर लाने और सैलानियों के लिए यहाँ पहुँचने की सुविधाओं का इंतजाम करने की जरूरत है।
1: बेसिकली यहाँ पे टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ हमारा जैसे बलेस एरिया हो गया, बलेस एरिया में लाखनदार, पदरी, गाशाटाप, कांठीदार जो ये हैं, ये हिली एरियाज हैं, यहाँ मीडोज हैं। यहाँ पे जो कल्चरल टूरिज्म है, जैसे हमारे गुजर बकरवाल लोग यहाँ पे अपने माल मवेशी लेके आते हैं, उनके उनकी पौनीज पे हम चढ़ के वहाँ पहाड़ों की सैर कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं।
2: अब ये सोचा था कि हम पिकनिक जाएंगे, लेकिन हमारे पास रोड की वजह से हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ा, हम चल नहीं सकते। नई जनरेशन जो बिल्कुल चल नहीं पाते, तो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट से यही गुजारिश रहेगी कि इन हम हमारे ये जो भलेसा एरिया है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए आप टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो ही हमारा टूरिज्म है, भलेस में भी होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी जगहें देखो, पहाड़ियाँ देखो, हमारे यहाँ से कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, हमारे यहाँ ग्रीनरी है, बहुत सारी जगहें हमारे पास। इस वक्त हम कांठी के मकाम पर आए हुए हैं, जैसे हमारे पास बाल पदरी है, डोसा टॉप है, बाजदार है, बहुत सारी जगहें, लेकिन हमारे रोड कनेक्टिविटी की वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं।
0: ये तस्वीरें भले ही कश्मीर का एक हिस्सा दर्शाती हों, लेकिन इन वादियों की असली खूबसूरती शायद उस एहसास में है जो यहाँ आने वाला हर मुसाफिर अपने साथ लेकर लौटता है, और वो है प्रकृति के बेहद करीब होने का एहसास। लोगों का कहना है कि इन इलाकों में सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए ताकि टूरिज्म को पंख लगे।
3: कश्मीर वैली के बाद सबसे ज्यादा टूरिज्म का जो पोटेंशियल है हमारे भलेस में है। आप दिखाइए जरा किस तरह का यहाँ पे ये एरिया है। यहाँ पे अगर पैराग्लाइडिंग का होता और रोड की कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, हमारे जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, और आज जो टूरिस्ट लोग हैं ट्रैकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आ पाएँ। अगर यहाँ पे फैसिलिटी दी जाए तो पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और भले इसको एक टूरिज्म हब बना दिया जाएगा अगर कोई यहाँ पे काम।
0: आपको बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी। 27 सितंबर 1970 को UNWTO के नियमों को अपनाया गया था। इसी की याद में 1980 से इसी तारीख को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद पर्यटन की अहमियत के प्रति जागरूकता फैलाना है। विविधताओं से भरे देश भारत में केवल पहाड़ और हरियाली ही नहीं, बल्कि पूर्वी से लेकर दक्षिण भारत तक शानदार समुद्री किनारे भी हैं, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त सहित बेहतरीन कुदरती नज़ारे बेहद आकर्षक होते हैं। पर्यटन दिवस का मौका भारत की इस बेशुमार विरासत को न केवल दुनिया के सामने लाने का है, बल्कि देश के लोगों के लिए भी इन्हें देखने और सहेजने का है, ताकि देश की ये पहचान आने वाले समय में भी बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अयोध्या में भगवान राम लला के नगरी के साथ साथ अब जिन जिन जगह पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे, उन उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित सभी स्थलों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। उसमें देखिए उस जगह की महिमा का वर्णन और श्लोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखा होगा। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से स्तंभ का बाकायदा निर्माण किया गया है। इसे वेद, श्रुति, नदी, कवराज धाम और तमसा तट, गोराघाट, प्राचीन दशरथ महल मंदिर, नंदीग्राम भारत कुंड, हनुमान भरत मिलंत मंदिर और जटाकुंड नंदीग्राम भारत कुंड, मैं देखिए सिंह ऋषि आश्रम, प्राचीन सूर्य कुंड, दशरथ समाधि स्थल, मखोड़ा धाम, प्राचीन सीता कुंड में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज का दिन एक नए और ऐतिहासिक युग की शुरुआत लेकर आया है। आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।

0: देश की पहली एलएनजी ट्रेन को पटरियों पर उतार दिया है। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। अब इस नए कदम ने भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये ट्रेन डुअल फ्यूल सिस्टम से लैस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के साबरमती से देश की इस पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने वाली हरित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटरियों पर उतारने से पहले इस ग्रीन ट्रेन यानी एलएनजी इंजन वाली ट्रेन के सफल ट्रायल किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2000 किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दिखाई गई है। भारतीय रेलवे की इस एलएनजी ट्रेन के पीछे का उद्देश्य ईंधन की लागत कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। एलएनजी ट्रेनों को चलाने के लिए डुअल फ्यूल दोहरे ईंधन इंजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ट्रेन का इंजन केवल एक ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय डीजल और एलएनजी दोनों के मिश्रण से चलता है, जैसे कि कार में सीएनजी और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। एलएनजी यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जो स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। प्राकृतिक गैस को लगभग -162 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो ये गैस से द्रव्य में बदल जाती है। तरल रूप में बदलने से इसका आयतन लगभग 600 गुना कम हो जाता है, जिससे इसे ट्रेन के छोटे टैंकों में अधिक मात्रा में स्टोर करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान हो जाता है। भारतीय रेल एलएनजी फ्यूल का इस्तेमाल अब ट्रेन चलाने के लिए करने लगा है। भारत में पहली एलएनजी ट्रेन साबरमती से शुरू हो गई है। एलएनजी का इस्तेमाल अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा और स्पेन जैसे देश कर रहे हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। फिलहाल गुजरात में साबरमती और मेहसाणा जंक्शन के बीच ये ट्रेन चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: ये तस्वीर एक नए युग की शुरुआत है, एक नया ऐतिहासिक पल है। जब 8 विदेशी चीतों से शुरू हुआ सफर आज कारवां बन गया है। 4 साल में 29 से 56 तक पहुंची चीतों की ये संख्या किसी जादू से कम नहीं है। भारत में चीतों की बढ़ती संख्या इस बात का भी सबूत है कि वन विभाग और इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने किस अदम्य मेहनत और साहस से काम किया है, जिसकी वजह से ही आज ये प्रोजेक्ट सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी कह रहा है। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को कोनो नेशनल पार्क लाया गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाकर इस कार्यक्रम को विस्तार दिया गया, जिससे भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के बाद एक बार फिर से भारत की धरती पर चीतों की संख्या बढ़ने लगी है। इस तरह से हिंदुस्तान जंगल में चीतों को फिर से बसाने वाला एकमात्र देश भी बन गया है। पिछले 4 सालों में प्रोजेक्ट चीता को कामयाबी भी मिली तो कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ा है। इनमें बीमारी, चोट और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के कारण कई वयस्क चीतों और उनके बच्चों का साथ छूटा है, तो दूसरी तरफ कई नवजातों के सफल आगमन ने इस प्रोग्राम की सफलता की संभावनाओं को और मजबूत करने में मदद की है।
1: जो 70 साल पहले चीते विलुप्त हो गए थे, उनको दोबारा से भारत में बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। और 2022 में जब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चीते छोड़े थे कोनो नेशनल पार्क में, तब शुरुआत में पहले 1 साल में लगा था कि प्रोजेक्ट असफलता की ओर जा रहा है, जब चीतों की मौतें हुई थी, 7-8 चीते एक साथ मरे थे। लेकिन अब जब लगातार प्रजनन हो रहे हैं, अभी तक 11 प्रजनन हो चुके हैं और 36 शावक वर्तमान में जीवित हैं, तो एक तरह से चीता प्रोजेक्ट फिलहाल सफलता की ओर नजर आ रहा है।
0: प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क से हुई थी, इसलिए कोनो नेशनल पार्क भारत में चीता संरक्षण की कोशिशों का केंद्र बन गया है, जहां पशु चिकित्सक, वन्य जीव विशेषज्ञ और वन अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर और चीतों पर कड़ी निगरानी करते हैं। हर नए बच्चे का जन्म कीमती जेनेटिक विविधता में योगदान देता है और एक स्थिर प्रजनन आबादी स्थापित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है।
2: खट्टे मीठे चुनौतीपूर्ण अनुभवों के साथ जोखिम पूर्ण वातावरण के बीच विदेशी चीते भारत की धरती पर ढल गए हैं। इसके अलावा जिन चीतों ने यहाँ पर जन्म लिया था, वो चीते भी दिन ब दिन यहाँ पर ढलकर जैव विविधता को एक नया संदेश दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसे लेकर काफी आशान्वित है और यह चीता प्रोजेक्ट लगातार सफलता की राह पर चल निकला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को कोनो स्थित उनके बाड़े में छोड़ा था। कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है और विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में यही वो जगह था जहां पर नामीबिया से आकर जलवायु के मुताबिक ये चीते रह सकते थे। कहा तो ये भी गया था कि भारत में प्रोजेक्ट चीता सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, लेकिन नामीबिया में चीतों के रहन सहन के मुताबिक कोनो नेशनल पार्क में परिस्थितियां तैयार की गई। उसके बाद चीतों को लाया गया और अब अफ्रीकी देशों से आए चीतों ने तो वंश वृद्धि भी की है। अब तो भारत में जन्मे चीता भी ऐतिहासिक खुशी देने के साथ साथ परिवार में बढ़ोतरी कर रहे हैं।

0: शिक्षण की बढ़ती सफलता का एक शानदार प्रमाण है। भारत में चीता प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए अब तक कुल 29 चीते विदेशों से लाए गए हैं। इनमें सबसे पहले नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं। इसके बाद भारत की धरती पर कुल 36 चीतों का जन्म हुआ, यानी कुल मिलाकर भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गया है। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ भी चीतों का नया घर बनता जा रहा है। मंदसौर नीमच के जंगलों में एक बार फिर से चीते की दहाड़ गूंजने जा रही है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ में 20 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता CCB2 को बाड़ी से रिलीज किया तो एक नया इतिहास बन गया। ये CCB2 चीता बोत्सवाना से 28 फरवरी को भारत लाई गई थी, जिसे अब नया नाम भी दिया गया है राधा। राधा के गांधी सागर पहुंचने के साथ ही यहां चीता परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया। गांधी सागर में इससे पहले 20 अप्रैल 2025 को 2 नर चीते प्रभास और पावक को लाया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को यहां छोड़ा गया। अब राधा की एंट्री के साथ गांधी सागर में कुल 4 चीते हो गए हैं, 2 नर और 2 मादा।
1: मध्य प्रदेश में ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। एशिया से चीते गायब हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं। ये हमारे अपनी सरकार के काम करने के तरीके भी हैं और ये हमारी वन्य जीवों के प्रति जियो और जीने दो के सद्भाव के आधार पर ये उपलब्धि भी है।
0: गांधी सागर में चीतों को बसाने का मकसद सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि भारत में इस विलुप्त प्रजाति के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास तैयार करना भी है। मध्य प्रदेश में अब 50 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश की पहचान देश में चीता स्टेट के तौर पर मजबूत हो रही है।
1: हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्य प्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहां सैकड़ों साल पहले चीते खत्म हो गए थे वो दोबारा खेलते कूदते किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं, हमारे जंगल को आबाद कर रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है।
0: गांधी सागर में चीतों के लिए करीब 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें 8 क्वारंटाइन बाड़े भी शामिल हैं। चीतों की सुरक्षा, निगरानी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्हें ऐसा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है जहाँ चीते सुरक्षित तरीके से रह सकें और धीरे धीरे अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुरूप ढल सकें। यानी गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके सुरक्षित पुनर्वास और संरक्षण के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में गांधी सागर के जंगलों में चीतों का कुनबा और बढ़ेगा। उनकी रफ्तार और दहाड़ इस जंगल की पहचान बनेगी और भारत में चीता संरक्षण की मुहिम को एक नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही चीतों का एक नया बसेरा भी अपनी पहचान बनाएगा।
2: मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में और उसके बाद गुजरात के बन्नी घाट मैदान में भी चीते ट्रांसलोकेट किए जाने की तैयारी है, तो निश्चित रूप से चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर है। और जो 3 देशों से ग्लोबल पार्टनरशिप में हम 29 चीते लाए थे अभी तक, उससे अब तक 56 चीते हो चुके हैं, तो एक निश्चित रूप से दुगने हो गए और चीता प्रोजेक्ट ये सफलता की ओर है।
0: गांधी सागर की तरह ही चीतों के लिए एक नए घर की तैयारी पूरी की जा रही है। इसी के साथ यहाँ के लोगों का चीते को करीब से देखने का सपना भी पूरा हो सकेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने केन्या से कच्छ के बन्ने इलाके में 4 शानदार चीतों को लाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन चीतों में 2 नर और मादा जोड़े के आने की उम्मीद है।
3: बन्नी के ग्रासलैंड पे जो ग्रासलैंड का सबसे बड़ा जो बिग कैट है वो चीता है और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर की गई है, बहुत जल्दी ही चीता के री इंट्रोडक्शन का कार्य भी हम ये बन्नी के ग्रासलैंड में करने जा रहे हैं।
0: बन्नी ग्रासलैंड में चीतों के पहले जत्थे के आने पर 1 साल के अंदर 12 चीते लाने की योजना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। चीतों के ये जोड़े सबसे पहले

0: भुज पहुंचेंगे और फिर उन्हें बन्नी स्थित सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा, जो भारत का पहला चीता संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यहां उन्हें करीब एक महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 500 हेक्टेयर के एक बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसे केन्या के घास के मैदानों जैसा खुला माहौल देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे यहाँ के माहौल में ढल सके और उनका प्रजनन भी हो सके। आपको बता दें कि बन्नी घास मैदान इलाका शुष्क घास भूमि का क्षेत्र है। ये 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ किसी समय में चीतों की बहुतायत हुआ करती थी, इसलिए बड़े घास के जंगल अभी भी चीतों के लिए अनुकूल आवास हैं। इसलिए इसे फिर से चीतों से आबाद करने की योजना है। गुजरात के कच्छ के बन्नी में वन विभाग चीतों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए सवाना जैसा वातावरण देने के लिए युद्ध स्तर पर क्षेत्र तैयार कर रहा है। गुजरात में आने वाले केन्या के चीते मध्य प्रदेश के नामीबियाई चीतों से अलग हैं और एक नई अनुवांशिक और परिस्थितिक वंशावली के साथ आएंगे, इसलिए यहाँ पर खास व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर चीतों को भागने से रोकने और बड़े मांसाहारी जानवरों को अंदर आने और खतरनाक मुठभेड़ों को टालने के लिए करीब 9,830 मीटर की सीमा पर एक मजबूत चेन लिंक फेंसिंग लगाई जा रही है। बड़े बाड़े के इस मॉडल की मिसाल गुजरात के देवलिया सफारी पार्क में मौजूद है, जहां शेर संरक्षण प्रजनन के लिए विस्तृत संरक्षित स्थान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। गुजरात में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जंगली जानवर चीते को लाने का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही गुजरात आने वाले चीतों की तारीख तय करेगी और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों के लिए नया पनाहगाह साबित होने वाला है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट चीता में गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। शिवपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारत में चीतों का इतिहास जितना खूबसूरत है, उनकी संख्या के कम होने का इतिहास भी उतना ही परेशान करने वाला है। प्रकृति के हर रंग को खुद में समेटने वाले हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया था जब शिकारियों ने इस प्यारे से जानवर को खतरे में डाल दिया, लेकिन आज वो सुनहरा दौर फिर से वापसी कर रहा है और विदेश से आए चीते भारत में खूब फल फूल रहे हैं।

0: कहते हैं प्रकृति से एक बार जो चीज विलुप्त हो जाए उसे वापस प्रकृति में स्थापित करना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन सा हो जाता है। अगर बात वन्य जीवों की हो तो ये बात सच भी मालूम होती है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण वन्य जीवों के इतिहास से भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो डायनासोर है, जिसकी चर्चा तो होती है लेकिन वो दुनिया में मौजूद नहीं है। कोशिश हो रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन चीता को लेकर ऐसा नहीं है, भारत में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ गूंज रही है। दरअसल चीतों को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में एक बार फिर चीतों को अटखेलिया करते हुए देखा जा रहा है। चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है, लेकिन धरती के सभी जानवरों की रफ्तार में सबसे तेज। चीते इंसानों पर हमला नहीं करते और न ही वो इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन इंसानों ने चीतों का खूब शिकार किया है। भारत में पाए जाने वाले एशियाई चीते का उन्मूलन मूलतः शिकार और निवास के उचित वातावरण की कमी के कारण हुआ। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के पास सैकड़ों चीते थे। हालांकि मुगल शासक चीतों का शिकार भी करते थे, उसके बाद ब्रिटिश राज ने इस जानवर के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके अधीन राजे राजवाड़ों के शिकार का शौक कुलाचे भरते रहे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसी साल देश चीता मुक्त भी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया महाराज ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। दरअसल राजा महाराजाओं के शिकार के शौक ने चीता ही नहीं कई अन्य जंगली जीवों को विलुप्त कर दिया है। एक वक्त था जब चीते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। वो झाड़ियों में घर बनाते और घास के खुले मैदानों में अटखेलिया किया करते थे। भारत में अब भी घास के खुले मैदान हैं। उनका रकबा जरूर घट गया है, लेकिन उनमें स्वच्छंद विचरण के लिए चीते मौजूद नहीं है। हालांकि भारत में चीता की वापसी वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें 36 का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर माने जाने वाले चीते हमेशा से भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरवई में 6000 साल पहले की पेंटिंग में चीता दिखाया गया है, जो दिखाता है कि हिमालय क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में चीता पाया जाता था। इसलिए चीता को मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे क्षेत्र पसंद आएंगे। एमपी में अभी चीता कूनो के आसपास के 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घूम रहा है। कूनो से गांधी सागर और उसके बाद जल्द ही नौरादेही भी चीतों का नया घर बनने जा रहा है। नौरादेही के बाद माधो नेशनल पार्क में भी चीतों को बसाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा वन विभाग कूनो और गांधी सागर में मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप को चीतों के लिए विकसित करने की तैयारी कर रहा है। कूनो से लेकर गांधी सागर तक ये 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा। इसको तैयार किए जाने का काम चल रहा है। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क को चीतों की वजह से राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसी वजह से पर्यटन की गतिविधियां भी वहां तेज हुई हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देश में मौजूद 56 चीतों में से ज्यादा कुनो नेशनल पार्क में ही हैं, जबकि 4 मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में है। परियोजना के 4 साल के दौरान चीतों के प्रजनन, शावकों के जीवित रहने और उन्हें खुले जंगल में बसाने की दिशा में कई अहम काम हुए हैं। पहले साल परियोजना से जुड़े दल को चीतों के व्यवहार, स्वास्थ्य और भारतीय परिस्थितियों में उनके प्रबंधन को लेकर कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों से टीम को चीतों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन में मदद मिली। दूसरे साल परियोजना का मुख्य ध्यान भारत में जन्मे शावकों के जीवन और विकास पर रहा। भारत में जन्मे 13 शावक 1 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे, इसे परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया है। तीसरे साल यानी 2025 में चीतों को कुनो के खुले जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतर्राज्यीय क्षेत्र में फैले 12 जिलों में चीतों की 24 घंटे निगरानी की गई। धीरे धीरे इन चीतों ने नए इलाकों के मुताबिक खुद को ढालना शुरू किया। फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 9 और चीते भारत लाए गए। इससे भारत में चीता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे आधार को और मजबूती मिली। कुनो में मौजूद चीतों में से 17 खुले जंगल में हैं। इनमें 10 नर और 7 मादा चीते हैं। बाकी चीते फिलहाल विशेष बाड़ों में रखे गए हैं। इनमें 5 नर, 8 मादा और 1 साल से कम उम्र के 19 शावक शामिल हैं। परियोजना के चौथे साल में प्रजनन करने वाली मादा चीतों की स्थापना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का सफलतापूर्वक जीवित रहना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इनके साथ भारत में जन्मे 22 चीते जोड़ने पर नामीबिया से आए चीतों और उनकी संतानों की जीवित संख्या 25 हो जाती है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे। इनमें 8 अभी भी जीवित हैं। भारत में पैदा हुए 10 शावकों को जोड़ने पर दक्षिण अफ्रीकी मूल के चीतों और उनकी संतानों की संख्या 18 हो गई है। इनमें 15 कुनो और 3 गांधी सागर में है। अगर साल दर साल चीतों की बढ़ती संख्या पर नजर डाली जाए तो 2022 में पहली बार देश में 8 चीता लाए गए थे। साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई। साल 2024 में ये 24 तक पहुंचे तो साल 2025 में ये संख्या 30 पहुंच गई, जबकि अब देश में इनकी संख्या 56 हो चुकी है। भारत में 1947 में आखिरी चीते का शिकार होने का दावा किया जाता है। इसके बाद देश में कहीं भी चीता नहीं दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हुई और 1970 के दशक में चीता को एक बार फिर से भारत में लाने का प्रयास भी शुरू हुआ, लेकिन उस दौरान ईरान से चीता लाने की बातचीत के बीच ईरान में एक बड़ी क्रांति हो गई, जिसके कारण ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल प्रोजेक्ट चीता काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीतों की बढ़ती संख्या इस प्रोजेक्ट की सफलता को भी बयां कर रहा है। हालांकि वन्य जीव विशेषज्ञ इस सफर को और लंबा बताते हैं और आने वाले समय में देश के कई राज्यों में इस शानदार वन्य जीव की मौजूदगी की भी उम्मीद जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: जल, जंगल और जमीन की संस्कृति से जुड़े हिंदुस्तान का इतिहास वन्य जीवों की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रकृति को भगवान का दर्जा देने के चलते भी यहाँ के लोगों का वन्य जीवों से गहरा रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, चीते का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भी मिलता है। माना जाता है कि चीते के कुनबे का विस्तार मध्य भारत, राजस्थान, दक्षिण और गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था, जिसे विलुप्त होने के बाद फिर इन्हीं इलाकों में आबाद करने की कोशिश हो रही है।
0: चीता वन्य जीवन के लिए बेहद जरूरी जीव है। दरअसल ये एक शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। चीता खासतौर पर छोटे मध्यम आकार के शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, जिनमें से मुख्य रूप से हिरण, चिंकारे, इम्पाला, गजेल आदि होते हैं। ऐसे में इन शाकाहारी जानवरों की संख्या का संतुलन बना रहता है। अगर चीता नहीं होगा तो इन शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। भारत से चीता की जुड़ाव की बात करें तो राजे राजवाड़ों के वक्त चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में लाया जाने लगा था। राजे महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए चीतों की मदद भी लेते थे। चीतों को जंगली जानवरों, खासकर काले हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुगलों ने तो इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया। लायंस, चीताज एंड अदर्स इन द मुगल लैंडस्केप नामक पुस्तक में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए थे। वहां चीते ने इतनी फुर्ती से शिकार किया कि अकबर गदगद हो गए। बादशाह ने चीते के गले में आभूषण पहना दिया और ढोल नगाड़े बजवा कर उसकी सराहना की। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 के अपने शासनकाल में करीब 9000 चीतों का संग्रह किया था। अकबर के काल को चीतों के लिए सुनहरा दौर माना जाता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर भी चीते के शौकीन थे। इससे पहले फिरोज शाह तुगलक के दौर से ही शाही शिकार में चीतों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होते होते एशियाई चीते तेजी से विलुप्त होने लगे थे। अंग्रेजों के बीच जंगली जानवरों के शिकार की प्रतिद्वंदिता होती थी। चूंकि चीता खूंखार नहीं होते हैं और इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, इसलिए वो मानते थे कि चीतों के शिकार में शौर्य के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। चूंकि चीतों का शिकार साहसिक नहीं माना गया, इसलिए अंग्रेजों का इनसे ध्यान हटा ही रहा। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश राज में चीतों के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ चीतों की कीमत भी कम ही लगती थी। एक आंकड़े के अनुसार साल 1870 से 1925 के बीच हर वर्ष सिर्फ 1.2 की औसत से चीतों का शिकार किया गया था। 1800 से 1950 के 150 वर्षों में 127 चीते मारे गए थे, जो सालाना औसत 1 से भी कम का आंकड़ा है। हालांकि चीतों की संख्या उस तेजी से बढ़ी भी नहीं। इस कारण कुछ राजवाड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका से चीते आयात करने शुरू कर दिए थे। 1918 में पहली बार चीते विदेश से मंगवाए गए और 1950 के दशक के शुरुआती सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। दूसरा कारण ये रहा कि चीता को पालतू बना लिया जाए और उसे बाड़ों में बंद कर दिया जाए तो उसके वंश वृद्धि की क्षमता घट जाती है, इसलिए वो खुले मैदान में ही रहना पसंद करते हैं। वो खुलेपन में ही वंश की वृद्धि करते हैं। मुगल शासक जहांगीर के काल में वर्ष 1613 में आखिरी बार किसी पालतू चीते ने बच्चे को जन्म दिया था। हाथ में बंदूक थामे तीन मृत चीतों के साथ खड़े कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव की यह तस्वीर काफी वायरल है। माना जाता है कि भारत के आखिरी तीन चीते वही थे जिनका शिकार महाराजा ने किया था। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि झारखंड में 1975 में एक चीता दिखा था। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आयात की डील हुई और चीते भारत पहुंच गए और मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में इनको बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: अयोध्या में भगवान राम लला के नगरी के साथ साथ अब जिन जिन जगह पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित सभी स्थलों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। उसमें देखिए उस जगह की महिमा का वर्णन और राष्ट्रलोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखा होगा। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से स्तंभ का बाकायदा निर्माण किया गया है। इसे वेद श्रुति नदी कवराज धाम और तमसा तट गोराघाट प्राचीन दशरथ महल मंदिर नंदीग्राम भारत कुंड हनुमान भरत मिलंत मंदिर और जटाकुंड नंदीग्राम भारत कुंड मैं देखिए सिंह ऋषि आश्रम प्राचीन सूर्यकुंड दशरथ समाधि स्थल मखोड़ा धाम प्राचीन सीता कुंड में स्थापित किया जा रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन, उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल, घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की कम होगी खपत। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया, विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक सबसे तेज, 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड, कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। और एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल, स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर, हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है, मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम दैट इज मेन इंजन जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज्ड रहे। दैट मींस अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हों और पूरी हो रही हों तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिपकर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है, सिस्टम कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है, आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है। तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है, जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है। वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसलिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज्ड कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिल के युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं, और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है, वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा, जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे, जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात, टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक की मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज का दिन एक नए और ऐतिहासिक युग की शुरुआत लेकर आया है। आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

0: देश की पहली एलएनजी ट्रेन को पटरियों पर उतार दिया है। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। अब इस नए कदम ने भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये ट्रेन ड्यूअल फ्यूल सिस्टम से लैस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के साबरमती से देश की इस पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने वाली हरित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटरियों पर उतारने से पहले इस ग्रीन ट्रेन यानी एलएनजी इंजन वाली ट्रेन के सफल ट्रायल किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2000 किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दिखाई गई है। भारतीय रेलवे की इस एलएनजी ट्रेन के पीछे का उद्देश्य ईंधन की लागत कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। एलएनजी ट्रेनों को चलाने के लिए ड्यूअल फ्यूल दोहरे ईंधन इंजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ट्रेन का इंजन केवल एक ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय डीजल और एलएनजी दोनों के मिश्रण से चलता है, जैसे कि कार में सीएनजी और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। एलएनजी यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जो स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। प्राकृतिक गैस को लगभग -162 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो ये गैस से द्रव्य में बदल जाती है। तरल रूप में बदलने से इसका आयतन लगभग 600 गुना कम हो जाता है, जिससे इसे ट्रेन के छोटे टैंकों में अधिक मात्रा में स्टोर करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान हो जाता है। भारतीय रेल एलएनजी फ्यूल का इस्तेमाल अब ट्रेन चलाने के लिए करने लगा है। भारत में पहली एलएनजी ट्रेन साबरमती से शुरू हो गई है। एलएनजी का इस्तेमाल अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा और स्पेन जैसे देश कर रहे हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। फिलहाल गुजरात में साबरमती और मेहसाणा जंक्शन के बीच ये ट्रेन चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: क्या पूर्वजों और पितरों के स्वप्न अशुभ होते हैं? सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है? क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं? पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल। घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी। डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की कम होगी खपत। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक, सबसे तेज 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड। कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। और एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक का भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल। स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर। हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीते की सफलता की। भारत में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में चीतों की वापसी होगी, लेकिन 1922 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई और महज 4 साल में 8 चीतों के शुरू हुआ यह सफर आज 56 तक पहुंच गया है। हालांकि ज्यादातर जो चीते हैं वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही हैं, लेकिन भविष्य की अगर योजना की बात करें तो भविष्य की योजना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सरकार की योजना चीतों की संख्या गांधी सागर, अभयारण्य और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बढ़ाने की है, ताकि उनका स्थायी और सुरक्षित विस्तार हो सके। 7 दशक बाद भारत के जंगलों में एक बार फिर से चीते की जो रफ्तार है वो लौट रही है। ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता को फिर से समृद्ध करने की कोशिश है।

0: ये तस्वीर एक नए युग की शुरुआत है, एक नया ऐतिहासिक पल है। जब 8 विदेशी चीतों से शुरू हुआ सफर आज कारवां बन गया है। 4 साल में 29 से 56 तक पहुंची चीतों की ये संख्या किसी जादू से कम नहीं है। भारत में चीतों की बढ़ती संख्या इस बात का भी सबूत है कि वन विभाग और इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने किस अदम्य मेहनत और साहस से काम किया है, जिसकी वजह से ही आज ये प्रोजेक्ट सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी कह रहा है। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को कोनो नेशनल पार्क लाया गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाकर इस कार्यक्रम को विस्तार दिया गया, जिससे भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के बाद एक बार फिर से भारत की धरती पर चीतों की संख्या बढ़ने लगी है। इस तरह से हिंदुस्तान जंगल में चीतों को फिर से बसाने वाला एकमात्र देश भी बन गया है। पिछले 4 सालों में प्रोजेक्ट चीता को कामयाबी भी मिली तो कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ा है। इनमें बीमारी, चोट और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के कारण कई वयस्क चीतों और उनके बच्चों का साथ छूटा है, तो दूसरी तरफ कई नवजातों के सफल आगमन ने इस प्रोग्राम की सफलता की संभावनाओं को और मजबूत करने में मदद की है।
1: जो 70 साल पहले चीते विलुप्त हो गए थे, उनको दोबारा से भारत में बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। और 2022 में जब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चीते छोड़े थे कोनो नेशनल पार्क में, तब शुरुआत में पहले एक साल में लगा था कि प्रोजेक्ट असफलता की ओर जा रहा है, जब चीतों की मौतें हुई थी, 7-8 चीते एक साथ मरे थे। लेकिन अब जब लगातार प्रजनन हो रहे हैं, अभी तक 11 प्रजनन हो चुके हैं और 36 शावक वर्तमान में जीवित हैं, तो एक तरह से चीता प्रोजेक्ट फिलहाल सफलता की ओर नजर आ रहा है।
0: प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क से हुई थी, इसलिए कोनो नेशनल पार्क भारत में चीता संरक्षण की कोशिशों का केंद्र बन गया है, जहां पशु चिकित्सक, वन्य जीव विशेषज्ञ और वन अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर और चीतों पर कड़ी निगरानी करते हैं। हर नए बच्चे का जन्म कीमती जेनेटिक विविधता में योगदान देता है और एक स्थिर प्रजनन आबादी स्थापित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है।
2: खट्टे मीठे चुनौतीपूर्ण अनुभवों के साथ जोखिम पूर्ण वातावरण के बीच विदेशी चीते भारत की धरती पर ढल गए हैं। इसके अलावा जिन चीतों ने यहाँ पर जन्म लिया था, वो चीते भी दिन ब दिन यहाँ पर ढलकर जैव विविधता को एक नया संदेश दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसे लेकर काफी आशान्वित है और यह चीता प्रोजेक्ट लगातार सफलता की राह पर चल निकला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को कोनो स्थित उनके बाड़े में छोड़ा था। कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है और विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में यही वो जगह था जहां पर नामीबिया से आकर जलवायु के मुताबिक ये चीते रह सकते थे। कहा तो ये भी गया था कि भारत में प्रोजेक्ट चीता सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, लेकिन नामीबिया में चीतों के रहन सहन के मुताबिक कोनो नेशनल पार्क में परिस्थितियां तैयार की गई, उसके बाद चीतों को लाया गया। और अब अफ्रीकी देशों से आए चीतों ने तो वंश वृद्धि भी की है। अब तो भारत में जन्मे चीता भी ऐतिहासिक खुशी देने के साथ साथ परिवार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रोजेक्ट चीता के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक और खुशी का पल। भारत के चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे होने के एक दिन बाद भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने कोनो में 4 शावकों को जन्म दिया है। 4 साल, 4 नई जिंदगियां, ये उम्मीद, हिम्मत और भारत में चीता संरक्षण की बढ़ती सफलता का एक शानदार प्रमाण है। भारत में चीता प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए अब तक कुल 29 चीते विदेशों से लाए गए हैं। इनमें सबसे पहले नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं। इसके बाद भारत की धरती पर कुल 36 चीतों का जन्म हुआ, यानी कुल मिलाकर भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गया है।

0: एक नया इतिहास बन गया। ये सीसीबी 2 चीता बोत्सवाना से 28 फरवरी को भारत लाई गई थी, जिसे अब नया नाम भी दिया गया है राधा। राधा के गांधी सागर पहुंचने के साथ ही यहां चीता परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया। गांधी सागर में इससे पहले 20 अप्रैल 2025 को 2 नर चीते प्रभास और पावक को लाया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को यहां छोड़ा गया। अब राधा की एंट्री के साथ गांधी सागर में कुल 4 चीते हो गए हैं, 2 नर और 2 मादा।
1: मध्य प्रदेश में नहीं, ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। एशिया से चीते गायब हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं। ये हमारे अपनी सरकार के काम करने के तरीके भी हैं और ये हमारी वन्य जीवों के प्रति जियो और जीने दो के सद्भाव के आधार पर ये उपलब्धि भी है।
0: गांधी सागर में चीतों को बसाने का मकसद सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत में इस विलुप्त प्रजाति के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास तैयार करना भी है। मध्य प्रदेश में अब 50 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश की पहचान देश में चीता स्टेट के तौर पर मजबूत हो रही है।
1: हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्य प्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहां सैकड़ों साल पहले चीते खत्म हो गए थे वो दोबारा खेलते कूदते किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं, हमारे जंगल को आबाद कर रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है।
0: गांधी सागर में चीतों के लिए करीब 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें 8 क्वारंटाइन बाड़े भी शामिल हैं। चीतों की सुरक्षा, निगरानी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्हें ऐसा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है जहाँ चीते सुरक्षित तरीके से रह सकें और धीरे धीरे अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुरूप ढल सकें। यानी गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके सुरक्षित पुनर्वास और संरक्षण के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में गांधी सागर के जंगलों में चीतों का कुनबा और बढ़ेगा। उनकी रफ्तार और दहाड़ इस जंगल की पहचान बनेगी और भारत में चीता संरक्षण की मुहिम को एक नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही चीतों का एक नया बसेरा भी अपनी पहचान बनाएगा।
2: मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में और उसके बाद गुजरात के बन्नी घाट मैदान में भी चीते ट्रांसलोकेट किए जाने की तैयारी है, तो निश्चित रूप से चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर है। और जो 3 देशों से ग्लोबल पार्टनरशिप में हम 29 चीते लाए थे अभी तक, उससे अब तक 56 चीते हो चुके हैं, तो एक निश्चित रूप से दुगने हो गए और चीता प्रोजेक्ट ये सफलता की ओर है।
0: गांधी सागर की तरह ही चीतों के लिए एक नए घर की तैयारी पूरी की जा रही है। इसी के साथ यहाँ के लोगों का चीते को करीब से देखने का सपना भी पूरा हो सकेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने केन्या से कच्छ के बन्ने इलाके में 4 शानदार चीतों को लाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन चीतों में 2 नर और मादा जोड़े के आने की उम्मीद है।
3: बन्नी के ग्रासलैंड पे जो ग्रासलैंड का सबसे बड़ा जो बिग कैट है वो चीता है और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर की गई है, बहुत जल्दी ही चीता के री इंट्रोडक्शन का कार्य भी हम ये बन्नी के ग्रासलैंड में करने जा रहे हैं।
0: बन्नी ग्रासलैंड में चीतों के पहले जत्थे के आने पर 1 साल के अंदर 12 चीते लाने की योजना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। चीतों के ये जोड़े सबसे पहले भुज पहुंचेंगे और फिर उन्हें बन्नी स्थित सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा, जो भारत का पहला चीता संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यहां उन्हें करीब 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 500 हेक्टेयर के एक बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसे केन्या के घास के मैदानों जैसा खुला माहौल देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे यहाँ के माहौल में ढल सके और उनका प्रजनन भी हो सके। आपको बता दें कि बन्नी घास मैदान इलाका शुष्क घास भूमि का क्षेत्र है। ये 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ किसी समय में चीतों की बहुतायत हुआ करती थी, इसलिए बड़े घास के जंगल अभी भी चीतों के लिए अनुकूल आवास हैं। इसलिए इसे फिर से चीतों से आबाद करने की योजना है। गुजरात के कच्छ के बन्नी में वन

0: विभाग चीतों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए सवाना जैसा वातावरण देने के लिए युद्ध स्तर पर क्षेत्र तैयार कर रहा है। गुजरात में आने वाले केन्या के चीते मध्य प्रदेश के नामीबियाई चीतों से अलग हैं और एक नई अनुवांशिक और परिस्थितिक वंशावली के साथ आएंगे, इसलिए यहाँ पर खास व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर चीतों को भागने से रोकने और बड़े मांसाहारी जानवरों को अंदर आने और खतरनाक मुठभेड़ों को टालने के लिए करीब 9,830 मीटर की सीमा पर एक मजबूत चेन लिंक फेंसिंग लगाई जा रही है। बड़े बाड़े के इस मॉडल की मिसाल गुजरात के देवलिया सफारी पार्क में मौजूद है, जहां शेर संरक्षण प्रजनन के लिए विस्तृत संरक्षित स्थान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। गुजरात में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जंगली जानवर चीते को लाने का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही गुजरात आने वाले चीतों की तारीख तय करेगी और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों के लिए नया पनाहगाह साबित होने वाला है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट चीता में गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। शिवपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारत में चीतों का इतिहास जितना खूबसूरत है, उनकी संख्या के कम होने का इतिहास भी उतना ही परेशान करने वाला है। प्रकृति के हर रंग को खुद में समेटने वाले हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया था जब शिकारियों ने इस प्यारे से जानवर को खतरे में डाल दिया, लेकिन आज वो सुनहरा दौर फिर से वापसी कर रहा है और विदेश से आए चीते भारत में खूब फल फूल रहे हैं।

0: कहते हैं प्रकृति से एक बार जो चीज विलुप्त हो जाए उसे वापस प्रकृति में स्थापित करना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन सा हो जाता है। अगर बात वन्य जीवों की हो तो ये बात सच भी मालूम होती है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण वन्य जीवों के इतिहास से भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो डायनासोर है, जिसकी चर्चा तो होती है लेकिन वो दुनिया में मौजूद नहीं है। कोशिश हो रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन चीता को लेकर ऐसा नहीं है। भारत में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ गूंज रही है। दरअसल चीतों को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में एक बार फिर चीतों को अटखेलिया करते हुए देखा जा रहा है। चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है, लेकिन धरती के सभी जानवरों की रफ्तार में सबसे तेज। चीते इंसानों पर हमला नहीं करते और न ही वो इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन इंसानों ने चीतों का खूब शिकार किया है। भारत में पाए जाने वाले एशियाई चीते का उन्मूलन मूलतः शिकार और निवास के उचित वातावरण की कमी के कारण हुआ। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के पास सैकड़ों चीते थे। हालांकि मुगल शासक चीतों का शिकार भी करते थे, उसके बाद ब्रिटिश राज ने इस जानवर के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके अधीन राजे राजवाड़ों के शिकार का शौक कुलाचे भरते रहे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसी साल देश चीता मुक्त भी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया महाराज ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। दरअसल राजा महाराजाओं के शिकार के शौक ने चीता ही नहीं कई अन्य जंगली जीवों को विलुप्त कर दिया है। एक वक्त था जब चीते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। वो झाड़ियों में घर बनाते और घास के खुले मैदानों में अटखेलिया किया करते थे। भारत में अब भी घास के खुले मैदान हैं। उनका रकबा जरूर घट गया है, लेकिन उनमें स्वच्छंद विचरण के लिए चीते मौजूद नहीं है। हालांकि भारत में चीता की वापसी वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें 36 का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर माने जाने वाले चीते हमेशा से भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरवई में 6000 साल पहले की पेंटिंग में चीता दिखाया गया है, जो दिखाता है कि हिमालय क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में चीता पाया जाता था। इसलिए चीता को मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे क्षेत्र पसंद आएंगे। एमपी में अभी चीता कूनो के आसपास के 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घूम रहा है। कूनो से गांधी सागर और उसके बाद जल्द ही नौरादेही भी चीतों का नया घर बनने जा रहा है। नौरादेही के बाद माधो नेशनल पार्क में भी चीतों को बसाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा वन विभाग कूनो और गांधी सागर में मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप को चीतों के लिए विकसित करने की तैयारी कर रहा है। कूनो से लेकर गांधी सागर तक ये 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा। इसको तैयार किए जाने का काम चल रहा है। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क को चीतों की वजह से राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसी वजह से पर्यटन की गतिविधियां भी वहां तेज हुई हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देश में मौजूद 56 चीतों में से ज्यादा कुनो नेशनल पार्क में ही हैं, जबकि 4 मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में है। परियोजना के 4 साल के दौरान चीतों के प्रजनन, शावकों के जीवित रहने और उन्हें खुले जंगल में बसाने की दिशा में कई अहम काम हुए हैं। पहले साल परियोजना से जुड़े दल को चीतों के व्यवहार, स्वास्थ्य और भारतीय परिस्थितियों में उनके प्रबंधन को लेकर कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों से टीम को चीतों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन में मदद मिली। दूसरे साल परियोजना का मुख्य ध्यान भारत में जन्मे शावकों के जीवन और विकास पर रहा। भारत में जन्मे 13 शावक 1 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे, इसे परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया है। तीसरे साल यानी 2025 में चीतों को कुनो के खुले जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतर्राज्यीय क्षेत्र में फैले 12 जिलों में चीतों की 24 घंटे निगरानी की गई। धीरे धीरे इन चीतों ने नए इलाकों के मुताबिक खुद को ढालना शुरू किया। फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 9 और चीते भारत लाए गए। इससे भारत में चीता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे आधार को और मजबूती मिली। कुनो में मौजूद चीतों में से 17 खुले जंगल में हैं। इनमें 10 नर और 7 मादा चीते हैं। बाकी चीते फिलहाल विशेष बाड़ों में रखे गए हैं। इनमें 5 नर, 8 मादा और 1 साल से कम उम्र के 19 शावक शामिल हैं। परियोजना के चौथे साल में प्रजनन करने वाली मादा चीतों की स्थापना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का सफलतापूर्वक जीवित रहना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इनके साथ भारत में जन्मे 22 चीते जोड़ने पर नामीबिया से आए चीतों और उनकी संतानों की जीवित संख्या 25 हो जाती है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे। इनमें 8 अभी भी जीवित हैं। भारत में पैदा हुए 10 शावकों को जोड़ने पर दक्षिण अफ्रीकी मूल के चीतों और उनकी संतानों की संख्या 18 हो गई है। इनमें 15 पुनो और 3 गांधी सागर में हैं। अगर साल दर साल चीतों की बढ़ती संख्या पर नजर डाली जाए तो 2022 में पहली बार देश में 8 चीता लाए गए थे। साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई। साल 2024 में ये 24 तक पहुंचे तो साल 2025 में ये संख्या 30 पहुंच गई, जबकि अब देश में इनकी संख्या 56 हो चुकी है। भारत में 1947 में आखिरी चीते का शिकार होने का दावा किया जाता है। इसके बाद देश में कहीं भी चीता नहीं दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हुई और 1970 के दशक में चीता को एक बार फिर से भारत में लाने का प्रयास भी शुरू हुआ, लेकिन उस दौरान ईरान से चीता लाने की बातचीत के बीच ईरान में एक बड़ी क्रांति हो गई, जिसके कारण ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल प्रोजेक्ट चीता काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीतों की बढ़ती संख्या इस प्रोजेक्ट की सफलता को भी बयां कर रहा है। हालांकि वन्य जीव विशेषज्ञ इस सफर को और लंबा बताते हैं और आने वाले समय में देश के कई राज्यों में इस शानदार वन्य जीव की मौजूदगी की भी उम्मीद जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जल, जंगल और जमीन की संस्कृति से जुड़े हिंदुस्तान का इतिहास वन्य जीवों की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रकृति को भगवान का दर्जा देने के चलते भी यहाँ के लोगों का वन्य जीवों से गहरा रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, चीते का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भी मिलता है। माना जाता है कि चीते के कुनबे का विस्तार मध्य भारत, राजस्थान, दक्षिण और गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था, जिसे विलुप्त होने के बाद फिर इन्हीं इलाकों में आबाद करने की कोशिश हो रही है।
0: चीता वन्य जीवन के लिए बेहद जरूरी जीव है। दरअसल ये एक शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। चीता खासतौर पर छोटे मध्यम आकार के शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, जिनमें से मुख्य रूप से हिरण, चिंकारे, इम्पाला, गजेल आदि होते हैं। ऐसे में इन शाकाहारी जानवरों की संख्या का संतुलन बना रहता है। अगर चीता नहीं होगा तो इन शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। भारत से चीता की जुड़ाव की बात करें तो राजे राजवाड़ों के वक्त चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में लाया जाने लगा था। राजे महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए चीतों की मदद भी लेते थे। चीतों को जंगली जानवरों, खासकर काले हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुगलों ने तो इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया। लायंस, चीताज एंड अदर्स इन द मुगल लैंडस्केप नामक पुस्तक में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए थे। वहां चीते ने इतनी फुर्ती से शिकार किया कि अकबर गदगद हो गए। बादशाह ने चीते के गले में आभूषण पहना दिया और ढोल नगाड़े बजवा कर उसकी सराहना की। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 के अपने शासनकाल में करीब 9000 चीतों का संग्रह किया था। अकबर के काल को चीतों के लिए सुनहरा दौर माना जाता है। शाही शिकार में चीतों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होते होते एशियाई चीते तेजी से विलुप्त होने लगे थे। अंग्रेजों के बीच जंगली जानवरों के शिकार की प्रतिद्वंदिता होती थी, क्योंकि चीता खूंखार नहीं होते हैं और इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं। इसलिए वो मानते थे कि चीतों के शिकार में शौर्य के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। चूंकि चीतों का शिकार साहसिक नहीं माना गया, इसलिए अंग्रेजों का इनसे ध्यान हटा ही रहा। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश राज में चीतों के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ चीतों की कीमत भी कम ही लगती थी। एक आंकड़े के अनुसार साल 1870 से 1925 के बीच हर वर्ष सिर्फ 1.2 की औसत से चीतों का शिकार किया गया था। 1800 से 1950 के 150 वर्षों में 127 चीते मारे गए थे, जो सालाना औसत 1 से भी कम का आंकड़ा है। हालांकि चीतों की संख्या उस तेजी से बढ़ी भी नहीं। इस कारण कुछ राजवाड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका से चीते आयात करने शुरू कर दिए थे। 1918 में पहली बार चीते विदेश से मंगवाए गए और 1950 के दशक के शुरुआती सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। दूसरा कारण ये रहा कि चीता को पालतू बना लिया जाए और उसे बाड़ों में बंद कर दिया जाए तो उसके वंश वृद्धि की क्षमता घट जाती है, इसलिए वो खुले मैदान में ही रहना पसंद करते हैं। वो खुलेपन में ही वंश की वृद्धि करते हैं। मुगल शासक जहांगीर के काल में वर्ष 1613 में आखिरी बार किसी पालतू चीते ने बच्चे को जन्म दिया था। हाथ में बंदूक थामे 3 मृत चीतों के साथ खड़े कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव की यह तस्वीर काफी वायरल है। माना जाता है कि भारत के आखिरी 3 चीते वही थे जिनका शिकार महाराजा ने किया था। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि झारखंड में 1975 में एक चीता दिखा था। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आयात की डील हुई और चीते भारत पहुंच गए और मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में इनको बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अयोध्या में भगवान राम लला के नगरी के साथ साथ अब जिन जिन जगह पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे, उन उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित सभी स्थलों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। उसमें देखिए उस जगह की महिमा का वर्णन और राष्ट्रलोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखा होगा। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से स्तंभ का बाकायदा निर्माण किया गया है। इसे वेद श्रुति नदी कवराज धाम और तमसा तट गोराघाट प्राचीन दशरथ महल मंदिर नंदीग्राम भारत कुंड हनुमान भरत मिलंत मंदिर और जटाकुंड नंदीग्राम भारत कुंड मई देखिए सिंह ऋषि आश्रम प्राचीन सूर्यकुंड दशरथ समाधि स्थल मखोड़ा धाम प्राचीन सीता कुंड में स्थापित किया जा रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: क्या पूर्वजों और पितरों के स्वप्न अशुभ होते हैं? सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है? क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं? पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन, उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल, घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की कम होगी खपत। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया, विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक सबसे तेज, 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड, कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। और एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल, स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर, हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए, फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए, तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है। मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम, दैट इज मेन इंजन, जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हो और पूरी हो रही हो तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है कि नहीं।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिपकर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। सो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है सिस्टम, कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है, जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है। वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है, और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसके लिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिल के युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की। अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात, टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज का दिन एक नए और ऐतिहासिक युग की शुरुआत लेकर आया है। आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।

0: देश की पहली एलएनजी ट्रेन को पटरियों पर उतार दिया है। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। अब इस नए कदम ने भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये ट्रेन ड्यूअल फ्यूल सिस्टम से लैस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के साबरमती से देश की इस पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने वाली हरित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटरियों पर उतारने से पहले इस ग्रीन ट्रेन यानी एलएनजी इंजन वाली ट्रेन के सफल ट्रायल किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2000 किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दिखाई गई है। भारतीय रेलवे की इस एलएनजी ट्रेन के पीछे का उद्देश्य ईंधन की लागत कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। एलएनजी ट्रेनों को चलाने के लिए ड्यूअल फ्यूल दोहरे ईंधन इंजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ट्रेन का इंजन केवल एक ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय डीजल और एलएनजी दोनों के मिश्रण से चलता है, जैसे कि कार में सीएनजी और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। एलएनजी यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जो स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। प्राकृतिक गैस को लगभग -162 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो ये गैस से द्रव्य में बदल जाती है। तरल रूप में बदलने से इसका आयतन लगभग 600 गुना कम हो जाता है, जिससे इसे ट्रेन के छोटे टैंकों में अधिक मात्रा में स्टोर करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान हो जाता है। भारतीय रेल एलएनजी फ्यूल का इस्तेमाल अब ट्रेन चलाने के लिए करने लगा है। भारत में पहली एलएनजी ट्रेन साबरमती से शुरू हो गई है। एलएनजी का इस्तेमाल अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा और स्पेन जैसे देश कर रहे हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। फिलहाल गुजरात में साबरमती और मेहसाणा जंक्शन के बीच ये ट्रेन चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: के स्वप्न अशुभ होते हैं, सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है, क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं, पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए
2: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन, उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल, घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की कम होगी खपत। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया, विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक, सबसे तेज 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड, कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। और एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक का भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल, स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर, हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीते की सफलता की। भारत में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में चीतों की वापसी होगी, लेकिन 1922 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई और महज 4 साल में 8 चीतों के शुरू हुआ ये सफर आज 56 तक पहुंच गया है। हालांकि ज्यादातर जो चीते हैं वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही हैं, लेकिन भविष्य की अगर योजना की बात करें तो भविष्य की योजना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सरकार की योजना चीतों की संख्या गांधी सागर, अभयारण्य और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बढ़ाने की है ताकि उनका स्थायी और सुरक्षित विस्तार हो सके। 7 दशक बाद भारत के जंगलों में एक बार फिर से चीते की जो रफ्तार है वो लौट रही है। ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं बल्कि भारत की जैव विविधता को फिर से समृद्ध करने की कोशिश है।

0: ये तस्वीर एक नए युग की शुरुआत है, एक नया ऐतिहासिक पल है। जब 8 विदेशी जीतों से शुरू हुआ सफर आज कारवां बन गया है। 4 साल में 29 से 56 तक पहुंची चीतों की ये संख्या किसी जादू से कम नहीं है। भारत में चीतों की बढ़ती संख्या इस बात का भी सबूत है कि वन विभाग और इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने किस अदम्य मेहनत और साहस से काम किया है, जिसकी वजह से ही आज ये प्रोजेक्ट सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी कह रहा है। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को कोनो नेशनल पार्क लाया गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाकर इस कार्यक्रम को विस्तार दिया गया, जिससे भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के बाद एक बार फिर से भारत की धरती पर चीतों की संख्या बढ़ने लगी है। इस तरह से हिंदुस्तान जंगल में चीतों को फिर से बसाने वाला एकमात्र देश भी बन गया है। पिछले 4 सालों में प्रोजेक्ट चीता को कामयाबी भी मिली तो कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ा है। इनमें बीमारी, चोट और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के कारण कई वयस्क चीतों और उनके बच्चों का साथ छूटा है, तो दूसरी तरफ कई नवजातों के सफल आगमन ने इस प्रोग्राम की सफलता की संभावनाओं को और मजबूत करने में मदद की है।
1: जो 70 साल पहले चीते विलुप्त हो गए थे, उनको दोबारा से भारत में बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। और 2022 में जब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चीते छोड़े थे कोनो नेशनल पार्क में, तब शुरुआत में पहले एक साल में लगा था कि प्रोजेक्ट असफलता की ओर जा रहा है। जब चीतों की मौतें हुई थी, 7-8 चीते एक साथ मरे थे, लेकिन अब जब लगातार प्रजनन हो रहे हैं, अभी तक 11 प्रजनन हो चुके हैं और 36 शावक वर्तमान में जीवित हैं, तो एक तरह से चीता प्रोजेक्ट फिलहाल सफलता की ओर नजर आ रहा है।
0: प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क से हुई थी, इसलिए कोनो नेशनल पार्क भारत में चीता संरक्षण की कोशिशों का केंद्र बन गया है, जहां पशु चिकित्सक, वन्य जीव विशेषज्ञ और वन अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर और चीतों पर कड़ी निगरानी करते हैं। हर नए बच्चे का जन्म कीमती जेनेटिक विविधता में योगदान देता है और एक स्थिर प्रजनन आबादी स्थापित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है।
2: खट्टे मीठे चुनौतीपूर्ण अनुभवों के साथ जोखिम पूर्ण वातावरण के बीच विदेशी चीते भारत की धरती पर ढल गए हैं। इसके अलावा जिन चीतों ने यहाँ पर जन्म लिया था, वो चीते भी दिन ब दिन यहाँ पर ढलकर जैव विविधता को एक नया संदेश दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसे लेकर काफी आशान्वित है और यह चीता प्रोजेक्ट लगातार सफलता की राह पर चल निकला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को कोनो स्थित उनके बाड़े में छोड़ा था। कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है और विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में यही वो जगह था जहां पर नामीबिया से आकर जलवायु के मुताबिक ये चीते रह सकते थे। कहा तो ये भी गया था कि भारत में प्रोजेक्ट चीता सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, लेकिन नामीबिया में चीतों के रहन सहन के मुताबिक कोनो नेशनल पार्क में परिस्थितियां तैयार की गई, उसके बाद चीतों को लाया गया। और अब अफ्रीकी देशों से आए चीतों ने तो वंश वृद्धि भी की है। अब तो भारत में जन्मे चीता भी ऐतिहासिक खुशी देने के साथ साथ परिवार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रोजेक्ट चीता के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक और खुशी का पल। भारत के चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे होने के एक दिन बाद भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने कोनो में 4 शावकों को जन्म दिया है। 4 साल, 4 नई जिंदगियां, ये उम्मीद, हिम्मत और भारत में चीता संरक्षण की बढ़ती सफलता का एक शानदार प्रमाण है। भारत में चीता प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए अब तक कुल 29 चीते विदेशों से लाए गए हैं। इनमें सबसे पहले नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं। इसके बाद भारत की धरती पर कुल 36 चीतों का जन्म हुआ, यानी कुल मिलाकर भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गया है। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ भी चीतों का नया घर बनता जा रहा है। मंदसौर नीमच के जंगलों में एक बार फिर से चीते की दहाड़ गूंजने जा रही है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ में 20 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता CCB2 को बाड़ी से रिलीज किया तो एक नया इतिहास बन गया। ये CCB2 चीता बोत्सवाना से 28 फरवरी को भारत लाई गई थी, जिसे अब नया नाम भी दिया गया है राधा। राधा के गांधी सागर पहुंचने के साथ ही यहां चीता परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया। गांधी सागर में इससे पहले 20 अप्रैल 2025 को दो नर चीते प्रभास और पावक को लाया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को यहां छोड़ा गया। अब राधा की एंट्री के साथ गांधी सागर में कुल 4 चीते हो गए हैं, 2 नर और 2 मादा।
3: मध्य प्रदेश में नहीं, ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है

0: और ये हमारी वन्य जीवों के प्रति जियो और जीने दो के सद्भाव के आधार पर ये उपलब्धि भी है।
1: गांधी सागर में चीतों को बसाने का मकसद सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि भारत में इस विलुप्त प्रजाति के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास तैयार करना भी है। मध्य प्रदेश में अब 50 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश की पहचान देश में चीता स्टेट के तौर पर मजबूत हो रही है।
0: हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्य प्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहां सैकड़ों साल पहले चीते खत्म हो गए थे वो दोबारा खेलते कूदते किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं, हमारे जंगल को आबाद कर रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है।
1: गांधी सागर में चीतों के लिए करीब 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें 8 क्वारंटाइन बाड़े भी शामिल हैं। चीतों की सुरक्षा, निगरानी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्हें ऐसा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है जहाँ चीते सुरक्षित तरीके से रह सकें और धीरे धीरे अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुरूप ढल सकें। यानी गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके सुरक्षित पुनर्वास और संरक्षण के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में गांधी सागर के जंगलों में चीतों का कुनबा और बढ़ेगा। उनकी रफ्तार और दहाड़ इस जंगल की पहचान बनेगी और भारत में चीता संरक्षण की मुहिम को एक नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही चीतों का एक नया बसेरा भी अपनी पहचान बनाएगा।
2: मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में और उसके बाद गुजरात के बन्नी घाट मैदान में भी चीते ट्रांसलोकेट किए जाने की तैयारी है, तो निश्चित रूप से चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर है। और जो 3 देशों से ग्लोबल पार्टनरशिप में हम 29 चीते लाए थे अभी तक, उससे अब तक 56 चीते हो चुके हैं, जो एक निश्चित रूप से दुगने हो गए और चीता प्रोजेक्ट की सफलता की ओर है।
1: गांधी सागर की तरह ही चीतों के लिए एक नए घर की तैयारी पूरी की जा रही है। इसी के साथ यहाँ के लोगों का चीते को करीब से देखने का सपना भी पूरा हो सकेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने केन्या से कच्छ के बन्ने इलाके में 4 शानदार चीतों को लाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन चीतों में 2 नर और मादा जोड़े के आने की उम्मीद है।
3: बन्नी के ग्रासलैंड पे जो ग्रासलैंड का सबसे बड़ा जो बिग कैट है वो चीता है और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर की गई है, बहुत जल्दी ही चीता के री इंट्रोडक्शन का कार्य भी हम ये बन्नी के ग्रासलैंड में करने जा रहे हैं।
1: बन्नी ग्रासलैंड में चीतों के पहले जत्थे के आने पर 1 साल के अंदर 12 चीते लाने की योजना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। चीतों के ये जोड़े सबसे पहले भुज पहुंचेंगे और फिर उन्हें बन्नी स्थित सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा, जो भारत का पहला चीता संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यहाँ उन्हें करीब 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 500 हेक्टेयर के एक बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसे केन्या के घास के मैदानों जैसा खुला माहौल देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे यहाँ के माहौल में ढल सके और उनका प्रजनन भी हो सके। आपको बता दें कि बन्नी घास मैदान इलाका शुष्क घास भूमि का क्षेत्र है। ये 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ किसी समय में चीतों की बहुतायत हुआ करती थी, इसलिए बड़े घास के जंगल अभी भी चीतों के लिए अनुकूल आवास हैं। इसलिए इसे फिर से चीतों से आबाद करने की योजना है। गुजरात के कच्छ के बन्नी में वन विभाग चीतों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए सवाना जैसा वातावरण देने के लिए युद्ध स्तर पर क्षेत्र तैयार कर रहा है। गुजरात में आने वाले केन्या के चीते मध्य प्रदेश के नामीबियाई चीतों से अलग हैं और एक नई अनुवांशिक और परिस्थितिक वंशावली के साथ आएंगे, इसलिए यहाँ पर खास व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर चीतों को भागने से रोकने और बड़े मांसाहारी जानवरों को अंदर आने और खतरनाक मुठभेड़ों को टालने के लिए करीब 9,830 मीटर की सीमा पर एक मजबूत चेन लिंक फेंसिंग लगाई जा रही है। बड़े बाड़े के इस मॉडल की मिसाल गुजरात के देवलिया सफारी पार्क में मौजूद है, जहां शेर संरक्षण प्रजनन के लिए विस्तृत संरक्षित स्थान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। गुजरात में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जंगली जानवर चीते को लाने का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही गुजरात आने वाले चीतों

0: की तारीख तय करेगी और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों के लिए नया पनाहगाह साबित होने वाला है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट चीता में गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। शिवपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारत में चीतों का इतिहास जितना खूबसूरत है, उनकी संख्या के कम होने का इतिहास भी उतना ही परेशान करने वाला है। प्रकृति के हर रंग को खुद में समेटने वाले हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया था जब शिकारियों ने इस प्यारे से जानवर को खतरे में डाल दिया। लेकिन आज वो सुनहरा दौर फिर से वापसी कर रहा है और विदेश से आए चीते भारत में खूब फल फूल रहे हैं।
2: कहते हैं प्रकृति से एक बार जो चीज विलुप्त हो जाए उसे वापस प्रकृति में स्थापित करना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन सा हो जाता है। अगर बात वन्य जीवों की हो तो ये बात सच भी मालूम होती है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण वन्य जीवों के इतिहास से भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो डायनासोर है, जिसकी चर्चा तो होती है लेकिन वो दुनिया में मौजूद नहीं है। कोशिश हो रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन चीता को लेकर ऐसा नहीं है। भारत में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ गूंज रही है। दरअसल चीतों को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में एक बार फिर चीतों को अटखेलिया करते हुए देखा जा रहा है। चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है, लेकिन धरती के सभी जानवरों की रफ्तार में सबसे तेज। चीते इंसानों पर हमला नहीं करते और न ही वो इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन इंसानों ने चीतों का खूब शिकार किया है। भारत में पाए जाने वाले एशियाई चीते का उन्मूलन मूलतः शिकार और निवास के उचित वातावरण की कमी के कारण हुआ। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के पास सैकड़ों चीते थे। हालांकि मुगल शासक चीतों का शिकार भी करते थे, उसके बाद ब्रिटिश राज ने इस जानवर के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके अधीन राजे राजवाड़ों के शिकार का शौक कुलाचे भरते रहे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसी साल देश चीता मुक्त भी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया महाराज ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। दरअसल राजा महाराजाओं के शिकार के शौक ने चीता ही नहीं कई अन्य जंगली जीवों को विलुप्त कर दिया है। एक वक्त था जब चीते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। वो झाड़ियों में घर बनाते और घास के खुले मैदानों में अटखेलिया किया करते थे। भारत में अब भी घास के खुले मैदान हैं। उनका रकबा जरूर घट गया है, लेकिन उनमें स्वच्छंद विचरण के लिए चीते मौजूद नहीं है। हालांकि भारत में चीता की वापसी वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें 36 का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर माने जाने वाले चीते हमेशा से भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरवाई में 6000 साल पहले की पेंटिंग में चीता दिखाया गया है, जो दिखाता है कि हिमालय क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में चीता पाया जाता था। इसलिए चीता को मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे क्षेत्र पसंद आएंगे। एमपी में अभी चीता कूनो के आसपास के 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घूम रहा है। कूनो से गांधी सागर और उसके बाद जल्द ही नौरादेही भी चीतों का नया घर बनने जा रहा है। नौरादेही के बाद माधो नेशनल पार्क में भी चीतों को बसाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा वन विभाग कूनो और गांधी सागर में मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप को चीतों के लिए विकसित करने की तैयारी कर रहा है। कूनो से लेकर गांधी सागर तक ये 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा। इसको तैयार किए जाने का काम चल रहा है। शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क को चीतों की वजह से राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसी वजह से पर्यटन की गतिविधियां भी वहां तेज हुई हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देश में मौजूद 56 चीतों में से ज्यादा कूनो नेशनल पार्क में ही हैं, जबकि 4 मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में है। परियोजना के 4 साल के दौरान चीतों के प्रजनन, शावकों के जीवित रहने और उन्हें खुले जंगल में बसाने की दिशा में कई अहम काम हुए हैं। पहले साल परियोजना से जुड़े दल को चीतों के व्यवहार, स्वास्थ्य, और भारतीय परिस्थितियों में उनके प्रबंधन को लेकर कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों से टीम को चीतों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन में मदद मिली। दूसरे साल परियोजना का मुख्य ध्यान भारत में जन्मे शावकों के जीवन और विकास पर रहा। भारत में जन्मे 13 शावक एक साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे। इसे परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया है। तीसरे साल यानी 2025 में चीतों को कुनो के खुले जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतर्राज्यीय क्षेत्र में फैले 12 जिलों में चीतों की 24 घंटे निगरानी की गई। धीरे धीरे इन चीतों ने नए इलाकों के मुताबिक खुद को ढालना शुरू किया। फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 9 और चीते भारत लाए गए। इससे भारत में चीता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे आधार को और मजबूती मिली। कुनो में मौजूद चीतों में से 17 खुले जंगल में हैं। इनमें 10 नर और 7 मादा चीते हैं। बाकी चीते फिलहाल विशेष बाड़ों में रखे गए हैं। इनमें 5 नर, 8 मादा और 1 साल से कम उम्र के 19 शावक शामिल हैं। परियोजना के चौथे साल में प्रजनन करने वाली मादा चीतों की स्थापना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का सफलतापूर्वक जीवित रहना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इनके साथ भारत में जन्मे 22 चीते जोड़ने पर नामीबिया से आए चीतों और उनकी संतानों की जीवित संख्या 25 हो जाती है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए थे। इनमें 8 अभी भी जीवित हैं। भारत में पैदा हुए 10 शावकों को जोड़ने पर दक्षिण अफ्रीकी मूल के चीतों और उनकी संतानों की संख्या 18 हो गई है। इनमें 15 कुनो और 3 गांधी सागर में हैं। अगर साल दर साल चीतों की बढ़ती संख्या पर नजर डाली जाए तो 2022 में पहली बार देश में 8 चीता लाए गए थे। साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई। साल 2024 में ये 24 तक पहुंचे तो साल 2025 में ये संख्या 30 पहुंच गई, जबकि अब देश में इनकी संख्या 56 हो चुकी है। भारत में 1947 में आखिरी चीते का शिकार होने का दावा किया जाता है। इसके बाद देश में कहीं भी चीता नहीं दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद इसको लेकर कई बार चर्चाएं भी हुई और 1970 के दशक में चीता को एक बार फिर से भारत में लाने का प्रयास भी शुरू हुआ, लेकिन उस दौरान ईरान से चीता लाने की बातचीत के बीच ईरान में एक बड़ी क्रांति हो गई, जिसके कारण ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल प्रोजेक्ट चीता काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीतों की बढ़ती संख्या इस प्रोजेक्ट की सफलता को भी बयां कर रहा है। हालांकि वन्य जीव विशेषज्ञ इस सफर को और लंबा बताते हैं और आने वाले समय में देश के कई राज्यों में इस शानदार वन्य जीव की मौजूदगी की भी उम्मीद जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जल, जंगल और जमीन की संस्कृति से जुड़े हिंदुस्तान का इतिहास वन्य जीवों की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रकृति को भगवान का दर्जा देने के चलते भी यहाँ के लोगों का वन्य जीवों से गहरा रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, चीते का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भी मिलता है। माना जाता है कि चीते के कुनबे का विस्तार मध्य भारत, राजस्थान, दक्षिण और गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था, जिसे विलुप्त होने के बाद फिर इन्हीं इलाकों में आबाद करने की कोशिश हो रही है।
2: चीता वन्य जीवन के लिए बेहद जरूरी जीव है। दरअसल ये एक शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। चीता खासतौर पर छोटे मध्यम आकार के शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, जिनमें से मुख्य रूप से हिरण, चिंकारे, इम्पाला, गजेल आदि होते हैं। ऐसे में इन शाकाहारी जानवरों की संख्या का संतुलन बना रहता है। अगर चीता नहीं होगा तो इन शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। भारत से चीता की जुड़ाव की बात करें तो राजे राजवाड़ों के वक्त चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में लाया जाने लगा था। राजे महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए चीतों की मदद भी लेते थे। चीतों को जंगली जानवरों, खासकर काले हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुगलों ने तो इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया। लायंस, चीताज एंड अदर्स इन द मुगल लैंडस्केप नामक पुस्तक में लिखा है, कि मुगल बादशाह अकबर एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए थे। वहां चीते ने इतनी फुर्ती से शिकार किया कि अकबर गदगद हो गए। बादशाह ने चीते के गले में आभूषण पहना दिया और ढोल नगाड़े बजवाकर उसकी सराहना की। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 के अपने शासनकाल में करीब 9000 चीतों का संग्रह किया था। अकबर के काल को चीतों के लिए सुनहरा दौर माना जाता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर भी चीते के शौकीन थे। इससे पहले फिरोज शाह तुगलक के दौर से ही शाही शिकार में चीतों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होते होते एशियाई चीते तेजी से विलुप्त होने लगे थे। अंग्रेजों के बीच जंगली जानवरों के शिकार की प्रतिद्वंदिता होती थी, क्योंकि चीता खूंखार नहीं होते हैं और इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं। इसलिए वो मानते थे कि चीतों के शिकार में शौर्य के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। चूंकि चीतों का शिकार साहसिक नहीं माना गया, इसलिए अंग्रेजों का इनसे ध्यान हटा ही रहा। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश राज में चीतों के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ चीतों की कीमत भी कम ही लगती थी। एक आंकड़े के अनुसार साल 1870 से 1925 के बीच हर वर्ष सिर्फ 1.2 की औसत से चीतों का शिकार किया गया था। 1800 से 1950 के 150 वर्षों में 127 चीते मारे गए थे, जो सालाना औसत 1 से भी कम का आंकड़ा है। हालांकि चीतों की संख्या उस तेजी से बढ़ी भी नहीं। इस कारण कुछ राजवाड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका से चीते आयात करने शुरू कर दिए थे। 1918 में पहली बार चीते विदेश से मंगवाए गए और 1950 के दशक के शुरुआती सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। दूसरा कारण ये रहा कि चीता को पालतू बना लिया जाए और उसे बाड़ों में बंद कर दिया जाए तो उसके वंश वृद्धि की क्षमता घट जाती है, इसलिए वो खुले मैदान में ही रहना पसंद करते हैं। वो खुलेपन में ही वंश की वृद्धि करते हैं। मुगल शासक जहांगीर के काल में वर्ष 1613 में आखिरी बार किसी पालतू चीते ने बच्चे को जन्म दिया था। हाथ में बंदूक थामे 3 मृत चीतों के साथ खड़े कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव की यह तस्वीर काफी वायरल है। माना जाता है कि भारत के आखिरी 3 चीते वही थे जिनका शिकार महाराजा ने किया था। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि झारखंड में 1975 में एक चीता दिखा था। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आयात की डील हुई और चीते भारत पहुंच गए और मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में इनको बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: अयोध्या में भगवान राम लला के नगरी के साथ साथ अब जिन जिन जगह पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित सभी स्थलों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। उसमें देखिए उस जगह की महिमा का वर्णन और राष्ट्रलोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखा होगा। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से स्तंभ का बाकायदा निर्माण किया गया है। इसे वेद श्रुति नदी कवराज धाम और तमसा तट गोराघाट, प्राचीन दशरथ महल मंदिर, नंदीग्राम भारत कुंड, हनुमान भरत मिलन मंदिर और जटाकुंड नंदीग्राम भारत कुंड, वहीं देखिए सिंह ऋषि आश्रम, प्राचीन सूर्य कुंड, दशरथ समाधि स्थल, मखौड़ा धाम प्राचीन सीता कुंड में स्थापित किया जा रहा है।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: क्या पूर्वजों और पितरों के स्वप्न अशुभ होते हैं? सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है? क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं? पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन, उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल, घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की कम होगी खपत। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया, विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक सबसे तेज, 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड, कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। और एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल, स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर, हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है, मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम, दैट इज मेन इंजन, जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये एक वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हो और पूरी हो रही हो तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली देखें कि अगर गनर ने ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है कि नहीं।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिप कर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है, सिस्टम कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी है जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है। जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है, वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है। और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसके आपको टैंक्स की और मैकेनाइज कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60 से 70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की, अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सबको करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक की मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज का दिन एक नए और ऐतिहासिक युग की शुरुआत लेकर आया है। आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।

0: देश की पहली एलएनजी ट्रेन को पटरियों पर उतार दिया है। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। अब इस नए कदम ने भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये ट्रेन ड्यूअल फ्यूल सिस्टम से लैस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के साबरमती से देश की इस पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने वाली हरित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटरियों पर उतारने से पहले इस ग्रीन ट्रेन यानी एलएनजी इंजन वाली ट्रेन के सफल ट्रायल किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2000 किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दिखाई गई है। भारतीय रेलवे की इस एलएनजी ट्रेन के पीछे का उद्देश्य ईंधन की लागत कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। एलएनजी ट्रेनों को चलाने के लिए ड्यूअल फ्यूल दोहरे ईंधन इंजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ट्रेन का इंजन केवल एक ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय डीजल और एलएनजी दोनों के मिश्रण से चलता है, जैसे कि कार में सीएनजी और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। एलएनजी यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जो स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। प्राकृतिक गैस को लगभग -162 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो ये गैस से द्रव्य में बदल जाती है। तरल रूप में बदलने से इसका आयतन लगभग 600 गुना कम हो जाता है, जिससे इसे ट्रेन के छोटे टैंकों में अधिक मात्रा में स्टोर करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान हो जाता है। भारतीय रेल एलएनजी फ्यूल का इस्तेमाल अब ट्रेन चलाने के लिए करने लगा है। भारत में पहली एलएनजी ट्रेन साबरमती से शुरू हो गई है। एलएनजी का इस्तेमाल अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा और स्पेन जैसे देश कर रहे हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। फिलहाल गुजरात में साबरमती और मेहसाणा जंक्शन के बीच ये ट्रेन चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ
3: क्या पूर्वजों और पितरों के स्वप्न अशुभ होते हैं? सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है? क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं? पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: कि भाग्य कहीं
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
4: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल। घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी। डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की कम होगी खपत। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक सबसे तेज, 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड। कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। और एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक का भारत के खाते में आए 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल। स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर। हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीते की सफलता की। भारत में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में चीतों की वापसी होगी, लेकिन 1922 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई और महज 4 साल में 8 चीतों के शुरू हुआ यह सफर आज 56 तक पहुंच गया है। हालांकि ज्यादातर जो चीते हैं वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही हैं, लेकिन भविष्य की अगर योजना की बात करें तो भविष्य की योजना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सरकार की योजना चीतों की संख्या गांधी सागर, अभयारण्य और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बढ़ाने की है ताकि उनका स्थायी और सुरक्षित विस्तार हो सके। 7 दशक बाद भारत के जंगलों में एक बार फिर से चीते की जो रफ्तार है वो लौट रही है। ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं बल्कि भारत की जैव विविधता को फिर से समृद्ध करने की कोशिश है।

0: ये तस्वीर एक नए युग की शुरुआत है, एक नया ऐतिहासिक पल है। जब 8 विदेशी चीतों से शुरू हुआ सफर आज कारवां बन गया है। 4 साल में 29 से 56 तक पहुंची चीतों की ये संख्या किसी जादू से कम नहीं है। भारत में चीतों की बढ़ती संख्या इस बात का भी सबूत है कि वन विभाग और इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने किस अदम्य मेहनत और साहस से काम किया है, जिसकी वजह से ही आज ये प्रोजेक्ट सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। प्रोजेक्ट चीता की सफलता की कहानी कह रहा है। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को कोनो नेशनल पार्क लाया गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाकर इस कार्यक्रम को विस्तार दिया गया, जिससे भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के बाद एक बार फिर से भारत की धरती पर चीतों की संख्या बढ़ने लगी है। इस तरह से हिंदुस्तान जंगल में चीतों को फिर से बसाने वाला एकमात्र देश भी बन गया है। पिछले 4 सालों में प्रोजेक्ट चीता को कामयाबी भी मिली तो कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ा है। इनमें बीमारी, चोट और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के कारण कई वयस्क चीतों और उनके बच्चों का साथ छूटा है, तो दूसरी तरफ कई नवजातों के सफल आगमन ने इस प्रोग्राम की सफलता की संभावनाओं को और मजबूत करने में मदद की है।
1: जो 70 साल पहले चीते विलुप्त हो गए थे, उनको दोबारा से भारत में बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। और 2022 में जब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चीते छोड़े थे कोनो नेशनल पार्क में, तब शुरुआत में पहले 1 साल में लगा था कि प्रोजेक्ट असफलता की ओर जा रहा है, जब चीतों की मौतें हुई थी, 7-8 चीते एक साथ मरे थे। लेकिन अब जब लगातार प्रजनन हो रहे हैं, अभी तक 11 प्रजनन हो चुके हैं और 36 शावक वर्तमान में जीवित हैं, तो एक तरह से चीता प्रोजेक्ट फिलहाल सफलता की ओर नजर आ रहा है।
0: प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क से हुई थी, इसलिए कोनो नेशनल पार्क भारत में चीता संरक्षण की कोशिशों का केंद्र बन गया है, जहां पशु चिकित्सक, वन्य जीव विशेषज्ञ और वन अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर और चीतों पर कड़ी निगरानी करते हैं। हर नए बच्चे का जन्म कीमती जेनेटिक विविधता में योगदान देता है और एक स्थिर प्रजनन आबादी स्थापित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है।
2: खट्टे मीठे चुनौतीपूर्ण अनुभवों के साथ जोखिमपूर्ण वातावरण के बीच विदेशी चीते भारत की धरती पर ढल गए हैं। इसके अलावा जिन चीतों ने यहाँ पर जन्म लिया था, वो चीते भी दिन ब दिन यहाँ पर ढलकर जैव विविधता को एक नया संदेश दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसे लेकर काफी आशान्वित है और यह चीता प्रोजेक्ट लगातार सफलता की राह पर चल निकला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को कोनो स्थित उनके बाड़े में छोड़ा था। कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है और विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में यही वो जगह था जहां पर नामीबिया से आकर जलवायु के मुताबिक ये चीते रह सकते थे। कहा तो ये भी गया था कि भारत में प्रोजेक्ट चीता सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, लेकिन नामीबिया में चीतों के रहन सहन के मुताबिक कोनो नेशनल पार्क में परिस्थितियां तैयार की गई, उसके बाद चीतों को लाया गया। और अब अफ्रीकी देशों से आए चीतों ने तो वंश वृद्धि भी की है। अब तो भारत में जन्मे चीता भी ऐतिहासिक खुशी देने के साथ साथ परिवार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रोजेक्ट चीता के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक और खुशी का पल। भारत के चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे होने के एक दिन बाद भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने कोनो में 4 शावकों को जन्म दिया है। 4 साल, 4 नई जिंदगियां, ये उम्मीद, हिम्मत और भारत में चीता संरक्षण की बढ़ती सफलता का एक शानदार प्रमाण है। भारत में चीता प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए अब तक कुल 29 चीते विदेशों से लाए गए हैं। इनमें सबसे पहले नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 और बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं। इसके बाद भारत की धरती पर कुल 36 चीतों का जन्म हुआ, यानी कुल मिलाकर भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गया है। मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ भी चीतों का नया घर बनता जा रहा है। मंदसौर नीमच के जंगलों में एक बार फिर से चीते की दहाड़ गूंजने जा रही है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ में 20 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता CCB2 को बाड़ी से रिलीज किया तो एक नया इतिहास बन गया। ये CCB2 चीता बोत्सवाना से 28 फरवरी को भारत लाई गई थी, जिसे अब नया नाम भी दिया गया है राधा। राधा के गांधी सागर पहुंचने के साथ ही यहां चीता परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया। गांधी सागर में इससे पहले 20 अप्रैल 2025 को दो नर चीते प्रभास और पावक को लाया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2025 को मादा चीता धीरा को यहां छोड़ा गया। अब राधा की एंट्री के साथ गांधी सागर में कुल 4 चीते हो गए हैं, 2 नर और 2 मादा।
3: मध्य प्रदेश में नहीं, ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है। एशिया से चीते गायब हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प किया और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं। ये हमारे अपनी सरकार के काम करने के तरीके भी हैं और ये हमारी वन्य जीवों के प्रति जियो और जीने दो के सद्भाव के आधार पर ये उपलब्धि भी है।
0: गांधी सागर में चीतों को बसाने का मकसद सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि भारत में इस विलुप्त प्रजाति के लिए सुरक्षित और अनुकूल आवास तैयार करना भी है। मध्य प्रदेश में अब 50 से ज्यादा चीते मौजूद हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश की पहचान देश में चीता स्टेट के तौर पर मजबूत हो रही है।
3: हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्य प्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहां सैकड़ों साल पहले

0: हमारे जंगल को आबाद कर रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है।
1: गांधी सागर में चीतों के लिए करीब 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें 8 क्वारंटाइन बाड़े भी शामिल हैं। चीतों की सुरक्षा, निगरानी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्हें ऐसा वातावरण देने की कोशिश की जा रही है जहाँ चीते सुरक्षित तरीके से रह सकें और धीरे धीरे अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुरूप ढल सकें। यानी गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके सुरक्षित पुनर्वास और संरक्षण के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में गांधी सागर के जंगलों में चीतों का कुनबा और बढ़ेगा। उनकी रफ्तार और दहाड़ इस जंगल की पहचान बनेगी और भारत में चीता संरक्षण की मुहिम को एक नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही चीतों का एक नया बसेरा भी अपनी पहचान बनाएगा।
2: मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में और उसके बाद गुजरात के बन्नी घाट मैदान में भी चीते ट्रांसलोकेट किए जाने की तैयारी है, तो निश्चित रूप से चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर है। और जो 3 देशों से ग्लोबल पार्टनरशिप में हम 29 चीते लाए थे अभी तक, उससे अब तक 56 चीते हो चुके हैं, तो एक निश्चित रूप से दुगने हो गए और चीता प्रोजेक्ट की सफलता की ओर है।
1: गांधी सागर की तरह ही चीतों के लिए एक नए घर की तैयारी पूरी की जा रही है। इसी के साथ यहाँ के लोगों का चीते को करीब से देखने का सपना भी पूरा हो सकेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने केन्या से कच्छ के बन्नी इलाके में 4 शानदार चीतों को लाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन चीतों में 2 नर और मादा जोड़े के आने की उम्मीद है।
3: बन्नी के ग्रासलैंड पे जो ग्रासलैंड का सबसे बड़ा जो बिग कैट है वो चीता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर की गई है, बहुत जल्दी ही चीता के री इंट्रोडक्शन का कार्य भी हम ये बन्नी के ग्रासलैंड में करने जा रहे हैं।
1: बन्नी ग्रासलैंड में चीतों के पहले जत्थे के आने पर 1 साल के अंदर 12 चीते लाने की योजना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों का दूसरा घर बन जाएगा। चीतों के ये जोड़े सबसे पहले भुज पहुंचेंगे और फिर उन्हें बन्नी स्थित सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा, जो भारत का पहला चीता संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यहां उन्हें करीब 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 500 हेक्टेयर के एक बाड़े में छोड़ा जाएगा, जिसे केन्या के घास के मैदानों जैसा खुला माहौल देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे यहाँ के माहौल में ढल सके और उनका प्रजनन भी हो सके। आपको बता दें कि बन्नी घास मैदान इलाका शुष्क घास भूमि का क्षेत्र है। ये 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ किसी समय में चीतों की बहुतायत हुआ करती थी, इसलिए बड़े घास के जंगल अभी भी चीतों के लिए अनुकूल आवास हैं। इसलिए इसे फिर से चीतों से आबाद करने की योजना है। गुजरात के कच्छ के बन्नी में वन विभाग चीतों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए सवाना जैसा वातावरण देने के लिए युद्ध स्तर पर क्षेत्र तैयार कर रहा है। गुजरात में आने वाले केन्या के चीते मध्य प्रदेश के नामीबियाई चीतों से अलग हैं और एक नई अनुवांशिक और परिस्थितिक वंशावली के साथ आएंगे, इसलिए यहाँ पर खास व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर चीतों को भागने से रोकने और बड़े मांसाहारी जानवरों को अंदर आने और खतरनाक मुठभेड़ों को टालने के लिए करीब 9,830 मीटर की सीमा पर एक मजबूत चेन लिंक फेंसिंग लगाई जा रही है। बड़े बाड़े के इस मॉडल की मिसाल गुजरात के देवलिया सफारी पार्क में मौजूद है, जहां शेर संरक्षण प्रजनन के लिए विस्तृत संरक्षित स्थान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। गुजरात में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जंगली जानवर चीते को लाने का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही गुजरात आने वाले चीतों की तारीख तय करेगी और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात चीतों के लिए नया पनाहगाह साबित होने वाला है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट चीता में गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारत में चीतों का इतिहास जितना खूबसूरत है, उनकी संख्या के कम होने का इतिहास भी उतना ही परेशान करने वाला है। प्रकृति के हर रंग को खुद में समेटने वाले हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया था जब शिकारियों ने इस प्यारे से जानवर को खतरे में डाल दिया, लेकिन आज वो सुनहरा दौर फिर से वापसी कर रहा है और विदेश से आए चीते भारत में खूब फल फूल रहे।

0: कहते हैं प्रकृति से एक बार जो चीज विलुप्त हो जाए उसे वापस प्रकृति में स्थापित करना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन सा हो जाता है। अगर बात वन्य जीवों की हो तो ये बात सच भी मालूम होती है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण वन्य जीवों के इतिहास से भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो डायनासोर है, जिसकी चर्चा तो होती है लेकिन वो दुनिया में मौजूद नहीं है। कोशिश हो रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन चीता को लेकर ऐसा नहीं है। भारत में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ गूंज रही है। दरअसल चीतों को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में एक बार फिर चीतों को अटखेलिया करते हुए देखा जा रहा है। चीता बिल्ली प्रजाति का जानवर है, लेकिन धरती के सभी जानवरों की रफ्तार में सबसे तेज। चीते इंसानों पर हमला नहीं करते और न ही वो इंसानों का शिकार करते हैं, लेकिन इंसानों ने चीतों का खूब शिकार किया है। भारत में पाए जाने वाले एशियाई चीते का उन्मूलन मूलतः शिकार और निवास के उचित वातावरण की कमी के कारण हुआ। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के पास सैकड़ों चीते थे। हालांकि मुगल शासक चीतों का शिकार भी करते थे, उसके बाद ब्रिटिश राज ने इस जानवर के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके अधीन राजे राजवाड़ों के शिकार का शौक कुलाचे भरते रहे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और उसी साल देश चीता मुक्त भी हो गया। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया महाराज ने आखिरी 3 चीतों का शिकार किया था। दरअसल राजा महाराजाओं के शिकार के शौक ने चीता ही नहीं कई अन्य जंगली जीवों को विलुप्त कर दिया है। एक वक्त था जब चीते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। वो झाड़ियों में घर बनाते और घास के खुले मैदानों में अटखेलिया किया करते थे। भारत में अब भी घास के खुले मैदान हैं। उनका रकबा जरूर घट गया है, लेकिन उनमें स्वच्छंद विचरण के लिए चीते मौजूद नहीं है। हालांकि भारत में चीता की वापसी वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आज भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें 36 का जन्म भारत की धरती पर हुआ है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर माने जाने वाले चीते हमेशा से भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरवई में 6000 साल पहले की पेंटिंग में चीता दिखाया गया है, जो दिखाता है कि हिमालय क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में चीता पाया जाता था। इसलिए चीता को मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे क्षेत्र पसंद आएंगे। एमपी में अभी चीता कूनो के आसपास के 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घूम रहा है। कूनो से गांधी सागर और उसके बाद जल्द ही नौरादेही भी चीतों का नया घर बनने जा रहा है। नौरादेही के बाद माधो नेशनल पार्क में भी चीतों को बसाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा वन विभाग कूनो और गांधी सागर में मेटा पॉपुलेशन लैंडस्केप को चीतों के लिए विकसित करने की तैयारी कर रहा है। कूनो से लेकर गांधी सागर तक ये 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा। इसको तैयार किए जाने का काम चल रहा है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क को चीतों की वजह से राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसी वजह से पर्यटन की गतिविधियां भी वहां तेज हुई हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देश में मौजूद 56 चीतों में से ज्यादा कूनो नेशनल पार्क में ही हैं, जबकि 4 मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में है। परियोजना के 4 साल के दौरान चीतों के प्रजनन, शावकों के जीवित रहने और उन्हें खुले जंगल में बसाने की दिशा में कई अहम काम हुए हैं। पहले साल परियोजना से जुड़े दल को चीतों के व्यवहार, स्वास्थ्य और भारतीय परिस्थितियों में उनके प्रबंधन को लेकर कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों से टीम को चीतों की बेहतर देखभाल और प्रबंधन में मदद मिली। दूसरे साल परियोजना का मुख्य ध्यान भारत में जन्मे शावकों के जीवन और विकास पर रहा। भारत में जन्मे 13 शावक 1 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे। इसे परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया है। तीसरे साल यानी 2025 में चीतों को कूनो के खुले जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। अंतर्राज्यीय क्षेत्र में फैले 12 जिलों में चीतों की 24 घंटे निगरानी की गई। धीरे धीरे इन चीतों ने नए इलाकों के मुताबिक खुद को ढालना शुरू किया। फरवरी 2026 में बोत्सवाना से 9 और चीते भारत लाए गए। इससे भारत में चीता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे आधार को और मजबूती मिली। कोनों में मौजूद चीतों में से 17 खुले जंगल में हैं। इनमें 10 नर और 7 मादा चीते हैं। बाकी चीते फिलहाल विशेष बाड़ों में रखे गए हैं। इनमें 5 नर, 8 मादा और 1 साल से कम उम्र के 19 शावक शामिल हैं। परियोजना के चौथे साल में प्रजनन करने वाली मादा चीतों की स्थापना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का सफलतापूर्वक जीवित रहना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इनके साथ भारत में जन्मे 22 चीते जोड़ने पर नामीबिया से आए चीतों और उनकी संतानों की जीवित संख्या 25 हो जाती है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से
1: जल, जंगल और जमीन की संस्कृति से जुड़े हिंदुस्तान का इतिहास वन जीवों की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रकृति को भगवान का दर्जा देने के चलते भी यहाँ के लोगों का वन जीवों से गहरा रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, चीते का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भी मिलता है। माना जाता है कि चीते के कुनबे का विस्तार मध्य भारत, राजस्थान, दक्षिण और गंगा के मैदानों तक फैला हुआ था, जिसे विलुप्त होने के बाद फिर इन्हीं इलाकों में आबाद करने की कोशिश हो रही है।
0: चीता वन्य जीवन के लिए बेहद जरूरी जीव है। दरअसल ये एक शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। और जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। चीता खासतौर पर छोटे मध्यम आकार के शाकाहारी जानवरों का शिकार करता है, जिनमें से मुख्य रूप से हिरण, चिंकारे, इम्पाला, गजेल आदि होते हैं। ऐसे में इन शाकाहारी जानवरों की संख्या का संतुलन बना रहता है। अगर चीता नहीं होगा तो इन शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। भारत से चीता की जुड़ाव की बात करें तो राजे राजवाड़ों के वक्त चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में लाया जाने लगा था। राजे महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए चीतों की मदद भी लेते थे। चीतों को जंगली जानवरों, खासकर काले हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुगलों ने तो इस प्रथा को खूब आगे बढ़ाया। लायंस, चीताज एंड अदर्स इन द मुगल लैंडस्केप नामक पुस्तक में लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए थे। वहां चीते ने इतनी फुर्ती से शिकार किया कि अकबर गदगद हो गए। बादशाह ने चीते के गले में आभूषण पहना दिया और ढोल नगाड़े बजवाकर उसकी सराहना की। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 के अपने शासनकाल में करीब 9000 चीतों का संग्रह किया था। अकबर के काल को चीतों के लिए सुनहरा दौर माना जाता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर भी चीते के शौकीन थे। इससे पहले फिरोज शाह तुगलक के दौर से ही शाही शिकार में चीतों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होते होते एशियाई चीते तेजी से विलुप्त होने लगे थे। अंग्रेजों के बीच जंगली जानवरों के शिकार की प्रतिद्वंदिता होती थी। चूंकि चीता खूंखार नहीं होते हैं और इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, इसलिए वो मानते थे कि चीतों के शिकार में शौर्य के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। चूंकि चीतों का शिकार साहसिक नहीं माना गया, इसलिए अंग्रेजों का इनसे ध्यान हटा ही रहा। इसका असर यह हुआ कि ब्रिटिश राज में चीतों के संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी तरफ चीतों की कीमत भी कम ही लगती थी। एक आंकड़े के अनुसार साल 1870 से 1925 के बीच हर वर्ष सिर्फ 1.2 की औसत से चीतों का शिकार किया गया था। 1800 से 1950 के 150 वर्षों में 127 चीते मारे गए थे, जो सालाना औसत 1 से भी कम का आंकड़ा है। हालांकि चीतों की संख्या उस तेजी से बढ़ी भी नहीं। इस कारण कुछ राजवाड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका से चीते आयात करने शुरू कर दिए थे। 1918 में पहली बार चीते विदेश से मंगवाए गए और 1950 के दशक के शुरुआती सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। दूसरा कारण ये रहा कि चीता को पालतू बना लिया जाए और उसे बाड़ों में बंद कर दिया जाए तो उसके वंश वृद्धि की क्षमता घट जाती है, इसलिए वो खुले मैदान में ही रहना पसंद करते हैं। वो खुलेपन में ही वंश की वृद्धि करते हैं। मुगल शासक जहांगीर के काल में वर्ष 1613 में आखिरी बार किसी पालतू चीते ने बच्चे को जन्म दिया था। हाथ में बंदूक थामे 3 मृत चीतों के साथ खड़े कोरिया के महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव की ये तस्वीर काफी वायरल है। माना जाता है कि भारत के आखिरी 3 चीते वही थे जिनका शिकार महाराजा ने किया था। हालांकि एक दावा यह भी किया जाता है कि झारखंड में 1975 में एक चीता दिखा था। बहरहाल केंद्र सरकार की ओर से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आयात की डील हुई और चीते भारत पहुंच गए और मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में इनको बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई जो लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: अयोध्या में भगवान राम लला के नगरी के साथ साथ अब जिन जिन जगह पर भगवान राम अपने वनवास काल में गए थे उन जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित सभी स्थलों पर श्री राम स्तंभ लगाया जाएगा। उसमें देखिए उस जगह की महिमा का वर्णन और श्लोक के साथ क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखा होगा। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंडस्टोन के पत्थरों से स्तंभ का बाकायदा निर्माण किया गया है। इसे वेद श्रुति नदी कवराज धाम और तमसा तट गोराघाट प्राचीन दशरथ महल मंदिर नंदीग्राम भारत कुंड हनुमान भरत मिलंत मंदिर और जटाकुंड नंदीग्राम भारत कुंड मैं देखिए सिंह ऋषि आश्रम प्राचीन सूर्य कुंड दशरथ समाधि स्थल मखोड़ा धाम प्राचीन सीता कुंड में स्थापित किया जा रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: क्या पूर्वजों और पितरों के स्वप्न अशुभ होते हैं? सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है? क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं? पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
5: प्रभु राम वन गमन मार्ग के पौराणिक स्थलों पर लगेंगे श्री राम स्तंभ। अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 स्थानों का चयन, स्तंभों पर स्थानीय भाषा में उकेरे जाएंगे श्लोक और भगवान की महिमा। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान गिरने के साथ ही अलर्ट मोड पर प्रशासन, उत्तरकाशी में हो रही है लगातार बारिश। यूपी में शिक्षा की उड़ान अभियान के तहत 1,00,000 मेधावी बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल, घर में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए सीएम योगी की पहल, बच्चों ने क्रिएटिव खत के जरिए मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी ट्रेन को दिखा दी हरी झंडी, डीजल और एलएनजी में स्विच कर सकेगा ट्रेन का इंजन, नई तकनीक से 40% डीजल की कम होगी खपत। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक सबसे तेज। 15,000 रन पूरे करने का बनाया रिकॉर्ड। कप्तान गिल ने भी खेली शतकीय पारी। और एशियन गेम्स के 8वें दिन अब तक भारत के खाते में आए 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल। स्क्वैश में अभय और अनाहत को मिले 2 सिल्वर। हाई जंप के साथ लॉन्ग जंप में भी बरसी चांदी।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

न टैंक की धार कम होगी, न टैंकों के प्रहार में कोई कमी आएगी। अगर इंजन बंद भी हो जाए, फिर भी टैंकों के गोले बरसाने में कोई कमी नहीं आएगी। भारतीय सेना के टैंकों को मिलने वाला है ऐसा सीक्रेट पावर हाउस, जिससे टैंकों को जबरदस्त ताकत मिलेगी। यानी अब चुनौती जैसे भी हो, हालात कितने भी खराब हो, भारतीय सेना के टैंकों को पावर बैकअप मिलता रहेगा। यानी सेना के टैंक युद्ध के मैदान में लगातार एक्टिव रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-90 और T-72 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की एक डील की है, जिसके तहत टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदे जाएंगे। ये एक तरीके से टैंकों की पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सीधे तौर पर आपको बताते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सही मायनों में अगर देखा जाए कि अगर टैंक का इंजन बंद हो जाए, तो एक तरीके से पावर इंजन का काम ये करेंगे। यानी सीधे तौर पर टैंक के लिए बिजली का ऑप्शनल सोर्स, जो फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरे उपकरणों को बिजली सप्लाई करता रहेगा।

0: युद्ध के मैदान में टैंक का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की आवाज और गर्मी होता है। टैंक का इंजन जब चालू होता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दुश्मन के थर्मल सेंसर या इंफ्रारेड उपकरण उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और फिर टैंक पर अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में APU बेहद कारगर साबित होगा। APU फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन कैमरा, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फायरिंग सर्किट को लगातार ऊर्जा देता है।
1: ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक गन के अंदर एक सिस्टम है, मेरे आर्टिलरी गन्स में भी वो सिस्टम होता है, लेकिन अगर हम बात करें टैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैंक में 1000 हॉर्स पावर के लिए जो इंजन है वो बहुत बड़ा है। एक छोटा पावर का इंजन होता है और उस पावर के इंजन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करेगा जो मेन सिस्टम, दैट इज मेन इंजन, जब ऑफ रहता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है टैक्टिकल कि उसकी आवाज नहीं है बड़े वाले इंजन की, तो इसलिए उसको एकुस्टिक साइन जो है वो नहीं होता हो पाता है। और इसी तरह जब हम फायरिंग सर्किट और कंट्रोल सिस्टम्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, इन सबको जो पावरिंग चाहिए वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट देता है।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट से टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम को बिजली मिलती रहेगी। अब इसका क्या फायदा होगा ये भी जान लीजिए। टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरीकृत सिस्टम है जो टैंक के गनर को किसी भी स्थिर या मूविंग टारगेट को सटीक रूप से निशाना बनाने और उस पर हमला करने में मदद करता है।
1: देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम में APU की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि बिना मेन इंजन को ऑयल ऑन करे आप जो कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेटेड रख सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम होता है ये जो फायर कंट्रोल का होता है, जहां सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहा होता है और टारगेट की जो ऑप्टिक्स है वो उसको भी काम में रखता है। सो अगर सरल भाषा में कहा जाए कि डिटेक्ट करना एनिमी को, उसको ट्रैक करना और उसको एक्यूरेटली हिट करने से रिलेटेड कंप्लीट फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो आप ऑक्सिलरी पावर यूनिट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं।
0: APU की ऊर्जा से गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकता है, जो कि एक मेन बैटल टैंक के लिए बेहद अहम माना जाता है। गन स्टेबलाइजेशन दरअसल टैंक का वो मॉडर्न मैकेनिज्म है जो टैंक के हिलते रहने से भी अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अब मान लीजिए टैंक किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर समतल जमीन नहीं है, लेकिन इसकी तोप सीधे निशाने पर ही रहेगी, यानी किसी भी हालात में ये अपने लक्ष्य पर सटीक नजर बनाए रखेगा। गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्यों जरूरी है इसे भी समझने की जरूरत है। पुराने जमाने के टैंकों में स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं होता था, इसीलिए टैंक को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए रुकना पड़ता था। रुकते ही टैंक दुश्मन के लिए एक आसान निशाना बन जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में टैंक के गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम के आने से टैंक तेज रफ्तार से चलते हुए भी दुश्मन पर अचूक गोला दाग सकता है।
1: गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम अपने आप जो वर्ड है वही बताते हैं कि उसकी जो गन है वो इस हिसाब से स्टेबलाइज हो जाए कि अगर टैंक मूव कर रहा है, ऊंचा नीचा उछल रहा है, नीचे कूद रहा है, बाउंसिंग कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, उसके बावजूद उसकी गन जो है वो स्टेबलाइज रहे। दैट मीन्स अगर वो टारगेट के ऊपर एक बार लॉक हो जाए तो अगर आपका टैंक अप डाउन हो रहा है उसके बावजूद वो जो बैरल है वो अप डाउन नहीं होगी, वो टारगेट के ऊपर फिक्स रहेगी।
0: ऑक्सिलरी पावर यूनिट किसी टैंक के लिए दो हार्ट की तरह होती है। अगर एक हार्ट बंद हो भी जाए तो दूसरा हार्ट टैंक को एक्टिव रखता है। जब टैंक का मेन इंजन बंद रहता है तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट की मदद से ही टैंक के फायरिंग सर्किट को एनर्जी सप्लाई होती है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट दरअसल वो सिस्टम है जो कि गनर के ट्रिगर दबाने के बाद ही तोप को उसके निशाने पर ले जाने की कमांड देता है। आधुनिक टैंकों में ये अत्यंत सुरक्षित होता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पारंपरिक बंदूकों की तरह टैंक की तोप में फायरिंग पिन नहीं होती। मॉडर्न टैंकों की तोप इलेक्ट्रिकल इग्निशन पर काम करती है। अब फायरिंग सर्किट कैसे काम करता है इसे विस्तार से आपको समझाते हैं। फायरिंग सर्किट में पहला स्टेप है ट्रिगर दबाना। जब गनर या फिर कमांडर फायर बटन दबाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है। फिर करंट का प्रवाह होता है। फायरिंग सर्किट से एक नियंत्रित इलेक्ट्रिकल करंट तोप के बीच ब्लॉक के जरिए गोले के प्राइमर तक पहुंचता है। इसके बाद धमाका और फायरिंग होती है। ये करंट गोले के अंदर मौजूद बारूद को सुलगाता है जिससे गैस का हाई प्रेशर बनता है और गोला तोप से बाहर निकलता है।
1: फायर सर्किट एक सीधी सीधी बात है कि ये वो सर्किट सिस्टम है जो फायर करता है। फायर किसको करता है कि जो शेल है उसका जो प्राइमर है, जो कार्ट्रिज है उसके अंदर जो प्राइमर है वो उसको इग्नाइट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टैंक के अंदर की अगर सभी सेफ्टीज एक्टिवेटेड हों और पूरी हो रही हों तो वो अपने आप जाकर ट्रिगर कर पाएगा। और ट्रिगर करने का मतलब होता है कि अगर इसको सिस्टमैटिकली देखें कि अगर गनर में ट्रिगर को पुल किया तो उसकी जो सेफ्टी इंटरलॉक है वो पूरे होने चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक का मतलब हो गया कि ब्रीच बंद हो गई है या नहीं हो गई है, रिकॉइल जो है वो इंटरलॉक हो गया है कि नहीं।
0: भारतीय सेना रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंकों का इस्तेमाल करती है। इन टैंकों में पहले से APU नहीं है, इस वजह से टैंक के इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू रखने के लिए मेन इंजन चालू रखना पड़ता है। अब स्वदेशी APU मिलने के बाद टैंक बिना किसी आवाज और बिना गर्मी पैदा किए दुश्मन की नजरों से छिप कर घात लगा सकेंगे। ये क्षमता रात के समय रक्षात्मक और आक्रामक ऑपरेशंस में गेम चेंजर साबित होगी।
1: किसी भी ऑपरेशन में देखें, चाहे वो प्लेन्स के ऑपरेशन हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशंस हो, अगर आप अपनी मेन गन 24 घंटे ऑन नहीं रख सकते मेन इंजन को, क्यों 1000 हॉर्स पावर का है, आपका फ्यूल ज्यादा लगता है, उसे कंटिन्यूसली रख नहीं सकते, वो हीट भी जनरेट करता है और अपने जो एकोस्टिक सिग्नेचर है, जो आवाज के जो सिग्नेचर है वो एनिमी उसको ट्रैक कर सकता है, हीट सिग्नेचर्स को वो ट्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो APU गन को वो सारी क्वालिटीज देता है कि वो फायर कर पाए, सिवाय इसके कि उसकी मेन मूवमेंट, वो जो स्पीड वाली मूवमेंट है वो उसमें ना हो। अगर मैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाऊं उसके अंदर वो जो गर्मी रखनी है वो जरूरी है, जो मैं कहूंगा कि सिस्टम्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं वो फ्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें एक जो थर्मल ब्लैंकेट है वो अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा।
0: पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में सर्दियों में तापमान शून्य से -30 से 40 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में टैंकों के मेन इंजन को बार बार चालू करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे हालात में ऑक्सिलरी पावर यूनिट 10 से 12 किलोवाट की पावर जनरेट कर कम तापमान में भी टैंक के फायर कंट्रोल और नाइट विजन सिस्टम को लगातार बिजली देता रहेगा, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल रेडिनेंस हर मौसम में 24/7 बनी रहेगी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि एक टैंक की जो गन रेडीनेस है, सिस्टम कॉम्बैट रेडीनेस और जो सर्वाइवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेन इंजन्स को हर समय ऑन नहीं रख सकते, वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, आपका फ्यूल की जो एचलॉन है, आपकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी एक बर्डन आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उतना बड़ा इंजन आपको 24 घंटे ऑन रखना पॉसिबल भी नहीं है। सो आप APU द्वारा, जिसको बोल सकूंगा मैं साइलेंट वॉच, 24 आवर की जो साइलेंट वॉच है आप वो इसके द्वारा कर सकते हैं।
0: टैंक की प्रासंगिकता क्या है और ये युद्ध भूमि में आज भी अपनी साख बरकरार बनाए हुए है? आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जब एयरफोर्स की ताकत मौजूद है जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, तो फिर जमीन पर भारी और धीमे चलने वाले टैंकों की जरूरत क्या है? तो आपको बता दें कि हवाई हमले और टैंक एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। युद्ध जीतने और जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भी टैंक उतने ही जरूरी हैं जितने 100 साल पहले थे। टैंक को दरअसल हम एक मोबाइल शील्ड की तरह देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि टैंक एक मोबाइल शील्ड होता है। दरअसल युद्ध के समय में एयरफोर्स केवल आसमान से ही सरहदों की सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर उड़ते हमारे फाइटर जेट दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं, उसके ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में आगे बढ़ना होता है हमारे पैदल सैनिकों को, और इसमें टैंक एक मोबाइल शील्ड की तरह काम करते हैं। जंग के मैदान में एयरफोर्स के सामने हर मौसम और हर समय यानी कि 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने की चुनौती रहती है, लेकिन टैंक के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। भारी बारिश, घना कोहरा, धूल भरी आंधी में लड़ाकू विमान और ड्रोन के लिए निशाना लगाना या फिर उड़ान भरना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं टैंक दिन हो या रात, तूफान हो या बर्फबारी, लगातार कई दिन तक मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। एक फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर हवा में सीमित समय यानी कि कुछ ही घंटों के लिए रह सकता है, जिसके बाद उसे फ्यूल या फिर हथियार रीलोड करने के लिए वापस बेस पर लौटना होता है। जबकि टैंक के साथ ऐसा नहीं है, वो मोर्चे पर लगातार कई दिनों या महीनों तक टिके रहते हैं। लागत की बात की जाए तो विमान और मिसाइलें बेहद महंगी होती हैं, वहीं विमानों की तुलना में टैंक और उनके गोले काफी सस्ते होते हैं।
1: अगर आपके पास एक अच्छी एयरफोर्स है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, दैट डज नॉट मीन कि आप जीत पाएंगे, आप उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, दूर से रहकर, पास से जाकर, अंदर तक डीप स्ट्राइक भी कर पाएंगे, लेकिन उस डीप स्ट्राइक के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वो जमीन को कंट्रोल में लेना है, उस जमीन को पकड़ना है, उसको डोमिनेट करना है, उसको होल्ड करना है। और उस दूरी को अगर एयरफोर्स ने 200 किलोमीटर पर डाला है और वहां पर बम, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनिमी विल रिकूप, उसके लिए आपको टैंक्स की और मैकेनाइज कॉलम्स की जरूरत होती है कि वो एक मैचिंग स्पीड से 100-150 किलोमीटर अंदर जा पाए और उस जमीन को होल्ड कर पाए। उससे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि एयरफोर्स इज नॉट ऑल वेदर, अगर वेदर खराब है वो नहीं जा सकती, टैंक इज ऑल वेदर, वो अंदर फिर भी जा सकता है।
0: युद्ध में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। 60-70 टन वजनी अभेद बख्तरबंद और गरजती हुई तोपों के साथ जब दर्जनों टैंक एक साथ दुश्मन की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन की सेना का मनोबल टूट जाता है। जमीन पर रेंगते हुए टैंकों का जो खौफ होता है वो आसमान में उड़ते विमानों से काफी अलग होता है। आधुनिक युद्ध में रणनीति कंबाइंड आर्म वॉरफेयर की होती है। दरअसल इसमें तमाम सेना या कहें कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो आसमान से लगातार इसकी नजर जमीन पर रहती है, दुश्मन के ठिकानों पर रहती है, ये रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और फिर जमीन पर टैंक उसी रास्ते पर आगे बढ़ के दुश्मन का काम तमाम करते हैं।

0: युद्ध में मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि सिर्फ पारंपरिक हथियारों के भरोसे काम नहीं चलने वाला। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पुराने और भरोसेमंद T-72 टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला लिया। सेना अपने पुराने T-72 टैंकों को एक डिजिटल और आधुनिक अवतार देने जा रही है। अब इन टैंकों को IP आधारित इंटरफेस के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल्स में तब्दील किया जाएगा।
1: इस प्रोजेक्ट के तहत एक मानव रहित टैंक का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंजन का संचालन रिमोट से होगा, जो तोप और हैवी मशीन गन है उसका भी संचालन रिमोट से होगा। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, यानी जैसे AI का जो इंटीग्रेशन करना है या IP का जो इंटीग्रेशन करना है वह शायद उतने सुचारू रूप से फिलहाल नहीं हो रहा है।
0: T-72 वही टैंक है जिन्होंने दशकों तक हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा की, अब ये 40 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में रिटायर होने की कगार पर खड़े T-72 टैंक को घातक रोबोटिक वॉरफेयर में तब्दील करने की बात हो रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि T-72 टैंक में बदलाव से क्या फायदा होगा, सेना की समग्र मारक क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी। माइनस भरे इलाकों में तोड़ने में मानव रहित कॉम्बैट व्हीकल की तरह T-72 का इस्तेमाल होगा, साथ ही दुश्मनों की गोलीबारी को आकर्षित करने के लिए डिकॉय के रूप में काम करेगा जिससे सैनिकों की सुरक्षा होगी। अग्रिम मोर्चे पर ऑपरेशंस में ये अहम भूमिका निभाएंगे। T-72 टैंक अग्रिम पंक्ति में हमलों का नेतृत्व करेंगे और टोही के साथ गश्त का काम बाखूबी निभाएंगे। रियल टाइम डेटा, तुरंत निर्णय, डिजिटल होने के बाद T-72 टैंक कमांड नेटवर्क को रियल टाइम डेटा भेजेंगे जिससे ऑपरेटर्स और कमांडर्स को युद्ध के बीच तुरंत निर्णय लेने में आसानी होगी। पहले की योजना के मुताबिक T-72 टैंकों को साल 2030 से धीरे धीरे सेना से बाहर किया जाना था, लेकिन अब इस नई ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इन टैंकों का उम्र अगले 15 से 20 साल यानी कि 2045 से 2050 तक बढ़ जाएगी।
1: एक नॉर्मल कन्वेंशनल टैंक जैसे कि T-72 को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें इंजन वही रहता है, गियरबॉक्स भी वही रहता है, तोप भी वही रहता है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी वही रहता है। सिर्फ बदला किया जाता है, एक मानव रहित रोबोट जो है वो ड्राइवर की जगह ले लेता है, एक मानव रहित गनर है वो तोपची की जगह ले लेता है, और कमांडर की जो जगह है वो रिमोट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे बैठे हुए एक मानव कमांडर के हाथ में होता है। अब इन सब को करने के लिए जो रोबोट टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित कर ली है, लेकिन उसमें जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वह अभी तक आना बाकी है।
0: आज के युद्ध क्षेत्र में इंसानों से ज्यादा आधुनिक मशीनों की भूमिका है। अब जंग सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे कमांड सेंटर से लड़ी जाती है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आज के आधुनिक दौर में ड्रोन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और टॉप अटैक हथियारों ने पारंपरिक टैंकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। ऐसे माहौल में टैंक के भीतर बैठे क्रू मेंबर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। भारत ने इस वैश्विक चुनौती का बेहद सटीक और किफायती समाधान ढूंढ निकाला है। सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंकों में विशेष ऑटोनोमस किट फिट करने की तैयारी कर रही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहली बात टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो जाएंगे। अब रण क्षेत्र में टैंकों के अंदर किसी इंसान या सैनिक को जाने की जरूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे या फिर कहें कि AI फीचर से पूरी तरह से लैस होंगे। अनमैन्ड टैंक भी हम इसे कह सकते हैं, यानी दूर बैठे इस टैंक को ऑपरेट किया जा सकता है। एक पारंपरिक भारी भरकम मीन बैटल टैंक जैसे कि T-72 को मानव रहित रोबोटिक टैंक में बदलना इंजीनियरिंग का एक बेहद जटिल काम है। इसके लिए टैंक के पुराने मैनुअल सिस्टम को पूरी तरह से हटाकर उसमें ड्राइव बाय वायर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाता है। टैंक को रोबोट बनाने के लिए उसके मूल ढांचे को नहीं बदला जाता बल्कि उसमें एक विशेष रेट्रोफिट किट लगाई जाती है। इस किट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है एक्यूरेटर्स और सर्वो मोटर्स। टैंक के मैनुअल स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और गियर लीवर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूरेटर्स फिट किए जाते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे मानव चालक के हाथ और पैर करते हैं। दूसरा है रिमोट गन कंट्रोल सिस्टम। 125 mm गन को मोड़ने, निशाना साधने और गोला दागने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लगाई जाती हैं, जिन्हें मीलों दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है डिजिटल इंटरफेस। टैंक के पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम को ECU यानी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है जो डिजिटल कमांड और मैकेनिकल मूवमेंट में बदलता है।
1: खास बात है कि एक T-72 में आमतौर पर एक 3 लोगों का क्रू होता है, एक ड्राइवर, एक गनर और एक कमांडर। लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद इसमें जो रेट्रोफिट किट लगाया जाएगा उसमें यह ड्राइवर का काम एक ऑटोमेटिक रोबोट करेगा। इसी तरह से जो ड्राइवर होगा उसको असिस्ट करने के लिए जो गनर है, जो टैंक का मेन तोप और हैवी मशीन गन फायर करता है, उस गनर को भी एक रोबोटिक गनर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जो ट्रिगर प्रेस करने का काम है, जो निशाना लगाने का काम है, नया गोला तोप के चैम्बर में डालने का काम है, वो भी रोबोट्स के जरिए किया जाएगा।
0: रोबोटिक टैंक के अंदर कोई इंसान नहीं होता, इसीलिए युद्ध क्षेत्र को देखने और समझने के लिए टैंक के चारों ओर सेंसर्स का एक जाल बिछा दिया जाता है। टैंक में लाइडार और रडार का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर चारों ओर लेजर और रेडियो तरंगे भेजकर रियल टाइम में पूरे इलाके का 3D डिजिटल मैप तैयार करते हैं। इससे टैंक को पता चलता है कि आगे कोई खाई, चट्टान या फिर दीवार तो नहीं है। टैंक में 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे लगाए जाएंगे जो रात के अंधेरे, घने धुएं और कोहरे में भी दुश्मन की हलचल को साफ देख पाएंगे। सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होगा। AI सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को आपस में मिलाएगा ताकि टैंक का कंप्यूटर एक सटीक फैसला ले सके। भारतीय सेना अपने टैंकों को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहती, क्योंकि युद्ध में दुश्मन सिग्नल जाम भी कर सकता है, इसीलिए इसमें AI की मदद भी ली जाएगी। भारतीय सेना की अदिति 4.0 योजना के तहत देश के अग्रणी रक्षा स्टार्टअप्स इसी रोबोटिक किट और AI सॉफ्टवेयर को विकसित कर रहे हैं ताकि हमारे T-72 टैंकों को रिमोट कंट्रोल किलर मशीनों में बदला जा सके। क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज का दिन एक नए और ऐतिहासिक युग की शुरुआत लेकर आया है। आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।

0: देश की पहली एलएनजी ट्रेन को पटरियों पर उतार दिया है। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। अब इस नए कदम ने भारतीय रेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये ट्रेन ड्यूल फ्यूल सिस्टम से लैस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के साबरमती से देश की इस पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने वाली हरित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटरियों पर उतारने से पहले इस ग्रीन ट्रेन यानी एलएनजी इंजन वाली ट्रेन के सफल ट्रायल किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2000 किलोमीटर के ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दिखाई गई है। भारतीय रेलवे की इस एलएनजी ट्रेन के पीछे का उद्देश्य ईंधन की लागत कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। एलएनजी ट्रेनों को चलाने के लिए ड्यूल फ्यूल दोहरे ईंधन इंजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ट्रेन का इंजन केवल एक ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय डीजल और एलएनजी दोनों के मिश्रण से चलता है, जैसे कि कार में सीएनजी और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। एलएनजी यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जो स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है। प्राकृतिक गैस को लगभग -162 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो ये गैस से द्रव्य में बदल जाती है। तरल रूप में बदलने से इसका आयतन लगभग 600 गुना कम हो जाता है, जिससे इसे ट्रेन के छोटे टैंकों में अधिक मात्रा में स्टोर करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान हो जाता है। भारतीय रेल एलएनजी फ्यूल का इस्तेमाल अब ट्रेन चलाने के लिए करने लगा है। भारत में पहली एलएनजी ट्रेन साबरमती से शुरू हो गई है। एलएनजी का इस्तेमाल अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा और स्पेन जैसे देश कर रहे हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। फिलहाल गुजरात में साबरमती और मेहसाणा जंक्शन के बीच ये ट्रेन चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।